those pictures. Hereford, for example, Hereford, you know, it is a breed of US. Two-third red in color with constant red face. And like Berkshire, it is a breed of England. And it has 6 white points. It is black in color, but it has 6 white points in the extremities. Tamworth, it is a golden red color breed. That is a breed of England. Hampshire, black in color with white belt around the middle of their body. And this is the breed of US. So you have to remember this. And some important indigenous breeds are Ghungru. It is a breed of West Bengal. And now poultry. So classification of poultry breeds is very important. So there are 4 classes: American, English, Mediterranean and Asiatic. And the differentiation between these classes are very important. Like eggshell color. American has brown shelled egg, English also, Asiatic also brown shelled egg, but Mediterranean it is white shell. It lays white shelled egg. And feathered shank present in Asiatic breeds. And rest of that has clean shank. And examples are very important. American breeds are Rhode Island Red, New Hampshire, Plymouth Rock, Van Dort, Jersey Giant. English breeds are Dorking, Orpington, Sussex, Australope, Cornish, Mediterranean, Leghorn Ancona, Minorca, Andalusian, Asiatic, Brahma, Langshan, Cochin. तो आपको जब भी क्लासिफिकेशन लिखने के लिए आता है, चाहे वो कैटल हो, बफेलो, शीप, गोट, पोल्ट्री हो, तो एग्जांपल जरूर लिखे उसमें. नो इंडिजिनस ब्रीड्स में इम्पोर्टेंट है असील. कहाँ की ब्रीड है? आंध्र प्रदेश की ब्रीड है. मैसिव साइज ब्रीड, बिगेस्ट साइज ब्रीड है. अंकलेश्वर गुजरात की ब्रीड है. देवोठी गिर असम की ब्रीड है. हरिंगाटा ब्लैक, दैट इज अ ब्रीड ऑफ वेस्ट बंगाल. कड़कनाथ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ की ब्रीड है? मध्य प्रदेश झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की ब्रीड है. कड़कनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें मिलेनियन पिगमेंट होता है ना, इसी के कारण वो ब्लैक कलर का होता है. नेकेड नेक महाराष्ट्र की ब्रीड है, क्योंकि महाराष्ट्र ट्रॉपिकल साइड है, बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ का, इसलिए उनके नेक में फेदर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको नेकेड नेक कहा गया. तो ये कहाँ की ब्रीड है? महाराष्ट्र की ब्रीड है. कश्मीरी फेवरेला, ये एक इंडिजिनस ब्रीड है जिसमें फेदर्ड शैंक होता है. एशियाटिक में भी होता है, कश्मीरी फेवरेला में भी होता है. तो ये याद रखना है कहाँ की ब्रीड है. नाम से ये कश्मीर की ब्रीड है. तो हैबिटेट बहुत इम्पोर्टेंट है. जितने मैंने ब्रीड्स क्लास में कवर किए हैं केवल उतने. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन डाइजेस्टिव सिस्टम यू हैव टू गिव एम्फेसिस इन रूमिनेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स? तो सिंपल स्टमक में जैसे होता है वैसे नॉन रूमिनेंट्स में होता है, जैसे ह्यूमन बींग में होता है. तो और रूमिनेंट्स में कैसे होता है? तो इसमें कंपाउंड स्टमक होते हैं ना, 4 स्टमक जो है डिवाइडेड होता है कंपार्टमेंट में, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम में. तो आप रूमेन से अगर स्टार्ट करते हैं तो रूमेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको और क्या कहते हैं, उसको पाउच कहते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें विलाई होते हैं, पैपली कहते हैं जिसको, विलाई के जैसे दिखता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उस तरह का पैपली कहते हैं, जो 1 सेंटीमीटर का होता है लगभग. और उसका एनवायरनमेंट कैसे होता है, रूमेन का एनवायरनमेंट, वहाँ का पीएच 5.8 टू 6.8 होता है. पीएच वेरी करता है कि जिस तरह से वीड एनिमल्स आपको आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग रूमिनल फूड.

फ्रूट का पीएच होगा। तो अगर आप रियली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन ज़्यादा है, तो फिर पीएच डाउन होगा, जिसे को हम कहते हैं। अगर अगर एनिमल है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या दाना खा लेते हैं तो फिर उसका रूमेन का फ्लूड पीएच बहुत कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन जो डेवलप होती है हम उसको कहते हैं एसिडोसिस। और अगर ऐसा फीड दे रहे हैं एनिमल को जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर उसका पीएच पुअर फॉरेज हो तो उसका पीएच जो है वो ऊपर जाएगा, अल्कलाइन साइड जाएगा, तो 7.5 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो द पीएच डिपेंड, नॉर्मली द पीएच इज 5.8 to 6.8, बट इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू फीड यू हैव प्रोवाइडेड। ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ रूमेन, दैट इज 39 degrees Celsius। व्हाट आर विच गैसेस प्रोड्यूस बाय रूमेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूमेन, सो फर्मेंटेशन, माइक्रोबियलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड्स, सो इट इज द फंक्शन ऑफ रूमेन। ऑल्सो द स्टोरेज ऑफ रूमेन, स्टोरेज ऑफ फूड कंटेंट, रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड हनीकॉम, द फंक्शन ऑफ रेटिकुलम इज टू ट्रैप फॉरेन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो स्टोरेज। ओमेजम इज ऑल्सो कॉल्ड मेनी प्लाइज बिकॉज इट इज अ, जब इसका स्ट्रक्चर उस तरह से होता है इसको मैनी प्लाइज कहते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है वो, है ना। तो जितना भी फूड कंटेंट आया उसका 50% ही, ऑलमोस्ट 50% वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एबोमेजम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू स्टमक, है ना। और इसका पीएच होता है, ट्रू स्टमक है दैट मीन्स इसमें यहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस मीन्स HCl, है ना, तो इसका पीएच बहुत कम हो जाएगा, 1 to 1.3 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। और इसका काम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि इस यही एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इसी ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम HCl ये सब सिक्रीट होते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ये HCl का सिक्रीशन करता है, डाइजेशन करता है फीड मटेरियल का जो भी वहाँ से रूमेन से बच गया है वहाँ पे। ठीक है, और माइक्रोबियल प्रोटीन का भी, क्योंकि मैंने ये बताया था क्लास में कि माइक्रोब्स के द्वारा डाइजेशन होता है रूमेन में, हाँ माइक्रोब्स के थ्रू रूमेन में डाइजेशन होता है और वो बॉडी बिल्डिंग क्रिएट कर लेता है अपने बॉडी के चारों ओर और वही आगे जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, माइक्रोबियल प्रोटीन, क्योंकि माइक्रोब्स के चारों ओर वो बॉडी बिल्डिंग हो गई, वो अपना प्रोटीन का यूज़ करके अपना बॉडी बिल्डिंग कर लिया, फिर वो जाएगा एबोमेजम में जाके उसका डाइजेशन होगा। तो माइक्रोबियल प्रोटीन का एबोमेजम में डाइजेशन होता है, याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है रूमिनेंट्स में, 180 फीट का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ऑल्सो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल डक्ट आकर मिलेगा और यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आकर जॉइंट होगा और यहाँ पर फिर यहाँ का एनवायरनमेंट बेसिक साइड हो जाएगा, क्योंकि एबोमेजम के बाद आता है जस्ट ड्यूडेनम वाला पार्ट। एबोमेजम में हाईली एसिडिक है एंड ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल जूस के कारण वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट हो जाता है बेसिक साइड। बेसिक इसलिए होता है ताकि जो भी पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन, काइमेट्रिप्सिनोजन, वो वहाँ पर एक्ट कर सके, इजंट इट। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पार्ट्स में भी एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा देखो रूमिनेंट्स में 100 to 200 liter पर डे प्रोड्यूस होता है। ओके, और 3 ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ओके, पेयर्ड होते हैं। और रूमिनेंट, हम इसको रूमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है रूमिनेशन। रूमिनेशन में
3 process involved.

them. You know, regurgitation, remastication, re-insalivation भी कह सकते हो क्योंकि saliva भी वहाँ पर produce होगा and re-swallowing. तो ये तीन, ये सभी मिलाकर ये जो process होता है उसको कहते हैं rumination. Regurgitation क्या होता है? जितना food material होता है जो rumen and reticulum में कलेक्ट हुआ रहता है वो वापस माउथ में आता है नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन होगा देन उसके बाद फिर से वो मैस्टिकेट करेगा जितना फीड है उसको, उसके बाद सलाइवा फिर से आके उसमें मिलेगा, उस बोलस, बोलस फॉर्म होगा, फिर बोलस फिर से इसोफेगस में जाएगा रूमेन में, रूमेन रेटिकुलम होमेसम मेबोमेसम देन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इस तरह से ये उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है. इन केस ऑफ, अच्छा ये डिफरेंशिएशन है रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स में. वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है रूमिनेंट्स में, बट इन केस ऑफ नॉन रूमिनेंट्स वोलेटाइल फैटी एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है. जो स्टमक है वो फोर कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, बट इन केस ऑफ सिंपल स्टमक इट इज़ नॉट डिवाइडेड. सिंगल स्टमक का सिंपल स्टमक होता है, उसमें कंपाउंड स्टमक नहीं होता है. एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, पेनिस, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होते हैं सेमेनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूत्र ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. हाँ, तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेस्टिकल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो तो पहले एक पाउच में होता है, पाउच में लॉज होता है, तो उसको कहते हैं हम स्क्रोटम. स्क्रोटम एक क्यूटेनियस लेयर होता है, स्किन का लेयर ही होता है वो, क्यूटेनियस लेयर जो कि हेयरलेस होता है, और वो डिवाइड होता है एक सेप्टा से जिसको स्क्रोडल सेप्टम कहते हैं. तो टोटल दो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिसम, टेस्टिसम ओवरऑल कहते हैं, बट सिंगुलर है ना, दो टेस्टिस होता है तो हम इसको कहते हैं टेस्टिकल्स. तो ये दो टेस्टिकल्स दोनों सेप्टम में, दोनों स्क्रोटल सेप्टम में, दोनों स्क्रोटम में लॉजेस होते हैं एंड ये स्क्रोटल सेप्टम से डिवाइड होता है ना. तो स्क्रोटम में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 3-6 डिग्री सेल्सियस है ना, नोट्स में 1-2 डिग्री सेल्सियस लिखा है जो कि गलत है. जो मैंने क्लास में बताया है 3-6 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, वो याद रखिएगा आप. दैट इज़ अराउंड 2-4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसा कुछ आएगा अगर फ़ारेनहाइट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो. बट बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम का टेम्परेचर 3-6 डिग्री सेल्सियस कम होता है. तो कोई भी डेटा है जो कि एलपीएम में, कोई भी डेटा है इस सब्जेक्ट में, कोई भी डेटा है आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, बट डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट. ओके, लाइक अगर जीडीपी का परसेंटेज है 25-2, अगर 32 भी आप लिख रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप 40-50% लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा है ना. तो अभी इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. उसमें दो सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, सटोली सेल्स. और इसका क्या काम होता है, जर्म सेल का काम होता है स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करना, सटोली सेल्स का काम होता है, उसको नर सेल भी कहते हैं, तो हाँ नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ऑल सेमिनिफेरस, अब ये जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो रेटेड टेस्टिस बनाते हैं मिल करके, रेटेड टेस्टिस फिर एपिडिडाइमिस बनाते हैं. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स होते हैं, उसके बाहर कौन से सेल्स होते हैं, लैडिक सेल्स. लैडिक सेल्स ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन ही मेल सेक्स हार्मोन है. ओके, इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप का होता है. अब ये जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, रेटेड टेस्टिस बनाए, फिर एपिडिडाइमिस बनाए, एपिडिडाइमिस का क्या काम होता है, और इसका फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस

concentration of sperm, it is your maturation of sperm and storage of sperm. Now ये epididymis is जो है वो connect होता है vas deferens से, and vas deferens दोनों testis से दोनों side से निकलेगा, then there is two vas deferens है ना. ये सारे मिलकर के vas deferens and nerves, blood vessels, arteries, veins and muscles, scrotum का जो muscles होता है, ये सब मिलके बनाते हैं spermatic cord. and यही जो vas deferens है आगे चल के जाता है यूरेथ्रा में मिलता है. यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से आता है. उसके बाद का स्ट्रक्चर होता है पेनिस. तो पेनिस इसमें सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये 3 फीट लॉन्ग होता है इनके सब बोल. तो अब इसमें क्या होता है कि ये 3 फीट लॉन्ग है तो बॉडी के अंदर ये एस शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड फ्लेक्चर. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. अब ये जो पेनिस का टिप होता है उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि प्रोप्यूस से कवर्ड होता है. सो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स है ना, जो कि सीमेन प्रोडक्शन करता है. प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो कि अनपेयर्ड होता है, बाकी 2 ग्लैंड होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, बट प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज अनपेयर्ड. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोटीन एंजाइम्स मिनरल का सेक्रेशन करता है. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है कि ये यूरेथ्रा से जितने भी डेलेटेरियस इफेक्ट, क्योंकि स्पर्म को एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए कि वो सर्वाइव कर सके, और यूरिन से जो डेलेटेरियस इफेक्ट जो बॉडीज निकलते हैं वो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए हार्मफुल होते हैं. तो बल्बो यूरेथ्रल से जो भी सिक्रेशन मिलता है निकलता है वो उसको क्लीन करता है. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, सेकेंडरी इज फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना. एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इज वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरियस, वेजाइनल, वल्वार लिप्स, सॉरी. तो देयर टू ओवरी, लेफ्ट एंड राइट है ना. ओवल शेप का होता है ये. राइट ओवरी इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट. ओके, तो और इसमें ये जो फॉलिकल्स बनते हैं इसको प्राइमोरियल फॉलिकल कहते हैं. 75,000 टू 3 लाख होते हैं इच ओवरी में. एक ओवरी में 75,000 टू 3 लाख फॉलिकल्स बनते हैं, और ये फॉलिकल्स अपने डेवलपमेंटल फेज में जाते जाते इनका मैचुरेशन होता जाता है. प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट है ना, ग्रेफियन फॉलिकल्स इस तरह से बनते हैं. देन लास्ट में ओवुलेशन होता है और वो जो रेमिनेंट होता है फॉलिकल का बनता है, बचता है, जो उसको कहते हैं हम कॉर्पस लूटियम. तो ओवरी का क्या काम हो गया, फॉर्मेशन करना ओवा का, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, ओवम से. ओवम में 2 लेयर होते हैं ना, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. तो थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है और उसी को कहते हैं हम फीमेल सेक्स हार्मोन, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ फीमेल. प्रोजेस्टेरोन, देखो जो रेमिनेंट ओवुलेशन होने के बाद जो रेमिनेंट बच गया उसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम, और इसी कॉर्पस लूटियम से प्रोडक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का. प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है. ओ नाउ फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में 3 वो में डिवाइड होता है ये, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस, 3 पार्ट में डिवाइड होता है. तो इनफंडिबुलम जो कि पहला पार्ट होता है जो कि ओवरी के साइड होता है, फनल शेप का होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्बरी कहते हैं ना. तो ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसी में ही वो ही ओवा को कैप्चर करता है जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पर. इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, ये मिडिल का पार्ट होता है, उसके बाद स्थमस का पार्ट जो कि यूटरस से कनेक्ट होता है. ओके, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्पुला में है ना, याद रखना है. और उसके बाद यूटरस, यूटरस एक बॉडी है जिसमें 2 हॉर्न कनेक्टेड होते हैं है ना, इसी को हम यूटराइन हॉर्न कहते हैं. नाउ यूटरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें नीचे साइड है ना, ऊपर साइड के 2 हॉर्न होते हैं, नीचे साइड आप आएंगे तो सर्विक्स, वेजाइना. सर्विक्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और वो उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं, माइनर फोल्ड होते हैं, इसको नेक कहते हैं. पूरा यूटरस को कहते हैं हम वर्म, और सर्विक्स हो गया नेक. ओके, तो ये सर्विक्स

क्या काम होता है? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग एस्ट्रस, बाकी टाइम में ये क्लोज होता है, ठीक है, इन केस ऑफ एस्ट्रस, इन केस ऑफ हीट पीरियड और इन केस ऑफ पार्चुरेशन ये सर्विक्स ओपन होता है। ओके, ये सिक्रीट भी करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं ना। इट ऑल्सो एक्ट एज बैरियर, असेंडिंग जो भी इन्फेक्शन होगा, फॉर दैट इट ऑल्सो एक्ट एज बैरियर। विजाइना, विजाइना को कॉपुलेशन ऑर्गन कहते हैं फीमेल का। एंड वल्वार, वल्वार लिप्स जो आप बाहर से दिखाई देता है, हम देख सकते हैं बाहर से, जो कि नॉर्मली श्रंकन या रिंकल्ड होता है ना। एंड इन केस ऑफ एस्ट्रस, एस्ट्रस फेज में ये स्वॉलन होता है। नॉर्मली ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन देखोगे आप उसका, तो नॉर्मली पिंकिश टाइप का होता है, बट इन केस ऑफ नहीं, बस ड्यूरिंग एस्ट्रस फेज ये रेडिश होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। एस्ट्रस साइकिल, कितने दिन का एस्ट्रस साइकिल होता है कैटल में? दैट इज फॉर 21 डेज। फेज, एस्ट्रस साइकिल का फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, है ना। फॉलिकुलर फेज में को दो फेज में डिवाइड किया गया है, प्रो एस्ट्रस एंड एस्ट्रस। ल्यूटियल फेज में आएगा मेट एस्ट्रस एंड डायस्ट्रस। तो ये चारों फेज को अगर हम देखेंगे तो पहले प्रो एस्ट्रस आएगा, देन एस्ट्रस, देन मेट एस्ट्रस एंड डायस्ट्रस। और ये चारों जो स्टेजेस या फेज होते हैं वो 21 डेज के होते हैं टोटल, है ना। तो प्रो एस्ट्रस 2 to 3 डेज का होता है, जो कि पहला फेज होता है एस्ट्रस साइकिल का। इसी में FSH का सिक्रेशन होता है, फॉलिकल्स बनते हैं इसमें, है ना। और इसमें थोड़ा बहुत म्यूकस एंड सर्विक्स वेजाइना, इसका सर्विक्स और वेजाइना से म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अगर एक्सटर्नल साइन देखेंगे आप, तो बाहर का वल्वार का मेम्ब्रेन जो होता है वो रेडिश टाइप का होता है, स्वॉलन होता है इन केस ऑफ प्रो एस्ट्रस फेज। सेकेंड एस्ट्रस फेज, ये सेक्सुअल डिज़ायर का फेज है, ये 24 घंटे का होता है, 24 आवर। और इसमें ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, ओवुलेशन भी इसी टाइम में होता है। एस्ट्रस फेज में आने के 16 से 18 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। तो एस्ट्रस फेज 24 घंटे का होता है और इसमें ग्रेफिन फॉलिकल बनता है। अब ग्रेफिन फॉलिकल बना मीन्स मैच्योर्ड स्टेज में बन गया है वो, है ना। मैच्योर्ड फॉलिकल बन गया है, मैच्योर्ड फॉलिकल से एस्ट्रोजन रिलीज होगा, थीका इंटरनल थीका एक्सटर्नल सारे लेयर बन जाएंगे, है ना। तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन होगा और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन इसी फेज में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप ग्राफ देखें तो एस्ट्रोजन हायर लेवल पे इसी फेज में होता है और एस्ट्रोजन के कारण ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट शो करता है एनिमल, है ना। और हीट, हीट का सिम्टम आप बाहर से देख सकते हैं, एनिमल को देख के बता सकते हैं कि एनिमल हीट में है इसी फेज में, जो कि एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। इस फेज में सर्विक्स जो रिलैक्स होता है, ओपन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन डार्क होगा, डार्क रेड, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अगर आप ब्लड का सैंपल लेके देखेंगे तो इसमें एस्ट्रोजन का परसेंटेज, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा। और एक कॉपियस सिक्रीशन, कॉपियस हाँ कहना चाहिए, सर्वाइको वेजाइनल म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जो कि थिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और चिपचिपा कहेंगे, स्ट्रिंगी, स्ट्रिंगी, साइनी, क्लियर। तो ये सारे म्यूकस के कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये बाहर से आप ये डिस्चार्ज देख सकते हैं। तो ये सारे इस फेज में दिखाई देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एस्ट्रस, माउंटिंग, माउंटिंग का फेज हम देख सकते हैं कि एनिमल अलाउ करता है दूसरे एनिमल को कि वो उस पर माउंट कर सके। तो ये इस फेज में देखेंगे आप। मेट एस्ट्रस जो कि 2 to 3 डेज का होता है और इस फेज में ब्लीडिंग होता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एट फेज में, इस फेज में ब्लीडिंग होता है। डिस्चार्ज कम हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होते जाता है इस फेज में। ओवुलेशन हो चुका है, है ना, ओवुलेशन हो चुका है, दैट मीन्स कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा, है ना, प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा। तो कार्पस लूटियम का फॉर्मेशन इस फेज में होता है, ब्लीडिंग भी इसी फेज में होगा, है ना, वल्वा नॉर्मल हो जाएगा, डिस्चार्ज जो है स्कैंटी होगा और ब्लीडिंग भी होगा, है ना, ओवुलेशन होगा। डायस्ट्रस ये सबसे लास्ट फेज है, जो कि 15 डेज का होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, लॉन्गेस्ट फेज है ये। सर्विक्स है, फिर से क्लोज हो जाएगा,

वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत कम हो जाएगा, स्कैंटी। और इसके बाद, इस फेज के बाद अगर एनिमल को स्पर्म नहीं मिलता है, दैट मींस एनिमल फिर से साइकिल में आएगी, फिर से भी 21 डेज का साइकिल चलेगा। ठीक है, तो क्या सिम्टम होते हैं हीट के जो आप देख सकते हैं बाहर से? तो एक्साइटमेंट शो करेगा एनिमल, एनिमल्स बिकम रेस्टलेसनेस एंड एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी इसकी, रिड्यूस्ड एपिटाइट, रूमिनेशन भी कम हो जाएगा, खाना पीना कम कर देगा, है ना, फ्रीक्वेंट बेलोइंग, बार बार से वो चिल्लाएगा, ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन, इफ इट इज मिल्क, इट इज इन मिल्किंग देन देर इज ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन, इफ काउ इज इन हीट इट ऑल्सो माउंट टू अदर्स, ये अपने आप को भी अलाउ करेगा माउंट करने के लिए, एंड इट ऑल्सो माउंट्स टू अदर एनिमल। बट आप स्टैंडिंग हीट में हैं एनिमल, ये कब कहेंगे? जब एनिमल खड़ा रहेगा और दूसरे एनिमल को वो अलाउ करेगा। इसके साथ ही साथ आप दूसरी साइन भी देखेंगे, जैसे कि म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है वल्वार लिप से, तो ये सब भी देख रहे हैं और एनिमल दूसरे को अलाउ भी कर रहा है अपने आप को माउंट करने के लिए, तो हम कहेंगे कि एनिमल स्टैंडिंग हीट में है। और ये एक क्लियर साइन होता है ये कहने का कि एनिमल हीट में है, है ना, मीन्स एक्यूरेट है ये। दूसरा और क्या कर सकते हैं एक्यूरेसी देखने के लिए कि एनिमल हीट में है या नहीं? तो म्यूकस लेंगे, उसको हम स्लाइड में स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर बनाने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे स्लाइड को, और वहाँ पर हम देखेंगे कि उस म्यूकस में फर्न पैटर्न दिखाई देता है, फर्न पैटर्न डेवलप। अगर ये फर्न पैटर्न डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स एनिमल श्योर, इस श्योर है कि एनिमल हीट में होगा। इसके अलावा और क्या क्या साइन होते हैं? ये दूसरे एनिमल को लिक करेगा, आइसोलेट हो जाएगा, खाना गम कर देगा, फ्रिक्वेंट मिक्सचुरेशन होगा, रेज्ड टेल, ये भी एक साइन है, वल्वार लिप्स में ब्लड फ्लो होगा जिसके कारण से वो रेडिश लगेगा, रिंकल कम हो जाएगा, स्वालन होगा वल्वार लिप्स। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट साइन। नाउ व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव? ओके, तो ये जो एस्ट्रोसाइकल किस स्पीसीज में कितने दिन का होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनिमल में 21 डेज का एस्ट्रोसाइकल होता है, काउ में 21 डेज का एस्ट्रोसाइकल होता है, बफेलो में भी 21 डेज का होता है, इनके सब शिप इट इज़ फॉर 17 डेज, इनके सब गोट ये रेंज है 19 से 20 दिन का होता है, एंड इनके सब पिग इट इज़ 21 डेज। तो काउ, बफेलो एंड पिग में, ये तीनों में 21 डेज का होता है, बस शिप एंड गोट में अलग है, शिप में 17 डेज का एंड गोट में 19-20 डेज का है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि एस्ट्रस साइकिल एंड एस्ट्रस पीरियड, तो पीरियड हम किसको कहेंगे, एस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड? जिस टाइम पे एनिमल हीट में होता है या एस्ट्रस में होता है, हम उसको हीट पीरियड या एस्ट्रस पीरियड कहते हैं, जो कि 24 घंटे का होता है। बट हम टोटल एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो टोटल एस्ट्रस साइकिल 21 डेज का होता है ना, इन केस ऑफ काउ। तो वही है, ड्यूरेशन ऑफ हीट या हीट पीरियड कितने देर का होता है, काउ में तो 24 घंटे का होता है, बफेलो में भी 24 घंटे का ही होता है, बट शिप में 24 से 36 घंटे का होता है, एंड इनके सब गोट सेम ही है शिप के जैसा 24 से 36 घंटे का, बट इनके सब पिक ये 2 से 3 दिन का होता है। जेस्ट्रेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो काउ में 282 दिन का होता है, बफेलो में 310 दिन का होता है, शिप में 150 दिन का, गोट में 150 दिन का, एंड पिग में 115 दिन का। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स में एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है, इसका सोर्स क्या है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ऑलरेडी आई टोल्ड, टेस्टिस से हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ मेल, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। FSH, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ FSH? इट स्टिमुलेट द फॉलिकल्स, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स, एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द

0: estrogen secretion. LH, luteinizing hormone, it is secreted from pituitary gland and it helps in the ovulation, main ovulation, and also helps in formation of CL. Prolactin, name itself telling, pro means provoke karna, lactin means lactation ko. तो ये कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी से. तो ये इनिशिएशन करता है लैक्टेशन का. ओके, ऑक्सीटोसिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, दैट स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन. मिल्क लेट डाउन अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट स्टिमुलेट मिल्क लेट डाउन. एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रीट होता है, इट इज़ फॉर डेवलप. फंक्शन क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल. प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है और इसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन प्रेगनेंसी. सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू गो टू माई नोट्स, गो थ्रू देम थोरोली, रीड देम थोरोली. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जब भी ट्रू फॉल्स में आपको लिखना हो तो आप प्रॉपर पूरा सेंटेंस लिखिए, ट्रू और फॉल्स, डोंट राइट टी और एफ, राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, सो दिस ऑल आर द टॉपिक्स कवर्ड. ओके, ऑल द बेस्ट.
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. आइए जानते हैं मौसम का हाल. 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है. आपको बता दें इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है. अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है. सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है. अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी. आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए. किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें. साथ ही ध्यान दें खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो. जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है. किसान भाइयों बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथोएट 30 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें. ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो. जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नीनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है. इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें. ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो. भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें. भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें. अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें. ध्यान रखें गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें. जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें. प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है. इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए. एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए. ट्रैप भाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध

चलते रहना चाहिए। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है, लेकिन जहाँ तक खेती की बात है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में

0: दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की ही खेती इस जिले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं
1: जी। तो सर अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
0: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं
1: जी। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
0: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहले किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजाइक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकीली होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है।

0: वैरायटी JH97-52 होती है। यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH95-60 है। इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की एक किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोट तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना, कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी, भारी, उपजाऊ, अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े, रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए। तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बखरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद

टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं

0: होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फे अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनेजन बीम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 mg दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। कृषि

0: बच्चियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है, या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इससे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है SHEBOX shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान

शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स जरूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगे क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को खत्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे जरूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन

0: रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम के बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार किसान भाइयों, उन्नत कृषि कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। मेरा नाम है ईश्वर चंद्रा और आज हम बात करेंगे कि स्वरोजगार के उत्तम साधन के रूप में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आप क्यों अपनाएं। किसान भाइयों, आज हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर ए के झा साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: ये वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए सहायक है, ये एक जैविक खेती के लिए सहायक है, ये पूरी तरह से लोग जानते हैं और काफ़ी अवेयरनेस आ गई है अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में, लेकिन यह एक स्वरोजगार के लिए कैसे एक उत्तम साधन हो सकता है, इस विषय पे आज आप प्रकाश डालें।
4: बिल्कुल सही बात आपने कही। कुछ कहने के पहले मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आखिर ये वर्मी कंपोस्ट है क्या। बेकार कार्बनिक पदार्थ जैसे पुआल, भूसा, सूखी घास, जलकुंभी, सब्जियों के छिलके, पशुओं के मलमूत्र आदि से केचुओं की सहायता से बनाए गए खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह वर्मी कंपोस्ट काफी किसान बना भी रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि जो वर्मी कंपोस्ट किसान बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं हो पा रही है जितनी गुणवत्ता की होनी चाहिए। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उर्वरक के तरह ही अब वर्मी कंपोस्ट भी उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत ही इसकी बिक्री होती है। तो जब उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत होती है, कहने का मतलब कि वर्मी कंपोस्ट उसी को आप बेच सकते हैं, उसी का विपणन कर सकते हैं जिसमें कम से कम 1% नाइट्रोजन हो, 0.8% फॉस्फोरस हो, 0.8% पोटास हो, उसमें 17% जैविक कार्बन हो। तो कहने का मतलब कि उसकी गुणवत्ता बिल्कुल तय है, इसमें 15-25% तक नमी इसमें रहनी चाहिए। इसमें यदि आप देखें तो भारी तत्वों की ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेड हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे निकिल हो, सब 100 ppm के अंदर ही होना चाहिए। यदि इस ढंग का वर्मी कंपोस्ट आप नहीं बनाते हैं तो आपको इसका व्यापार करने का आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सबसे जो जरूरी चीज है, यदि आप इसको स्वरोजगार के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आप वर्मी कंपोस्ट जो कुछ भी बनावें वह गुणवत्तापूर्ण बनावें। पहले होता था कि वर्मी कंपोस्ट हम किसी तरह से बना लेते थे, मुझे मालूम भी नहीं होता था कि उसके पोषक मान क्या है। अब आज की तारीख में इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इसकी है कि गुणवत्तापूर्ण बनावे। अब यहां पर दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो यह आती है कि बहुत सारे किसान हैं जो सिर्फ टैंक विधि से ही वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अब टैंक विधि में थोड़ा सा वहां पर सिविल कंस्ट्रक्शन का खर्चा ज्यादा आता है, यह तो आप लोग सब लोग जानते हैं, चूंकि सरकारी अनुदान है, सब लोग जानते हैं कि 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचे टैंक में ही हम वर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है किसान भाइयों कि आप जा करके टैंक में ही बनाएं।

0: यदि आप किसी छप्पर के नीचे वहां की मिट्टी को थोड़ा सा ढालू बना के उस पर प्लास्टिक बिछा करके और वहां पर ढेर यदि बना देते हैं तो ढेर बना करके भी आप बर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं और ज्यादा बर्मी कंपोस्ट का निर्माण वहां पर आप कर सकते हैं। वहां पर जो लंबाई है आप अपने छप्पर के लंबाई के हिसाब से रखिए, चौड़ाई आप 4.5 फीट से लेकर के 6 फीट तक उसकी चौड़ाई रखिए, ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक रखिए। तो यह देखा गया है कि यदि आप बर्मी कंपोस्ट इस ढंग से बनाते हैं कि ये आपने ढेर बना लिया और ढेर बना करके उसके बाद उसमें आप केचुआ डालते हैं खास करके ठंडा करने के बाद, तो उसमें बर्मी कंपोस्ट ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? इसका कारण है टैंक में केवल जो सतह है, ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह पर ही केचुआ उसे खाने का काम करता है। जबकि यदि आप इसमें ढेर में देखें तो एक पैराबोला बनता है, यानी कि पूरा यहां इस हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक इतना क्षेत्रफल मिलता है केचुआ को अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए। क्योंकि जो बर्मी कंपोस्ट बनाने वाले ज्यादातर केचुआ हैं वो इपीजेइक नेचर के होते हैं। इपीजेइक कहने का मतलब यह कि यह ऊपर के सतह को ही खाने का काम करते हैं, तो वो क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा क्षेत्रफल मिलेगा तो ज्यादा बर्मी कंपोस्ट बनता है। तो इसीलिए मैं किसान को यह सलाह देता हूं कि वह जो है क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि टैंक वाले तो सामान्यतः वही किसान कर पाते हैं जो कि सुखी संपन्न है या नहीं तो जिनको सरकारी अनुदान मिल गया है। लेकिन जो किसान खुद करना चाहते हैं तो आप छप्पर बना लीजिए, आपके पास बांस है ही, आपके पास खरफूस है ही छप्पर बनाने के लिए, छप्पर बना दीजिए और छप्पर बना करके नीचे के जमीन को थोड़ा ढालू बना करके उस पर आप प्लास्टिक बिछा दीजिए और वहां पर आप चारों तरफ से टटिया लगा दीजिए। टटिया इस प्रकार से लगाइए कि छत से कम 1 से 2 हाथ नीचे तक बीच में जगह खाली रहे जिससे वायु संचार हो सके। और इस ढंग का यदि आपने छप्पर बना लिया तो वहां पर आप बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। कोई यदि सुखी संपन्न आदमी है वो यदि चाहते हैं कि ऊपर में हम एस्बेस्टस का सीड डालना चाहें वो भी वो डाल करके बना सकते हैं। यदि कोई किसान इतना गरीब है कि वो छप्पर भी नहीं बना सकता है तो हमारे विश्वविद्यालय में यह देख बिहार कृषि विश्वविद्यालय में यह चीज टेस्ट करके देखा गया है कि जो आम का पुराना बगीचा है, यदि आप 2 कतार के बीच में देखिए तो 10 से 12 मीटर की जगह रहती है, उस बीच के जगह को थोड़ा सा ढालू बना करके यदि उस पर यदि हम प्लास्टिक बिछा करके वहां पर बर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो वहां पर भी हम बहुत आराम से बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वहां पर आपको सिंचाई करने के लिए पानी का संसाधन कहीं ना कहीं से होना चाहिए। तो इस ढंग से यदि कोई किसान करना चाहते हैं तो उसको वो स्वरोजगार के रूप में बड़े आराम से ले सकते हैं। हम अभी आप कुछ देर में आपको बताएंगे कि यदि सिर्फ 10 ढेर एक किसान यदि लगाता है, एक युवक लगाता है 10 ढेर और हर रोज केवल 10 मिनट टाइम यदि वह देता है बर्मी कंपोस्ट के लिए तो 5-6 हजार रुपया महीने का बहुत आराम से कमा सकता है। और यह एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवसाय के ग्रामीण परिवेश में मिलने वाले पदार्थों के ऊपर ही निर्भर है, तो वहां से आप बना सकते हैं। और वहां से बनाने के बाद उसकी यदि छोटे स्तर से आपने शुरू किया है, मान लीजिए आपने 10,000 केचुआ से शुरू किया है, तो केचुआ तो खुद बखुद 3 महीने के बाद 10,000-16,000 हो जाएगा, तो 10 ढेर का स्थान पर 16 ढेर आप बना सकते हैं। तो एक छोटे व्यवसाय से शुरू करके एक बड़े व्यवसाय की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
1: जी, तो आप एक छोटे से व्यवसाय से बड़े व्यवसाय तक बढ़ सकते हैं और वो भी बिना कोई विशेष लागत के। हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आप कैसे करें। इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां अभी हैं जो आपको दी जानी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें।

0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि,
2: उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। वर्मी कंपोस्ट पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। हमारे साथ हैं डॉक्टर AK झा और आज का विषय है स्वरोजगार के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एक कैसे बेहतर विकल्प हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने छोटे से लेकर के और एक मंझोले और बड़े स्तर तक कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें आपने बताया। इसमें एक जो विशेष जानकारी यह है कि इसमें क्या कोई वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट की पीठ अगर इलाके में और भी खुल जाती है, कोई हमारे एक युवक हैं जो इस स्वरोजगार में आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो वर्मी कंपोस्ट है वो बेहतर बाजार मूल्य मिले और औरों से अलग हो, तो क्या कुछ इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट या इस तरह का कुछ विशेष वर्मी कंपोस्ट जो कि मार्केट में उनके इसको एक अलग स्थान दे, क्या इसकी कोई संभावना है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न। एक्चुअली जो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, सामान्य वर्मी कंपोस्ट, उसका संवर्धन की प्रचुर यहाँ पर स्कोप है, व्यवस्था है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट को चाहते हैं कि हम संवर्धित बनावें, तो जो हमारा विश्वविद्यालय उसी ढंग का वर्मी कंपोस्ट बना भी रही है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं, 5% के हिसाब से उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं। उसमें फॉस्फो जिप्सम या जिप्सम आपके पास है तो 2.5% के हिसाब से गोबर की जितनी मात्रा है या फसल अवशेष की जितनी मात्रा है, उस दोनों के मिश्रण की मात्रा का 2.5% के हिसाब से आप जिप्सम या फॉस्फो जिप्सम मिला सकते हैं। इसमें 50 से 100 ग्राम प्रति टन के हिसाब से आप इसमें ये जो आपका एजियोटोबैक्टर है या PSB है वह आप इसमें मिला सकते हैं, और साथ ही साथ अजोला इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यह करने से यह देखा गया है कि जो पोषक मान है वर्मी कंपोस्ट का वो काफी बढ़ जाता है। काफी समचीन प्रश्न ईश्वर जी ने पूछा है कि वास्तव में यदि वर्मी कंपोस्ट के अभी यदि आप मात्रा देखें, अनुशंसित मात्रा, तो कहीं 10 टन 12 टन इस ढंग का है, वह किसान के लिए बड़ा उपयोगी नहीं हो पाता है कि वह 10 टन का मतलब हो गया 100 क्विंटल। यदि 6 रुपये KG भी यदि है तो कम से कम 60,000 रुपये का वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो किसान के लिए प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यदि हम वर्मी कंपोस्ट का पोषक मान बढ़ा देते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा देते हैं, तो कम मात्रा में हम कम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके हम फसल उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं। यह चीज हम लोगों ने देखा है यहां पर कि यदि हम सामान्य वर्मी कंपोस्ट में देखते हैं तो 1.2 से लेकर के 1.5% तक नाइट्रोजन होता है, लेकिन संवर्धित वर्मी कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें 2% के ऊपर ही नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस यदि हम देखते हैं तो सामान्य वर्मी कंपोस्ट में 0.8% तक होता है, जबकि यदि संवर्धित वर्मी कंपोस्ट में देखें तो 4.5% तक उसमें फास्फोरस हो जाता है, क्योंकि जो रॉक फॉस्फेट हम प्रयोग कर रहे हैं, लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट हमारे देश में प्रचुर भंडार है, लेकिन इसका प्रयोग न तो फॉस्फोरिक अम्ल बनाने के लिए किया जा सकता है, न आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जब PSB के साथ इसको मिला देते हैं तो उसका जो अनुपलब्ध फॉस्फोरस है वह उपलब्ध फॉस्फोरस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाते समय यदि रॉक फॉस्फेट के साथ PSB हमने मिला दिया तो उसकी फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही साथ आज की तारीख में जहां पर ज्यादातर जमीन हमारा गंधक के मामले में निम्न होता चला जा रहा है, तो गंधक की मात्रा बढ़ाना, और वैसे भी दलहन और तिलहन में सल्फर का बड़ा रोल है, दलहन तिलहन के उत्पादन में आपको सल्फर का बड़ा रोल है, तो यदि हम ऐसा वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जिसमें कि सल्फर की मात्रा अच्छी है तो दलहनी तिलहनी फसलों के लिए ज्यादा अच्छी होगी, या जो जमीन हमारा ऊसर हो रहा है उस जमीन के लिए भी वैसा वर्मी कंपोस्ट काफी अच्छा होगा। तो हम यदि उसमें फॉस्फोरस जिप्सम या जिप्सम मिलाते हैं तो उससे हमको गंधक की मात्रा हमारे वर्मी कंपोस्ट में बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं, खास करके लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, चाहे अजोटोबैक्टर है चाहे PSB है, ये सब की संख्या हमारे वर्मी कंपोस्ट में बढ़ जाती है। और चूंकि हमने अजोला का प्रयोग किया है, अजोला में 4.5% से 5% तक उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन इसमें ज्यादा है, तो नाइट्रोजन वास्तव में वर्मी कंपोस्ट कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन लाता नहीं है, जो आपने पदार्थ प्रयोग किया है उसमें

0: जो कुछ भी पोषक तत्व है उस पोषक तत्व का खनिजीकरण करता है, तो उससे होता फायदा यह है कि उसका पोषक मान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको कम मात्रा डाल करके हम खेती कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहां पर, कि यदि मान लीजिए आप सेंटेड राइस ग्रो कर रहे हैं, सेंटेड राइस में 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डाला जाता है, यदि कोई मान लीजिए जैविक खेती कर रहा है तो उसको 1% वाला यदि बर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहा है तो 40 क्विंटल का उसको प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं पर 2% वाला यदि 2% नाइट्रोजन वाला यदि बर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहा है तो उसको 20 क्विंटल में ही काम चल जाएगा, तो आधा आधी मात्रा की बचत हो गई, तो जो कि किसान आसानी से प्रयोग कर लेता है, उतना खरीद पाता है और उतना का प्रयोग कर पाता है। और साथ ही साथ जो व्यवसाय करने वाले हैं, यदि देखिए व्यवसाय 3 बातों पर चलता है, कि आपके सामान की क्वालिटी कितनी अच्छी है, दूसरा आपका दाम कितना अच्छा कैसा है, और तीसरी बात कि आपका जो व्यापारी है उसका व्यवहार कैसा है। तो निश्चित रूपेण यदि आप व्यापार के लिए, आप स्वरोजगार के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इन तीनों बातों पर आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा।
1: जी, तो संवर्धित वर्मी कंपोस्ट या फिर इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट अपनाकर भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक हम और सवाल लेंगे, जो कि हमने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब, कि जो ऐसे गांव या ऐसे क्षेत्र जो थोड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द होते हैं, वहाँ पर छोटे मंझोले या फिर एक 5 से 10 केजी के भी वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग और ब्रांडिंग करके लोग बाजार में बेचते हैं, और जिसकी अच्छी कीमत मिलती है, जो बल्क का है उससे बेहतर मिलती है। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन में भी वर्मी कंपोस्ट देखा जा रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, चाहे वो अमेजोन पे हो या फ्लिपकार्ट पे हो, लोग गमले के लिए या रूफ फार्मिंग के लिए मंगाते हैं। तो क्या ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो कितने दिन तक पैक करके रखा जा सकता है, उसमें कितनी नमी होनी चाहिए, या इस तरह की जो पैकिंग जो हम करते हैं जो कि पन्नी को लेकर के, तो ये क्या उसमें भी कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ताकि बेहतरीन क्वालिटी जैसा उन्होंने उत्पादन किया है वैसा ही बिल्कुल एंड यूज़र तक मिले।
0: बहुत समचीन प्रश्न है। वास्तव में ये है कि जो बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता यदि बरकरार रहेगी तभी उसका व्यापार कोई कर सकता है। फ्लिपकार्ट पर बेचे हैं या कहीं भी ऑनलाइन जब मार्केटिंग हो रही है, या हम अपने छोटे शहर के बगल में यदि रह रहे हैं तो वहाँ पर यदि बेचते हैं, क्योंकि बहुत लोग किचन गार्डन करते हैं, बहुत लोग रूप अपना गमला वमला में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो छोटा पैकेट चाहते हैं। लेकिन छोटे पैकेट में उसकी जब भी हम पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखते हैं कि इसमें मॉइस्चर लॉस कम से कम हो, क्योंकि मॉइस्चर लॉस यदि हो जाएगा तो जितने भी इसके एंजाइम हार्मोन्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको इनर लैमिनेटेड बैग्स में ही इसको पैक करके रखा जाता है, जिससे कि 15 से 25% नमी बर्मी कंपोस्ट का बरकरार रहे। वो यदि बरकरार नहीं रहेगा तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं। एक चीज़ में बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो एक नवयुवकों को, खास करके ग्रामीण नवयुवकों के लिए मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं, कि जैसे मान लीजिए आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, एक ट्रैक्टर गोबर में लगभग 16 क्विंटल गोबर आता है, 16 क्विंटल गोबर से आप 10 फीट × 3 फीट × 2.5 फीट का 2 ढेर बना सकते हैं। 2 ढेर बनाते हैं यानी 10 ढेर बनाना चाहते हैं तो आपको 5 ट्रैक्टर गोबर लगेगा। विश्वविद्यालय के रेट पर यदि हम गोबर की बात करें तो आपको लगभग 5,000 रुपया इस 5 ट्रैक्टर गोबर के ऊपर लग जाएगा। साथ ही साथ केचुआ का कितना प्रयोग करना चाहिए, तो एक टन जो आपका कचरा है, फसल अवशेष है, दोनों का जो मिश्रण है। वास्तव में मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया हूँ जो जरूर कहना चाहता हूँ, कि जब भी आप ढेर बनाएं, ढेर बनाने के पहले उसका आंशिक अपघटन अवश्य करें। आंशिक अपघटन में क्या होता है कि जो 60% गोबर और 40% फसल अवशेष को 1-1 इंच के टुकड़े में काट दीजिए, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके यदि आपके पास कोई कंपोस्टिंग कल्चर है तो वह उसके ऊपर छिड़क करके 3 से 4 हफ्ते तक छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उस मटेरियल को आप ढेर बनाने में या टैंक में भराई के लिए प्रयोग करें। यह जो प्रक्रिया है इसको आंशिक अपघटन कहते हैं। तो अब यदि आपने उसके बाद ढेर बना दिया, तो ढेर बना देने में 10 ढेर बनाया है तो 10,000 केचुआ लगेगा। विश्वविद्यालय रेट पर यदि मैं कहूं तो 5,000 रुपया आपका केचुआ पर चला गया। तो 5,000 केचुआ पर खर्चा, 5,000 गोबर पर खर्चा, और 2 लेबर आपको लग जाएगा मान लीजिए ढेर लगाने के लिए। 2 लेबर आप लग जाएगा लगभग, आप उसकी जो छनाई वनाई करेंगे, पैकेजिंग करेंगे उसके लिए, तो दो दो

0: चार लेबर हुआ, चार लेबर नहीं हम मान लेते हैं कि छह लेबर आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, 300 रुपये लेबर यदि आप रख लीजिए जो गाँव में सामान्यतः 300 रुपये मिलता है, तो छतरी का 1800 रुपया हुआ, 200 रुपये आप इनरिचमेंट मटेरियल या बोरा वगैरह वगैरह जो लेते हैं उसके ऊपर खर्चा पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब आपका जो खर्चा यहां पर हुआ, ये खर्चा हुआ आपको 12,000 रुपया आपको जो है क्या कहते हैं इस पर 5, 5, 10 और छतरी का 18, 2, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया आपका इस पर खर्चा आया। अब 12,000 इस पर खर्चा हुआ, लेकिन 3 महीने में तो आपका बन करके तैयार हो गया। अब जो अगला जो 3 से 6 महीना, 6 से 9 महीना, 9 से 12 महीना करेंगे, वहां केचुआ तो आपको नहीं डालना है, केचुआ आपके पास खुद है, वहां तो सिर्फ गोबर का खर्चा लगना है, लेबर वाला खर्चा लगना है, तो वहां पर सिर्फ आपको खर्चा लगेगा 7,000 रुपया। तो 7 या 21,000 रुपया, 21,000 + 12,000 रुपया, तो 21, 10, 31, 31, 2, 33, 33,000 रुपया आपका टोटल खर्चा होकर के आया। और यदि एक ट्रैक्टर गोबर है तो एक ट्रैक्टर गोबर में 7, 7.5 क्विंटल आपको बर्मी कंपोस्ट मिलेगा, हम 7 क्विंटल ही मानते हैं, तो आपको 7×5 = 35, 35×2 = 70, 70×2 = 140, यानी 140 क्विंटल आपके पास बर्मी कंपोस्ट बनकर के रेडी होकर के चला आ रहा है। 140 क्विंटल 7 रुपये केजी के रेट से यदि रखिए, जो विश्वविद्यालय का रेट है, तो 7 रुपये केजी के हिसाब से रखते हैं, तो 98,000 रुपया लगभग आपका बर्मी कंपोस्ट की कीमत हो गई। जो केचुआ बढ़ा उसकी कीमत में नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ मैं बर्मी कंपोस्ट की कीमत जोड़ रहा हूं, तो 98,000 रुपया हो गया। अब उस 98,000 रुपया में से 33,000 रुपया घटा दीजिए तो लगभग 65,000 रुपया आपके पास हुआ। तो 12×5 = 60, 5, 5.5 हजार रुपया पर मंथ आपको मिल जा रहा है। और करना क्या पड़ रहा है कि आप जब नहाने जा रहे हैं उस समय आपने 20 बाल्टी पानी उठाया, उठा करके उसके ऊपर सिंचाई कर दिया, और जब 3-4 हफ्ते के बाद केचुआ वहां पर बना दिया चाय की पत्ती जैसी संरचना, तो वहां जो ऊपर का मटेरियल है जिसको बर्मी कास्ट कहते हैं उसको आपको केवल हटा देना है। कहां तक? जहां तक केचुआ नहीं मिले वहां तक आपने उसको हटा दिया। अब हटा देने के बाद वह जो फिचालने वाला जो आदमी है वह उसको 4 mm की जाली से छान करके पैक कर देगा। तो कहने का मतलब कि आपको सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगना है। संडे को आपने आधा एक घंटा टाइम दिया और उसके एवज में यदि आपको 5, 5.5 हजार रुपया प्रति माह आपको मिल रहा है तो यह ठीक ठाक एक आमदनी है, खास करके उन नवयुवकों के लिए जो कि गांव में रहते हुए पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ वह अपना खेती भी कर रहे हैं, तो उनको अपने पिताजी से अपने गार्जियन से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए आज 10 ढेर से उसने काम शुरू किया है तो मान लीजिए 3 महीने के बाद तो 16,000 केचुआ हो गया, तो 16 ढेर बनाएंगे और इसी प्रकार से वह आगे बढ़ता जाएगा।
1: जी, तो किसान भाई और किसान भाइयों के जो बच्चे हैं जो अभी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अपने गाँव में रहकर बिना अपने परिवार से बिछड़े हुए एक बेहतर और अस्थाई एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग इसमें 3 गुनी फायदा, लगभग इसमें 3rd time आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 1 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम 3 रुपये की प्राप्ति एक समय तक आपको हो जा रही है। तो ऐसे में आप बर्मी कंपोस्ट को एक व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं, बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। आप गांव में दे सकते हैं महज 7 रुपये के हिसाब से, डॉक्टर साहब ने ये जोड़ के बताया है, जबकि हमने ये देखा है कि जो नर्सरी प्राइवेट नर्सरी है या फिर जो बड़े शहरों के जहाँ पर गमले और किचन गार्डनिंग के सामान मिलते हैं वहाँ पर 20 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक भी बर्मी कंपोस्ट मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस संभावनाओं को आप भुना सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बस एक लाइन का सवाल कि इसे कितने दिन तक पैकिंग करके रखा जा सकता है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है मैक्सिमम?
0: इसकी ड्यूरेबिलिटी 3 महीने से 6 महीने तक रहती है, लेकिन यदि मॉइस्चर मेंटेन है तो उससे ज्यादा दिन भी चलेगा।
1: पैकिंग के बाद
0: जब पैक कर लेते हैं तो 3 से 6 महीना तक यह मेंटेन रहता है, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है
1: जी।
0: लेकिन बीच में यदि 6 महीने के अंदर नहीं बिक रहा है तो उसको खोल करके पुनः उस पर नमी डाल करके फिर रीपैकिंग कर दें हम, तो और उसके ड्यूरेशन बढ़ा सकते
1: हैं जी। तो इसे आप अपना सकते हैं, और इस बारे में विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है आप आकर के मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से, और यहाँ के बर्मी कंपोस्ट इकाई को देख कर भी आप अपना बर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का विचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया हमें, एक लंबा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों आज के उन्नत कृषि कार्यक्रम में बस इतना ही, हम अगली बार

0: में कुछ और नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
1: नमस्कार, मैं अजीत। सुनते हैं आज का विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां नियम से चलती हैं, इस कारण लोग इस पर विश्वास करते हैं। हम भी नियमों से चलेंगे तो लोग हम पर भी विश्वास करेंगे।
1: बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। सच है श्रोताओं, विश्वास प्राप्त करने के लिए अनुशासन और नियम की सबको जरूरत है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सत्रोड़ खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस जी का।
2: बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल।
1: जिला मोहल्ला मानपुर गांव ढोडरी घोटिया से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि, स्वप्निल और कुमार निषाद।
2: ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
1: और उज्जैन मध्य प्रदेश से गौतम बुद्ध, लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा और अर्पित वर्मा के साथ साथ रेखा वर्मा।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: तो श्रोता, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
2: कक्षा 9 की हिंदी की किताब कृतिका में हिंदी के महान साहित्यकार श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा इस जल प्रलय में नामक पाठ में और कक्षा 11 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 में बाढ़ के विषय में जानकारी दी गई है।
1: तो आप समझ गए होंगे कि आज हम जानकारी लेंगे बाढ़ की।
2: श्रोताओ, बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे
1: कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना, इससे नदियों में उफान आ जाता है,
2: पहाड़ों पर ग्लेशियर या हिमनदों के पिघलने या मलबे के जमाव के कारण नदियों का उफान।
1: लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं श्रोताओ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, शीर्षक है सरिता की पुकार।
2: सरिता यानी नदी की पुकार। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और प्यारा सा गांव था, नाम था सरितपुर।
1: नाम से ही स्पष्ट है श्रोताओं कि ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे।
2: वो उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का भी घर थी।
1: नदी भी बहुत खुश थी, वो गाती रहती, गुनगुनाती रहती। समय बीतता गया, आबादी बढ़ती गई। उस गांव में खेत और फलों के बहुत सारे बगीचे थे, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम करने के लिए आने लगे और बसने भी लगे।
2: लोगों ने नदी के किनारे अपने घर बना लिए, धीरे धीरे कारखाने भी लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा भी वहीं डालने लगे, कारखानों का कचरा, प्लास्टिक इत्यादि भी नदी में ही डालने लगे। जो कारखाने दूर थे उसकी जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नाले का कचरा भी नदी में आने लगा। किसी को ध्यान भी नहीं आया कि नदी कचरे से भरती जा रही है।
1: आबादी बढ़ी तो आवास की भी जरूरतें बढ़ी। फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, वहाँ के पेड़ भी काटे जाने लगे। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। अब वहाँ की मिट्टी ढीली हो गई थी।
2: सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी। पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी तो ग्लेशियर पिघलने लगे और पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा।
1: श्रोता, नदी में जब कचरा नहीं था तो वह अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब क्योंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी, वो अपने तटों से बाहर बहने लगी।
2: इसी बीच पहाड़ों पर भारी वर्षा होने लगी, पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई। नदी का जल स्तर बढ़ गया था और पानी गांव में घुस गया, उसने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और त्राहे त्राहे मच गई।
1: नदी थी शांत, बहुत ही प्यारी,
2: बहती थी धीरे।

0: धीरे सबकी थी दुलारी।
1: खेतों को सींचती, जीवन दिलाती,
0: बच्चों संग वो खेलती, कलकल गीत सुनाती।
1: लोगों ने नदी को सताया, उसने कचरा गिराया,
0: पेड़ों को काटा, नदी का साथ न निभाया।
1: फिर तो उफान आया, सीमा टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी।
0: तो श्रोताओं, ये थी एक सामान्य जानकारी क्यों आती है बाढ़। वैसी एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भी भूमिका कम नहीं है। तो ध्यान दें, प्रकृति का संतुलन न बिगड़े।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कहानी और कविता, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, बाढ़ आने के मुख्य कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बाढ़ आने के मुख्य कारण बताइए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप अपना उत्तर और संदेश यहाँ भेज सकते हैं।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार एक किसान ने अपनी बुद्धिमानी

0: से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
1: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
0: भालू ने कहा,
2: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
0: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा,
2: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
0: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
2: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

तो बच्चों, सुना आपने किसान कितना होशियार था? मजा आया ना? तो भाई, इस कहानी को सुनकर क्यों ना एक मजेदार काम करें? अपने बड़ों, मित्रों और शिक्षकों से जरा पूछें और पता लगाएं कि कौन कौन सी सब्जियां, फल या उपज जमीन के ऊपर होती है और कौन कौन सी जमीन के नीचे। और हाँ, ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका जमीन के नीचे और ऊपर दोनों का भाग खाया जा सकता है। ये भी पता लगा सकते हैं हम कि कौन सी सब्जी है जिसका सिर्फ ऊपर यानी जमीन के ऊपर का भाग ही खाया जा सकता है। और हाँ, एक खास सवाल तो हम पूछना भूल ही गए थे। सवाल है, आप फल और सब्जियां खाते हैं या नहीं? यदि हाँ तो शाबाश, और यदि थोड़ा थोड़ा या कभी कभी खाते हैं तो भाई फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए इन्हें खाना, क्योंकि होती हैं बड़ी पौष्टिक और मजेदार ये फल और सब्जियां। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम किसान की होशियारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान की होशियारी।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम द से दामोदर के दांत।
2: इस कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के द अक्षर से नए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग मनोरंजक ढंग से बनाना बताया गया है। कार्यक्रम नवाचारी तरीके से बच्चों को उत्साहित करता है और बताता है कि वे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके भाषा के इस खेल का आनंद उठा सकते हैं।
3: नमस्ते नमस्ते।
4: अरे बैठो बैठो, अरे बैठो बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। शाबाश,
5: ये लो टॉफी।
4: अरे वाह वाह वाह, टॉफी क्यों अधीरा, आज क्या खास बात है?
5: आज मेरा जन्मदिन है।
4: अरे वाह वाह वाह, जन्मदिन है, बजाओ ताली इसी बात पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अधीरा को जन्मदिन की।
5: आज अधीरा ने हम सबको टॉफी दी है।
4: अच्छा,
5: मुझे भी दी है।
4: अरे वाह,
5: मुझे नहीं दी है।
4: ओ, आपको नहीं दी, आपको दो मिलेंगी पक्का।
5: ये लो, थैंक यू।
4: वाह भाई, टॉफी तो बड़ी स्वादिष्ट है। क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, टॉफी तो तुम लोग खाते हो, दांत वांत भी साफ करते हो या नहीं?
5: दो बार करता हूँ।
4: वाह शाबाश, बजाओ इसी बात पर ताली। आप भी करते हो, इसके लिए भी बजाओ ताली। एक बात बताओ, अगर आप लोग रात को टॉफी खाते खाते सो जाओ तो क्या होगा?
5: दांत टूट जाएंगे,
6: दांत फाड़ निकल जाएंगे।
4: कीड़े लग जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे।
6: मैंने घर में मिर्ची खाई ना, फिर मिर्ची खाते खाते मुझे उल्टी आ गई।
4: उल्टी आ गई?
5: अगर मुंह में टॉफी लेके जो सोएंगे तो गले में अटक जाएगी, गंदी बदबू आएगी।
4: बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही भालू दामोदर की कहानी सुनाऊंगा जो टॉफी चॉकलेट तो खाता था पर दांत साफ नहीं करता था।
6: कटाने हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे, बदबू आएगी,
4: सड़ जाएंगे,
5: खराबी भी हो जाएगी।
4: वाह वाह,
6: गंदी बदबू लगेंगे, कीड़े।
4: भाई वाह वाह,
5: फिर नए दांत लगवाने पड़ेंगे।
4: हाँ, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। तो बच्चों, द से
5: दामोदर।
4: हाँ शाबाश, द से दामोदर, द से, हाँ द से दांत, शाबाश।
5: दर्द,
4: द से दर्द। अरे वाह, दासे दादी, दासे दादा,
5: दाने,
4: दासे दाने, क्या बात,
5: दासे
4: दाल।

0: दासे दाड़ी
1: दरवाजा
0: दाड़
2: आगे सुनाओ ना कहानी।
0: सुनाता हूँ बच्चों, आगे की कहानी भी सुनाता हूँ। हाँ, एक था भालू, नाम था दामोदर। क्या नाम था?
3: दामोदर।
0: वो बहुत हट्टा कट्टा दमदार था। दासे
2: दमदार।
0: हाँ शाबाश। और पता है वो क्या करता था? कसरत करता था। वो खूब कसरत करता था। दामोदर इतना दमदार था बच्चों कि 10-10 बंदरों को एक साथ अपनी पीठ पर बैठाकर चलता था।
2: इतना दमदार था।
0: हाँ बिल्कुल वंश, इतना दमदार था। तो दासे
3: दमदार,
0: दासे दमदार, दासे
3: दस।
0: हाँ शाबाश। दामोदर अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता, लेकिन बच्चों एक गंदी आदत थी उसकी। वो टॉफी चॉकलेट तो खाता था, पर कभी दांत साफ नहीं करता।
4: गंदा बच्चा था वो, गंदा बच्चा, बहुत ही
2: गंदा।
0: बच्चों 10 बार शरबत पीता था वो, पर एक बार भी दूध नहीं पीता था। दासे दूध। शाबाश। दासे दूध और दासे दस। दासे दलदल।
1: दासे दावत।
0: दासे दावत।
1: दासे दादी।
0: दासे दादा।
1: दासे
0: दम। अच्छा बच्चों जानते हो एक बार क्या हुआ?
3: क्या हुआ?
0: दामोदर दादा ने रात को ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट खाई और दांत साफ तो किए ही नहीं था उसने। तो पता है फिर क्या हुआ? अगले दिन सुबह उसे दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा। अरे मर गया,
3: अरे मर गया,
0: अरे मैं क्या करूं, अरे इतना दर्द। हाँ तो दासे दर्द और दासे
3: दांत।
0: और बच्चों तब दामोदर का दोस्त दीनू बंदर उसे डॉक्टर हाथी के पास ले गया। हाँ तो दासे
3: दीनू,
0: दीनू, दासे
3: दोस्त,
0: दासे
3: दीदी,
0: दीदी, दासे दामोदर,
3: दासे दादा,
0: दासे दादा।
2: भैया क्या डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांत निकाल दिए?
5: अभी तो इसका एक दांत टूटा, एक दांत।
0: अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ।
5: क्या उसे बहुत दर्द हुआ?
0: ये तो है, दर्द हुआ, लेकिन दांत वांत नहीं निकाले। डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांतों को जरा दबा कर देखा, कुछ इस तरह से।
6: हाँ तो दामोदर अपना मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो। अरे दामोदर थोड़ा और ज्यादा खोलो।
0: डॉक्टर अब ये बताओ क्या मेरे मुंह में बैठ के दांत देखोगे? हाँ तो बच्चों दासे दामोदर,
2: दासे दबाकर,
7: दासे देखा,
0: देखा, बजाओ उसी बात पर ताली। शाबाश, बहुत खूब। फिर डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा के दांतों में दवा लगाई।
5: दासे दवाई,
0: दासे दवा, दासे देखा और दासे दबाकर। तब डॉक्टर हाथी बोला,
6: देखो दामोदर, तुम अपने शरीर का तो इतना ध्यान रखते हो, अपने दांतों की भी देखभाल कर लिया करो।
0: दासे
3: दर्द,
0: दासे दर्द, देखभाल, दासे दबाकर। शाबाश। आगे सुनो बच्चों, डॉक्टर हाथी बोला,
6: दामोदर दांतों की देखभाल किया करो, उन्हें मजबूत बनाओ। देखो अरे तुम्हारे दो दो दांतों में छेद हो गए हैं, छेद। अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ ही दिनों में हिलने लग जाएंगे।
0: हाँ सड़ने लग जाएंगे, कीटाणु हो जाएंगे। बजाओ ताली, जोरदार ताली। हाँ कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा,
6: तुम रोज इनमें दातुन किया करो।
2: मेरे दादू भी दातुन करते हैं भैया।
0: अरे वाह क्या वा?

0: दातून
1: दासे दातून दासे दद्दू दासे दादू
0: दासे दादी। मेरे दादी नीम के दांतों कलती है।
1: अरे वाह, तो डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा,
2: तुम नीम की दातून किया करो। देखो दिन में 10-10 बार शरबत पीते हो, हैं? दूध भी पिया करो। अरे भाई, दूध दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉफी चॉकलेट खाया करते हो, हैं? दाल और दही भी खाया करो।
0: दासे दाल
1: दासे दाल
0: दाल, दाल तो पीते हैं।
1: दाल तो पीते हैं।
0: दही
1: दासे दही। अरे वाह वाह
0: भैया, दही तो बहुत अच्छी होती है।
1: अच्छा, अरे वाह, दही तो बहुत अच्छी होती है भैया। ताली।
0: दाल भी।
1: हाँ तो बच्चों, फिर डॉक्टर हाथी बोला,
2: दामोदर देखो मैंने तुम्हारे दांतों में दवा लगा दी है, तुम्हारे दांतों का इलाज मैं करूंगा, जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आगे से इनका ध्यान रखना, समझे?
1: समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया।
0: फिर उसके दांत नहीं निकालने पड़े?
1: अरे नहीं, उसके दांत नहीं निकालने पड़े बच्चों, बल्कि दामोदर ने ये वादा किया कि अब वो रोज दिन में 2 बार दातुन किया करेगा, सुबह शाम वो दातुन करना दोहराएगा।
0: मैं 2 बार साफ करता हूँ।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: दासे दिन और दाग।
1: हाँ, दासे दिन, दासे दाग, दासे दर्द,
0: दासे दाग,
3: दासे दाग
0: दवाई,
3: दासे दाग
0: दवाई,
1: दासे दवाई, दासे दूध,
0: वाह,
1: दासे दोस्त। अरे वाह वाह वाह वाह। हाँ तो बच्चों, जब दामोदर के दांतों का दर्द कम हुआ तो उसे समझ में आ गया कि डॉक्टर हाथी के सुंदर, मजबूत और बड़े बड़े दांतों का राज क्या है। अच्छा बताओ, क्या है राज?
0: हाथी दातुन करता है।
1: अरे वाह वाह वाह, दीवा ने बहुत अच्छा बताया।
0: वो दूध पीता है।
1: अरे वाह, वंश ने कितना अच्छा बताया, दूध भी पीता है,
0: दही खाता है।
1: वो दही खाता है। अरे वाह वाह, दूध भी पीता है, दही भी खाता है, इसलिए तो उसके दांत बहुत मजबूत और शक्तिशाली भी है।
0: दांत भी साफ करता है।
1: दांत भी साफ करता है।
0: अब उसके दर्द नहीं होता।
1: उसके दांतों में दर्द भी नहीं होता। भाई वाह, बजाओ जोरदार ताली।
3: ब्रश करता है।
1: हाँ, रात
0: में ब्रश करता है।
1: दिन में भी करता है, यानी सुबह शाम करता है।
0: और वो नहाता भी है।
4: हाथी दातुन करता है, स्कूल जाने से पहले भी ब्रश करता है।
1: अरे बेटा, स्कूल नहीं, क्लिनिक जाने से पहले, क्योंकि वो तो डॉक्टर है ना? यानी अपने दांतों का कितना ख्याल रखता है हाथी, तभी तो उसके इतने बड़े बड़े, इतने मजबूत, इतने साफ सुथरे,
0: शक्तिशाली
1: शक्तिशाली दांत है उसके, है कि नहीं? तो अब तुम भी अपने दांतों को ऐसे साफ रखोगे ना? अरे वाह, ब्रश करोगे ना रोज सुबह शाम? वाह वाह, तो तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो।
0: प्रॉमिस, ये तो पहले से ही साफ है।
1: अरे वाह वाह वाह। हाँ तो बच्चों, अब दामोदर को ये राज समझ में आ गया था और उसने भी अपने दांतों को स्वस्थ बना लिया। तो अब हुई कहानी खत्म। तो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ।
0: Yeah!

0: हाथी ने दांतों को देखा जरा दबाकर, डॉक्टर हाथी ने दांतों को देखा जरा दबाकर।
1: छेद है दो दो दांतों में, अरे छेद है दो दो दांतों में, तुम रह

0: दासी दामोदर के दांत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर नेहा वत्स, रक्षित और बच्चे, ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम द से दामोदर के दांत, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान।

अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 30 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं?

0: लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
4: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
3: जी,
4: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
3: क्या
4: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
3: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
4: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हों, पत्तियाँ हों, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पे भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
3: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
4: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक खत्म हो जाती है। जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई

0: इसके उपरांत जो है बेधक चटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपके सूखी टहनियाँ रोगग्रस्त टहनियाँ सड़े गले पत्ते हो उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है बगीचा जो है वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फास्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है और इसकी मात्रा जो इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं, कैसे करें?
0: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं।
1: जी
0: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
0: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हों उसको काटकर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव

0: देखने को मिलता है तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं। तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें, जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूवान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवंबर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है जी। और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है, उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है आम में, 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवंबर माह में करें
1: जी।
0: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डाईबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समझ सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डाईबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन

0: ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थालों को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, उसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस का भी आप समावेश कर दें और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिलीबग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपाइरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: तारों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माता पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा, लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें

0: रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी। अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि
3: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं 90.8 FM ग्रीन जो कि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास विषय लेकर आए हैं। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती करना हमारे लिए आज कितना गुणकारी है, कितना लाभदायक है, और किसान भाइयों को इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK मौर्य। मैं आप सभी को बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट KVK सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बता दें हमारे श्रोताओं को।
4: आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जैसा कि हरित क्रांति जब आई, उस समय जो है हमारे पास अनाज का उत्पादन कम होता था, खाद्यान्न कम था, भुखमरी का नौबत था। उस समय हरित क्रांति के लिए हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्रभेद निकाले, उसके सिंचाई के साधन निकाले, उसमें बहुत सारा कीट प्रबंधन निकाले, उर्वरक का प्रयोग किए, लेकिन उसका आज जो है अंधाधुंध कृषि के कार्यों में जो है हम अगर बात करें तो कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन वातावरण सब प्रदूषित होते जा रहा है। ज़मीन में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खेती इसलिए और आवश्यकता पड़ रही है कि अब जो रासायनिक खेती हो रही थी उसका उत्पादन अब सस्टेन हो गया, मतलब उसका उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, उसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो दोनों बिंदुओं को लेकर के एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी हो, हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और उत्पादन भी ना घटने पाए, तो इसीलिए प्राकृतिक खेती का जोर दिया जा रहा है।
3: जी, अभी तो आपने बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें प्राकृतिक खेती की, लेकिन अगर हम बात करें इससे लाभ की, तो क्या क्या लाभ मिलता है हमें
4: प्राकृतिक खेती से? जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि जो हमारी रासायनिक खेती हो रही थी, पहला महत्वपूर्ण लाभ तो यह है कि उसमें जो हमारे जो चाहे मानव हो या पशु हो, उससे बहुत सारी रोगों से ग्रसित, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम

रासायनिक खेती करते हैं उसका अवयव जो है उस खाद्यान्न में भोजन में आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है, नंबर एक। नंबर दो है कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होते जा रहा है। नंबर तीन, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। नंबर चार कि जो हमारा जरा सी पानी अगर बरसात होती है तो तुरंत वो पानी जो है खेतों से बहने लगता है। इस मतलब बहने का कारण यह है कि खेत में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम रह गई है।

0: जाएगी, उत्पादन करने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाएगी, जो भी हमारा उत्पाद होगा गुणवत्तापूर्ण होगा, मिट्टी की दशा सुधार होगी। जैसे अगर मिट्टी की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन में बहुत बहुत तेजी से जो है उसमें परिणत सुधार होता है, जो कि और अन्य खेतियों में इसका इतना अच्छा लाभ नहीं है। रासायनिक खेती में तो प्राकृतिक तक ऑर्गेनिक कार्बन जो है सुधारने की कोई बात ही नहीं होती है। अगर हम बात थोड़ा अगर कर लें कि कार्बनिक खेती में, तो बहुत लंबा समय लगेगा कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए।
1: जी ये तो लाभ की बातें होंगी, लेकिन अगर अंतर की बात करते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में, तो दोनों बिल्कुल सेम जैसा लगता है सर, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों?
0: आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहा, किसान भाई बड़ा कंफ्यूज करते होंगे, दोनों में बड़ा शंका रहता होगा कि प्राकृतिक खेती क्या है और हमारा जैविक खेती क्या है। जैविक खेती एक तो यह है कि जो है उसमें हम भी जैविक खेती में भी हम कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, ना किसी भी रूप में हम ना कोई कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ना कोई फफूंदनाशक प्रयोग करते हैं, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और ना ही कोई निमाटोड को मारने के लिए कोई दवा का प्रयोग करते हैं। तो हम कहने तो किसी भी रूप में हम कोई उसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते, यहाँ तक कि उसमें जो हमारा जैविक खेती है उसमें भी कोई जो है हमारा जो हार्मोन है बाहर से वो भी यूज करने को नहीं कहा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में भी लगभग यही है, लेकिन अंतर थोड़ा सा, जैसा कि अगर जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती में बाहर से ला करके कोई भी जीवाणु या विषाणु का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक खेती में बात करें तो उसमें हम लोग जो है ये एस्टोबैक्टर, PSB, राइजोबियम, एजोस्पाइलम या ब्लूग्रीन एल्गी, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कार्बनिक खेती में, जैविक खेती में इसका प्रयोग करने की अनुशंसा होती है। इसीलिए जो है ये इस दोनों में मेन अंतर है। दूसरा कि अगर हम प्राकृतिक खेती की अगर बात करें, कहा जाता है कि एक गाय से 30 एकड़ खेती की जा सकती है, लेकिन अगर हम एक एकड़ खेती जैविक तरीके से करते हैं, मान लीजिए अगर हम एक एकड़ गेहूं लगाए हैं, तो औसतन एक एकड़ गेहूं के लिए हमको 40 से 50 किलो नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए लगभग हमको 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद, कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मवेशी गाय या भैंसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मवेशी एक दिन में 8 से 10 से 15 किलो तक ही गोबर दे सकते हैं। तो कहने के मतलब कि एक एकड़ खेती करने के लिए किसान भाई अपना परिवार पालेंगे कि उस खेती के लिए 20 से 25 जो है मवेशी पालेंगे। इसीलिए एक ऑप्शन तो ये देखा गया था कि रासायनिक खेती के बाद में एक जो है जैविक खेती के रूप में, लेकिन जैविक खेती भी जो है रासायनिक खेती से कम महंगा नहीं है, अगर देखा जाए उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसके जो भी उसके कुछ उत्पाद बाहर भी खरीदने पड़ते हैं, और इतना कंपोस्ट देना, वर्मी कंपोस्ट भी अगर बात करें तो ये भी जो है कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा, वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, जो किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रहा, जो बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो शुरुआती दौर में अगर एक पास आग पास एक ही गाय है तो 8-10 एकड़ आप खेती आराम कर लेंगे, लेकिन 4-5 सालों बाद आप एक ही गाय से आप जो है 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। इसलिए कि एक एकड़ खेती के लिए जो भी हम उसमें उसका जो प्राकृतिक उत्पाद बनाएंगे, उसमें हमें 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गौमूत्र की आवश्यकता होती है, जो औसतन एक गाय हमें प्रतिदिन देती है। और प्राकृतिक खेती में हम जब भी प्रयोग करेंगे देसी गाय का ही गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करेंगे, किसी भी कीमत पर भैंस का, भेड़ का, बकरी का या जर्सी गाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए कि जो हमारा देसी गाय है, देसी गाय में जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, 1 ग्राम में 300 से 400 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो है जो विदेशी गाय है, जो जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसमें एक ग्राम गोबर में 75 से 80 हज़ार ही जो है कीटाणु या जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं एक ग्राम के गोबर में। तो इसीलिए देसी गाय का ही गोबर ज़्यादा प्रयुक्त माना जाता है प्राकृतिक खेती में।
1: डॉक्टर साहब, अभी प्रमुख स्तंभ की बात करें तो प्राकृतिक खेती के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है?
0: अगर हम प्रमुख स्तंभ की बात करें जिस पर हमारा प्राकृतिक खेती जुड़ा हुआ है,

0: इसमें तीन चार मतलब कि कुछ प्रमुख स्तंभ हैं। नंबर एक हमारा जो बीजामृत है, बीजामृत हमारा यह है कि जैसे हम रासायनिक खेती में बीज उपचार करते हैं, उसी तरह से बीजामृत से हम जो है बीजामृत से बीज उपचार करेंगे। दूसरा है जीवामृत। जीवामृत जो है आप खेत के जमीन में, खेत में जो हमारे जीवाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जो केचुए हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने काम करता है। प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि हमें प्राकृतिक खेती में जीवाणु, सूक्ष्म कीटाणु या केचुए की खेती कही जाती है, इसलिए हमेशा हम लोग जो है उसके जो संख्या उसकी बढ़ाने की बात करते हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग जीवामृत का प्रयोग करते हैं, और उसके कुछ पोषक तत्व के लिए उससे भी संख्या बढ़ती है, हम घन जीवामृत के प्रयोग करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो हमारा है मल्चिंग है। मल्चिंग में प्लास्टिक मल्चिंग का नहीं, फसल अवशेष का ही मल्चिंग उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसल अवशेष मल्चिंग हम इसलिए बात करते हैं कि जो है जो हमारे केचुए हैं, केचुआ की संख्या बढ़ाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में जो केचुआ प्रयोग किया जाता है वो हमारा विदेशी केचुआ होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो अपने भारतीय मृदा में जो केचुआ पाए जाते हैं, जो देसी केचुए पाए जाते हैं, वो उनका जो संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, और उसकी संख्या हमको बढ़ाना है। उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम जो है जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करेंगे, और मल्चिंग का जब प्रयोग करेंगे तो आप देखते होंगे केचुआ समान रूप से दिन में नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता है कि दिन में निकलेगा तो उसको डर रहता है कि कोई चिड़िया पक्षी या कोई कीट मकोड़े जो है उसको खा जाएंगे, इसीलिए वो रात निकलता है। अगर मल्चिंग अगर कर देंगे ऊपर से तो उसको लगेगा कि अभी अंधेरा है, रात है, का दिन को भी हम लोग रात में अगर बदल देंगे तो वो केचुआ जो है दिन रात दूना समय में काम करके आपके खेत में 10 से 15 फीट तक जो है वो आने जाने का काम करेगा। अपने भोजन की तलाश में ऊपर नीचे आया जाएगा, जिससे मिट्टी की आपकी जुताई हो जाएगी और उससे पानी की रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएंगे और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी। साथ साथ जो है वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ हो जाएगा और उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा। और अगला जो हमारा स्तंभ है वापसा। वापसा मतलब कि जल प्रबंधन। कभी भी जो खेत में हमको ढाला पानी नहीं देना है, सतही सिंचाई नहीं करना है, उसमें पानी भर के नहीं रखना है, इसीलिए उसको जो है हमें जब भी वो प्राकृतिक खेती में मेड़ पानी देना है या कम से कम पानी देना है। पानी, पौधों को पानी नहीं चाहिए, पौधों को नमी चाहिए। जैसा कि अगर आप जो है आलू की खेती करते हैं या गोभी बैंगन टमाटर खेती करते हैं, उसमें अगर मेड़ नहीं बनाते, अगर सीधा पानी देते हैं तो पौधा की फसल खराब होती है। वही सिद्धांत को किसान भाई मानते हुए सभी फसल में पौधे को नमी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने पर वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी होगी और जीवाणु जो कीटाणु है वो मर जाएंगे और उससे जो है उत्पादन भी आपका घट जाएगा। तो ये आपका जो है ये आप कर सकते हैं। तीसरा और जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु उसका स्तंभ है वो है इंटरक्रॉपिंग, सस्य फसलें। प्राकृतिक खेती में हमेशा एक फसल ना उगा करके दो या तीन फसल उगाना चाहिए। अपनी फसल को किसान भाई जोखिम में कभी ना लें, जोखिम नहीं उठाना चाहिए, साथ में हमको दो या तीन फसल को लगाना चाहिए। क्योंकि दो फसल लगाने से एक फसल किन्हीं कारणों से अगर खराब हो गई तो दूसरी फसल हमारी बच जाएगी। और इसमें यह भी है कि अगर कोई अगर रोग कीट लगता है एक फसल पर तो इस तरह से हमको चयन करना चाहिए कि जो दूसरी फसल उसके साथ चयन करें मुख्य फसल के साथ में, कि उसका रोग कीट उस पर चला जाए और फसल को दूसरी न करे, दूसरी फसल भी दोनों फसल से हम अच्छी हमें आमदनी प्राप्त हो जाए। तो ये तरह के बहुत सारे जो है इसके स्तंभ है, घटक हैं, जिससे हम अपने खेती को उसमें प्रयोग प्राकृतिक खेती में प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो बीज उपचार इसमें कैसे करें?
0: बीज उपचार जैसा कि पहले बात किए थे कि बीज उपचार के हम लोग बीजामृत का प्रयोग करते हैं। जैसा कि रासायनिक खेती में हम लोग जो है कार्बन डाइजिम हुआ, क्लोरोपायरीफास हुआ, तरह तरह के जो है केमिकल जहर महोस हम लोग उपचार करते थे, तो यहाँ केमिकल प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपके बीज को उसका अंकुरण अच्छा हो, कोई शुरुआत में कीड़े मकोड़े ना काटें, इन सबको ध्यान रखते हुए एक समान जनरेशन हो, हमारा पौधा जो भी जमे वो जो है बलशाली हो, इसको देखते हुए हम लोग इसका भी बीज उपचार करते हैं, जिसके लिए बीजामृत प्रयोग करते हैं। और बीजामृत बनाने के लिए हमें जो है

0: चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई अगर अपना नोट करना चाहें, कलम रखे हों, कलम कागज कलम रखे हों, तो उसको नोट भी कर सकते हैं। उसके लिए प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान है, कोई भी आपको बनाने, कोई भी प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जो भी उसमें अवयव हैं उसका, उसके प्रयोग के लिए देसी गाय का ही गोबर या गौमूत्र प्रयोग होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा, प्राकृतिक खेती में कहा जाता है कि मिट्टी प्रयोग करना है, तो मिट्टी के लिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी ले रहे हैं किसी पेड़ के नीचे की हो, जहाँ पर वनस्पतियाँ सड़ कर करके वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ गई हो और वहाँ कोई केमिकल कभी भी, मतलब काफ़ी दिनों से प्रयोग ना हुआ हो, ताकि वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा हो। मिट्टी इसलिए लेते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव जाएंगे और हम उसी मिट्टी में जो है, मिट्टी के भरोसे जो है, उस मिट्टी के माध्यम से जो है, हम चाहे बीजामृत से या घन जीवामृत से या जीवामृत से जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये किसान भाई विशेष ध्यान दे, जो मिट्टी ले उसमें जीवाणु, ये निश्चित माने कि उसमें जीवाणु जो हमारे जिंदा है, और ऐसी जगह से ले जहाँ पर कोई केमिकल ना पड़ा हो लंबे समय से। तो मिट्टी लेने में ये ध्यान रखेंगे किसान भाई हमारे, इसके लिए जो हमारे जो पीपल है, बरगद है, या बांसकोट के जमीन का है, या कहीं कोई रास्ता है जहाँ कोई जो है केमिकल नहीं पड़ा, रास्ता तक मिट्टी ले लें। उसके अलावा जो हमारा मेड़ चौड़ा मेड़ अभी से मिट्टी ले लेंगे, वहाँ वनस्पतियाँ लेकिन सड़ती हों, ये ध्यान रखें। तो मिट्टी लेना है तो इसके लिए बीजा हमको क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो उसको नोट कर लें। गोबर 5 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, चूना बुझा हुआ चूना 50 ग्राम, और पानी जो है 20 लीटर हो, और उसमें जो 50 ग्राम 102 मिट्टी जो है, हमें मिट्टी भी होना चाहिए लगभग 150 से 200 ग्राम। इस सबको एक प्लास्टिक के डिब्बा में मिला करके इसको रख दें, और इसको रख करके 12 से 14 घंटा इसको हिला घुला के रख दें। उसके बाद इसको जो है, हम जब ये तक 10-12-24 घंटे बाद हम इसको जो है 100 किलो बीज के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बीज पे मिला करके छाया में, जैसे उसमें सुखाते हैं, उसमें छाया में सुखा करके उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हुआ बीजामृत, जिससे हम अपना बीज उपचार कर सकते हैं।
1: उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
4: तो अभी हम प्राकृतिक खेती की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर AK मौर्य से। आइए प्राकृतिक खेती के दूसरे भाग में और बातें जानते हैं डॉक्टर साहब से। प्राकृतिक खेती में पौधों को कैसे पोषक तत्व दिया जाता है डॉक्टर साहब?
0: हाँ, जैसा कि अभी पहले बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में हम जो है पोषक तत्व देने के लिए दो चीज मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, जीवामृत, नंबर दो घनमृत। तो जीवामृत जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में होता है, और इसको हम सिंचाई के माध्यम से, जब पानी जा रहा होता है तो पानी जहाँ पाइप खोलते हैं वहीं पर जो है ऊपर एक ड्रम में भर के रख देते हैं, ताकि उसमें

बूंद बूंद गिरते जाए पूरे खेत में, जीवामृत जो हमारा फैल जाए। दूसरा है कि हम जीवामृत को पानी में घोलकर उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए एक एकड़ स्प्रे करने के लिए 200 लीटर जीवामृत की आवश्यकता होती है, तो इसका हम लोग जो है स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अब ये बात होती है जीवामृत बने कैसे। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर ताज़ा होना चाहिए। गोबर सब जितनी बात कर रहे हैं, गाय का गोबर या मूत्र जो है ताज़ा होना चाहिए। बीजामृत में जो है पुराना गौमूत्र प्रयोग कर सकते हैं, हफ्ता तक जो है पुराना, 10 दिन तक पुराना प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बीजामृत जीवामृत बनना है या घन जीवामृत बनना है, उसमें हमेशा जो है ताज़ा गोबर और ताज़ा गौमूत्र ही हमको प्रयोग करना है। किसान भाई इसको विशेष ध्यान रखें, कहने का मतलब कि 2-3 दिन तक इसको हमें प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो वहाँ पर वो जीवाणुओं की संख्या हमारी घट जाएगी, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। तो गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो। बेसन किसी भी दलहन का हो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें चने की दाल का अगर मिल जाता है बेसन तो बेहतर माना जाता है। और 100 लीटर पानी, और उसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है हम ये जो मिट्टी बताए थे मिट्टी को लेकर उसको मिला देंगे। मिला करके कोई प्लास्टिक के ड्रम में, इसमें एक चीज़ और किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो भी हम पात्र प्रयोग कर रहे हैं प्राकृतिक खेती में, लोहा या जस्ता एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो जो हमारा 150-200 लीटर कैपेसिटी का हो, तो उसमें सारी चीज़ें मिला करके और 3 दिन के लिए उसको रख देंगे। रखने के बाद उसको सुबह शाम डेली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट तक घुमाएंगे। घुमाने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक अच्छे से वो मिल जाए, और इसको ऊपर से जूट के बोरा से ढक के रखना चाहिए। जूट के बोरा से ढक के मतलब यह है कि उसमें कहीं कोई छिपकली कहीं ना गिर जाए, कहीं कोई उसमें सा बिच्छू न गिर जाए, तो ये सब चीज़ ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई चीज़ गिरने न पाए। और प्लास्टिक से कभी उसको नहीं बांधना है, जूट के बोरा से, इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन जाती रहे और उसमें कीटाणुओं की संख्या बनती रहे, बढ़ोतरी होती रहे। तो ये जो है जीवामृत समान रूप से तीन दिन में जो तैयार हो जाता है। गर्मी के समय में, अब ये है कि कितने दिन को प्रयोग कर लेना है, गर्मी के समय में बनने के मतलब कि 3 दिन में बन गया, बनने के 3 दिन के बाद 7 दिन तक उसको गर्मी के समय में हमको प्रयोग कर लेना है। अगर ठंडा का समय है तो वो हमको 8 से 10 से 15 दिन तक प्रयोग कर लेना है, इसलिए कि ये जीवाणुओं की संख्या फिर धीरे धीरे घटने लगती है। तो जैसा कि बताया, इसको हमें स्प्रे के रूप में और जो है ये ज़मीन में सिंचाई के समय भी इसको देकर हम दे सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हमारी फसल में पीलापन पड़ रहा, कुछ हो रहा है, तो तुरंत आप जो है जीवामृत का जो है छिड़काव या पानी के साथ आप दे सकते हैं। ये पोषक तत्व के रूप में ये जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाता है। जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसमें पोषक तत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और अगला है पोषक तत्व रूप में घन जीवामृत। घन जीवामृत को क्या करेंगे कि गाय का ताज़ा गोबर लेंगे, 100 किलो गोबर लेंगे, 1 किलो जो है गुड़ लेंगे, 1 किलो बेसन लेंगे, 2.5 से 3 लीटर जो है गौमूत्र लेंगे और 250 ग्राम मिट्टी लेंगे। ये सब को क्या करेंगे कि अब गुड़ को, बेसन को और जो हमारा गौमूत्र है किसी प्लास्टिक के बर्तन में बाल्टी में इसको अलग मिला लेंगे, और 100 किलो गोबर को, ये 1 एकड़ के लिए हम बता रहे हैं, एक इसको बना करके 100 किलो गोबर को जो है हम किसी पॉलीथीन पर या फर्श पर इसको फैला देंगे। फैला करके ऊपर से जो हम ये बना लिए हैं जिसमें गुड़ है, बेसन है, सब घोल लिए हैं गौमूत्र के साथ में, इसको ऊपर से छिड़क करके अच्छे से इसको मिला देंगे। मिला करके इसको क्या करेंगे, हम एक के रूप में छोटा छोटा बाल बना करके इसको रख लेंगे, और ये 10 दिन में, बनाने के 10 दिन में ये जो है तैयार हो जाता है। और तैयार होकर के इसको अब 6 महीना तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। बनाने का 10 दिन के बाद से अब 6 महीने तक इसको प्रयोग कर सकते हैं, और ये बुवाई के समय खेत में डालना चाहिए। बुवाई के समय इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब बुवाई करें तो उसमें खेत में डाल के इसको मिलाना है, खेत में मतलब तुरंत दे देना है, और इसको हमको बारीक पीस लेना है। अगर मान लें मशीन से बुवाई कर रहे हैं तो उसको बारीक पीस करके जहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजर डालते थे उस चैम्बर में हम घन जीवामृत का प्रयोग करके हम बुवाई कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और बीच में बताना आपको भूल गए थे कि प्राकृतिक खेती में ज़्यादा जुताई नहीं करना है। प्राकृतिक खेती में

0: से कम जुताई या ना जुताई, जिसको जीरो टिलेज या मिनिमम जुताई कहते हैं, उतना करना। ज़्यादा जुताई करने पे पोषक तत्व जो है वहाँ से उड़ जाते हैं। और जब भी आप जुताई करिएगा, देखते होंगे कि खेत के पीछे कुछ पक्षी, बगुले, कौए घुमा करते हैं, जो हमारे मित्र कीट को, जैसा कि केचुआ वगैरह खा जाते हैं। तो इसीलिए हमें जुताई कम करना चाहिए, जहाँ तक संभव कम से कम जुताई करें। तो इस तरह से हम जो है अपना घनजीवामृत बना करके और हम इसको दे सकते हैं। शुरुआती जब हम खेती शुरू करते हैं, प्रकृतिक खेती, तो एक एकड़ में अगर हम 4 से 5 क्विंटल भी देते हैं, कहीं नुकसान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3-4 साल बाद जो है, एक एकड़ में हमको 1 क्विंटल बहुत ही पर्याप्त होता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अंत में प्राकृतिक खेती में रोग और कीट प्रबंधन कैसे करते हैं?
0: हाँ, रोग और कीट का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम लोग चलो ठीक है कि इस तरह करके अपनी फसल को उगा लेंगे, सब पोषक तत्व मिल गया, केचुआ आ गया होगा, लेकिन रोग कीड़े बहुत लगते हैं। आप ये भी जानिए कि जो हम लोग बीजामृत हुआ या जो है जीवामृत हुआ, इस प्रयोग करने से स्वतः ही कीड़े मकोड़े रोग उस पौधे में कम आएंगे, क्योंकि उसको खाने में वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें जो कीड़ा या रोग रोकने के जो विधियां हैं, वो किसी कीड़े को या किसी कीट को मार नहीं पाएंगे, केवल केवल उसको भगाने का या ना आने का संकेत ही देंगे कि इसको मत खाइए। कहने का मतलब कि आपके खेत में उस खेत के आसपास मित्र कीटों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी फसल अच्छी होती जाएगी। इसके लिए जैसा कि कोई रोग लगता है, कोई फफूंद रोग लगता है, तो उसमें जो हमारे पास खट्टी दही की मट्ठा हो, जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं, तो खट्टा हो, खट्टा ही प्रयोग होगा इसमें। तो 2 लीटर खट्टा मट्ठा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार फसल के ऊपर हम छिड़काव करते रहेंगे, इससे जो भी फफूंदजनक रोग है वो नहीं लगेंगे। दूसरा, अगर रोग के लिए ही एक है कि सौंठा मृत बना के भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कीड़ा की अगर बात करें, कीट ना लगे, तो कीट के लिए 2-3 तरह के इसमें जो है अवयव बना करके हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला है नीमास्त्र। जितने कीड़े हमारे चूसने वाले हैं, जितने कीड़े हमारे जो चूसने वाले हैं, चाहे उसमें एफिड हो, जैसिड हो, मिलीबग हो, थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो, मतलब ये सारे कीड़े, मतलब जिसको माहू लाही बोलते हैं, ये सारे कीड़े जितने चूसने वाले हैं, इसके लिए नीमास्त्र जो है बहुत अच्छा काम करता है। और संभवतः हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि नीमास्त्र ही प्रकृतिक खेती में बहुत अच्छा काम करेगा, अगला दूसरा जो है वह डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो नीमास्त्र बनाने के लिए क्या है कि 5 किलो जो है नीम की ताजी पत्ती, अगर ताजी पत्ती ना मिले तो 5 किलो जो है नीम की खली, इसको हम क्या करेंगे, कूट लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे, क्रश करके उसको प्लास्टिक के डिब्बा में 100 लीटर पानी में मिला देंगे, मिला करके उसमें 5 लीटर जो है गौमूत्र डालेंगे, 5 लीटर गोबर डालेंगे, 1 लीटर गौमूत्र डालेंगे, और उसको जो है अच्छे से 2-3 मिनट तक मिलाएंगे, और इस ड्रम को जो है फिर 2 दिन के लिए जो है हम ऊपर से कोई कपड़ा या जूट का बोरा बांध के रख देंगे, और इसके बाद इसको हम छान लेंगे, मतलब लेकिन इसको सुबह शाम इसको घुमाने काम करेंगे। इसको छान करके जो है अब हम 100 लीटर पानी में जो हमारा ऊपर दवा बन गई, जो नीमास्त्र बन गया है, 2.5 से 3 लीटर दवा को मिला करके अपनी आवश्यकता अनुसार 1 एकड़ में छिड़काव करते रहेंगे। मतलब 100 लीटर पानी में 2.5 से 3 लीटर जो है नीमास्त्र बना करके हम छिड़काव करते रहेंगे, और इसका भी जो है हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अग्नियास्त्र में जो कीड़े काटने वाले हैं उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, कि जैसे हमारा मैंगो स्टेम बोरर हुआ, फ्रूट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, ये सब के लिए जो है हमारा अग्नियास्त्र हम प्रयोग करते हैं। तो अग्नियास्त्र में हम क्या क्या हमको सामग्री चाहिए और उसको कैसे बनाएंगे, तो सामग्री जो किसान भाई नोट कर रहे हैं उसको नोट भी कर लें। उसके लिए सामग्री चाहिए, नीम का पत्ता, ताज़ा नीम का पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और गौमूत्र। इसकी मात्रा कितना है, मात्रा है

हरी मिर्च जो है 500 ग्राम, उसका 5 किलो नीम का पत्ता, दोनों को हम क्या करेंगे कूट लेंगे और एक ड्रम में इसको जो है 20 लीटर गौमूत्र को साथ इसको मिला देंगे। मिला करके इसको 20 मिनट, सॉरी डिब्बा नहीं होगा, पहले डिब्बा नहीं होगा, ये कोई बर्तन होगा, बर्तन अगर तांबा मिल जाए तो बेहतर है, तांबा नहीं तो इसको स्टील प्रयोग कर सकते हैं, और इसको 20 लीटर जो है गौमूत्र उसमें मिला देंगे और इसको 20 मिनट तक उबालेंगे, कहने तक बढ़िया इसको उबाल देंगे, उबाल करके खूब अच्छे से जो है ठंडा कर लेंगे, मतलब 1-2 दिन में नॉर्मली ठंडा हो जाए, और इसको छांद करके इसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करके हमारा अब ये जो है अग्नि अस्त्र जो है बन गया। बनने के बाद इसको हमें प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग उसी तरह करना है जैसा कि हम नीमास्त्र प्रयोग करते थे। नीमास्त्र का कैसे प्रयोग कर सकते थे कि 2.5 से 3 लीटर दवा को हम 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करते थे, आवश्यकता अनुसार देख करके, कीड़ा आने के पहले जब संभावना उससे पहले स्प्रे कर देते थे। वैसे अग्निअस्त्र को भी 2.5 से 3 लीटर दवा को 100 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव करते हैं, और इसका जो अस्त्र है नीमास्त्र है अग्निअस्त्र है, इसका सेल्फ लाइफ जो है लगभग 4 से 6 महीना होता है। तो किसान भाई ने सोचे एक बार बना लिए 10 दिन में को ख़त्म करना है, केवल 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म करने में केवल आपका जीवामृत है, बाकी की सप्लाई भी अच्छी है, 6 दिनों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें 3 किलो नीम का पत्ता लेते हैं, 2 किलो करंज का पत्ता लेते हैं, करंज का पत्ता नहीं मिल रहा है तो 5 किलो जो है नीम का पत्ता ले लेते हैं, इन दोनों क्या करते हैं कोट लेते हैं, कोट करके फिर वही किसी तांबे के बर्तन में मिल जाए बेहतर है, तो स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन उसको ले लें, फिर उसमें 2 किलो शरीफा का पत्ता। अब किसान भाई को चाहिए कि जो उधर जो पत्ता था उसको लगाना शुरू करें, शरीफा वगैरह जो है ये गायब हो गया है, इसको भी लगाने को सकता है, नीम वगैरह लगाने की भी हो सकता है, ये कर करके शरीफा का पत्ता 2 किलो और 2 किलो जो धतूरा का पत्ता है इसको भी कूट लेंगे और कूट करके इसको उसी में बर्तन में मिला देंगे। मिलाने के लिए 10 लीटर जो है गौमूत्र लेंगे, ये ले करके फिर हम 20 से 25 मिनट जो है इसको उबालेंगे, उबाल करके इसको 48 घंटा के लिए ठंडा छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए, जैसे ठंडा हो जाएगा इसको हम फिल्टर के लिए छान लेंगे, कपड़े से छानेंगे इसलिए कि इसका जाके स्प्रे मशीन में कहीं नोजल फंसने ना पाए, और उतनी ही मात्रा जितना कि पीछे बताया गया था कि 2.5 से 3 लीटर दवा को 100 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। और आप अगला जो है 10 पांडी अर्क हुआ, कीड़ा ही मारने के लिए है, कीड़ा रोकने मारने नहीं कीड़ा रोकने के लिए है, उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 तरह के जो है पौधों का पत्ता लेते हैं, तो पौधा का पत्ता कौन कौन सा है, नीम आम शरीफा करंज अंडी धतूरा मदार या जिसको आग बोलते हैं बबूल अमरूद अदरक, मतलब इन सब पत्तों को देखते होंगे कुछ समान रूप से कोई कीड़े मकोड़े या जानवर नहीं खाते इसलिए पत्तों को ले आता है, अगर 100 मिल जाए अच्छी बात, 100 नहीं मिलता कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसमें जितना मिल सके उसका उतना आप बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बनाइए कैसे कि हम जो है 5 किलो एक तो नीम का पत्ता लेंगे और शेष पत्ता को 2 किलो लेंगे मिला करके, इसको हम कूट लेंगे, कूट करके जो है अलग इसको रख लेंगे, उसमें 0.5 किलो 500 ग्राम हल्दी का पेस्ट पाउडर, हल्दी का पेस्ट बना करके वो मिलाएंगे, उसके बाद 500 ग्राम जो हमारा लहसुन है लहसुन का पेस्ट पीस करके और उसका पेस्ट जो लोढ़िया बाटी पे जो है उसको बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि जो है मिक्सर का प्रयोग ना करें, नहीं होता तो मिक्सर प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको जो है जो हमारा लहसुन है उसका पेस्ट बना लेंगे, उसके अलावा 500 ग्राम जो है हमारा अदरक जो है अदरक का भी पेस्ट बनाएंगे, उसमें 1 किलो तंबाकू की पत्ती जो तंबाकू एकदम शुद्ध जिसमें कोई केमिकल ना मिला हो उसका 1 किलो पत्ती लेगा लेना है, और 1 किलो जो है जो हरी मिर्च होती है उसका भी पेस्ट बना करके हम इसको क्या करेंगे, सबको एक डिब्बा में स्टील या पीतल के स्टील या तांबा के डिब्बा में उसको मिला देंगे रख देंगे, और उसमें जो है हम क्या करेंगे कि जो गाय का मूत्र लिए हुए हैं, गाय का मूत्र कितना 10 किलो गाय का मूत्र और 10 किलो गोबर उसको उसी में डाल के मिला करके फिर जो है हम उसको 25 से 30 मिनट तक उसको उबालते हैं खौलाते हैं, खौला करके जो है इसको नहीं इसमें खौलाना नहीं इसको इसको मिला करके हम जिसको 25 से 30 दिन के लिए रख देते हैं, जब ये इसमें सड़ जाए सड़ने के जो 25-30 दिन बाद

0: कम प्रयोग करते हैं, और इसका भी सेल्फ लाइफ जो 6 महीना है, इसका भी प्रयोग करने का तरीका वही है। कहने का मतलब जो है 10 पाउंडी अर्क जो है उसको प्लास्टिक के डिब्बे में बनाया जाना है, इसको खौलाया नहीं जाना है, और इसको लेकिन सड़ने के लिए 30 से 40 दिन लगभग जो है उसको छोड़ देना है। जब छोड़ गया उसको छान कर करके और 2.5 से 3 लीटर दवा करो हम 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे। किसान भाई का और करते हैं कि हमारा जो भी उत्पाद हो चमकदार हो, पोस्ट मतलब कि देखने में सुंदर हो, दाना भरा हो, इस तरह का किसान एक उम्मीद करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे किसान भाई हमारे अगर रासायनिक खेती करते तो उसमें टॉनिक वगैरह प्रयोग करते हैं या पोटाश देते हैं, इस तरह का अगर उनको करना है तो किसान भाई हमारे सप्त धन्य अर्क बना करके उसका भी जो है छिड़काव करके अपना जो है अच्छा उत्पाद कर सकते हैं। इस तरह करके जो है हम प्राकृतिक खेती को एक नए रूप में ला करके पूरे वातावरण को पूरे मानव जीवन को बचाते हुए हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं
1: जी।
0: प्राकृतिक खेती में किसान भाइयों को एक शंका होता है कि जैसा कि सब एक रहता है कि जैविक खेती की इतना ही इसको 3 से 4 साल 5 साल तक इसमें उत्पादन कम होने की शंका है। किसान भाई ये बिल्कुल मत सोचें, प्राकृतिक खेती में आप जिस फसल से आप शुरुआत कर रहे हैं उसी फसल से आपको पूरी उपज मिलेगी, उपज बढ़ भी सकती है और आपका लागत बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए प्राकृतिक खेती को कम लागत खेती भी कहा जाता है। तो आप लोग ये शंका में ना रहें कि प्राकृतिक खेती से हमको 4-5 साल तक जो है उपज हमारी कम मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब आज आपने प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी और विस्तार से दी, और आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को कैसे किया जाता है ये प्राकृतिक खेती उसके बारे में पूरी जानकारी मिली होगी, और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। फ्रीक्वेंसी याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 cc या डाई मेथो 8 30 cc का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 cc को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप

दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम के बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए।

करेंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब, तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कंट्रोवर्सी, या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा। और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40-45 मिनट से ज्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की, ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीजों से एक टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देख कर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहे आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर

0: क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खान पान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कि अपनी नींद पूरी ज़रूर करें, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई में तो छूट रही है ना। वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। ये आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज़ चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूं और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ।

0: में भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपके लिए खेती से जुड़े अलग अलग विषय लेकर आती हूं और आज भी बिल्कुल आपके लिए है ये विषय, धान में खरपतवार प्रबंधन। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर महेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। अब सबसे पहले तो अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, विषय की ओर। धान की बुआई किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है और किन किन विधियों से खरपतवार प्रबंधन हम कर सकते हैं, बताएं।
2: आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में धान की जो बुआई है या रोपाई है वो मुख्य रूप से हम लोग दो विधियों से करते हैं। देखा जाए तो एक हम सीधी बुआई कहते हैं और दूसरा धान की जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें हम धान की नर्सरी डालते हैं और उसके बाद रोपाई करते हैं
0: जी।
2: तो धान की हम सीधी बुआई करते हैं और दूसरा धान की रोपी विधि से करते हैं। तो अब दोनों में जो खरपतवार है, खरपतवार का अलग अलग स्पेसीज आती हैं। जैसे धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं तो धान की सीधी बुआई में सबसे अधिक समस्या अगर किसी बात की है तो खरपतवार की है, क्योंकि तो सीधी बुआई में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम इवन वर्षा जो आधारित खेती है उसमें भी हम धान की सीधी बुआई करके खरपतवार प्रबंधन करके धान की उपज ले लेते हैं। तो वर्षा का पानी कम होने से या सिंचाई का पानी उसमें कम देने से खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो यूँ कहें कि धान की जो सीधी बुआई है उसमें सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की समस्या है तो खरपतवार की है। तो उसमें खरपतवार का ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा धान की रोपित विधि है। तो धान की रोपित विधि में चूंकि हम बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें खरपतवार थोड़ा कम आते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में खरपतवार प्रबंधन का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे धान की जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि धान की जो हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, जैसे गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसी तरह धान का खेत तैयार कर लेते हैं। 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद धान को हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर 20 सेंटीमीटर के कतारों में बुआई कर देते हैं
0: जी।
2: तो ये धान की सीधी बुआई हुई। दूसरी विधि है सीधी बुआई में, जहाँ हमारा वर्षा का पानी थोड़ा यदि अधिक मिल जाता है, किसी कारणवश खेत गीला हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो हमारा धान की बुआई के लिए ड्रम सीडर आता है उसको हम अच्छे से पढ़ल सॉइल में, पार्शियल पढ़ल सॉइल में ड्रम सीडर में बीज भर करके 20 सेंटीमीटर की कतार को मेंटेन करते हुए बीज को गिरा देते हैं। तो चाहे धान की सीधी बुआई, चाहे ड्राई मेथड से हो, चाहे वेट मेथड से हो, धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिल जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा है, सवई है, ये सब आ जाते हैं, और मोथा कुल के कुल 6 प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो धान में करीब 100 से 150 प्रकार की खरपतवार आते हैं, लेकिन इनको जब हम 3 ग्रुपों में बांटते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और मोथा कुल के खरपतवार रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो खरपतवार हैं, तीनों ग्रुप के जो खरपतवार हैं, वो बहुत ही सक्रिय मात्रा में होते हैं और इनका ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि धान जब हम बुआई करते हैं सीधी, तो सीधी बुआई करने के 2 से 3 दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू होने लगता है और खरपतवार के बीज का भी जर्मिनेशन उसी के साथ साथ होने लगता है। लेकिन खरपतवार का ग्रोथ जो है, जो उनका वनस्पतिक विकास है, वो बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए सीधी बुआई में ये समस्या आ जाती है कि खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं, धान हमारा छोटा रह जाता है।

0: है, तो इसमें ससमय खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग सीधी बुआई के लिए एक बहुत प्रचलित हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं पेंडामेथिलीन, पेंडामेथिलीन का उपयोग करते हैं। लेकिन हमें वहाँ सावधानी देने की ज़रूरत है, अगर हमको पता है कि अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटे में बरसात होने वाली है तो पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग कर देते हैं, पेंडामेथिलीन का जो हमारा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है, अर्थात 400 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ दवा लेकर के उसको 200 लीटर पानी में घोल करके हम लोग बुआई के 24 घंटे के भीतर खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये पेंडामेथिलीन एक बहुत बारीक लेयर बनाता है ज़मीन पर, और जो ही खरपतवार उगने लगते हैं और उस लेयर को टच करते हैं वो मर जाके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम पेंडामेथिलीन आज छिड़के हैं और 48 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है, तो वो पेंडामेथिलीन बरसात के पानी के साथ घुल करके बीज के टच में आ जाता है, क्योंकि बीज हम दो से ढाई सेंटीमीटर की गहराई पर ही उथला बीज बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर, तो बीज के टच में आने से बरसात के पानी के साथ वो बीज का अंकुरण भी खराब कर देता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी देना पड़ता है कि पेंडामेथिलीन का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन अगर हमको मौसम विभाग से अलर्ट मिला हुआ है कि अगले 48 घंटों में बरसात होने वाली है तो उस कंडीशन में पेंडामेथिलीन का प्रयोग न करें। तो अब पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर भी सकते हैं और रेनी सीजन होने की वजह से बरसात का अगर आगमन होने वाला है तो आप न भी करें, तो उसके लिए हम फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं कि हमको बुआई के 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई हर्बिसाइड चाहिए। तो अगर पेंडामेथिलीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप देखेंगे कि खेत में बुआई के 8 से 10 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा खरपतवार आ जाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे केस में आप मार्केट में उपलब्ध है पाइरजोसल्फुरान, पाइरजोसल्फुरान का जो ब्रांड नेम है, बहुत से कंपनियों के अच्छे ब्रांड ही लिया जाए, चाहे टाटा का हो, चाहे सिंजेंटा का हो, चाहे एक्सल वालों को, किसी का भी हम कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अच्छे ब्रांड का लिया जाए जिसमें उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। तो पाइरजोसल्फुरान नामक केमिकल, उसका जो कि अगर हम 8 दिन पर दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली पोस्ट इमरजेंस, 8 दिन पर दे रहे हैं तो हमें डोज थोड़ा कम करना पड़ता है, तो उसमें केवल 10 ग्राम सक्रिय तत्व, चूँकि ये आता है 10% का, इसलिए अधिक से अधिक 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोडक्ट लगेगा, जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसकी मात्रा 100 ग्राम हो जाएगी। तो हमने कहा कि पाइरजोसल्फुरान 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है, अर्थात 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़। तो इससे क्या होगा कि जो 8 से 10 दिन पर जब हम इसको देते हैं तो 200 लीटर पानी में घोल करके, जैसे 4 ग्राम हमने पाइरजोसल्फुरान बताया और 200 लीटर पानी में घोल लिया जाए और उसको प्रति एकड़ बुआई के 8 से 10 दिन बाद छिड़काव कर दें, तो इससे जो जमे हुए खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम 20 से 25 दिन पर जब खरपतवार का प्रेशर दोबारा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस, तो पोस्ट इमरजेंस के रूप में हमारे पास बहुत सी अच्छी रासायनिक दवाएं हैं, जिसमें पहला आता है बिसपाइरीवेट सोडियम। बिसपाइरीवेट सोडियम जो है ओडिसी के नाम से भी आ रहा है और नामनी गोल्ड के नाम से भी आ रहा है और बहुत से नाम से आ रहा है, तो बिसपाइरीवेट सोडियम का जो सक्रिय तत्व है वो कहते हैं 30 से 35 ग्राम हमें लेना है। बिसपाइरीवेट सोडियम 30 से 35 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत पड़ती है, अर्थात एकड़ में अगर हम बात करें तो 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व बिसपाइरीवेट सोडियम का लिया जाए, बिसपाइरीवेट सोडियम का 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व लिया जाए और इसको 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 से 25 दिन पर छिड़काव करें। ध्यान रखना होगा कि उस समय छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए जिससे कि दवा अच्छे से काम कर सके। तो इससे क्या होगा कि धान के जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, मोथा कुल के खरपतवार हैं एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, लगभग 80% तक खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम बिसपाइरीवेट सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश धान की सीधी बुआई में बिसपाइरीवेट सोडियम की उपलब्धता न हो या बाजार में नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे आप पाइरजोसल्फुरान ले सकते हैं। पाइरजोसल्फुरान जो 8 दिन पर उपयोग किए थे वही पाइरजोसल्फुरान आप 20 से 25 दिन पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए उसका मात्रा जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो पाइरजोसल्फ्यूरान जो रसायन है उसका 20 ग्राम सक्रिय

तत्व। देखिए किसान भाइयों, हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, मतलब 20 ग्राम जो पाइरोसल्फ्यूरॉन होगा 100% केमिकल होगा। 20 ग्राम पाइरोसल्फ्यूरॉन लिया जाए या प्रति हेक्टेयर दर से उपयोग करें, अथवा 8 ग्राम पाइरोसल्फ्यूरॉन प्रति एकड़। अगर एक एकड़ में देना है तो 8 ग्राम पाइरोसल्फ्यूरॉन लिया जाए, उसको 200 से 250 लीटर पानी में घोल लिया जाए और प्रति एकड़ की दर से

खरपतवार, ये सभी लगभग 80 से 85% तक जो है नष्ट हो जाते हैं। इनका कम्बिनेशन अगर हम दें बिस पायरियक सोडियम और पायरियोसल्फुरान का, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 20 ग्राम आपको पायरियोसल्फुरान लेना है और 30 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है बिस पायरियक सोडियम का। दोनों को मिश्रित करके आप प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तो इससे जो है जो भी आपके खरपतवार हैं वो लगभग 90% तक खत्म हो जाते हैं। जो 10% खरपतवार बच जाते हैं किसी कारणवश, वो धीरे धीरे धान इतना बढ़ जाता है कि उसको अपने आप सप्रेस करके दबा देता है। तो इस प्रकार से धान की जो सीधी बुआई है, इसमें खरपतवार के रासायनिक प्रबंधन द्वारा हम खरपतवार को प्रबंधित कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको किसान भाइयों, आपको हमने बताया कि बुआई के 24 घंटे के भीतर आपको पेंडीमेथिलीन देना है। पेंडीमेथिलीन का जो डोज बताया गया 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व देना है प्रति हेक्टेयर की दर से, अथवा 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। फिर हमने बताया कि अगर किसी कारणवश आप पेंडीमेथिलीन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पायरियोसल्फुरान नामक रसायन लें, उसका 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है या 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ देना है और पानी में घोल करके उसको छिड़काव करना है। उसके बाद 20 से 25 दिन पर एक हर्बिसाइड जरूर देना है। बेहतर होगा कि आप पायरियोसल्फुरान सक्रिय तत्व 20 ग्राम लें और आप बिस पायरियक सोडियम सक्रिय तत्व 30 ग्राम ले लें। दोनों को मिक्स करके प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने धान के खरपतवार हैं वो लगभग 80 से 85% नियंत्रण में आ जाते हैं और आपको बहुत राहत मिलती है खरपतवार प्रबंधन में। दूसरी विधि हमने बताया धान की रोपित विधि। चूँकि धान में जब हम रोपित विधि करते हैं तो इसमें हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम पानी में कल्टीवेटर 2-3 बार चलाते हैं और मिट्टी को, कल्टीवेटर चलाने से मिट्टी उसमें पडल्ड हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो जो खरपतवार उसमें उगे रहते हैं वो ऑलरेडी सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि पडलिंग मेथड्स में फिर हम धान की रोपाई के बाद भी अगर 1 से 1.5 इंच पानी स्टैंडिंग मोड में रखें खेत में अगले 20 दिन तक, तो खरपतवार आएंगे ही नहीं। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पानी एक प्राकृतिक हर्बिसाइड है। अगर खेत में आपका 1 इंच खड़ा पानी लगा हुआ है रोपाई के 20 दिन तक, तो आपके खेत में खरपतवार आएगा नहीं। लेकिन चूँकि वाटर बहुत ही कास्टली इनपुट है, स्टैंडिंग वाटर रखना आज के डेट में बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पर फिर हमें रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम यांत्रिक विधियों की बात करें तो पडल राइस में कोनोवीडर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम राइस में, राइस के कतारों के बीच में, पडल्ड कंडीशन राइस है तो उसको एक कतारों के बीच में बुआई के, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद चला करके खरपतवारों को हम उसी ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो कोनोवीडर का प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण हेतु। उसके बाद रासायनिक विधियों की अगर हम बात करें तो धान की रोपाई के ठीक 2 से 3 दिन के भीतर हम लोग ट्रिटला क्लोर का यूज करते हैं। ब्यूटा क्लोर अथवा ट्रिटला क्लोर, दोनों का 1 से 1.25 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। 1 हेक्टेयर में आपको 1 लीटर सक्रिय तत्व लगेगा। क्योंकि ट्रिटला क्लोर 50 cc का आता है तो इसका जो प्रोडक्ट बाजार का आएगा वो 2 लीटर हो जाएगा। क्योंकि 50% वाला है तो 2 लीटर लग जाता है। तो आप ध्यान रखें कि ट्रिटला क्लोर जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर यूज करना है, प्रयोग करना है। और रोपाई के 2 दिन के भीतर इसको आवश्यकता अनुसार 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए और रोपाई के 2 दिन के भीतर जो है खेत में अच्छे से छिड़क दिया जाए, जिससे अगले 10 दिन तक जो खरपतवार उग रहे हैं वो उगने नहीं पाएंगे और जल के नष्ट हो जाएंगे। अब रोपाई के 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद फिर खरपतवार का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसको हमें रोपाई से लेकर के करीब 35 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना होता है। अगर
रोपाई से लेकर के 35 दिनों तक हम खरपतवार मुक्त रखते हैं।

0: तो हमारा यील्ड में निश्चित तौर पे 20-30% तक का बढ़ोतरी हो जाता है, अदरवाइज खरपतवार के प्रेशर से हमारा उत्पादन घट जाता है। तो अब रोपाई के 20-25 दिन बाद अगर हमें खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है तो वहाँ पे हम पायरोसल्फ्यूरॉन जो रासायनिक दवा है, पायरोसल्फ्यूरॉन का 20 ग्राम सक्रिय तत्व तो लेंगे और उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे। तो जो भी खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले हों या सक्री पत्ती वाले हों या मोथा कुल के हों, वो लगभग 80-85% तक खरपतवार मर के नष्ट होते हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि जब हम छिड़काव करें उस समय हमारे खेत में खड़ा पानी न लगा हो, वो खेत उसमें थोड़ा नम रहे लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। तो पायरोसल्फ्यूरॉन का हमने बताया 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के 20-25 दिन बाद छिड़काव करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, आप 20 पायरुवेट सोडियम भी यूज कर सकते हैं। 20 पायरुवेट सोडियम का 35-40 ग्राम मात्रा रोपाई के 20-25 दिन बाद आप 800-1000 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करें, जिससे आपका खरपतवार 80-85% तक नष्ट हो जाते हैं। तीसरी विधि में आप दोनों दवाओं को मिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए पायरोसल्फ्यूरॉन आप 20 ग्राम लीजिए और 20 पायरुवेट सोडियम का मात्रा 25 ग्राम रख लीजिए। 25 ग्राम 20 पायरुवेट सोडियम, 25 ग्राम सक्रिय तत्व 20 पायरुवेट सोडियम का और 20 और पायरोसल्फ्यूरॉन का जो सक्रिय तत्व है वो 20 ग्राम रखिए और दोनों का मिश्रण आप 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 20-25 दिन के बाद आप अगर दे देते हैं तो इससे खरपतवारों में बहुत हद तक कमी आती है। लगभग 80-85% तक खरपतवार को नियंत्रण में कर लेता है और आपकी धान की फसल खरपतवार मुक्त हो जाती है। इस प्रकार आप धान की चाहे रोपित विधि हो चाहे धान की सीधी बुआई हो, इसमें खरपतवार प्रबंधन करके किसान भाई आप अपने धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, समेकित खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: देखिए, जब समेकित की बात करते हैं तो इसमें हमें खरपतवार प्रबंधन के लिए जो भी हमारी विधियां हैं, दो या दो से अधिक विधियों को अगर हम लाते हैं तो उसको समेकित खरपतवार प्रबंधन कहते हैं। जैसे हमको धान की सीधी बुआई करना है तो निश्चित तौर पर हम पहले से अलर्ट रहें, गर्मी की गहरी जुताई कर दें। ध्यान रखिएगा, धान की सीधी बुआई करना है तभी गर्मी की गहरी जुताई करें, अगर रोपाई करना है तो गर्मी की गहरी जुताई ना करें, क्योंकि उससे आपका केज व्हील उसमें धंस जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। तो धान की सीधी बुआई करना है तो उसमें समेकित में हम सबसे पहले गर्मी की गहरी जुताई करेंगे, जिससे जो पेरेनियल खरपतवार हैं या जो सीजनल खरपतवार के बीज हैं वो करीब 30-35 सेंटीमीटर गहराई पर चले जाते हैं, 1 फीट गहराई चलते हैं, वहाँ जमा उनका नहीं हो पाता है। तो 50-60% जो खरपतवार के बीज बैंक हैं वो ऑलरेडी उनका जमाव बाधित हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यांत्रिक विधि में हम चाहे तो ड्राई लैंड बीडर या कोनो बीडर का प्रयोग करके धान की रोपाई के 20-22 दिन बाद कतारों में के बीच में हम उसको चला करके खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और तीसरा विधि जो मुख्य विधि है, कारगर है, रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड जैसा हमने भी पहले बताया, सीधी बुआई के लिए हमने बोला कि आप पिंडी मिथिलीन ले सकते हैं, उसके बाद आप रिटला जो है पायरोसल्फ्यूरॉन ले सकते हैं या आप 20 पायरुवेट सोडियम ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से समेकित कृषि, समेकित खरपतवार प्रबंधन अगर रोपित धान में करना है तो इसमें हमें कोनो बीडर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद रासायनिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं और पानी को भी उसमें रोपाई के से लेकर के 20 दिन तक स्टैंडिंग मोड में रखें 1 इंच पानी, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से समेकित का मतलब ही है कि हम दो या दो से अधिक विधियों को एक साथ उपयोग में लाएं, जिससे खरपतवार थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रूप में नियंत्रण में आ सकें।
1: जी तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपने जाना धान में खरपतवार प्रबंधन जो विधियाँ हैं वो बताई डॉक्टर साहब ने आपको। तो आशा करते हैं आप भी इस प्रकार अगर डॉक्टर साहब की बातों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आप अच्छे से धान में खरपतवार प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो, लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया, बराबर का हक मिलता है, तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची, बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा

होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम हैं। ज्यादा ना हो पर बराबर की तो हैं, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं। लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती है। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं

समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती है और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं, तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीज़ें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगे। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है, आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा, समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी एक कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाए, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ, उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें और वो जो पिता है, भाई है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। Ladies first.

0: मिट्टी की?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
1: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
3: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें, साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 cc या डाई मेथो 8 30 cc का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नीनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 cc को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
4: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं।

उसी में जैसे कि मैंने आपको बताया मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी चार तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्राय हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है, और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है, और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे को ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह

0: योग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव
1: और एक हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूँकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहाँ पे भी अलग से हम
0: डाल सकते हैं जी।
1: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
0: जी।
1: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
0: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
1: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं के विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
0: यानी समय का बहुत महत्व है,
1: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
0: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
1: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
0: जी,
1: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
0: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
1: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
0: जी।
1: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
0: जी,
1: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
0: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
1: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए, ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग

0: संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
1: जी। डब्बे पे भी लिखा हाँ। एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को, अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
2: जी।
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुला में नहीं रखना चाहिए। अगर खुला में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
2: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
2: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का, उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। ये नहीं कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
2: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
2: जी
0: ना चलाएं किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत
1: पड़े, कुछ अगर फंस जाए, अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
1: जी। तो किसान भाई ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी ना सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
2: जी,
0: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें
2: जी।
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
2: जी,
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रख

0: और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर, तो कहीं फटा वटा ना हो ये आप ध्यान रखें
1: जी।
0: अगर वो फट गया है या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से पहले भी मैंने बताया था 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
2: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया हो तो
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदल नहीं है
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा
1: जी,
0: ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए हैं खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के 2 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद
1: जी,
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद
0: कर देगा, ठीक है। और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है, ठीक है। शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं
1: जी।
0: वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें।

0: ठीक है, अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हों एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है, और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें। फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर, एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है।

0: महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 96, अध्याय 8, बिरजू महाराज से साक्षात्कार। यहाँ इस पृष्ठ पर एक हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र दिया गया है। इसी पृष्ठ के बाई ओर मध्य भाग में एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिलें। इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं आपके जैसे ही कुछ बच्चे। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक की एक विशेष मुद्रा में चित्र है। श्रेया, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? बिरजू महाराज, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगीं। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, वे अब खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनके सोने चांदी के तार बेचते थे और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों से भी कभी कभी पैसा आ जाता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थीं, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले, पर अभ्यास जरूर करो। पृष्ठ संख्या 97। तनुश्री, आपने कथक किससे सीखा? बिरजू महाराज, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिष्यों को गंडा ताबीज बांधते हैं और शिष्य गुरु को भेंट देता है। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र

रास्ता होता है। मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है, तभी गंडा बांधता हूँ। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज के पिता बिरजू महाराज से गंडा बांधने के लिए भेंट स्वरूप कुछ मांग रहे हैं। नेपथ्य में एक दीवार पर एक तस्वीर है, फर्श पर एक हारमोनियम तबला रखा हुआ है, साथ ही एक दरवाजे की चौखट है, पर्दा है और उसके बाईं ओर मेज के ऊपर एक फूलदान है और कुछ अगरबत्तियां जल रही हैं। साथ ही नीचे जमीन पर एक मूढ़ा रखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 98। तनुश्री, क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? बिरजू महाराज, यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर हैं और अच्छी नर्तकी भी। मैं नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। इसके अतिरिक्त नृत्य नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा, तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। यहां बाईं ओर घुंघरू का चित्र है। मणिक, कथक की शुरुआत कब हुई? बिरजू महाराज, कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था, तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव के रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक बैरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी हुई है। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए, किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित हो गया। बैरगिया नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3-3। यहां बाईं ओर 3 डाकुओं का चित्र है, वहीं दाईं ओर 3 कथिक गाते हुए कुछ बजा रहे हैं। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। पृष्ठ संख्या 99। श्रेया, क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जानना जरूरी होता है? बिरजू महाराज, गाना बजाना और नाचना, ये तीनों संगीत का हिस्सा हैं। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण, मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधि में लय होती है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने की इस लय में जरा भी गड़बड़ी हुई नहीं कि उसका हाथ गया। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है, उसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। पृष्ठ के ऊपर दाईं ओर यशोदा और कृष्ण का चित्र है। आपने कथक में कई नई चीजें भी जोड़ी है ना? बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम

रखा है। हाँ, उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भाव भंगिमाओं को भी कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। हमने तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। इस पृष्ठ के नीचे दाईं ओर एक चित्र है जिसमें बिरजू महाराज किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 100। तनुश्री, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि थे बिरजू महाराज। भाषाएं अलग अलग होती हैं, पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सभी माएं यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके भी मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष से लिए बीज को बोएं तो समय आने पर ही एक और वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। माणिक, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिरजू महाराज, पहले मंच नहीं होते थे। फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफेद चादर बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होंठ रंगने के लिए पान होता था। पहले नर्तक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपचाप आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। श्रेया, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया? बिरजू महाराज, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के एक गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। तब तक चाचा आ गए। बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया। पृष्ठ संख्या 101। माणिक, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है? बिरजू महाराज, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है। लोक नृत्य नाचने वालों के अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है। शुरू में कथावाचक भी लोक नर्तक हुआ करता था। धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया, वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। श्रेया, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है? बिरजू महाराज, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पर शोर वाले संगीत नृत्य का भी खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूं, वह संगीत सुनो देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। तनुश्री, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? बिरजू महाराज, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य

की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से। भरतनाट्यम में दोनों भावों का इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। ओडिसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों हैं। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है चिराग की लौ के समान, इसी प्रकार उंगलियां भी बहुत धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा जी तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू। यहां इस पृष्ठ पर हारमोनियम, तबला और घुंघरू का चित्र है। पृष्ठ संख्या 102। यहां इस पृष्ठ के बाईं ओर एक कथकली कलाकार की नृत्य की शैली में एक चित्र है। माणिक, खाली समय में आप क्या करते हैं? बिरजू महाराज, खाली तो होता ही नहीं हूं, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक ना होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफकेस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूं। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्रायः रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूं। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूं और सो जाता हूं। पिछले 2 वर्षों में लगभग 70 चित्र बनाए हैं। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हों तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिरजू महाराज, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दें। जैसे अन्य खेल हैं वैसे ही यह भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठ संख्या 103। इस पृष्ठ पर बिरजू महाराज जी का कथक नृत्य की शैली में एक चित्र है। तनुश्री, क्या आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया, पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? यदि नहीं तो जरूर सीखो, मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाती है, संतुलन सिखाती है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पृष्ठ संख्या 104। पाठ से आइए अब हम बिरजू महाराज से पूछे गए प्रश्नों और उनसे मिले उत्तरों को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने की परंपरा में परिवर्तन क्यों किया होगा? वे गुरु के प्रति शिष्य के निष्ठा भाव को परखना चाहते थे? वे नृत्य शिक्षण के लिए इस परंपरा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे? वे नृत्य के प्रति शिष्य के लगन व समर्पण भाव को जांचना चाहते थे? वे शिष्य की भेंट देने की सामर्थ्य को परखना चाहते थे? दो, जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है, बिरजू महाराज के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आए? पिता के देहांत के बाद आर्थिक अभावों का सामना करना पड़ा, कोई भी संस्था नृत्य प्रस्तुतियों के लिए आमंत्रित नहीं करती थी, किसी समय विशेष में घर में सुख समृद्धि थी, नृत्य के औपचारिक प्रशिक्षण

के अवसर बहुत ही सीमित हो गए थे। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को कुछ सिखा रहे हैं। 3, बिरजू महाराज के अनुसार बच्चों को लय के साथ खेलने की अनुशंसा क्यों की जानी चाहिए? संगीत, नृत्य, नाटक और सभी कलाएं बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास नहीं करती हैं। कला संबंधी विषयों से जुड़ाव बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला भी एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्तमान समय में कला भी एक सफल माध्यम नहीं है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बालिका नृत्य कर रही है, पास बैठी एक बालिका हारमोनियम बजा रही है और एक बालक तबला बजा रहा है। पृष्ठ संख्या 105, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द एवं शब्द समूह यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही संदर्भों या अवधारणाओं से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका के 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में संदर्भ या अवधारणा दी गई हैं। तालिका का पहला स्तंभ जिसका शीर्षक है शब्द, ये शब्द इस प्रकार हैं। 1, कर्नाटक संगीत शैली। 2, घराना। 3, शास्त्रीय संगीत। 4, हिंदुस्तानी संगीत शैली। 5, कन छेदन। 6, लोक नृत्य। इस तालिका के दूसरे स्तंभ का शीर्षक है संदर्भ या अवधारणा, जिसके अंतर्गत संदर्भ और अवधारणाएं इस प्रकार हैं। 1, भारत की प्राचीन गायन वादन गीत नृत्य अभिनय परंपरा का अभिन्न अंग है। इसमें शब्दों की अपेक्षा सुरों का महत्व होता है। इसमें नियमों की प्रधानता होती है। 2, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है। इसमें स्वर शैली की प्रधानता होती है। जल तरंगम, वीणा, मृदंग, मंडोलिन वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। 3, हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। यह कान में सोने या चांदी का तार पहनाने से संबंधित है। 4, हिंदुस्तानी संगीत में कलाकारों का एक समुदाय या कुटुंब जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली साझा करते हैं। संगीत या नृत्य की परंपरा जिसमें सिद्धांत और शैली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण के द्वारा आगे बढ़ती है। 5, किसी क्षेत्र विशेष में लोक द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य। लोक नृत्य क्षेत्र विशेष की संस्कृति एवं रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। ये विशेष रूप से फसल कटाई, उत्सवों आदि के अवसर पर किए जाते हैं। 6, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित है। तबला, सारंगी, सितार, संतूर वाद्य यंत्रों से संगत दी जाती है। इसके प्रमुख रागों की संख्या 6 है। इसी पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक वीणा का चित्र है। शीर्षक, इस पाठ का शीर्षक बिरजू महाराज से साक्षात्कार है। यदि आप इस साक्षात्कार को कोई अन्य नाम देना चाहते हैं तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? लिखिए। इस पृष्ठ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार और एक महिला कलाकार कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इन्हें एक चारपाई पर बैठे हुए परिवार के कुछ सदस्य सुन रहे हैं। चारपाई पर एक पुरुष है, एक बालक और एक बालिका है। पीछे की ओर एक घड़ा है और कुछ झोपड़ियां हैं। पृष्ठ संख्या 106, पंक्तियों पर चर्चा।

साक्षात्कार में से चुनकर कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार लिखिए। तुम नौकरी में बंट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। लय हम नर्तकों के लिए देवता है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। यहां पृष्ठ के दाईं ओर ऊपरी भाग में घुंघरुओं का चित्र है, साथ ही एक पुस्तक और टोपी भी रखी है। सोच विचार के लिए, एक, साक्षात्कार को एक बार पुनः पढ़िए और यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक कैसे सीख गए थे? ख, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? ग, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन किन कार्यों में रुचि थी? घ, बिरजू महाराज ने बच्चों की शिक्षा और रुचियों के बारे में अभिभावकों से क्या कहा है? दो, पाठ में से उन प्रसंगों की पहचान कर उन पर चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि क, बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ख, बिरजू महाराज को नृत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी उनकी मां का बहुत योगदान रहा। ग, बिरजू महाराज महिलाओं के लिए समानता के पक्षधर थे। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक महिला का चित्र है जो वीणा बजा रही है। शब्दों की बात, क, पाठ में आए हुए कुछ शब्द यहां दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ये शब्द हैं आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे कि अदृश्य, अ जमा दृश्य, आवरण, आ जमा वरण, प्रशिक्षण, प्र जमा शिक्षण। यहां पर अ आ प्र उपसर्ग हैं। यहां इस पृष्ठ के निचली ओर एक पखावज का चित्र है जिसके साथ एक आरती की थाली पर दिए और फूल रखे हैं। पृष्ठ संख्या 107। शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सीमित, सीमा जमा इत, सुंदरता, सुंदर जमा ता, भारतीय, भारत जमा इय, सामूहिक, समूह जमा इक। यहां पर इत, ता, इय और इक प्रत्यय हैं। यहां एक बालिका का जल तरंग बजाते हुए चित्र है। ख, यहां दो तबले हैं। एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय हैं, दूसरे तबले में मूल शब्द हैं। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए। पहले तबले में दिए गए शब्दांश इस प्रकार हैं, आ, अ, इय, सु, इक, आ, ता, इत। इसी प्रकार दूसरे तबले में दिए गए मूल शब्द इस प्रकार हैं, मर्म, गमन, राष्ट्र, खंड, श्रम, संस्कृति, कर्म, नाम,

साधारण। अब आप दिए गए शब्दांशों अर्थात उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग करते हुए मूल शब्द को जोड़ते हुए शब्द बनाइए और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ग, इस पाठ में से उपसर्ग व प्रत्यय की सहायता से बने कुछ और शब्द छांटकर उनसे वाक्य बनाइए। शब्दों का प्रभाव, पाठ में आए वाक्य यहां दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। एक, कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मग्न हो गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना हटाकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया है। पाठ में आए हुए वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। यहां एक चित्र है जिसमें दो कथिक नृत्य कर रहे हैं और उन्हें तीन डाकू देख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 108। पाठ से आगे, कला का संसार। क, बिरजू महाराज, कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हां उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। ख, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ग, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौ कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले इस पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोक गीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। यहां एक कथक नृत्यांगना का कथक की मुद्रा में नृत्य करते हुए चित्र है। साक्षात्कार की रचना, प्रस्तुत पाठ की विधा साक्षात्कार है। सामान्यतः इसे बातचीत या भेंट वार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन यह भेंट वार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। यह साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है। प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्ति परक साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य साक्षात्कार दाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कार दाता के संदर्भ में कितना शोध किया गया है और प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक सब्जी वाले का दो बालिकाएं साक्षात्कार कर रही हैं। एक बालिका सब्जी वाले से प्रश्न पूछ रही है, वहीं दूसरी बालिका सब्जी वाले के दिए गए उत्तरों को लिख रही है। सामने कुछ सब्जियां टोकरियों में रखी हुई हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए। क, साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी। ख, आप इस साक्षात्कार में और क्या क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे। ग, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका का साक्षात्कार लेना हो तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे। पृष्ठ संख्या 109। सृजन, आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है। क, आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे, लिखिए। ख, इस कार्यक्रम की सूचना देने

के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ग, यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टि बाधित दर्शक है और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। आज की पहेली, अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है, इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं। ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है और ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्रा होती है। आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम आए हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक डायरी का पन्ना है और उस पर लिखा है, कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें एक दो नहीं बल्कि चार कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष दो कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झूमरा? दर्शक बोले, तीनों में से कोई नहीं, हमें दीप चंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। पृष्ठ संख्या 110। अब यहां दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखिए। यहां एक वर्ग पहेली है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उनसे आपको मेल करते हुए तालों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। पहली पंक्ति बाएं से दाईं ओर, टी, झ, रू, ल, भ, ती। दूसरी पंक्ति न, च, प, क्ष्मी, क, ल। तीसरी पंक्ति म, ल, क, ह, र, वा। चौथी पंक्ति ल, ई, झू, म, रा, ड़ा। पांचवी पंक्ति दी, प, चं, दी, दा, त। छठी पंक्ति ड, च, क, र, द, ड। सातवीं पंक्ति ए, म, ल, घ, रा, क। झरोखे से नृत्य की छटाएं। बिरजू महाराज ने भारत के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया है। आइए इनके बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। भरतनाट्यम, यह नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। कुछ विद्वान भरत शब्द को राग, ताल, भाव से भी जोड़ते हैं। इस नृत्य विधा की उत्पत्ति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है। यहां एक चित्र है जिसमें एक पुरुष कलाकार भरतनाट्यम प्रस्तुत कर रहा है। कथकली, दक्षिण भारत के एक राज्य में मंदिरों में रामायण तथा महाभारत की कहानियां प्रस्तुत करने वाली दो लोक नाट्य परंपराएं रामानाट्यम तथा कृष्णाट्यम कथकली के उद्भव का स्रोत हैं। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। सुप्रसिद्ध

मलयाली कवि वी एन मेनन के द्वारा राजा मुकुंद के संरक्षण में इसका प्रचार प्रसार हुआ। यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित कहानियां होती हैं। पूरे नृत्य नाटक का अनमोल आभूषण है भाव भंगिमाएं। आंखों और भौहों का लय संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां एक चित्र है जिसमें दो कलाकार कथकली नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 111। कथक ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न कथक एक परंपरागत नृत्य विद्या है। कथक का नाम कथिक से लिया गया है, जिसे कथावाचक भी कहते हैं। ये कथिक महाकाव्यों के पदों व छंदों को संगीत तथा भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करते थे। कथक की महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ कथक कलाकार कथक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक पारंपरिक शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति प्रार्थना से आरंभ होती है, तत्पश्चात नृत्य अभिनय को प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य प्रस्तुति के साथ कर्नाटक संगीत की संगत दी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य का समापन तरंगम प्रस्तुति के पश्चात होता है। यहां एक चित्र है जिसमें कुछ महिला कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। मणिपुरी नृत्य पौराणिक आख्यानों के अनुसार मणिपुरी नृत्य का स्रोत भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव और पार्वती का दैवीय नृत्य है। इस राज्य के प्रमुख त्योहार लाई हरोबा में इस नृत्य को करने का प्रचलन है। सामान्यतः यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसमें चेहरे की अभिव्यक्ति के स्थान पर हाथ के हाव भाव व पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। यहां एक चित्र है जिसमें एक मणिपुरी नृत्यांगना मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ओडिसी नृत्य नाट्यशास्त्र में उल्लेखित सोदा नृत्य से ओडिसी नृत्य रूप को नाम मिला है। कुछ भाव मुद्राएं भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इस नृत्य रूप का मुख्य आकर्षण है त्रिभंग मुद्रा, अर्थात शरीर का तीन मोड़ वाला रूप। नृत्य के दौरान शरीर का निचला हिस्सा काफी सीमा तक स्थिर रहता है और धड़ लय ताल के साथ गति करता है। यहां एक चित्र है जिसमें ओडिसी नृत्यांगनाएं ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। मोहिनी अट्टम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक मोहिनी अट्टम का उद्भव केरल राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम की विशेषता घुमावदार कोमल भाव वाले आंगिक अभिनय हैं। इस नृत्य के अंतर्गत अभिनय पर बल दिया जाता है। इस नृत्य शैली में मुख की अभिव्यक्ति और हस्त मुद्राओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। नर्तकियां पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, जिसे मुंडू कहा जाता है। पारंपरिक रूप से मोहिनी अट्टम केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि कथकली केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यहां एक चित्र है जिसमें एक मोहिनी अट्टम नृत्यांगना मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 112। साझी समझ अभी आपने शास्त्रीय नृत्यों को निकटता से जाना समझा। 5-5 विद्यार्थियों के समूह में भारत के लोक नृत्यों की सूची बनाइए और उनकी विशिष्टताओं का
पता लगाइए।

यहां इस पृष्ठ पर भारत का मानचित्र दिया गया है। अब आप भारत के मानचित्र में राज्यानुसार शास्त्रीय एवं लोक नृत्य अंकित कीजिए। पृष्ठ संख्या 113। खोजबीन के लिए यहां दी गई इंटरनेट कड़ियों की सहायता से आप भारतीय नृत्य संगीत और बिरजू महाराज के बारे में जान समझ सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में नृत्य संगत, इसके लिए यहां YouTube का एक लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/waTCH?v=WZXC CUG848। कथक परिचय भाग 7, इसके लिए YouTube लिंक इस प्रकार है https://www.youtube.com/watch?v=DPRJ69I(A)24। पंडित बिरजू महाराज, इनसे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए YouTube लिंक है https://www.youtube.com/waTCH?v=0RT(P)RJ69I(A)24। पृष्ठ संख्या 114। पढ़ने के लिए नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास चेन्नई जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और

0: दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाएं पैर में गैंग्रीन, एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा का दायां पैर काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अंततः दुर्घटना के एक महीने बाद सुधा का दायां पैर घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दिया गया। एक पैर का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी सी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमिनियम का था और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह पैर को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटे हुए पैर से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नया पैर बनवाया जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। पैर लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, कटे हुए पांव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज्यादा जबकि उसका पांव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। रामाज्ञा तिवारी, यह अध्याय यहां समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वनि अंकन मंजू कुमारी।
2: वचन नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह।

0: ना टीचर जी।
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 30 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही एक खास विषय को लेकर आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से हम सभी जान रहे हैं कि ये कोरोना जो है वो हमारे साथ चल रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया जो पौधा है वो है तुलसी। आप देखेंगे उसके बाद से हर घर में इस पौधे को लगाया जाने लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ, फ़ायदा भी हुआ इसका। तो आपने ज़रूर गेस कर लिया होगा मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पौधे की। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने से बात करूँ तो मैं इसकी दवाइयों में इस्तेमाल की जाती थी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती थी। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो मैं आज आपको बता दूँ कि हमारा जो विषय है वो है तुलसी की वैज्ञानिक खेती एवं विपणन। तो आज खेती के बारे में जानेंगे इसकी, क्योंकि बहुत जगह पर खेती की जा रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है इससे किसान भाइयों को आर्थिक दृष्टि से भी आजकल। तो मैं बता दूं हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवनाथ दास जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम। हमारे 90.8 FM के श्रोताओं, आज जो कोरोना समय में जो महामारी चल रही है उसमें आज औषधीय पौधे का जो डिमांड है उसका महत्व काफी बढ़ा है
2: जी।
3: इसी के क्रम में आज तुलसी की खेती बिहार के साथ साथ पूरे भारत में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इससे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वह औषधीय सगंधीय पादप परियोजना के तहत कार्य पान अनुसंधान के इस्लामपुर में चलता है, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का एक इकाई है। तो चले तुलसी की खेती। किसान भाइयों, तुलसी को द क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, यानी कि जितने भी औषधीय पौधे हैं उसका रानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराने जमाने से और गांव ग्राम से लेकर के शहरों में भी तुलसी हर एक घर के आंगन और बालकोनी का शोभा बढ़ाती ही है, साथ ही साथ उसका सेहत का भी ध्यान रखता है। तुलसी मुख्य रूप से ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, मलेरिया और डेंगू में भी काम आता है। और तक कि अगर 12 पत्ते तुलसी का अगर आप चिविंग करते हैं एक दिन में तो आपको वो स्ट्रेस कंडीशन से भी बचाता है और आपका मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अगर आप जिंजर और हनी और तुलसी का पत्ते के साथ अगर काढ़ा बनाते हैं तो आपको अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, कफ और सर्दी से आपको निजात दिलाती है
2: जी।
3: अगर तुलसी के लीव्स का जो जूस और हनी के साथ अगर रेगुलरली 6 महीने तक अगर लेते हैं तो आपको जो रेनल स्टोन जो होता है, जिसको आप पथरी कहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से वो खत्म करता है। इस तरह से आप देख सकते हैं तुलसी कहती

0: कि माना कि बरगद और पीपल जैसे विशाल हम नहीं हैं, पर गमलों में उगने वाली तुलसी भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी उसमें उपलब्ध है, जैसे कि प्रोटीन उसमें उपलब्ध है, आयरन 17% है, कैल्शियम 17% है, विटामिन सी 30% है, विटामिन ए 105% है, विटामिन बी 6-10% है, मैग्नीशियम 16% है, इवन की पोटेशियम 295 मिलीग्राम है।
1: अच्छा।
0: और कोलेस्ट्रॉल 0 है, यानी कि इतने पोषक तत्व के रहने के कारण कोरोना में तुलसी का डिमांड और उसका महत्व काफी बढ़ा है
1: जी।
0: और इसीलिए भारत सरकार औषधीय खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए और जिसमें कि 10,000 हेक्टेयर में खेती करने का योजना तैयार किया है हर्बल खेती के तहत। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो भारत सरकार का एक संस्था होती है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो उसमें हमारे बिहार के भी हिस्से में कुछ आने वाला है, खास करके के जो गंगा के किनारे है
1: जी।
0: बिहार के किसान भाइयों को मैं जानकारी दे दूं कि बक्सर से लेकर के भागलपुर में गंगा का जो लंबाई है 450 किलोमीटर है, तो जो गंगा के किनारे वाले किसान है वो औषधीय पौधे लगाकर खास करके तुलसी का खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं इस योजना से
1: जी।
0: अब देखें तुलसी कितने तरह का होता है
1: जी, वैरायटीज के बारे में।
0: वैरायटी हमारे किसान भाई प्रायः मुख्य रूप से तुलसी एक स्वीट वासिल कहते हैं, जिसको कि राम तुलसी आप लोग कहते हैं, या ओसिमम बैसिलिकम, और दूसरा होता है ओसिमम सेंटम, इसको सेक्रेट वासिल या होली वासिल कहते हैं, अर्थात क्रिस्ट तुलसी इसको बोलते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावे भी इसका सेंटेड के आधार पर आने की उसका सगंध के आधार पर लेमन तुलसी होता है, कपूर तुलसी होता है, तो आप इस तरह से इसका सगंध हो, औषधीय महत्व हो, इस चीज को ध्यान में आप रखते हुए आप कैसे खेती करेंगे, उसके लिए आप कैसे चुनाव करेंगे ये आपको देखना है, क्योंकि सिमैप लखनऊ के माध्यम से बहुत सारे तुलसी की प्रभेद का इजाद किया गया है, जिसमें सीम सौम्या है, सीम सनिग्धा है, सीम तुरावी है, सीम अंजना है, सीम आयु है, ये सब जो 4-5 प्रभेद हैं, चाहे सौम्या हो, सनिग्धा हो, या सुरभी हो, या अंजना हो, ये सब आप लगा सकते हैं, ये सब काफी इसका हार्वेस्ट यील्ड है, इसमें काफी तेल की मात्रा होती है। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का भी एक वैरायटी है गैब वन, इसका भी काफी यील्ड है, और खास करके बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भी एक तुलसी का प्रभेद, अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो पाइपलाइन में है, जो कि अंजना तुलसी से अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम है सबौर OS1, जो श्याम तुलसी का एक प्रभेद है, जो पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर के हर्बल गार्डन में लगा हुआ है, आप हमारे बिहार के किसान भाइयों वहाँ विजिट करें और वहाँ तुलसी का जो भी प्रक्षेत्र पर लगा हुआ है आप उसका अवलोकन कर सकते हैं
1: जी।
0: अब इसकी खेती की बात करते हैं कि तुलसी की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं बिहार में जो वाइड रेंज ऑफ सॉइल, जितने भी तरह का सॉइल हो, चाहे रिच लोम हो, या पुअर लेटेराइट हो, या सलाइन सॉइल हो, या अल्कलाइन से मॉडरेटली एसिडिक सॉइल हो, हर एक तरह के मिट्टी में ये तुलसी का खेती आप कर सकते हैं, और इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो इसके लिए मौसम है, खास करके ये प्रोग्राम जो चल रहा है सियारे प्रोग्राम के तहत, तो मैं आपको बता दूं ये फेयरली हाई रेनफॉल एरिया या फिर ह्यूमिड कंडीशन है, जहाँ की तापमान या सूर्य का प्रकाश काफी हो, हाई टेम्परेचर हो, वैसे कंडीशन के लिए तुलसी का खेती बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर तुलसी में जो ऑयल प्रोडक्शन में वो मदद करता है, लेकिन पार्शियल सेट कंडीशन में तेल की मात्रा को घटा देता है, इसीलिए जो ठंडा प्रदेश है खासकर या गैंगटोक हो, वैसे इलाके में तुलसी की खेती नहीं होती है, क्योंकि वहाँ शेडिंग कंडीशन रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ तेल की मात्रा और क्वालिटी अच्छी नहीं पाए जाते, इसलिए बिहार जो कि सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर भी हाई है, लॉन्ग डे लाइट भी मिलता है, इसलिए आपका तेल

0: मात्रा काफी बढ़ेगी। लेकिन हमारे किसान भाइयों, जब भी तुलसी की आप खेती करेंगे, आपको तुलसी का नर्सरी प्रिपरेशन पर काफी आपको ध्यान देना है कि अगर आप नर्सरी के माध्यम से अगर खेती करना चाहते हैं तब आपको ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको रेज बेस्ड सिस्टम के माध्यम से, यानी जमीन ऊपर उठा हुआ है होना चाहिए, 15x4x9 फीट का बेड बना लीजिए और उसमें 200 से 10 ग्राम तुलसी का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी अगर एक हेक्टेयर में आपको खेती करना है तो आपको 200 से लेकर के 300 ग्राम बीज का भुरकाव कर देना है वो बेड पर। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जब नर्सरी पे आप तुलसी का बीज गिरा रहे हैं तो तुलसी के साथ थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी मिला लें, और गिराने के बाद उसके ऊपर भीगा हुआ पुआल रख दें, और प्रतिदिन आपको 3 से 4 दिन सुबह और शाम में स्प्रिंकलिंग विधि से, यानी कि फुहारा विधि से उसमें पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 8 से 12 दिन में आपका तुलसी का बीज का जर्मिनेशन हो जाता है
1: जी।
0: और जर्मिनेशन होने के बाद जब आपका तुलसी 6 सप्ताह का 4-5 लीव स्टेज का हो जाता है तो आप मेन प्लॉट में जाकर के आप इसकी लगा सकते हैं। लेकिन आप जब लगाएंगे खेत में ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो दूरी होगा 60x45 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर आप लगाएंगे, यानी कि पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जब तुलसी आप लगा रहे हैं तो उस समय इमीडिएट सिंचाई करना है फुहारा विधि से, जहाँ तुलसी लगा रहे हैं उसके जड़ में ही पानी थोड़ा सा देना है ताकि वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए, और फिर सेकेंड इरिगेशन जब आप देने लगते हैं उस समय थोड़ा सा आप मुआयना करेंगे, थोड़ा सा आप खेतों को बारीकी से देखेंगे कि कुछ तुलसी के पौधे अगर मर गए हों, स्वस्थ नहीं हो, तो वैसे स्थिति में आप गैप फिलिंग करेंगे
1: जी।
0: ये कंडीशन 1 महीने के बाद आती है। और अब जहां तक सिंचाई की बात अगर करते हैं तो ये सीजन और मॉइस्चर, मिट्टी में जो कितना मॉइस्चर है उसके भी डिपेंड करता है, लेकिन प्रायः 3 महीने पर एक सिंचाई किसान भाई तुलसी के खेत में जरूर दें, क्योंकि अगर सिंचाई आप देते हैं तो उसका जो ग्रोथ बढ़वार जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो अच्छा मिलेगा। तो अप्लाई जो करना है आपको पानी का वो 3 इरिगेशन पर मंथ, 1-3 महीने पर 1 इरिगेशन आपको कर देना है। अगर जहां मॉइस्चर की कमी है वहां मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसका हार्वेस्टिंग से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जहां तक खाद की बात है कि कितना उर्वरक आप डालेंगे, तो 120-60 kg NPK प्रति हेक्टेयर के दर से रिकमेंडेड है
1: जी।
0: तो लेकिन आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान हुआ है उसमें कंप्लीट NPK की बात हम नहीं करना चाहेंगे, इस तुलसी औषधीय पौधा है इसलिए आप इंटीग्रेटेड वे में समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दें, यानी कि 50-40-30 kg NPK प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्लस 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो तुलसी है वो एक तरह से जैविक उत्पादन के तहत आएगा
1: जी। जी सर।
0: अब ऐसा इसमें देखा जाता है कि इसका इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन या वीडिंग ऑपरेशन और अर्दिंग अब मिट्टी को चढ़ाना होता है, क्योंकि अगर मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं तो ज्यादा हवा आती है या फिर कभी कभार गलती से ज्यादा पानी अगर लग गया तो ऐसे में पौधे आपको गिर सकता है। इसलिए आपको फर्स्ट वीडिंग 1 महीने के बाद और सेकेंड वीडिंग जस्ट 2 महीना आपको कर देना। जब 2 महीना आता है तब जैसे आप आलू की खेती करते समय मिट्टी को आप चढ़ाते हैं उसी तरह तुलसी में भी आप मिट्टी को चढ़ाएंगे।

0: लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग आप नहीं करेंगे तब इसका औषधीय गुण बरकरार रहेगा। क्योंकि तुलसी हो या किसी भी अन्य प्रकार का जो औषधीय पौधे होते हैं उसको इसलिए उसका महत्व रहता है कि उसके पत्ते में या उसके जड़ में या उसके फ्लावर में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं और इसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के चलते इसका औषधीय महत्व है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: इसमें बिहार के केस में ये भी देखा गया है कि लीफ स्पॉट नाम का एक बीमारी भी लगता है तुलसी के पत्ते में, धब्बे धब्बे छोटा छोटा चित्तीदार टाइप का। अगर इस तरह के किसान भाई आपके अगर तुलसी में लगा रहता है तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास का दोनों मिला करके 2% सोल्यूशन प्लांटिंग के समय अगर बीमारी उसमें आ जाता है ऑन एपियंस ऑफ डिजीज सिम्टम अगर आपका लक्षण दिखाई देने लगता है तब 3 स्प्रे मैंको जेब का करेंगे 0.25% 15 दिन के अंतराल पर तो आपको ये बीमारी से निजात मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप तुलसी का खेती करते हैं तो आपका अच्छा उपज मिलेगा। तब आपको उपज के क्रम में आपको हार्वेस्ट कब करना है, हमारे किसान भाइयों तुलसी में 2 से 3 कटिंग लिया जाता है तो पहला कटिंग 90 से 95 दिन प्लांटिंग के बाद आप ले सकते हैं और दूसरा कटिंग पहला कटिंग के ठीक 65 से 75 दिन। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक कटिंग के बाद उसमें इरिगेशन और खाद का उपयोग करना है ताकि फिर से नया फ्लस आ सके। और हार्वेस्टिंग के समय एक चीज और आप ध्यान देंगे कि हार्वेस्ट जो करेंगे वो जमीन से सटा के नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से करेंगे ताकि अगर उसका जो स्टेबल बचा हुआ रहेगा तब फिर वो स्प्राउट करके नया पौधा फिर बनेगा, तब आप सेकेंड और थर्ड कटिंग आप ले सकते हैं
1: जी। तो डॉक्टर
0: अब जहाँ तक हाँ बोलिए
1: ये तो यहाँ पर आपने बताई है पूरी नर्सरी से लेकर के ये हार्वेस्टिंग तक की बातें, और जो हमारे ये जो टॉपिक है वो है विपणन की भी बातें करनी है हमें, तो सर इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी।
0: हमारे 90.8 FM के श्रोता किसान बंधुओं, ये तो अब खेती के बाद हो गई लेकिन अभी खास करके जो औषधीय पौधे में मार्केटिंग का विपणन का समस्या से किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होता है।
1: मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उसके बाद मार्केट में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है।
0: मांग इतनी बढ़ी है कि मैं किसानों को बिहार के जो मार्केट ट्रेडर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वैसे पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश में एक जगह नीमच है, नीमच मंडी जो औषधीय पौधे के लिए विख्यात है, वहाँ लगभग 500 प्रकार का औषधीय पौधे का वो बाजार है, व्यापारिक केंद्र है। हमारे किसान भाई आप नीमच मंडी में भी जो मध्य प्रदेश के इलाके में अवस्थित है आप वहाँ भी मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ के ट्रेडर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी में बरेली लखनऊ का जो शहादतगंज इलाका है वो बहुत बड़ा जड़ी बूटी मंडी है। अच्छा। और एक बाराबंकी इलाका है जहाँ के औषधीय पौधे का विपणन किया जाता है। इसके अलावा मैं किसान भाई को एक और बताना चाहता हूँ, बिहार में भी बहुत सारे ट्रेडर इस कोरोना के काल में आगे आए हैं जो कि तुलसी और अन्य औषधीय पौधे का मार्केटिंग में बहुत बड़ा अपना रोल और कर्तव्य भी निभा रहे हैं, जिसमें एक है विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी।
1: अच्छा।
0: विश्वाक सने हर्बल एंड एरोमेटिक कंपनी जो कि अहियापुर मुजफ्फरपुर बिहार में इसका ऑफिस है और इसका जो नंबर है आप किसान भाई नोट कर सकते हैं, 7070894985। फिर से सुने, 7070894985। ये विश्वाक स्नेह हर्बल एरोमेटिक का है, कृष्णा चौधरी जी हैं इसके हेड। आप इनसे संपर्क करके आप विपणन कर सकते हैं और ये खेती भी करवाते हैं। इसी तरह से दूसरा है सबला सेवा संस्था,

0: इनका की हेड अविनाश कुमार है और इनका ऑफिस गोरखपुर में है। इनका जो नंबर है 9430502802, फिर से सुने 9430502802, जो कि सबला सेवा संस्थान श्री अविनाश कुमार का है। लेकिन इधर ये दोनों के अलावे जो अभी बड़े पैमाने पर औषधीय पौधे की खेती की का विपणन और खेती भी किसानों से करवा रहे हैं, वो है औषधीय खेती विकास संस्थान जो कि बिहार का है और इसका हेड नंदलाल जी हैं जो कि छपरा का रहने वाले हैं। इनका भी आप नंबर नोट कर सकते हैं 8292977734, फिर से सुने 8292977734। अगर इस तरह से आप चाहे औषधीय विकास संस्थान हो या सबला सेवा संस्थान या विश्वास हर्बल कंपनी हो जो कि अपना बिहार का है, आप या इनसे भी संपर्क करके आप तुलसी का विपणन करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो तुलसी बिहार में औषधीय पौधे की जो खेती का जो रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2009-10 में 2600 हेक्टेयर था जो कि अभी चल करके 4500 हेक्टेयर औषधीय पौधे की खेती के तरफ किसानों का रुझान बढ़ा, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय, हमारा जो परियोजना अखिल भारतीय समन्वित औषधीय एवं संगंधीय पादप परियोजना चल रहा है बीआरसी इस्लामपुर का काफी बड़ा योगदान है। तो मैं आपको बता दूं तो संजय गुप्ता अभी 10 एकड़ में तुलसी का खेती कर रहे हैं, मधुसूदन जो है 2 एकड़ में कर रहे हैं। ये सब अभी ये रोहतास जिला के किसान है, खास करके नोखा ब्लॉक का है। और आपको मैं बता दूं कि उपेंद्र पटेल जी जो कि राजपुर रोहतास जिला के हैं, वो 1 एकड़ में कर रहे हैं
1: जी।
0: और विकास लाल जो डुमराव बक्सर के रहने वाले हैं, वो 4 एकड़ में श्याम तुलसी का खेती कर रहे हैं। इस तरह से बिहार में किसानों का रुझान बढ़ा है, इसलिए जिन किसान भाइयों को तुलसी का खेती करनी है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन दास जो कि पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में पदस्थापित है, जहाँ की औषधीय पादप गंधीय परियोजना चलता है, जहाँ के एक अच्छा बड़ा हर्बल गार्डन है, जहाँ की लगभग 100 तरह का औषधीय पौधे का संग्रह है। आप उनसे संपर्क करें, आप वो उस हर्बल गार्डन को देखने आए, आपको काफी लाभ होगा
1: जी।
0: इस तरह से जो विपणन का मैंने आपको बताया, इसके अलावे जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो डिजिटल इंडिया का ये युग है, तो आप घर बैठे भी तुलसी का खेती का विपणन कर सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट है कृषक हाट, कृषक हाट एक सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश का है ये, आप इस वेबसाइट पर भी जा करके आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक मजबूत विपणन का प्लेटफॉर्म है ई चरक, भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसका वेबसाइट है ई चरक, जो कि ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट प्लेस है मेडिसिनल प्लांट का। अगर आपको तुलसी का विपणन करना है तो आप उसके पोर्टल पर पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना पासवर्ड बना लें और क्या चीज का विपणन करना उसमें नाम लिखेंगे, अपना प्लांटिंग मटेरियल का यहाँ तक कि फोटोग्राफ भी डालेंगे। अगर तुलसी का पाउडर बेचना है या तुलसी का लीफ बेचना है या तुलसी का पूरा हार्वेस्ट मटेरियल बेचना है तो उसका फोटोग्राफ डालेंगे और उधर से तुरंत रिप्लाई होगा, जिसको भी खरीदना होगा वो आपको रिप्लाई देगा कि कितना आप प्राइस रखे हैं। तो आप प्राइस जो दिल्ली या नीमच मंडी का रहता है आप वेबसाइट से देख करके भी आप अपना प्राइस रख सकते हैं, या फिर जो खेती करने में जो आपको ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा है उससे कैलकुलेशन करके कि कितना आपको मुनाफा होना चाहिए। प्रायः जो तुलसी का खेती जो है उसमें 50 लाख 75 लाख 50,000 75,000 1 लाख तक का प्रति एकड़ इसमें आता है। इस तरह से अगर आप भौतिक रूप से मार्केटिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं तो नीमच मंडी जाइए, अगर भौतिक रूप से करना चाहते हैं तो बाराबंकी मंडी जाइए या सबला सेवा संस्था जो बिहार का है उससे संपर्क कीजिए, या फिर कृषि सेवा संस्था जो

0: लाल जी का है, आप उनसे संपर्क कीजिए, अथवा ऑनलाइन मार्केटिंग ई चरक के माध्यम से कर सकते हैं या कृषक हाट के माध्यम कर सकते हैं।
1: जी सर, बिहार में कहाँ कहाँ इसकी खेती हम कर सकते हैं, क्या कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं इसकी खेती की?
0: बिहार में तुलसी की खेती का संभावनाएं खास करके जो दक्षिण बिहार का जो इलाका है, जिसमें कि नवादा हो सकता है, जम्मू हो सकता है, मुंगेर हो सकता है, आपका रोहतास जिला में तो बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, और फिर थोड़ा सा गंगा के उस पार में जो बेगूसराय का जिला है और एक मुजफ्फरपुर जिला है, ये सब तुलसी की खेती करने के प्रति किसानों का रुझान और कर भी रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो तुलसी की जो खेती होती है उसके तुलना में बिहार धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है तुलसी की खेती की तरफ।
1: जी,
0: टोटल पूरे भारतवर्ष में 25,000 हेक्टेयर में तुलसी की खेती होती है, जिसमें बिहार में 32 हेक्टेयर खेती होती हो रही है, और अभी लगभग 500 एकड़ का टारगेट कृषि विकास संस्थान जो नंदलाल जी का है और हमारा पान अनुसंधान केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय मिल करके इस एरिया को और बढ़ाने का कर रहे हैं। तो खास करके जो रेनफेड एरिया है जहां बारिश नहीं होती है वैसे इलाके के लिए तुलसी वरदान है उन किसानों के लिए, क्योंकि जहां सिंचाई की उपलब्धता नहीं है, पानी का उपलब्धता नहीं है, जो वर्षा आधारित खेती करते हैं वैसे इलाके में तुलसी का खेती आप बड़े ही सुगमता रूप से आप कर सकते हैं और आर्थिक लाभ कमा सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आपने जाना कि तुलसी की खेती आपको आपके आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत करेगी और इसके फायदे भी अनेक हैं। आप चाहे तो एक किचन गार्डन भी बनाते हैं तो आप उसमें भी इसे उगा सकते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में जो चीज़ें हैं जैसे कि काढ़ा बनाना, तो इन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फायदे ही फायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगर यहाँ पर तो हमने खेती की बात की, लेकिन हम इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसकी पूजा करते हैं तो हर घर में एक ना एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। और किसान भाइयों जी,
0: आप मैडम आप आध्यात्मिक की बातें की, एक तुलसी विवाह होता है।
1: जी जी,
0: प्रत्येक साल तुलसी विवाह हमारे हिंदू भाई जो भारतीय हैं वो मनाता है, और खास करके हिंदू जो 11 और ब्राह्मा जो ब्राइट फोर्टनाइट होता है, जिसको कि पूर्णिमा का दिन हम लोग कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा उसको बोलते हैं, फुल मून डे, तो उस समय भी विष्णु के अवतार के रूप में कृषि के तुलसी को माना जाता है, और जो तुलसी के नीचे ही शालिग्राम का एक शिला रहता है, कहता है कि जब तक ये शिला तुलसी से नहीं मिलती है तब तक लोगों का जो पूजा होता है वो परिपूर्ण नहीं माना जाता है।
1: जी,
0: तो हमारे धार्मिक महत्व का तुलसी में बहुत है, इसीलिए तो इसको क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है तुलसी को।
1: जी, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको जो धार्मिक तरीके से इसकी जो विशेषता है वो भी बताई आपको, साथ ही खेती के बारे में बताया कि आप कैसे कैसे खेती कर सकते हैं, नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, आपको कौन सी किस्म लेनी चाहिए, अगर बिहार में आप खेती कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि आप अगर आर्थिक दृष्टि से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप कहाँ पर बेच सकते हैं इसे, मार्केट कहाँ उपलब्ध है इसके, तो सारी बातें आपको बता दी गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा इस वार्ता को सुनकर। और साथ ही अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय खेड़ा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव रखते हैं। वर्तमान में डॉक्टर खेड़ा इंजीनियर

0: हेल्थ नई दिल्ली में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने देश में मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर खेड़ा ने नई दिल्ली विश्वविद्यालय से MBBS और MD की डिग्री प्राप्त की है, साथ ही गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में डिप्लोमा भी किया है। भारत के अलावा उन्होंने ओमान और म्यांमार में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कार्य किया है। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने अनुभव को साझा करने के लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या होता है और ये महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर की कैसे वजह बन सकता है।
1: थैंक यू वेरी मच यू नो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HPV, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे हमारे मालूम है कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की एक खास बात है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जैसे कुछ वायरसेस होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको नजला जुकाम कहते हैं, कुछ वायरसेस आपके आंख में इन्फेक्शन करते हैं। तो ये जो वायरस है जिसका नाम HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। और इसकी जो वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, इसका भी जो ट्रांसमिशन भी होता है ये थ्रू सेक्सुअल रूट होता है। तो इतना ही जानना काफी है कि एक तरह का ये वायरस है। और जैसे बाकी वायरसेस होते हैं जुकाम खांसी के, डायरिया के, आंख में इन्फेक्शन के, स्किन में इन्फेक्शन के, तो ये भी एक तरह का वायरस है। पर इसकी खास बात यह है कि आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अटैक करता है।
0: सर, आजकल HPV वैक्सीन की काफी चर्चा हो रही है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये टीका लड़कियों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: ये इसलिए लड़कियों में बहुत जरूरी माना जाता है। वैसे तो इस HPV वैक्सीन को हम लड़कों में भी दे सकते हैं, लड़कियों में भी दे सकते हैं, पर जो हमारी जो साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि ये जो HPV इन्फेक्शन होता है, यदि लड़कियों में ये बना रहता है इन्फेक्शन, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लड़कों में यदि HPV इन्फेक्शन होगा तो उनको वॉट्स वगैरह होते हैं, पर लड़कियों में क्योंकि उनकी सर्विक्स होता है, उनका बच्चेदानी होती है, सर्विक्स को आम भाषा के लिए बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, तो ये एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और ये स्टडीज बताती हैं कि यदि HPV इन्फेक्शन हो गया है आपको, तो आपको काफी पॉसिबिलिटी है सर्वाइकल कैंसर होने की। और ये सर्वाइकल कैंसर एकदम नहीं होता, इसको कुछ समय लगता है, 8 से 10 साल इन्फेक्शन रहेगा, कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहेगा, तो उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि ये भी माना गया है साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कि 70 से 80% केसेस में जो इन्फेक्शन होता है वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है, सिर्फ 10 से 20% लोगों में वो इन्फेक्शन बरकरार रहता है, और जिससे प्री कैंसरस लीजन बन जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर बन जाते हैं।
0: तो सर, आपकी नजरों में लड़कियों को ये वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए, मतलब आइडियली किस उम्र में लगवानी चाहिए, और उसी उम्र में लगवाना ज्यादा फायदेमंद क्यों रहता है?
1: आइडियली तो देखो, जब भी आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं हमारे देश के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी 10 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 10 या 11 साल की उम्र में लग जाना चाहिए इंजेक्शन। पर जैसे अभी सरकार ने बोला है कि हम सब 14 साल की लड़कियों को लगाएंगे, तो वो भी ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत वेरिएशन है ना सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, तो एक एवरेज जो है 10 से 14 साल की जो उम्र है वो बहुत ही राइट एज है, जहां पर HPV वैक्सीन लगाने से आपको सर्वाइकल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
0: और अगर सर हम आगे लगाएं, जैसे मतलब 20 की उम्र के बाद, तो क्या इसका असर कम होता है, ऐसा कुछ है, या हम तभी भी लगवा सकते हैं?
1: नहीं, इसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर यही है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन यदि आपको 12 साल की उम्र में हुआ है और वो वायरस पड़ा हुआ है उसके अंदर, तो फिर उसका जो असर होगा वैक्सीन का असर नहीं होगा। पर यदि आपका HPV का एक्सपोजर ही 20 साल की उम्र में हो रहा है और आपने 19 साल में लगा लिया है, तो आप बच जाएंगे। तो कहने का
0: एग्जैक्टली
1: मतलब ये एचपीवी इन्फेक्शन को बचाने का तरीका है, प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन।
0: जी। तो सर जैसे हमारा ये इंटरव्यू हम गांव दराज में ब्रॉडकास्ट करेंगे और वहां के कम्युनिटी में ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा।

0: वहां पे अगर हम सर देखें तो माता पिता काफी झिझक महसूस करते हैं कोई भी वैक्सीन लगवाने के लिए, चाहे वो अभी कोविड का देख लें या अभी हम कोई भी केस देख लें, तो काफी झिझक महसूस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, सब लोग हमारे श्रोताओं को, कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, वो लगवा सकते हैं? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, ये ना वैसे मैं एक ब्रॉडली एक मैसेज देना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में, और आपको बताना भी चाहूंगा कि अब कुछ सालों से हमारे देश में वैक्सीनेशन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है, क्योंकि अधिकतर लोगों की वैक्सीन एक बहुत ही आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का। जैसे आज के दिन जो बच्चों के टीके हैं हमारे देश में, 100 में से 75 बच्चों में टीके लग रहे हैं पूरे, जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40% बच्चों में लगते थे। तो कहने का मतलब लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, लोग ये जान रहे हैं कि वैक्सीन एक बहुत आसान तरीका है बीमारियों को बचाने का, और जो भी बीमारियां यदि हम बचा सकते हैं टीकाकरण से उसको बचाना चाहिए। उसी संदर्भ में यदि हम बात करें सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को यदि आप बचाना चाहते हैं तो एचपीवी वैक्सीनेशन एक बहुत ही आसान तरीका है। इसका टीका लगवाने से आपको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और दूसरा, जो वैक्सीन आजकल बन रहे हैं वो सब वैक्सीन बहुत ही सेफ बन रहे हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव, वेरी सेफ। और दूसरा जो है, जो सरकार दे रही है वैक्सीन, उसमें काफी ध्यान दिया जा रहा है क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बन के आ जाता है, उसकी क्वालिटी का बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन होता है और उसकी कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो एचपीवी वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन अवेलेबल है देश में, ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होता है और ये बिल्कुल सेफ है।
0: ओके सर, जब हम इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि काफी अफवाह और गलत फहमियां जो हैं लोगों में सुनने को मिलती हैं, तो आप ऐसे कौन से भ्रम होंगे जो जिनको आप क्लियर करना चाहेंगे, लोगों के बीच में साफ करना चाहेंगे?
1: देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से, काम करने से इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के एरिया में। मैं कोई 10 साल तक मैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखता रहा भारत देश में, तो अक्सर ये देखा गया है कि जैसे बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम, लूज मोशन होते हैं, और जैसे उसे एक दिन पहले टीका लगता है तो लोगों को ये टेंडेंसी होती है कि उस बुखार, खांसी, जुकाम को या लूज मोशन को उससे लिंक करने की, कि हमने कल टीका लगवाया था इसीलिए मुझे खांसी हो गई। पर अदरवाइज भी तो बच्चों को खांसी हो जाती है, अदरवाइज भी बच्चों को बुखार हो जाता है। तो इस तरह के जो दिमाग में आपके जो वहम होते हैं कि हमको ये बुखार हो गया, हमको खांसी हो गई, उसका कोई टीके से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि इस टीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुछ टीके, जैसे हम बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टुसिस का जो टीका लगाते हैं बच्चों में, उसका हमें मालूम है कि उसको लगाने के बाद बुखार आता है, पर एचपीवी वैक्सीन के बाद तो बुखार भी नहीं आता है कुछ। तो ये बिल्कुल सेफ है। और बाकी इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी दर्द हो सकती है, और वो भी सबको नहीं होती, किसी को दर्द हो सकती है, और वो भी हरेक का अपना अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है। कई लोगों को सुई देख के डर लग जाता है, कई लोगों को सुई लगाने के बाद भी कुछ नहीं होता है। तो थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं, बट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब एक्सेप्शनल केसेस में तो कोई भी चीज किसी को रिएक्शन कर सकती है ना, मतलब एक में से करोड़ों में से एक बच्चे को कोई चीज रिएक्शन कर सकती है। अब किसी को तो कोई खाने की आइटम भी खाते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाता है, तो वो एक्सेप्शन वाली बात है। पर यदि ऐसा होता भी है तो उसके लिए, क्योंकि अभी जो इंजेक्शन है आपका ये हॉस्पिटलों में लग रहा है, तो आपका पूरा यदि कोई रिएक्शन होता है किसी को तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है। पहले तो इसमें कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर यदि कोई 1 in million, 1 in crores यदि कोई पॉसिबिलिटी किसी को रिएक्शन किसी चीज से होता है या इंजेक्शन के डर से एकदम रिएक्शन हो जाता है, तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम होता है हॉस्पिटल।
0: तो सर, एक कम्युनिटी में एक जो बहुत मिथ है वो ये है कि ये वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन लगवाने से बांझपन हो सकता है, आप क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है?
1: नहीं, कोई भी जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि एचपीवी वैक्सीन सिर्फ एचपीवी की बीमारी को बचाता है, इसका बांझपन से बिल्कुल भी कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक तो कोई ताल्लुकात नहीं है इसका।
0: ओके, ये बहुत जरूरी था क्लियर करना, क्योंकि अभी हम कम्युनिटी में देखते हैं तो बहुत ज्यादा झिझक इन्हीं कारणों से रहती है कि क्या पता आगे बच्चा ना हो, बांझपन हो जाए। तो धन्यवाद, आपने इसको क्लियर किया। तो पर सर, अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो अगर कम्युनिटी में, गांव दराज में इसको लोग

0: जा सकते हैं, कौन से ये सटे वैक्सीन, और लोग कहाँ जाके इसको लगवा सकते हैं?
1: देख देख, तो बड़ी खुशी की ये बात है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीनेशन मुफ्त कर दिया है हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है। ये प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स में हैं, वहां पर इस इंजेक्शन की जो कीमत है वो 2,000 रुपया है एक इंजेक्शन। पहले ये इंजेक्शन सिर्फ जो जिन लोगों के पास पैसे थे सिर्फ वही लोग लगवाते थे, आम आदमी एचपीवी वैक्सीन नहीं लगाता था। अब क्योंकि सरकार ने सोचा कि ये एक बीमारी को बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, तब उन्होंने जितने भी सरकारी हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हों, आयुष्मान मंदिर जिसको हम आजकल कहते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, अर्बन हेल्थ सेंटर्स हो, सब मेडिकल कॉलेजेस, इन सब जगह में अभी एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है और आप वहां पर जा सकते हैं। और 14 साल की लड़कियों को अभी टारगेट किया जा रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की संभव ज्यादा होती है। तो इसीलिए सरकार सब 14 साल की लड़कियों को ये टीका मुफ्त मिले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप इसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल है इसको आप अवेल करें।
0: ये तो काफी अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा लिया गया है, क्योंकि गांव दराज में अभी भी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2,000 का वो वैक्सीन लगवा पाए। तो सर, इसका डोज कितना लगाना होता है? एक ही डोज इसका चाहिए होता है या और भी डोज चाहिए होते हैं इसके?
1: देखो, पहले जो वैक्सीन अवेलेबल था आज से 5 साल पहले, तब इसका 2 डोज 3 डोज लगाई जाती, पर अब नया जो वैक्सीन आया है, जो नई रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से एक वैक्सीन की डोज भी काफी है। तो अभी सिंगल वैक्सीन डोज दी जा रही है, एक वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं, इतना आसान तरीका है ये।
0: वैक्सीन पर हम महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर के बचाव की बात करें, तो महिला मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कदम उठा सकती हैं कि थोड़ा वो सेफ रहे, सेफ साइड पे रहे फॉरएवर?
1: तो उसके लिए ना एक तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ऑब्वियसली जैसे बताया कि आप एचपीवी वैक्सीन लगा लिया आपने, तो एचपीवी वैक्सीन से आपकी कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो जो होते हैं अपना सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखती हैं, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलो या ओवरऑल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें भी ये कैंसर की होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें और उस समय जब पीरियड्स आते हैं पूरा सफाई का ध्यान रखें। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात है, यदि आप सर्वाइकल कैंसर को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग होती है जिसको रिकमेंड करते हैं कि हर 35 ईयर्स के एज के बाद आपको दो दो बार अपनी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी है। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में एक पैप स्मियर लिया जाता है, ये मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर सर्वाइकल कैंसर में, सर्वाइकल एरिया में कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा। तो यदि आप उस लीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका इलाज भी तुरंत हो सकता है और आपको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना को वहां भी खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब सर्वाइकल कैंसर को तरीके हैं। सबसे पहले यदि आप टीका नहीं लगवा पाए किसी वजह से, अवेलेबल नहीं था, और 35 की एज है आपकी, तो 35 की एज के बाद दो बार अपने को सर्वाइकल के लिए, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए नजदीक के हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पर वो स्क्रीनिंग भी बिल्कुल मुफ्त होती है और वो आगे सर्विक्स का और उससे बता वहां कुछ दाना या यदि कोई दाग मिलेगा तो उसका तुरंत इलाज भी हो जाता है।
0: सर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चाहते हैं कि जाते जाते आप अपने हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दें, ताकि माता पिता हैं वो इन सब चीजों को लेके ज्यादा अवेयर हो और ये सब ये अब सही फैसला ले सकें।
1: मेरा तो एक ही मैसेज होगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहले ये जो टीका था सिर्फ जिनके पास पैसे थे वो लगाते थे क्योंकि बहुत महंगा था, अभी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो मैं सोचूंगा कि अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहां पर इस जो फ्री सुविधा है इसको अवेल करें और अपने को कैंसर से मुक्त रखें।
0: थैंक यू सो मच सर, हमारे श्रोताओं के सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें इतने इंसाइट्स दिए। थैंक यू सर।
1: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो।

0: जीरो आगे जीरो पीछे जीरो।
1: टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नीनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए।

बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ

0: हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त अनु। और आप सभी के बीच एक बार फिर कुछ खास बातें कुछ खास जानकारियां लेकर हाजिर हूं। दोस्तों 2020 की बात करें और सितंबर माह की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस महीने में हम मना रहे हैं पोषण माह, यानी सितंबर माह को हम मना रहे हैं पोषण माह के रूप में। और आपको आज हम बताएंगे कि पोषण माह में हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। वैसे तो इसका दो मुख्य उद्देश्य है इस बार कि हम अपने घर पर किचन गार्डन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि हमने इसे एक नया नाम दिया है पोषण वाटिका। तो पोषण वाटिका आप कैसे लगा सकते हैं, आपको किन किन पौधों को लगाना है इसमें और कैसे आपको इनकी देखभाल करनी है, इसकी उपयोगिता क्या है, इससे आपको क्या लाभ होगा, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हमारे साथ हैं अनीता मैम और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सहायक प्राध्यापक सब मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस। और आज हम मैम से जानेंगे इसी बारे में, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में। तो आज का हमारा विषय है पोषण वाटिका का महत्व एवं प्रबंधन। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: तो सबसे पहले आइए जानते हैं अनीता मैम से कि पोषण वाटिका क्या है। मैम बताएं हमारे श्रोताओं को कि पोषण वाटिका ये नाम क्यों है इस वाटिका का, इस गार्डन का। किचन गार्डन तो सभी लोग जानते हैं लेकिन हमने इसे पोषण वाटिका नाम क्यों दिया है।
1: पोषण

0: वाटिका और किचन वाटिका, किचन गार्डन या गृह वाटिका कहें तो सब एक ही है
1: जी।
0: और हम पोषण वाटिका इसलिए इसको कह रहे हैं कि इससे हमें हमारे परिवार को पोषण मिलता है, तो ये एक नाम दे दिया गया कि पोषण वाटिका, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ दिए कि हमारे पोषण से डायरेक्ट, यदि हम पोषण वाटिका लगाएंगे तो यह हमारे पोषण को बहुत ज़्यादा पोषित करता है और हमारे पूरा परिवार के पोषण को सुनिश्चित करता है। पोषण वाटिका का तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा अपने पोषण के लिए घर के आगे या घर के पिछवाड़े में खाली पड़े जमीन पर फल एवं सब्जियां उगाई जाए। गांव में प्रायः सभी मकान के अगले या पिछले अहाते में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है जिसका उपयोग पोषण वाटिका के लिए किया जा सकता है। बड़े शहरों में जगह की कमी होती है, लेकिन वहां भी छत, छज्जों, खिड़कियों एवं बरामदों पर गमलों, टोकरियों एवं अन्य बर्तनों में सब्जियों को उगाया जा सकता है। पोषण वाटिका में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिवार के सदस्यों को ताजी फल सब्जी की उपलब्धता वर्ष भर बनी रहे। बाजार में उपलब्ध सब्जी बासी, कम पौष्टिक तक कई बार जहरीले भी हो सकते हैं, और पोषण वाटिका में घर के सदस्यों के द्वारा ही, जो उसके विभिन्न कृषि कार्य होते हैं वो घर के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है और सब मिलजुल कर ही उसके सारे एक्टिविटी को करते हैं।
1: मैम, जैसा कि हमारा विषय ही है पोषण वाटिका का महत्व और प्रबंधन, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि पोषण वाटिका कितना मायने रखता है हमारे लिए। और फिलहाल अभी कोरोना काल में लोगों को कहा जा रहा है कि बाहर और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कम जाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए पोषण वाटिका हमारे लिए कितना जो ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है वो बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग विश्वव्यापी जो आपदा है, महामारी है, कोरोना से जूझ रहे हैं, और कोरोना में हमारा किचन गार्डन या पोषण वाटिका बहुत ही उपयोगी है कई मायने में। जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं कि अनावश्यक हम घर से बाहर ना निकलें, जब बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, लेकिन हरी सब्जियों की ऐसी आवश्यकता है जो कि हम उसे खरीद के स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो हमें ताज़ी खानी चाहिए, तो उसे खरीदने के लिए हमें बार बार घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन यदि हम पोषण वाटिका लगाए हुए हैं, उसमें हमारी ताज़ी सब्जियाँ फल आ रही है, तो हमें अनावश्यक रूप से हाट में, जहाँ की अमूमन काफ़ी भीड़ होती है, उस जगह हम जाने से बच सकते हैं और जो हमारा एक बहुत बड़ा कोरोना से ये अपने आप को हम बचा सकते हैं।
1: हाँ, मतलब दूसरा जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारा हथियार है, तो एक तरीके से ये हमारा सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा, हम भीड़ भाड़ वाले जगहों में जा भी नहीं रहे और अपने घर पर ही उगा रहे हैं सब्जियाँ
0: जी, सुरक्षित हम सुरक्षित सब्जी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कभी हम लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर डाइट लें, और इम्यूनिटी बूस्टर डाइट में विटामिन सी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो जो हम मान लो ताजी फल सब्जी यदि किचन गार्डन में या अपना पोषण वाटिका में लगाए हैं, तो उनका यदि हम उपयोग करते हैं तो हमारा ये इम्यूनिटी बूस्टर डाइट के रूप में भी काम करेगा। पुदीने यदि हम अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं, पोषण वाटिका में लगाए हुए हैं, तो पुदीना कभी अभी काफ़ी उपयोगी है, और जैसे भीड़ भाड़ इलाके इस जगह से हम यदि आए हैं तो एक स्टीम आजकल हम लोग लेते हैं, स्टीम लेना, भाप लेना कहा जाता है, तो उसमें यदि पुदीने की कुछ पत्ती देकर भाप लें तो वह काफ़ी उपयोगी होगा। तो और इसके लिए यदि हमारे पोषण वाटिका में पुदीना है तो जैसे ही हमें भाप लेना है, दो तीन पत्ती उसे लेकर के उस पानी में डाल करके हम भाप ले लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अभी हम लोग कोरोना काल में तुलसी का काढ़ा पीने के लिए कहा जा रहा है, हमारा आयुष मंत्रालय का भी गाइडलाइन है कि आप काढ़ा पीजिए, तो तुलसी के काढ़ा में तुलसी यदि ताजी तुलसी का प्रयोग करते हैं तो और ज़्यादा फायदेमंद है, और यह ताजी तुलसी यदि आपके पोषण वाटिका में है तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो इस तरह से अभी के समय में पोषण वाटिका घर से बाहर निकलने से बचाता है, बल्कि हमारे जो डाइट है उसको पोषक बनाता है, जो कि हमें हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कोरोना से बचाने में हम एक हथियार के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
1: और जैसे कि मैम आपने उदाहरण दिया पुदीने की, तो पुदीने मुझे लगता है कि छोटे जगह पर भी ये आराम से उगाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, उसके हम गमले में भी लगा सकते हैं।
1: और अगर किचन की बात करें तो किचन में इसकी चटनी जो है लोगों को काफी पसंद आती है, इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अभी आगे और बातें हम बताएंगे आपको, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारे लिए किचन गार्डन यानी कि पोषण वाटिका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जिसे किचन गार्डन में जो पौधे हम लोग लगाते हैं, उसमें हम फल लगा सकते हैं, फल वृक्ष लगा सकते हैं, या फिर जो सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं, साग लगा सकते हैं, फिर पूजा पाठ के लिए कुछ फूल लगा सकते हैं और कुछ मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं।
1: तो मैम यही जो आपने बताया कि जो फल और सब्जियां जो हैं तो उन्हें भी कुछ कुछ जो

श्रेणियों उनमें बांटा गया होगा। तो आप सभी को श्रोताओं पता है कि हम जो पोषण माह मना रहे हैं उसमें ये भी कहा गया है कि हमें अपने बच्चों को कुपोषण से दूर करना है, यानी कुपोषण को भगाना है। तो इसलिए बच्चों के लिए पोषक आहार बहुत ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं हम उगा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आहार की बात कर रहे हैं। तो आहार में मैम हम जानना चाहेंगे कि किन किन श्रेणियों में आहार को बांटा गया है।

0: कहते हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए, तो अगर बच्चे को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो, या फिर आप सिर्फ आलू खिला रहे हैं उसे सब्जियों में, तो सिर्फ बच्चे को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, इससे आपके बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं होता है। तो मैम आप थोड़ा सा बताएं कि आहार को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है और उसमें कौन कौन से जो आहार हैं वो आते हैं।
1: आहार जो है वो हम जो हमारी मानव सभ्यता है, मानव जाति है, उसका एक आधार स्तंभ है। और जो भी आहार हम करते हैं वो हमारे शरीर में पचकर हमें कांति देता है, उत्साह आदि पैदा करता है। और जिन पदार्थों के सेवन करने से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शरीर को पोषण, संरक्षण और संवर्धन होता है, यानी शरीर के आवश्यक तत्वों की कमी पूर्ण होकर शरीर की वृद्धि होती है, ऐसे खाद्य पदार्थ को भोजन या आहार कहते हैं। और आहार का आवश्यक अंग होता है प्रोटीन, वसा, शर्करायुक्त पदार्थ, खनिज लवण, विटामिन और जल होते हैं। और यह तीन तरीके से हमारे शरीर को पोषित करता है। और इनके कार्य के आधार पर हम इसको तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं। पहला हो गया शक्तिवर्धक आहार, दूसरा हो गया शरीर को बनाने वाला आहार, और तीसरा शरीर की रक्षा करने वाला आहार। जब हम शक्तिवर्धक आहार की बात करते हैं तो कहने का मतलब ऐसा आहार जिनमें वसा यानी चिकनाई वाला तथा शर्करायुक्त पदार्थ की अधिकता होती है एवं शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इनमें जैसे अन्न हो गया, कंदमूल हो गया, सूखे फल, ये मेवा, ये सब इसके अंतर्गत आ गए हैं जो कि हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरा टाइप का आहार में हो गया शरीर को बनाने वाला बॉडी बिल्डिंग आहार। ऐसे आहार में प्रोटीन की अधिकता वाली आहार आती है, जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडे, दालें, फलियां, तिलहन, गड़ी वाले पदार्थ, मशरूम इत्यादि। ये आहार शरीर की मांसपेशियों को बनाने तथा उसके रख रखाव तथा मरम्मत के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं। और ये शरीर का जो बनाने वाला आहार है, यह हमारे बच्चे में कुपोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
0: पोषण की
1: उनको, हाँ, उनका शरीर में वृद्धि हो रहा है, उनका शरीर का बर्बाद हो रहा है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी बिल्डिंग आहार, जो कि शरीर को बनाने वाला आहार होता है जिसमें कि प्रोटीन रिच डाइट होता है। तीसरा टाइप का आहार हो गया शरीर की रक्षा करने वाले आहार। तो शरीर की रक्षा करने वाले आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की अधिकता होती है। इस आहार को फिर हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जिसमें विटामिन, खनिज लवण और उच्च जीवनीय मूल्य की प्रोटीन की अधिकता होती है, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली। दूसरा जिसमें विटामिन और खनिज लवण की अधिकता होती है, जैसे हरी सब्जियां और फल। तो और यह आहार शरीर में जीवन प्रक्रिया के नियमन के लिए विटामिन और खनिज लवण प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
0: जी।
1: तो जो अभी हम इम्यूनिटी बूस्टर डाइट कहते हैं, उसमें यही जो शरीर की रक्षा करने वाले आहार, यही आहार आ जाते हैं, जिसमें कि तुम्हारा मुख्य रूप से हमारा हरी फल और सब्जी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम किचन गार्डन से बहुत बखूबी प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं आपने जाना कि कौन कौन से जो आहार हैं वो आप बच्चों को दे सकते हैं कुपोषण से दूर भगाने के लिए। जैसे शक्तिवर्धक आहार के बारे में मैम ने बताया, तो उसमें अन्न आते हैं, कंद फूल आते हैं, और दूसरा यहाँ पर मैम ने बताया कि दूसरा श्रेणी है शरीर को बनाने वाला, जिसमें कि बॉडी बिल्डिंग जो प्रोटीन्स हैं, तो आप ये रोटियों से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत देश में जो बच्चे जो है या फिर परिवार जो है, थोड़े आर्थिक स्तर उनकी अच्छी नहीं है, तो अगर रोटियां भी अगर आप बच्चे को देते हैं तो वो भी अच्छे तरीके से उनकी जो प्रोटीन की जो पूर्ति है वो हो जाती है। और शरीर की रक्षा करने वाले आहार, इसमें भी दूध, अंडे, मांस, मछली आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रतिदिन सिर्फ आप बच्चे को सब्जी में आलू ना दें, इसके अलावा आप हरी सब्जियां भी देंगे, तो आपका जो बच्चा है वो सही तरीके से उसका जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो होगा, यानी कि संतुलित आहार से उसका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैम से अगले सवाल की ओर चलते हैं, मैम से पूछते हैं अगला सवाल। और मैम पोषण वाटिका की हम बात कर रहे हैं, तो पोषण वाटिका में लोगों के मन में आता है कि लोग कई तरीके के पौधे लगाना चाहते, कोई कद्दू के पौधे भी लगाना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें हम पोषण वाटिका में लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावे आपकी जानकारी के अनुसार हम कौन कौन से पौधे, सब्जियों के, फल के, या इसके अलावा औषधीय पौधे जो होते हैं, हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं पोषण वाटिका में?
1: पोषण वाटिका की इस तरह की योजना बनाना चाहिए कि हम क्या क्या लगा सकते हैं, उसका ये सही से कर सकें, कहाँ क्या लगा सकते हैं। जैसे कि जो वाटिका के पीछे की तरफ छोटे फल वृक्ष जैसे हो गया केला, पपीता, सहजन, नींबू, करौंदा, मीठी नीम, ये सब पौधे लगा सकते हैं। ये क्या होगा कि एक वाटिका की सीमा निर्धारित भी करेगा कि हमारा बाउंड्री लाइन है वो भी हो जाएगा, और इन पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, और ये आपका साइड में उसको घेरा के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि लत वाली सब्जियां

0: होती है उसको मचान बना करके, जैसे परवल कुंदरू ये सब मचान बना के आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके पोषण वाटिका में कहीं छाह हो रही हो तो छाया वाले स्थान पर आप अदरक हल्दी लगा सकते हैं, क्यारियों की मेड़ पर मूली गाजर सौंफ चुकंदर ये सब लगा सकते हैं, और मुख्य सब्जी के साथ और दूसरी सब्जी को मिला करके भी आप लगा सकते हैं, जैसे बैंगन एवं पालक, आलू एवं मूली, आलू एवं पत्ता गोभी, बैंगन एवं मेथी, मटर एवं टमाटर, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जैसे दो सब्जियों के दो मेड़ के बीच में ज़्यादा देर से उगने वाली सब्जी जो कि लंबे समय में तैयार हो रही है, और कुछ सब्जी है जो कम अवधि में तैयार हो रही है, तो दो रो के बीच में जो कि लंबे समय में जो सब्जी तैयार हो रही है उसके बीच में आप कम अवधि में तैयार होने वाली सब्जी को भी लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से उसके बाद जो आपका पूजा पाठ के लिए कुछ फूल भी लगा सकते हैं, तुलसी हर किचन गार्डन में पोषण वाटिका में होना चाहिए, आप धनिया की पत्ती लगा सकते हैं, फिर आप पुदीना लगा सकते हैं, कुछ इस तरह घृत कुमारी ये सब का कुछ पौधे आप अवश्य ही आपके पोषण वाटिका में होना चाहिए। इनके अलावा आपको जो आवश्यकता हो, मान लीजिए किसी को किसी पर्टिकुलर आपके परिवार में किसी तरह की समस्या है, रोग है, उनसे संबंधित जो मेडिसिनल हो उस तरह का मेडिसिनल भी आप पौधे आप लगा सकते हैं। जैसे कि आजकल किडनी का स्टोन है वो बहुत कॉमन है, तो उसके लिए आप पत्थरचूर लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत कम जगह लेता है उसको आप लेकर, क्योंकि उसकी पत्तियों का सेवन करना होता है, वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी आवश्यकता को हम देखेंगे, हमारी क्या आवश्यकता है प्लस हमारे परिवार की क्या रुचि है, उसके अनुसार से हम अपने किचन गार्डन में या पोषण वाटिका में पौधों का चयन में ध्यान रखेंगे।
1: हाँ, मतलब कि आपके आपके घर के आगे या फिर आपके छत पर या कहीं भी कितना जगह है उस अनुसार आप सोचिए कि आप कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, और साथ ही आपकी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं आपके घर में। कई बार यहाँ पर फिलहाल तो अभी तो बहुत ज़रूरी है कि कहा जाता है तुलसी का पौधा आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितना मायने रख रहा है अभी तुलसी हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हम ये आदर्श भी है हम भारतीयों के लिए, तुलसी हम इन्हें भगवान मानते हैं, इन्हें पूजते भी हैं, तो भारतीय परिवार में तो ये है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप इन्हें लगा सकते हैं छोटे से गमले में, और कहीं ना कहीं ये आपके किचन गार्डन का भी हिस्सा बन जाएगा। और मैम यहाँ पर आपने बताया कि ये जो पौधे हैं हम लगा सकते हैं बैंगन के, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, तो मैम इसमें कुछ ध्यान देने योग्य भी बातें होंगी कि कौन सी बातें हमारे जो श्रोता हैं अगर वो पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं तो वो कौन सी बातों को ध्यान में रखें, क्या उन्हें नहीं करना है पोषण वाटिका लगाते समय, और क्या करना है ये भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप सही दिशा में जाएंगे तभी आप सफल हो सकते हैं उस कार्य में।
0: पोषण वाटिका के लिए यह एक ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक संभव वो वाटिका आपके घर के पास लगाएं, ताकि उसका आप देखभाल आसानी से कर सकें। जो भी उसमें आप बीज या पौधे का उपयोग कर रहे हैं, पौधे का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं से विश्वसनीय संस्थान से ही खरीदें
1: जी,
0: और कम स्थान उपलब्ध होने पर केवल हरी सब्जी ही लगाएं, तब आप फल वगैरह ना लगाएं, सिर्फ हरी सब्जियाँ लगाई दी, मतलब आपके जगह स्थान के अनुसार आप डिसाइड करें
1: ना।
0: सब्जियों का चयन भी करें तो घर उसका पोषण और घर के सदस्यों की आवश्यकता और रुचि के आधार पर करें। जो भी कृषिगत क्रियाएं जो पोषण वाटिका में आप करते हैं, जैसे जुताई गुराई खाद एवं उर्वरक सिंचाई कीट एवं रोग नियंत्रण, ये सब नियमित रूप से, चाहे छोटा किसी पोषण वाटिका हो चाहे बड़ा हो, ये आपको नियमित रूप से करना है। फिर घर का जितना वेस्ट पानी है, व्यर्थ पानी, लेकिन उस पानी में साबुन ना हो, केमिकल्स ना हो, उस पानी का प्रयोग, उस बेकार जल का प्रयोग आप किचन गार्डन को सिंचाई करने में उपयोग करें। पोषण वाटिका के एक कोने में आप कंपोस्ट का गड्ढा बना दें, और घर का जितना जैविक कचरा हो एकत्र करके उस गड्ढे में डालते जाएं, जिससे कि वो जब भर जाए तो उसको मिट्टी से ढक देंगे, तो वो एक साल के बाद आपका वो खाद के रूप में काम करेगा, और यदि एक गड्ढा भर जाता है तो किसी दूसरे कोने में आप गड्ढा करके फिर दूसरे साल उसमें वहाँ आप कचरा को फेंकना शुरू करें, और गंदगी देखने में गंदा ना लगे इसके लिए वहाँ पर क्या कीजिए, मचान बना करके कुछ लत्तीदार आलन दे करके कुछ लत वाली सब्जी उगा दें, जिससे कि लत के नीचे जो आप कचरा फेंकें वो ढका रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, और एक एस्थेटिक सेंस है वो भी आपका सही रहेगा। इसके बाद रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें, और यदि आप प्रयोग करते भी हैं तो उसके कम से कम एक सप्ताह के बाद ही फल सब्जी का तोड़ के सेवन करें, या फिर जो दवा का प्रयोग कर रहे हैं उसके पैकेट पे लिखा होता है कि आप कितने समय तक ना तोड़ना, उस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद वाटिका में गोबर खाद, कंपोस्ट, विविध खल्ली ये सब

0: का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वाटिका की कोई भी क्यारी खाली नहीं रहनी चाहिए,
1: अच्छा,
0: ताकि आपको मैक्सिमम उसका आप दोहन कर सकें। और इसके अलावा यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम लगा रहे हैं वाटिका, वहां कम से कम 6 घंटे की धूप अवश्य लगे। तो इन बातों को आप जब ध्यान रखेंगे तो आपका पोषण वाटिका सही रहेगा,
1: सही तरीके से, मतलब उसमें जो फल पौधे हैं वो आपको फल देंगे और सब्जियों में जो पौधे लगा रहे हैं वो आपसे सब्जियां मिलेंगी। तो इस तरीके से कई बार होता है कि अगर हम ये नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कई बार होता है कि हम लगा तो रहे हैं लेकिन बीच में हमारे जो पौधे हैं वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर हमारा जो मनोहास है वो हो जाता है, हम जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाता है और हम फिर दूसरी बार नहीं लगाना चाहते। इसलिए आप जब भी इसे लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पोषण वाटिका लगाते समय, यानी ध्यान देने योग्य बातें आप ज़रूर समझ लें। तो मैम, यहाँ पर पोषण वाटिका के तो लाभ हम जानते ही हैं कि इसके लाभ ही लाभ हैं हमारे लिए, और फिलहाल मैं आपकी ओर से सुनना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार में बताएं कि पोषण वाटिका से और क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे श्रोताओं को।
0: पोषण वाटिका से बहुत लाभ है। आप तो जैसे हम पहले ही बताए कोरोना के लिए यह एक उसके लिए भी एक रामबाण है, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा अन्य भी कई लाभ है, जैसे कि जब मान लीजिए घर के जनरली जो हम मकान बनाते हैं गांव में होता है तो घर के आगे और पीछे कुछ ना कुछ जमीन अवश्य खाली होता है, तो उस खाली पड़े जमीन का हम सदुपयोग कर लेते हैं, उसका उपयोग करके वहाँ हम सब्जी फल उगा सकते हैं। दूसरी बात, जो हमें पसंद है फल एवं सब्जी उसको हम उगा सकते हैं। उसके बाद वर्ष पूरे साल भर हम इस ढंग से पोषण वाटिका का प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे परिवार को पोषक सब्जी मिलता रहे, जिससे कि हमारा परिवार का पोषण सही रहे। इसके अलावा यह मनोरंजन और व्यायाम का बहुत अच्छा साधन है। अभी फिर हम बात करें कोरोना काल का, तो जब भी हम लोग अभी लॉकडाउन अनलॉकडाउन के फेज से अब गुजर रहे हैं, काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रहा, तो इस समय यदि हमारे पास पोषण वाटिका जिनके घर है तो उनको बोरिंग नहीं होता होगा, वो उस पोषण वाटिका में अपना श्रम योगदान दे करके अपने आप को
1: बागवानी का शौक
0: अपने आप को प्रफुल्लित रख सकते हैं। उनके लिए कि व्यायाम का भी एक जरिया ये है। इसके अलावा जो कि दुर्लभ अल्प प्रचलित और पत्तीदार सब्जियां, जैसे कि आप करी पत्ता मार्केट में जाएंगे खरीदने तो आपको नहीं मिलेगा, और पुदीने का पत्ती भी जाएंगे तो मुरझाया मिलेगा, ताज़ा नहीं मिलेगा। धनिया के पत्ते भी आप खरीद के लाते हैं तो एक दिन दो दिन के बाद वो मुरझा जाता है। इन चीज़ों को जो कि आपको ताज़ा मार्केट में नहीं मिलता है, इन सब पत्ती वाली सब्जियों को आप आराम से अपने किचन पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। इसमें आप जिसे हम मार्केट से सब्जियां लेते हैं तो उसमें हम यह नहीं जानते हैं कि जो सब्जी बिक रही है उसमें कितने दिन पहले दवा का स्प्रे किया गया था। वह जो हमारे सब्जी विक्रेता है वह इस बातों को ध्यान नहीं देते हैं कि हमको एक सप्ताह के बाद तोड़ना है, वो देखे बड़ा हो गया, वो चाहे दवा का छिड़काव आज किए हो कल किए हो उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है, वो तोड़ के मार्केट में लाते हैं और हम अनायास ही उसको उपयोग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर उसका विष जा रहा है। तो ये यदि हम अपने किचन गार्डन में अपने पोषण वाटिका में सब्जी लगाते हैं तो रासायनिक विकारों से मुक्त सब्जी की हमको प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि हम अधिक मात्रा में सब्जी का उत्पादन करते हैं तो उसका परिरक्षण कर भंडारित करके हम जब उस मौसम में वो सब्जी उपलब्ध नहीं है तो स्वयं उपयोग कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी है, मटर है, गाजर है, मूली है, इन सारी सब्जियों को हम नमक के घोल में संरक्षित कर सकते हैं। फूलगोभी का हम सुखौता भी बना सकते हैं, इसी तरह टमाटर है तो उसका हम केचप बना सकते हैं। तो इस तरह विविध सब्जी का अलग अलग परिरक्षित उत्पाद है जिसको कि हम बना करके अपना बिन मौसम में उपयोग करने के लिए भी सुरक्षित भंडारित करके रख सकते हैं। इसके अलावा यदि अधिक उत्पादन हो रहा है तो उसको हम लोग बाजार में बेच करके आय का जरिया भी कर सकते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण स्वस्थ रहता है और वायु प्रदूषण में भी कमी होती है, घरेलू बजट में बचत होती है, घर का व्यर्थ पानी और जैविक कचरा का उपयोग हो जाता है, खाली समय का सदुपयोग हो जाता है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों में कृषि के प्रति रुझान पैदा होता है एवं वाटिका के कार्यों में मदद करने से उनका प्रशिक्षण, मनोरंजन एवं व्यायाम स्वाभाविक रूप से हो जाता है।
1: जी,
0: इस तरह से हमारा कहें कि बहुत फायदे का बहुत लाभ है, सिर्फ कोरोना काल में ही नहीं, सिर्फ कुपोषण से बचने के लिए ही नहीं, बल्कि इसका बहुत बहुआयामी फायदा
1: हाँ लाभ है। तो मैम ने बताया आपको कि हम रसायन मुक्त सब्जियां हमें मिलती हैं, फल मिलते हैं, इसके अलावे हम अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं और साथ ही ताज़ी जो फल और सब्जियां हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी पूरी जानकारी पोषण वाटिका के बारे

और हमने आपको विस्तार से बताया। हमारे साथ थी अनिता मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। आशा करते हैं आप भी पोषण वाटिका में अपना योगदान दें और अगर आप भी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं छोटे तौर पर तो आप सबसे पहले तुलसी के पौधे लगाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज के लिए इतना ही, और भी जानकारी हम लेकर आएंगे। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज झुरकुरिया ग्राम के आंगनवाड़ी केंद्र में आया हुआ हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 13 में अवस्थित है। आज मैं अनुषा दीदी से पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त कर रहा हूं। तो अनुषा दीदी, आप यह बताएं कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं?
5: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जीव भोजन ग्रहण करता है, पचाते हैं और पोषण तत्वों को शरीर में वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्व शामिल हैं। पोषण को
4: हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं?
5: पोषण को जीवन में उपयोग करने के लिए आपको संतुलित आहार अपनाना चाहिए। सभी पोषक तत्व शामिल करें अपने भोजन में। सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन को शामिल करें। पानी पीते रहें। शरीर के कार्यों के लिए पर्याप्त पानी पिए। जंक फूड से बचें। शक्कर, नमक और वसा वाले प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन, नियमित भोजन समय पर भोजन और स्वास्थ्य स्कीम चुने। इस प्रकार पोषण आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है और आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
4: जी दीदी, ये तो हो गई, हम पोषण को प्राप्त कर लिए। अगर दीदी कोई दवाई ना ले, दवाई के अलावे पोषण के रूप में किस पदार्थ का उपयोग कर सकता है?
5: दवाइयों की जगह पर पोषण के लिए संतुलित आहार अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, फलियां और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, जैतून का तेल शामिल है।
4: जी दीदी, अगर आदमी को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या परेशानियां हो सकती?
5: ना हो तो वो बहुत कुपोषण का शिकार हो सकता है। शरीर में कमजोरी और थकान हो सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है और कई बीमारियां जैसे एनीमिया, मधुमेह, हृदय रोग हो जाते हैं।
4: जी दीदी, महिलाओं को पोषण से संबंधित क्या उपयोग करनी चाहिए?
5: महिलाओं को पोषण युक्त आहार ग्रहण करने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन शामिल हो। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें आयरन से बचाव के लिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए और फोलिक एसिड प्रजनन स्वास्थ्य के लिए जैसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त आवश्यकता होती है। खासकर गर्भावस्था और मानसिक धर्म के दौरान, जो उन्हें शारीरिक और

0: स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों
1: जी दीदी, तो बच्चों को आप पोषण के लिए क्या सुझाव देना चाहते
0: हैं? बच्चों को पोषण देने के लिए उनके आहार में फल सब्जियां साबुत अनाज प्रोटीन अंडा दाल दूध शामिल करें और खाने के लिए नियमित समय निर्धारित करें।
1: जी दीदी, इन सभी बातों में मैंने एक चीजों को बार बार नोटिस किया कि यहाँ पे एक लीन प्रोटीन नाम का वर्ड आ रहा है, तो हमारे ग्रामीण श्रोता लीन प्रोटीन वर्ड को नहीं जानते हैं, तो लीन प्रोटीन आखिर क्या होता है दीदी?
0: लीन प्रोटीन उस खाद्य पदार्थ को कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा खासकर संतुलित वसा और कैलोरी बहुत कम होती है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों को खास रख रखाव में मदद करता है।
1: जी दीदी, तो इसी प्रकार से हम पोषण को प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि अभी अनुसार रंजन दीदी ने बताया, और साथ ही साथ हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज एक मुहिम भी चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो दीदी, इस बारे में आप क्या कह सकते हैं अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में?
2: आप अगर अपने घर के आसपास ही कोई क्यारी लगाते हैं जिसमें कि आप फल सब्जी अपना उपजा सकें या खा सकें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन वसा वगैरह दे देती है, क्योंकि वो आपके सामने उपजा हुआ क्या कहता फल या सब्जी है जो कि पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक होती है। तो इनमें हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज सभी ग्रामीणों को भी सहायता करती है, और आप लोग भी ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्यारी अपनी थाली मतलब कि अपने घर में ही कोई क्यारी लगाता है और वो अपने क्यारी से ही फल सब्जियों को अपने खाने के रूप में उपयोग करता है तो कैसा रहेगा?
0: बहुत अच्छा रहेगा, ये करना है सभी को करना चाहिए कि अपने पास जो भी थोड़ा जगह हो उसमें कुछ भी ना कुछ लगाए जिससे कि हमें प्रोटीन कुछ भी पोषक तत्व तो आसानी से मिल सके।
1: जी दीदी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी, आपने इतना अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसलिए 90.8 FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद दीदी।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पक्षियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: हाय, मैं अजय कुमार, 90.8 FM ग्रीन से। आज मैं आया हुआ हूँ मंसरपुर के एक ग्राम में, और आज हमारे साथ हैं छोटू भैया, जो कि गांव में बहुत सारे व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां वगैरह देती है। तो आज हम इनसे जानकारियां लेंगे कि पोषण के बारे में कुछ, पोषण क्या होती है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा। हाँ, तो छोटू भैया आप ये बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
6: पोषण हम उसको कहते हैं जो कि हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है
5: जी।
6: वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, आयरन इत्यादि हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारे कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है, उसे हम पोषण कहते हैं।

0: जी जी भैया, तो पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं?
1: पोषण को हमें संतुलित आहार से ही प्रदान होता है, जो जीवन में अपनाना जरूरी होता है। संतुलित आहार हमें खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है, और जैसे अंडा, मांस, मछली, चावल, दही, छाछ आदि से हमें प्राप्त होती है।
0: तो मान लिया जाए, जैसे कि पोषण के लिए बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति दवाई का प्रयोग करता है, तो वो तो एक आपातकालीन स्थिति में आप दवाई से पोषण को का उपयोग कर लेते हैं, बट अगर व्यक्ति चाहे कि अपने पोषण को खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज कर सके, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज भी अपनी क्यारी अपनी थाली एक कार्यक्रम चलाती है, तो क्या आपके अनुसार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पोषण को लेने के लिए घरेलू उपचार या घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं?
1: उनके लिए हमें घरेलू उपचार में जैसे पालक, धनिया, सेब, नारंगी, हरा सब्जी, पत्तीदार सब्जी, दाल आदि से हमें प्राप्त करनी चाहिए, ये घरेलू उपचार में।
0: जी, अगर आदमी सही से पोषण आहार ना ले तो क्या हो सकता है व्यक्तियों के साथ?
1: उसके लिए पोषण आहार अगर नहीं लेगा तो आदमी संतुलन बिगड़ सकता है
0: जी,
1: और उस संतुलन को फिलहाल बनाने के लिए कभी हमें दवाई के रूप में दवाई भी लेनी चाहिए ज़रूरत से, वो डॉक्टर के सलाह के अनुसार, और अगर ऐसे नॉर्मल अगर कुछ है तो उस हिसाब से हमें साग सब्जी आदि से प्राप्त कर लेना चाहिए।
0: तो भैया, यहाँ पे आपको ये भी पता है कि पोषण में पोषण के रूप में जैसे कि आयरन, प्रोटीन,

0: आयरन को लेने के लिए या प्रोटीन को लेने के लिए या कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करने के लिए हमारे आसपास से हमारे खाद्य पदार्थ से कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
1: उसके लिए गेहूं को भिगोकर हमें उसे अंकुरित कर कर खाना चाहिए, चना को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए, मूंग दाल को अंकुरित कर कर के खाना चाहिए इत्यादि, ये सब है। जैसे इसमें जैसे कि चावल को हम लोग भिगो करके और उनका कुछ सामग्री बना करके हमें प्राप्त करनी चाहिए, दाल को भिगो करके उसका उपयोग हमें करनी चाहिए। इस सबसे ज़्यादा संतुलित आहार बहुत प्राप्त मात्रा में प्राप्त होती है।
0: तो भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में जो है ना पोषण को लेकर बहुत पाया गया, बहुत केस पाया गया है कि पोषण उनको कम मिल पाता है, उनको आयरन की कमी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो महिलाओं के लिए आपको पोषण के बारे में क्या करना?
1: महिलाओं में पोषण इसलिए ज़्यादातर पाई जाती है, मानसिक धर्म इत्यादि जो होती है उससे जो है उनका ज़्यादातर उसमें जो है ये कमियां पाई जाती है। उसके लिए उसे हमेशा हरी साग सब्जी इत्यादि को संतुलित मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए। उसके बाद उसे समय समय पर नींबू का घोल लेनी चाहिए और पालक मेथी धनिया की चटनी हरी मिर्च इत्यादि को उसमें ज़रूरत सही समय पे, जैसे लहसुन का उपयोग करना, ये सब सारी चीज़ जो है पोषण बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है उसे, इसलिए औरत को ये सब सारी चीज़ ज़रूर खानी चाहिए, ये अपना घरेलू उपचार है।
0: तो आज छोटू भैया ने 90.8 FM ग्रीन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी, उनमें से बहुत सी जानकारियाँ फ़ायदेमंद है, सभी व्यक्तियों को ग्रहण कर

करनी चाहिए। और हमारे यहाँ 90.8 FM ग्रीन पर सीधी संवाद हम गांव में भी जाकर कर रहे हैं, और ये सीधी संवाद मंसरपुर ग्राम के छोटू भैया से था। तो धन्यवाद छोटू भैया, आपने अपना कीमती टाइम 90.8 FM ग्रीन को दिया, इसके लिए FM ग्रीन आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहां बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन

पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर के सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है। उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
0: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
3: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है।

0: जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
1: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर, अभी इसका महत्व क्या है?
0: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहाँ पे हमको यूज करना है वहाँ पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज है अभी के परिपेक्ष में जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है, और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है, और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, ऐसे समझा जाए कि लगभग 10वां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में, और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है, और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खरपतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिपेक्ष में हम नैनो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है, और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके अदूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें, तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है, और ओवरऑल देखेंगे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए।
0: जी यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खर पतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है, यह जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है।

0: मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशिक जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार, हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होता है। जो हम परंपरागत यूज करते थे, चूंकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना वो जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतिया क्षेत्रफल, जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतिया क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो इसके इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अवशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होकर काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है, और रासायनिक संजय के अवशिष्ट को जो है ना वह कम करते करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
0: जी,
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
0: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है, तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनो कण का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनो कण, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं, और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम लाके उसका उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि नैनो कणों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतिया का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतिया क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब जो दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं, उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है, और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है, और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना, तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनो कण समाहित जो करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है, जैसे पॉलीमर जो यूज होता है, पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं, यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है, जो है ना बहुत उसके लिए

0: सहयोग पन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक। तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है, चूंकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनो कण को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, जिसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है, जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनोकन भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं। तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं, और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनोकन को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनोकनों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिलिका वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
1: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
0: जी।
1: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
0: जी, जी।
1: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
0: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पहला इसको बोलते हैं कार्बनिक खरपतवार नाशी, दूसरा अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और तीसरा है जो है ना संयुक्त नैनो खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनोकन होता है जो बहुलता से मिल जाता है वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का इसमें जो धातु कण यूज करते हैं ना तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट ग्लूफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, इससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक।
1: अच्छा,
0: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है, इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है जैसे है ना बेंटाजोन इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है नैनो हर्बिसाइड का जो कि बेंटाजोन इनकैप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना पीसीएल जो है ना एटीजेन एनपीएस है, पीसीएल जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल वेस्ट है, उसी तरह पीसीएल एमेट्रॉन है नैनो पार्टिकल है, पीसीएल सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें

0: जो है ना दोनों तरह के, इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनोकन के साथ मिक्सित जब करते हैं तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जान ली है लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए जरूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग।
1: जी जी।
0: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं, अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है ना तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो उस तरह से हमको बचना चाहिए। जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है, तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है पड़ना चाहिए ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी जो नैनो खरपतवार नाशी है अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम हो जाता है।
0: हाँ के तुलना में आप लें अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग और जब जरूरत हो तभी करें।
1: जी
0: हाँ जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें। भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो जरूरी है ही, और मास्क पहनना भी बहुत जरूरी है।

0: तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे, तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
1: धन्यवाद।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
3: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
3: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथु मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथो 8 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नीनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
4: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुवाई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है। इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
3: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
4: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीच प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम

0: रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार एक बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्राय रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है। पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में एक बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इसे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं
1: जी। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए, सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
0: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव, मोनेटा, MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजाइक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली, 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु, पत्ती, धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोए वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम, दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा, नई दिल्ली द्वारा, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जड़ सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की एक किस्म, 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल, बीटल, सेमी लूपर, तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोट तथा पत्ती

0: डब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई शस्त्रक्रिया।
1: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना, कौन कौन से वैरायटीज हैं, और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए शस्त्रक्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: ये शस्त्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5-10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए, एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए, और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें, तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुक्त तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन की खेती के लिए 60-65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बखर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले, और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बखरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बखरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूलोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और कुछ चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजो

0: फाइबर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार एक दो हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के दो तीन दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रभावित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
1: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपनी फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
0: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोप्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या एसपी 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोवास 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनेजिम 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसके

0: इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थायमेट 25 डब्ल्यूजी 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में, और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको, और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने, और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। कृषि

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहां पर

असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है, सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए जरूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर खत्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर जरूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स जरूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई

गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा। और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को खत्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे जरूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं, या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं, वहां पर पोश की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है, और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे, तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं, तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए,
पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर

0: एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी

करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव के लिए हेथो मेलाथियान 50 सीसी या डाई मेथोएट 30 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी की कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्कार किसान भाइयों, उन्नत कृषि कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं। मेरा नाम है ईश्वर चंद्रा और आज हम

बात करेंगे कि स्वरोजगार के उत्तम साधन के रूप में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आप क्यों अपनाएं। किसान भाइयों, आज हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मृदा विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर ए के झा साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।

बिल्कुल सही बात आपने कही। कुछ कहने के पहले मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर ये बर्मी कंपोस्ट है क्या। बेकार कार्बनिक पदार्थ जैसे पुआल, भूसा, सूखी घास, जलकुंभी, सब्जियों के छिलके, पशुओं के मलमूत्र आदि से केचुओं की सहायता से बनाए गए खाद को बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह बर्मी कंपोस्ट काफी किसान बना भी रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि जो बर्मी कंपोस्ट किसान बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता उतनी नहीं हो पा रही है जितनी गुणवत्ता की होनी चाहिए। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उर्वरक के तरह ही अब बर्मी कंपोस्ट भी उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत ही इसकी बिक्री होती है। तो जब उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत होती है, कहने का मतलब कि बर्मी कंपोस्ट उसी को आप बेच सकते हैं, उसी का विपणन कर सकते हैं जिसमें कम से कम 1% नाइट्रोजन हो, 0.8% फॉस्फोरस हो, 0.8% पोटास हो, उसमें 17% जैविक कार्बन हो। तो कहने का मतलब कि उसकी गुणवत्ता बिल्कुल तय है, इसमें 15-25% तक नमी इसमें रहनी चाहिए। इसमें यदि आप देखें तो भारी तत्वों की ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लेड हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे निकिल हो, सब 100 ppm के अंदर ही होना चाहिए। यदि इस ढंग का वर्मी कंपोस्ट आप नहीं बनाते हैं तो आपको इसका व्यापार करने का आपको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सबसे जो जरूरी चीज है, यदि आप इसको स्वरोजगार के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आप बर्मी कंपोस्ट जो कुछ भी बनावें वह गुणवत्तापूर्ण बनावें। पहले होता था कि बर्मी कंपोस्ट हम किसी तरह से बना लेते थे, मुझे मालूम भी नहीं होता था कि उसके पोषक मान क्या है। अब आज की तारीख में इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इसकी है कि गुणवत्तापूर्ण बनावें। अब यहां पर दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो यह आती है कि बहुत सारे किसान हैं जो सिर्फ टैंक विधि से ही बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अब टैंक विधि में थोड़ा सा वहां पर सिविल कंस्ट्रक्शन का खर्चा ज्यादा आता है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, चूंकि सरकारी अनुदान है सब लोग जानते हैं कि 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचे टैंक में ही हम बर्मी कंपोस्ट को बनाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है किसान भाइयों कि आप जाकर के टैंक में ही बनाएं। यदि आप किसी छप्पर के नीचे वहां की मिट्टी को थोड़ा सा ढालू बना के उस पर प्लास्टिक बिछा करके और वहां पर ढेर यदि बना देते हैं तो ढेर बना करके भी आप बर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर सकते हैं और ज्यादा बर्मी कंपोस्ट का निर्माण वहां पर आप कर सकते हैं। वहां पर जो लंबाई है आप अपने छप्पर के लंबाई के हिसाब से रखिए, चौड़ाई आप 4.5 फीट से लेकर के 6 फीट तक उसकी चौड़ाई रखिए, ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक रखिए। तो यह देखा गया है कि यदि आप बर्मी कंपोस्ट इस ढंग से बनाते हैं कि ये आपने ढेर बना लिया और ढेर बना करके उसके बाद उसमें आप केचुआ डालते हैं, खास करके ठंडा करने के बाद, तो उसमें बर्मी कंपोस्ट ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? इसका कारण है टैंक में केवल जो सतह है, ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह पर ही केचुआ उसे खाने का काम करता है। जबकि यदि आप इसमें ढेर में देखें तो एक पैराबोला बनता है, यानी कि पूरा यहां इस हिस्से से लेकर के दूसरे हिस्से तक इतना क्षेत्रफल मिलता है केचुआ को अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए। क्योंकि जो बर्मी कंपोस्ट बनाने वाले ज्यादातर केचुआ हैं वो इपीजेइक नेचर के होते हैं। इपीजेइक कहने का मतलब यह कि यह ऊपर के सतह को ही खाने का काम करते हैं, तो वो क्षेत्रफल ज्यादा मिलता है, तो ज्यादा क्षेत्रफल मिलेगा तो ज्यादा बर्मी कंपोस्ट बनता है। तो इसीलिए मैं किसान को यह सलाह देता हूं कि वह जो है क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि टैंक वाले तो सामान्यतः वही किसान कर पाते हैं जो कि सुखी संपन्न है या नहीं तो जिनको सरकारी अनुदान मिल गया है। लेकिन जो किसान खुद करना चाहते हैं तो आप छप्पर बना लीजिए, आपके पास बांस है ही, आपके पास खरफूस है ही छप्पर बनाने के लिए, छप्पर बना दीजिए और छप्पर बना करके नीचे के जमीन को थोड़ा ढालू बना करके उस पर आप प्लास्टिक बिछा दीजिए और वहां पर आप चारों तरफ से टटिया लगा दीजिए। टटिया इस प्रकार से लगाइए कि छत से कम 1 से 2 हाथ नीचे तक बीच में जगह खाली रहे जिससे वायु संचार हो सके। और इस ढंग का यदि आपने छप्पर बना लिया तो वहां पर आप बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। कोई यदि सुखी संपन्न आदमी है वो यदि चाहते हैं कि ऊपर में हम एस्बेस्टस का सेट डालना चाहें वो भी वो डाल करके बना सकते हैं। यदि कोई किसान इतना गरीब है कि वो छप्पर भी नहीं बना सकता है तो हमारे विश्वविद्यालय में यह देख बिहार कृषि विश्वविद्यालय में यह चीज टेस्ट करके देखा गया है कि जो आम का पुराना बगीचा है, यदि आप 2 कतार के बीच में देखिए तो 10 से 12 मीटर

0: की जगह रहती है, उस बीच के जगह को थोड़ा सा ढालू बना करके यदि उस पर यदि हम प्लास्टिक बिछा करके वहां पर बर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो वहां पर भी हम बहुत आराम से बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वहां पर आपको सिंचाई करने के लिए पानी का संसाधन कहीं ना कहीं से होना चाहिए। तो इस ढंग से यदि कोई किसान करना चाहते हैं तो उसको वो स्वरोजगार के रूप में बड़े आराम से ले सकते हैं। हम अभी आप कुछ देर में आपको बताएंगे कि यदि सिर्फ 10 ढेर एक किसान यदि लगाता है, एक युवक लगाता है 10 ढेर और हर रोज केवल 10 मिनट टाइम यदि वह देता है बर्मी कंपोस्ट के लिए तो 5-6 हजार रुपया महीने का बहुत आराम से कमा सकता है। और यह एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवसाय के ग्रामीण परिवेश में मिलने वाले पदार्थों के ऊपर ही निर्भर है, तो वहां से आप बना सकते हैं और वहां से बनाने के बाद उसकी यदि छोटे स्तर से आपने शुरू किया है, मान लीजिए आपने 10,000 केचुआ से शुरू किया है तो केचुआ तो खुद बखुद 3 महीने के बाद 10,000 16,000 हो जाएगा, तो 10 ढेर के स्थान पर 16 ढेर आप बना सकते हैं। तो एक छोटे व्यवसाय से शुरू करके एक बड़े व्यवसाय की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
1: जी, तो आप एक छोटे से व्यवसाय से बड़े व्यवसाय तक बढ़ सकते हैं और वो भी बिना कोई विशेष लागत के। हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वरोजगार के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन आप कैसे करें। इस विषय पर बहुत सारी जानकारियां अभी हैं जो आपको दी जानी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।
1: कृषि कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। वर्मी कंपोस्ट पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। हमारे साथ हैं डॉक्टर AK झा और आज का विषय है स्वरोजगार के लिए वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एक कैसे बेहतर विकल्प हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने छोटे से लेकर के और एक मंझोले और बड़े स्तर तक कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें आपने बताया। इसमें एक जो विशेष जानकारी ये है कि इसमें क्या कोई वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट की पीठ अगर इलाके में और भी खुल जाती है, कोई हमारे एक युवक हैं जो इस स्वरोजगार में आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो वर्मी कंपोस्ट है वो बेहतर बाजार मूल्य मिले और औरों से अलग हो, तो क्या कुछ इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट या इस तरह का कुछ विशेष वर्मी कंपोस्ट जो कि मार्केट में उनके इसको एक अलग स्थान दे, क्या इसकी कोई संभावना है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न। एक्चुअली जो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, सामान्य वर्मी कंपोस्ट, उसका संवर्धन की प्रचुर यहाँ पर स्कोप है, व्यवस्था है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट को चाहते हैं कि हम संवर्धित बनावें, तो जो हमारा विश्वविद्यालय उसी ढंग का वर्मी कंपोस्ट बना भी रही है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं, 5% के हिसाब से उसमें रॉक फॉस्फेट मिलाते हैं। उसमें फॉस्फोजिप्सम या जिप्सम आपके पास है तो 2.5% के हिसाब से गोबर की जितनी मात्रा है या फसल अवशेष की जितनी मात्रा है, उस दोनों के मिश्रण की मात्रा का 2.5% के हिसाब से आप जिप्सम या फॉस्फोजिप्सम मिला सकते हैं। इसमें 50 से 100 ग्राम प्रति टन के हिसाब से आप इसमें ये जो आपका एजियोटोबैक्टर है या PSB है वह आप इसमें मिला सकते हैं, और साथ ही साथ अजोला इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यह करने

0: यह देखा गया है कि जो पोषक मान है बर्मी कंपोस्ट का वो काफी बढ़ जाता है। काफी समचीन प्रश्न ईश्वर जी ने पूछा है कि वास्तव में यदि बर्मी कंपोस्ट के अभी यदि आप मात्रा देखें अनुशंसित मात्रा तो कहीं 10 टन 12 टन इस ढंग का है, वह किसान के लिए बड़ा उपयोगी नहीं हो पाता है कि वह 10 टन का मतलब हो गया 100 क्विंटल। यदि 6 रुपये केजी भी यदि है तो कम से कम 60,000 रुपये का बर्मी कंपोस्ट हो गया, वो किसान के लिए प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यदि हम बर्मी कंपोस्ट का पोषक मान बढ़ा देते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा देते हैं, तो कम मात्रा में हम कम बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके हम फसल उत्पादन कर सकते हैं और अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं। यह चीज हम लोगों ने देखा है यहां पर कि यदि हम सामान्य बर्मी कंपोस्ट में देखते हैं तो 1.2 से लेकर 1.5% तक नाइट्रोजन होता है, लेकिन संवर्धित वर्मी कंपोस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें 2% के ऊपर ही नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस यदि हम देखते हैं तो सामान्य वर्मी कंपोस्ट में 0.8% तक होता है, जबकि यदि संवर्धित वर्मी कंपोस्ट में देखें तो 4.5% तक उसमें फास्फोरस हो जाता है, क्योंकि जो रॉक फॉस्फेट हम प्रयोग कर रहे हैं लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट हमारे देश में प्रचुर भंडार है, लेकिन इसका प्रयोग न तो फॉस्फोरिक अम्ल बनाने के लिए किया जा सकता है न आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। लेकिन जब पीएसवी के साथ इसको मिला देते हैं तो उसका जो अनुपलब्ध फॉस्फोरस है वो उपलब्ध फॉस्फोरस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बर्मी कंपोस्ट बनाते समय यदि रॉक फॉस्फेट के साथ पीएसवी हमने मिला दिया तो उसकी फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही साथ आज की तारीख में जहां पर ज्यादातर जमीन हमारा गंधक के मामले में निम्न होता चला जा रहा है तो गंधक की मात्रा बढ़ाना, और वैसे भी दलहन और तिलहन में सल्फर का बड़ा रोल है, दलहन तिलहन के उत्पादन में आपको सल्फर का बड़ा रोल है, तो यदि हम ऐसा बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जिसमें कि सल्फर की मात्रा अच्छी है तो दलहनी तिलहनी फसलों के लिए ज्यादा अच्छी होगी, या जो जमीन हमारा ऊसर हो रहा है उस जमीन के लिए भी वैसा बर्मी कंपोस्ट काफी अच्छा होगा। तो हम यदि उसमें फॉस्फोस जिप्सम या जिप्सम मिलाते हैं तो उससे हमको गंधक की मात्रा हमारे बर्मी कंपोस्ट में बढ़ जाती है, और साथ ही साथ इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं खास करके लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, चाहे अजोटोबैक्टर है चाहे पीएसवी है, ये सब की संख्या हमारे बर्मी कंपोस्ट में बढ़ जाती है। और चूंकि हमने अजोला का प्रयोग किया है, अजोला में 4.5 से लेकर 5.5% तक उसमें नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन इसमें ज्यादा है, तो नाइट्रोजन वास्तव में बर्मी कंपोस्ट कहीं बाहर से तो नाइट्रोजन लाता नहीं है, जो आपने पदार्थ प्रयोग किया है उसमें जो कुछ भी पोषक तत्व है उस पोषक तत्व का खनिजीकरण करता है, तो उससे होता फायदा यह है कि उसका पोषक मान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको कम मात्रा डाल करके हम खेती कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर के मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहां पर कि यदि मान लीजिए आप सेंटेड राइस ग्रो कर रहे हैं, सेंटेड राइस में 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर डाला जाता है, यदि कोई मान लीजिए जैविक खेती कर रहा है तो उसको 1% वाला यदि बर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहा है तो 40 क्विंटल का उसको प्रयोग करना पड़ेगा, वहीं पर 2% वाला यदि 2% नाइट्रोजन वाला यदि बर्मी कंपोस्ट प्रयोग कर रहा है तो उसको 20 क्विंटल में ही काम चल जाएगा, तो आधा आधी मात्रा की बचत हो गई, तो जो कि किसान आसानी से प्रयोग कर लेता है, उतना खरीद पाता है और उतना का प्रयोग कर पाता है। और साथ ही साथ जो व्यवसाय करने वाले हैं, यदि देखिए व्यवसाय 3 बातों पर चलता है कि आपके सामान की क्वालिटी कितनी अच्छी है, दूसरा आपका दाम कितना अच्छा कैसा है, और तीसरी बात कि आपका जो व्यापारी है उसका व्यवहार कैसा है। तो निश्चित रूप में यदि आप व्यापार के लिए आप स्वरोजगार के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इन 3 बातों पर आपको ध्यान देना ही देना पड़ेगा।
1: जी, तो संवर्धित वर्मी कंपोस्ट या फिर इनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट अपनाकर भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक हम और सवाल लेंगे जो कि हमने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब, कि जो ऐसे गांव या ऐसे क्षेत्र जो थोड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द होते हैं, वहाँ पर छोटे मंझोले या फिर एक 5 से 10 kg के भी वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग और ब्रांडिंग करके लोग बाजार में बेचते हैं और जिसकी अच्छी कीमत मिलती है, जो बल्क का है उससे बेहतर मिलती है, यहाँ तक कि जो ऑनलाइन में भी वर्मी कंपोस्ट देखा जा रहा है कि उसको बेचा जा रहा है, चाहे वो अमेजोन पे हो या फ्लिपकार्ट पे हो, लोग गमले के लिए या रूफ फार्मिंग के लिए मंगाते हैं। तो क्या ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो कितने दिन तक पैक करके रखा जा सकता है, उसमें कितनी नमी होनी चाहिए, या इस तरह की जो पैकिंग जो हम करते हैं जो कि पन्नी को लेकर के, तो ये क्या उसमें भी कुछ सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ताकि बेहतरीन क्वालिटी जैसा उन्होंने उत्पादन किया है वैसा ही बिल्कुल एंड यूज़र तक मिले।
0: बहुत समचीन प्रश्न है। वास्तव में ये है कि जो बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता यदि बरकरार रहेगी तभी उसका व्यापार कोई कर सकता है। फ्लिपकार्ट

0: पर बेचे हैं या कहीं भी ऑनलाइन जहाँ मार्केटिंग हो रही है, या हम अपने छोटे शहर शहर के बगल में यदि रह रहे हैं तो वहां पर यदि बेचते हैं, क्योंकि बहुत लोग किचन गार्डन करते हैं, बहुत लोग रूप अपना गमला वमला में कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो छोटा पैकेट चाहते हैं
1: जी।
0: लेकिन छोटे पैकेट में उसकी जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग में इस चीज का जरूर ध्यान रखते हैं कि इसमें मॉइस्चर लॉस कम से कम हो, क्योंकि मॉइस्चर लॉस यदि हो जाएगा तो जितने भी इसके एंजाइम हार्मोन्स हैं वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको इनर लैमिनेटेड बैग्स में ही इसको पैक करके रखा जाता है, जिससे कि 15-25% नमी बर्मी कंपोस्ट का बरकरार रहे। वो यदि बरकरार नहीं रहेगा तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम इस चीज का ध्यान देते हैं। एक चीज में बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो एक नवयुवकों को, खास करके ग्रामीण नवयुवकों के लिए मैं कहना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आप बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, एक ट्रैक्टर गोबर में लगभग 16 क्विंटल गोबर आता है, 16 क्विंटल गोबर से आप 10 फीट × 3 फीट × 2.5 फीट का 2 ढेर बना सकते हैं। 2 ढेर बनाते हैं यानी 10 ढेर बनाना चाहते हैं तो आपको 5 ट्रैक्टर गोबर लगेगा। विश्वविद्यालय के रेट पर यदि हम गोबर की बात करें तो आपको लगभग 5,000 रुपया इस 5 ट्रैक्टर गोबर के ऊपर लग जाएगा। साथ ही साथ केचुआ का कितना प्रयोग करना चाहिए, तो एक टन जो आपका कचरा है, फसल अवशेष है, दोनों का जो मिश्रण है। वास्तव में मैं बार बार ये चीज कहना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना भूल गया हूं जो जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी आप ढेर बनाए, ढेर बनाने के पहले उसका आंशिक अपघटन अवश्य करें। आंशिक अपघटन में क्या होता है कि जो 60% गोबर और 40% फसल अवशेष को 1-1 इंच के टुकड़े में काट दीजिए, दोनों को आप मिला दीजिए। अब मिला करके यदि आपके पास कोई कंपोस्टिंग कल्चर है तो वह उसके ऊपर छिड़क करके 3-4 हफ्ते तक छोड़ दीजिए, उसके बाद ही उस मटेरियल को आप ढेर बनाने में या टैंक में भराई के लिए प्रयोग करें। यह जो प्रक्रिया है इसको आंशिक अपघटन कहते हैं। तो अब यदि आपने उसके बाद ढेर बना दिया, तो ढेर बना देने में 10 ढेर बनाया है तो 10,000 केचुआ लगेगा। विश्वविद्यालय रेट पर यदि मैं कहूं तो 5,000 रुपया आपका केचुआ पर चला गया। तो 5,000 केचुआ पर खर्चा, 5,000 गोबर पर खर्चा, और 2 लेबर आपको लग जाएगा मान लीजिए ढेर लगाने के लिए। 2 लेबर आप लग जाएगा लगभग, आप उसकी जो छनाई वनाई करेंगे, पैकेजिंग करेंगे उसके लिए, तो 2-2 4 लेबर हुआ। 4 लेबर नहीं, हम मान लेते हैं कि 6 लेबर आपके ऊपर खर्चा हो रहा है। 300 रुपये भी लेबर यदि आप रख लीजिए, जो गाँव में सामान्यतः 300 रुपये मिलता है, तो छतरी का 1,800 रुपया हुआ। 200 रुपया आप इनरिचमेंट मटेरियल या बोरा वगैरह वगैरह जो लेते हैं उसके ऊपर खर्चा पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब आपका जो खर्चा यहां पर हुआ, ये खर्चा हुआ आपको 10-12 हजार रुपया आपको जो है क्या कहते हैं इस पर 5-5-10 और छतरी का 12 हजार रुपया आपका इस पर खर्चा आया। अब 12,000 इस पर खर्चा हुआ, लेकिन 3 महीने में तो आपका बन करके तैयार हो गया। अब जो अगला जो 3-6 महीना, 6-9 महीना, 9-12 महीना करेंगे, वहां केचुआ तो आपको नहीं डालना है, केचुआ आपके पास खुद है, वहां तो सिर्फ गोबर का खर्चा लगना है, लेबर वाला खर्चा लगना है, तो वहां पर सिर्फ आपको खर्चा लगेगा 7,000 रुपया। तो 7 या 21,000 रुपया, 21,000 + 12,000 रुपया, तो 21, 10, 31, 31, 2, 33, 33,000 रुपया आपका टोटल खर्चा होकर के आया। और यदि एक ट्रैक्टर गोबर है तो एक ट्रैक्टर गोबर में 7-7.5 क्विंटल आपको बर्मी कंपोस्ट मिलेगा, हम 7 क्विंटल ही मानते हैं, तो आपको 7×5=35, 35×70=70×140, यानी 140 क्विंटल आपके पास बर्मी कंपोस्ट बनकर के रेडी होकर के चला आ रहा है। 140 क्विंटल 7 रुपये केजी के रेट से यदि रखिए, जो विश्वविद्यालय का रेट है, तो 7 रुपये केजी के हिसाब से रखते हैं तो 98,000 रुपया लगभग आपका बर्मी कंपोस्ट की कीमत हो गई। जो केचुआ बढ़ा उसकी कीमत में नहीं जोड़ रहा हूं, सिर्फ मैं बर्मी कंपोस्ट की कीमत जोड़ रहा हूं, तो 98,000 रुपया हो गया। अब उस 98,000 रुपया में से 33,000 रुपया घटा दीजिए तो लगभग 65,000 रुपया आपके पास हुआ। तो 12×5=60, 5,500 रुपया पर मंथ आपको मिल जा रहा है। और करना क्या पड़ रहा है कि आप जब नहाने जा रहे हैं उस समय आपने 20 बाल्टी पानी उठा करके उसके ऊपर सिंचाई कर दिया, और जब 3-4 हफ्ते के बाद केचुआ वहां पर बना दिया चाय की पत्ती जैसी संरचना, तो वहां जो ऊपर का मटेरियल है जिसको बर्मी कास्ट कहते हैं उसको आपको केवल हटा देना है। कहां तक? जहां तक केचुआ नहीं मिले वहां तक आपने उसको हटा दिया। अब हटा देने के बाद वह जो फिचालने वाला जो आदमी है वह उसको 4 mm की जाली से छान करके पैक कर देगा। तो कहने का मतलब कि आपको सिर्फ 10 मिनट 15

0: ना टाइम लगना है। संडे को आपने आधा एक घंटा टाइम दिया और उसके एवज में यदि आपको 5,500 रुपया प्रति माह आपको मिल रहा है तो यह ठीक ठाक एक आमदनी है, खास करके उन युवकों के लिए जो कि गांव में रहते हुए पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ वह अपना खेती भी कर रहे हैं, तो उनको अपने पिताजी से अपने गार्जियन से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए आज 10 ढेर से उसने काम शुरू किया है तो मान लीजिए 3 महीने के बाद तो 16,000 केचुआ हो गया, तो 16 ढेर बनाएंगे और इसी प्रकार से वह आगे बढ़ता जाएगा।
1: जी, तो किसान भाई और किसान भाइयों के जो बच्चे हैं जो अभी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अपने गाँव में रहकर बिना अपने परिवार से बिछड़े हुए एक बेहतर और अस्थाई एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग इसमें 3 गुनी फायदा, लगभग इसमें 3rd time आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप 1 रुपये लगा रहे हैं तो कम से कम 3 रुपये की प्राप्ति एक समय तक आपको हो जा रही है। तो ऐसे में आप वर्मी कंपोस्ट को एक व्यवसाय के तौर पर ले सकते हैं, बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। आप गांव में दे सकते हैं, महज 7 रुपये के हिसाब से डॉक्टर साहब ने ये जोड़ के बताया है, जबकि हमने ये देखा है कि जो नर्सरी, प्राइवेट नर्सरी है, या फिर जो बड़े शहरों के जहाँ पर गमले और किचन गार्डन के सामान मिलते हैं, वहाँ पर 20 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक भी बर्मी कंपोस्ट मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस संभावनाओं को आप भुना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बस एक लाइन का सवाल कि इसे कितने दिन तक पैकिंग करके रखा जा सकता है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है मैक्सिमम?
0: इसकी ड्यूरेबिलिटी 3 महीने से 6 महीने तक रहती है, लेकिन यदि मॉइस्चर मेंटेन है तो उससे ज्यादा दिन भी चलेगा।
1: पैकिंग के बाद
0: जब पैक कर लेते हैं तो 3 से 6 महीना तक यह मेंटेन रहता है, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखता है। लेकिन बीच में यदि 6 महीने के अंदर नहीं बिक रहा है तो उसको खोल करके पुनः उस पर नमी डाल करके फिर रीपैकिंग कर दें हम, तो और उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है।
1: जी, तो इसे आप अपना सकते हैं। और इस बारे में विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, आप आकर के मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से, और यहाँ के वर्मी कंपोस्ट इकाई को देख कर भी आप अपना वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने का विचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमें, एक लंबा समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, आज के उन्नत कृषि कार्यक्रम में बस इतना ही, हम अगली बार में कुछ और नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश।
1: नमस्कार, मैं अजीत। सुनते हैं आज का विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
3: घड़ी की सुइयां नियम से चलती हैं, इस कारण लोग इस पर विश्वास करते हैं। हम भी नियमों से चलेंगे तो लोग हम पर भी विश्वास करेंगे।
1: बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। सच है श्रोताओं, विश्वास प्राप्त करने के लिए अनुशासन और नियम की सबको जरूरत है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सत्रोड़ खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस जी का।
3: बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल।
1: जिला मोहल्ला मानपुर गांव ढोडरी घोटिया से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, कुमारी पुष्पांजलि, स्वप्निल और कुमार निषाद।
3: ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
1: और उज्जैन मध्य प्रदेश से गौतम बुद्ध, लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा और अर्पित वर्मा के साथ साथ रेखा वर्मा।
3: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: कक्षा 9 की हिंदी की किताब कृतिका में हिंदी के महान साहित्यकार श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा इस जल प्रलय में नामक पाठ में और कक्षा 11 की भूगोल की पाठ

0: पुस्तक के अध्याय 7 में बाढ़ के विषय में जानकारी दी गई है।
1: तो आप समझ गए होंगे कि आज हम जानकारी लेंगे बाढ़ की।
0: श्रोताओ, बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे
1: कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना, इससे नदियों में उफान आ जाता है,
0: पहाड़ों पर ग्लेशियर या हिमनदों के पिघलने या मलबे के जमाव के कारण नदियों का उफान।
1: लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं श्रोताओ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी। शीर्षक है सरिता की पुकार।
0: सरिता यानी नदी की पुकार। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और प्यारा सा गाँव था, नाम था सरितपुर।
1: नाम से ही स्पष्ट है श्रोताओ कि ये गाँव नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे।
0: वो उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का भी घर थी।
1: नदी भी बहुत खुश थी, वो गाती रहती, गुनगुनाती रहती। समय बीतता गया, आबादी बढ़ती गई। उस गांव में खेत और फलों के बहुत सारे बगीचे थे, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम करने के लिए आने लगे और बसने भी लगे।
0: लोगों ने नदी के किनारे अपने घर बना लिए, धीरे धीरे कारखाने भी लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा भी वहीं डालने लगे, कारखानों का कचरा, प्लास्टिक इत्यादि भी नदी में ही डालने लगे। जो कारखाने दूर थे उसकी जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नाले का कचरा भी नदी में आने लगा। किसी को ध्यान भी नहीं आया कि नदी कचरे से भरती जा रही है।
1: आबादी बढ़ी तो आवास की भी जरूरतें बढ़ी। फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, वहाँ के पेड़ भी काटे जाने लगे। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। अब वहाँ की मिट्टी ढीली हो गई थी।
0: सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी। पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो ग्लेशियर पिघलने लगे, और पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा।
1: श्रोताओ, नदी में जब कचरा नहीं था तो वह अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब क्योंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी, वो अपने तटों से बाहर बहने लगी।
0: इसी बीच पहाड़ों पर भारी वर्षा होने लगी, पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई। नदी का जल स्तर बढ़ गया था और पानी गांव में घुस गया, उसने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और त्राहे त्राहे मच गई।
1: नदी थी शांत, बहुत ही प्यारी,
0: बहती थी धीरे धीरे, सबकी थी दुलारी,
1: खेतों को सींचती, जीवन दिलाती,
0: बच्चों संग वो खेलती, कल कल गीत सुनाती।
1: लोगों ने नदी को सताया, उसमें कचरा गिराया,
0: पेड़ों को काटा, नदी का साथ न निभाया।
1: फिर तो उफान आया, सीमा टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी।
0: तो श्रोताओ, ये थी एक सामान्य जानकारी क्यों आती है बाढ़। वैसी एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भी भूमिका कम नहीं है। तो ध्यान दें, प्रकृति का संतुलन न बिगड़े।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कहानी और कविता, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, बाढ़ आने के मुख्य कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बाढ़ आने के मुख्य कारण बताइए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप अपना उत्तर और संदेश यहाँ भेज सकते हैं।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है किसान की होशियारी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक हास्य प्रधान नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार एक किसान ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एक जंगली भालू से अपनी जान बचाई।
2: किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से एक भालू आ गया।

0: भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा,
1: मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो खाओगे वही खिलाऊंगा।
0: भालू ने कहा,
2: भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी।
0: किसान ने आलू बो दिए, उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया।

0: अगली बार भालू ने कहा,
1: इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी।
0: इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा,
1: भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी।
0: किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया।

बच्चों, सुना आपने किसान कितना होशियार था? मजा आया ना? तो भाई इस कहानी को सुनकर क्यों ना एक मजेदार काम करें? अपने बड़ों, मित्रों और शिक्षकों से जरा पूछें और पता लगाएं कि कौन कौन सी सब्जियां, फल या उपज जमीन के ऊपर होती है और कौन कौन सी जमीन के नीचे। और हाँ, ये भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनका जमीन के नीचे और ऊपर दोनों का भाग खाया जा सकता है। ये भी पता लगा सकते हैं हम कि कौन सी सब्जी है जिसका सिर्फ ऊपर यानी जमीन के ऊपर का भाग ही खाया जा सकता है। और हाँ, एक खास सवाल तो हम पूछना भूल ही गए थे। सवाल है, आप फल और सब्जियां खाते हैं या नहीं? यदि हाँ तो शाबाश, और यदि थोड़ा थोड़ा या कभी कभी खाते हैं तो भाई फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए इन्हें खाना, क्योंकि होती हैं बड़ी पौष्टिक और मजेदार ये फल और सब्जियां। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम किसान की होशियारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार प्रवीण शर्मा और ऋचा सयाल, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान की होशियारी।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम द से दामोदर के दांत।
2: इस कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के द अक्षर से नए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग मनोरंजक ढंग से बनाना बताया गया है। कार्यक्रम नवाचारी तरीके से बच्चों को उत्साहित करता है और बताता है कि वे अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके भाषा के इस खेल का आनंद उठा सकते हैं।
3: अरे वाह वाह वाह, टॉफी क्यों अधीरा, आज क्या खास बात है?
4: आज मेरा जन्मदिन है।
3: अरे वाह वाह वाह, जन्मदिन बजाओ ताली की बात पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं अधीरा को जन्मदिन की।
4: आज अधीरा ने हम सबको टॉफी दी है।
3: अच्छा,
4: मुझे भी दी है।
3: अरे वाह,
4: मुझे नहीं दी है।
3: ओ, आपको नहीं दी, आपको दो मिलेंगी पक्का।
4: ये लो, थैंक यू।
3: वाह भाई, टॉफी तो बड़ी स्वादिष्ट है। क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, टॉफी तो तुम लोग खाते हो, दांत वाद भी साफ करते हो या नहीं?
4: दो बार करता हूँ।
3: वाह शाबाश, बजाओ इसी बात पर ताली। आप भी करते हो, इसके लिए भी बजाओ ताली। एक बात बताओ, अगर आप लोग रात को टॉफी खाते खाते सो जाओ तो क्या होगा?
4: दांत टूट जाएंगे,
5: दांत फाड़ निकल जाएंगे।
3: कीड़े लग जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे।
5: मैंने घर में मिर्ची खाई ना, फिर मिर्ची खाते खाते मुझे उल्टी आ गई।
3: उल्टी आ गई?
4: अगर मुंह में टॉफी लेके सोएंगे तो गले में अटक जाएगी, गंदी बदबू आएगी।
3: गंदी बदबू आएगी, बहुत बढ़िया। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही भालू दामोदर की कहानी सुनाऊंगा जो टॉफी चॉकलेट तो खाता था पर दांत साफ नहीं करता था।
5: छी छी, कीटाणु हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे, बदबू आएगी,
3: बदबू आएगी, सड़ जाएंगे,
5: खराबी भी हो जाएगी।
3: वाह वाह,
5: गंदी बदबू लगेंगे, कीड़े
3: भाई। वाह वाह, नकली दांत लगवाने पड़ेंगे। तो बच्चों, द से
1: दामोदर।
3: हाँ शाबाश, द से दामोदर, द से हाँ, द से दांत, शाबाश।
1: दर्द,
3: द से दर्द। अरे वाह, द से दादी, द से दादा, द से दाने, क्या बात, द से दाल,
1: द
3: से दाढ़ी, द से दाल।
5: सुनाओ ना कहानी।
3: सुनाता हूँ बच्चों, आगे की कहानी भी सुनाता हूँ। हाँ, एक था भालू, नाम था दामोदर। क्या नाम था?
1: दामोदर।
3: वो बहुत हट्टा कट्टा दमदार था।
1: दमदार।
3: हाँ शाबाश। और पता है वो क्या करता था? कसरत करता था। वो खूब कसरत करता था। दामोदर इतना दमदार था बच्चों कि 10-10 बंदरों को एक साथ अपनी पीठ पर बैठाकर चलता था।
1: इतना दमदार था।
3: हाँ बिल्कुल वंश, इतना दमदार।

0: दमदार था, तो द से
1: दमदार,
0: द से दमदार, द से दस। शाबाश, दामोदर अपने शरीर का पूरा ध्यान रखता, लेकिन बच्चों एक गंदी आदत थी उसकी। वो टॉफी चॉकलेट तो खाता था, पर कभी दांत साफ नहीं करता।
2: गंदा बच्चा था वो, गंदा बच्चा, बहुत ही
0: बच्चों। 10 बार शरबत पीता था वो, पर एक बार भी दूध नहीं पीता था।
2: दसे दूध,
0: शाबाश, दसे दूध, और दसे दस, दसे दलदल, दसे
3: दावत,
0: दसे दादी, दसे दादा,
3: दसे
0: दम। अच्छा बच्चों, जानते हो एक बार क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
0: दामोदर दादा ने रात को ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट खाई, और दांत साफ तो किए ही नहीं था उसने। तो पता है फिर क्या हुआ? अगले दिन सुबह उसे दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा। अरे मर गया,
4: अरे मर गया,
0: अरे मैं क्या करूं, अरे इतना दर्द। हाँ, तो दा से दर्द और दा से
4: दांत।
0: और बच्चों, तब दामोदर का दोस्त दीनू बंदर उसे डॉक्टर हाथी के पास ले गया। हाँ, तो दा से
4: दीनू,
0: दा से
4: दोस्त,
0: दा से
4: दीदी,
0: दा से दामोदर, दा से दादा।
5: या क्या, डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांत निकाल दिए।
3: अभी तो इसका एक दांत टूटा, एक दांत।
0: अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ।
3: क्या, उसे बहुत दर्द हुआ?
0: ये तो है, दर्द हुआ, लेकिन दांत वांत नहीं निकाले। डॉक्टर हाथी ने दामोदर के दांतों को जरा दबा कर देखा, कुछ इस तरह से।
6: हाँ, तो दामोदर अपना मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो। अरे दामोदर, थोड़ा और ज्यादा खोलो।
0: डॉक्टर, अब ये बताओ, क्या मेरे मुंह में बैठ के दांत देखोगे? हाँ, तो बच्चों, दा से दामोदर, दा से दबाकर,
4: दा से देखा,
0: देखा, बजाओ उसी बात पर ताली। शाबाश, बहुत खूब। फिर डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा के दांतों में दवा लगाई।
3: दा से दवाई,
0: दा से दवा, दा से देखा और दा से दबाकर। तब डॉक्टर हाथी बोला,
6: देखो दामोदर, तुम अपने शरीर का तो इतना ध्यान रखते हो, अपने दांतों की भी देखभाल कर लिया करो।
0: दासे
4: दर्द,
0: दासे दर्द, देखभाल, दासे दबाकर। शाबाश, आगे सुनो बच्चों। डॉक्टर हाथी बोला,
6: दामोदर, दांतों की देखभाल किया करो, उन्हें मजबूत बनाओ। देखो, अरे तुम्हारे दो दो दांतों में छेद हो गए हैं, छेद। अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ ही दिनों में हिलने लग जाएंगे।
0: हाँ, सड़ने लग जाएंगे, कीटाणु हो जाएंगे। बजाओ ताली, जोरदार ताली। हाँ, कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, बिल्कुल सही। डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा,
6: तुम रोज इनमें दातुन किया करो।
4: मेरे दादू भी दातुन करते हैं भैया।
0: अरे वाह, क्या बात।
4: दासे दातुन,
0: दासे दातुन, दासे दद्दू, दासे दादू,
3: दासे दादी। मेरे दादी नीम के दातुन करती है।
0: अरे वाह। तो डॉक्टर हाथी ने दामोदर दादा से कहा,
6: तुम नीम की दातुन किया करो। देखो, दिन में 10-10 बार शरबत पीते हो, हैं? दूध भी पिया करो। अरे भाई, दूध दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। टॉफी चॉकलेट खाया करते हो, हाँ? दाल और दही भी खाया करो।
4: दासे दाल,
0: दासे दाल,
3: दाल, दाल तो पीते हैं,
0: दाल तो पीते हैं,
3: दही,
0: दासे दही। अरे वाह वाह वाह
3: भैया, दही तो बहुत अच्छी होती है।
0: अच्छा, अरे वाह। दही तो बहुत अच्छी होती है भैया, ताली।
3: दाल भी।
0: हाँ हाँ तो बच्चों फिर

0: डॉक्टर हाथी बोला,
1: दामोदर देखो मैंने तुम्हारे दांतों में दवा लगा दी है, तुम्हारे दांतों का इलाज मैं करूंगा, जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन आगे से इनका ध्यान रखना, समझे?
2: समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया।
3: फिर उसके दांत नहीं निकालने पड़े?
0: अरे नहीं उसके दांत नहीं निकालने पड़े बच्चों, बल्कि दामोदर ने ये वादा किया कि अब वो रोज दिन में दो बार दातुन किया करेगा, सुबह शाम वो दातुन करना दोहराएगा।
3: मैं दो बार साफ करता हूँ।
0: अरे वाह क्या बात है,
3: दस दिन और दाग।
0: हाँ दस दिन, दस दाग, दस दर्द,
3: दस दाग,
4: दस
0: दासे
3: दवाई,
0: दासे दूध,
3: वाह,
0: दासे दोस्त, अरे वाह वाह वाह वाह। हाँ तो बच्चों जब दामोदर के दांतों का दर्द कम हुआ तो उसे समझ में आ गया कि डॉक्टर हाथी के सुंदर मजबूत और बड़े बड़े दांतों का राज क्या है। अच्छा बताओ क्या है राज?
3: हाथी दातुन करता है।
0: अरे वाह वाह वाह, दीवा ने बहुत अच्छा बताया।
3: वो दूध पीता है।
0: अरे वाह, वंश ने कितना अच्छा बताया, दूध भी पीता है,
3: दही खाता है।
0: वो दही खाता है, अरे वाह वाह, दूध भी पीता है, दही भी खाता है, इसीलिए तो उसके दांत बहुत मजबूत और शक्तिशाली भी हैं।
3: दांत भी साफ करता है।
0: दांत भी साफ करता है।
3: अब उसके दर्द नहीं होता।
0: उसके दांतों में दर्द भी नहीं होता। भाई वाह, बजाओ जोरदार ताली।
4: रात को भी ब्रश करता है।
0: हाँ
3: रात में भी करता है।
0: दिन में भी करता है, यानी सुबह शाम करता है।
3: और वो नहाता भी है।
5: हाथी दातुन करता है,
6: स्कूल जाने से पहले भी ब्रश करता है।
0: अरे बेटा स्कूल नहीं, क्लिनिक जाने से पहले, क्योंकि वो तो डॉक्टर है ना, यानी अपने दांतों का कितना ख्याल रखता है हाथी, तभी तो उसके इतने बड़े बड़े, इतने मजबूत, इतने साफ सुथरे,
3: शक्तिशाली
0: शक्तिशाली दांत है उसके, है कि नहीं? तो अब तुम भी अपने दांतों को ऐसे साफ रखोगे ना? अरे वाह, ब्रश करोगे ना रोज सुबह शाम? वाह वाह, तो तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो।
3: प्रॉमिस,
6: ये तो पहले से ही साफ है।
0: अरे वाह वाह वाह। हाँ तो बच्चों अब दामोदर को ये राज समझ में आ गया था और उसने भी अपने दांतों को स्वस्थ बना लिया। तो अब हुई कहानी खत्म। तो मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ।
3: Yeah!

0: से दामोदर के दांत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर नेहा वत्स रक्षित और बच्चे। ध्वनियांकन बटीलैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम द से दामोदर के दांत और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 6 मई से 10 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। साथ ही ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें। साथ ही खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी या थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बचाव

के लिए हेथोमेलाथियान 50 सीसी या डाइमेथोएट 30 सीसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो रही हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नीनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू, खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का प्रकोप अगर हो तो ऐसी स्थिति में शुरुआत से ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी की फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप स्थापित करें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच 35 मीटर की दूरी रखें और ध्यान दें, ट्रैप को कभी भी सीधे सूरज के किरणों में नहीं रखना चाहिए और साथ ही ट्रैप को आम की बहुत ही घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप बाग में साफ दिखाई देना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए कि ट्रैप को कहाँ बांधा गया है। ट्रैप को फल पकने से 60 दिन पहले बांधना चाहिए और 6 से 7 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से दें और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। और ध्यान रखें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं RJ अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।

जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय, और आज हम बात करेंगे जी हाँ अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।

0: इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
1: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
0: जी,
1: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
0: क्या किस
1: क्या करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
0: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
1: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हों, पत्तियाँ हों, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो तो उसका जो है, अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उस उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हो, अर्थात जमीन पे भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों उनकी छटाई भी आवश्यक है, ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
0: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
1: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत उसकी सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े, उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पर दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को 4 बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को 4 बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ, एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो 2 भाग हैं उसी में मुख्यतः आप

0: फर्टिलाइजर का ऊपर निवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाली का सफाई करके पेड़, जो भी बगीचे में आपके सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। ध्यान, इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो है, इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी, कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हम, कैसे करें?
0: कीट व्याधि का प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करें होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ, उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं।
1: जी,
0: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियाँ में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है।
1: जी,
0: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है, वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर, 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हो उसको काट कर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें, ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है, और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं, तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है, और

0: उसके उपचार के लिए उस वहाँ पे जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें। जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें। उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवंबर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है? तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है
1: जी।
0: और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है। उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है। आम में 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवंबर माह में करें
1: जी।
0: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डाईबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डाईबैक की समस्या में क्या होता है कि ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, आम की हो या लीची की हो समझ सूखने लगती हैं, तो आप इसके लिए क्या करें, प्रभावित शाखाओं को 5 से 10 सेंटीमीटर हरे भाग के साथ काट कर हटा दें। उसके बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इस तरह से जो है आप इस डाईबैक के रोग से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। लीची और आम में फूल आने तक, नवंबर मास के बाद से फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार

0: बच्चे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थालों को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद हो करके पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको कि मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें, और उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें, और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए, और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें, ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं, और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: पक्षियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।

0: और से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं 90.8 FM ग्रीन, जो कि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक खास विषय लेकर आए हैं। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती करना हमारे लिए आज कितना गुणकारी है, कितना लाभदायक है, और किसान भाइयों को इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK मौर्य। मैं आप सभी को बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट KVK सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बता दें हमारे श्रोताओं को।
3: आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जैसा कि हरित क्रांति जब आई, उस समय जो है हमारे पास अनाज का उत्पादन कम होता था, खाद्यान्न कम था, भुखमरी का नौबत था। उस समय हरित क्रांति के लिए हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्रभेद निकाले, उसके सिंचाई के साधन निकाले, उसमें बहुत सारा कीट प्रबंधन निकाले, उर्वरक प्रयोग किए, लेकिन उसका आज जो है अधाधुंध कृषि के कार्यों में जो है हम अगर बात करें तो कृषि रसायनों का अधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन वातावरण सब प्रदूषित होते जा रहा है। ज़मीन में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खेती इसलिए और आवश्यकता पड़ रही है कि अब जो रासायनिक खेती हो रही थी उसका उत्पादन अब सस्टेन हो गया, मतलब उसका उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, उसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो दोनों बिंदुओं को लेकर के एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी हो, हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और उत्पादन भी ना घटने पाए, तो इसीलिए प्राकृतिक खेती का जोर दिया जा रहा है।
1: जी, अभी तो आपने बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें प्राकृतिक खेती की, लेकिन अगर हम बात करें इससे लाभ की, तो क्या क्या लाभ मिलता है हमें
3: प्राकृतिक खेती से? जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि जो हमारी रासायनिक खेती हो रही थी, पहला महत्वपूर्ण लाभ तो यह है कि उसमें जो हमारे जो चाहे मानव हो या पशु हो, उससे बहुत सारी रोगों से ग्रसित, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम रासायनिक खेती करते हैं उसका अवयव जो है उस खाद्यान्न में भोजन में आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है, नंबर एक। नंबर दो है कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होते जा रहा है। नंबर तीन, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। नंबर चार, कि जो हमारा जरा सी पानी अगर बरसात होती है तो तुरंत वो पानी जो है खेतों से बहने लगता है, इसलिए मतलब बहने का कारण यह है कि खेत में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम रह गई है, पानी न बरसने पर भी उसमें जो है सूखा की नौबत तुरंत आ जाती है। इसीलिए जो है ये सारे लाभों को देखते हुए इसमें जो है ये पूरा किया जाता कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उत्पादन करने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाएगी, जो भी हमारा उत्पाद होगा गुणवत्तापूर्ण होगा, मिट्टी की दशा सुधार होगी। जैसे अगर मिट्टी की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन में बहुत बहुत तेज़ी से जो है उसमें सुधार होता है, जो कि और अन्य खेतियों में इसका इतना अच्छा लाभ नहीं है। रासायनिक खेती में तो प्राकृतिक तक ऑर्गेनिक कार्बन जो है सुधारने की कोई बात ही नहीं होती है। अगर हम बात थोड़ा अगर कर लें कि कार्बनिक खेती में, तो बहुत लंबा समय लगेगा कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए।
1: जी, ये तो लाभ की बातें होंगी, लेकिन अगर अंतर की बात करते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में, तो दोनों बिल्कुल सेम जैसा लगता है सर, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों?
3: आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहा। किसान भाई ये बड़ा कंफ्यूज करते होंगे, दोनों में बड़ा शंका रहता होगा कि प्राकृतिक खेती क्या है और हमारा जैविक खेती क्या है। जैविक खेती एक तो यह है कि जो है

0: उसमें हम भी जैविक खेती में भी हम कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, ना किसी भी रूप में हम ना कोई कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ना कोई फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और ना ही कोई निमाटोड को मारने के लिए कोई दवा का प्रयोग करते हैं। तो हम कहने तो किसी भी रूप में हम कोई उसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते, यहाँ तक कि उसमें जो हमारा जैविक खेती है उसमें भी कोई जो है हमारा जो हार्मोन है बाहर से वो भी यूज करने को नहीं कहा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है और प्राकृतिक खेती में भी लगभग यही है, लेकिन अंतर थोड़ा सा, जैसा कि अगर जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती में बाहर से ला करके कोई भी जीवाणु या विषाणु का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक खेती में बात करें तो उसमें हम लोग जो है ये एस्टोबैक्टर, PSB, राइजोबियम, एजोस्पाइलम या ब्लूग्रीन एल्गी, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कार्बनिक खेती में, जैविक खेती में इसका प्रयोग करने की अनुशंसा होती है। इसीलिए जो है ये इस दोनों में मेन अंतर है। दूसरा कि अगर हम प्राकृतिक खेती की अगर बात करें, कहा जाता है कि एक गाय से 30 एकड़ खेती की जा सकती है, लेकिन अगर हम एक एकड़ खेती जैविक तरीके से करते हैं, मान लीजिए अगर हम एक एकड़ गेहूं लगाए हैं तो औसतन एक एकड़ गेहूं के लिए हमको 40 से 50 किलो नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए लगभग हमको 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मवेशी गाय या भैंसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मवेशी एक दिन में 8 से 10 से 15 किलो तक ही गोबर दे सकते हैं। तो कहने के मतलब कि एक एकड़ खेती करने के लिए किसान भाई अपना परिवार पालेंगे कि उस खेती के लिए 20 से 25 जो है मवेशी पालेंगे। इसीलिए एक ऑप्शन तो ये देखा गया था कि रासायनिक खेती के बाद में एक जो है जैविक खेती के रूप में, लेकिन जैविक खेती भी जो है रासायनिक खेती से कम महंगा नहीं है, अगर देखा जाए उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसके जो भी उसके कुछ उत्पाद बाहर भी खरीदने पड़ते हैं, और इतना कंपोस्ट देना, वर्मी कंपोस्ट भी अगर बात करें तो ये भी जो है कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, जो किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रहा, जो बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो शुरुआती दौर में अगर एक पास आग पास एक ही गाय है तो 8-10 एकड़ आप खेती आराम कर लेंगे, लेकिन 4-5 सालों बाद आप एक ही गाय से आप जो है 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। इसलिए कि एक एकड़ खेती के लिए जो भी हम उसमें उसका जो प्राकृतिक उत्पाद बनाएंगे उसमें हमें 8-10 किलो गोबर, 8-10 किलो गौमूत्र की आवश्यकता होती है, जो औसतन एक गाय हमें प्रतिदिन देती है। और प्राकृतिक खेती में हम जब भी प्रयोग करेंगे देसी गाय का ही गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करेंगे, किसी भी कीमत पर भैंस का, भेड़ का, बकरी का या जर्सी गाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए कि जो हमारा देसी गाय है, देसी गाय में जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, 1 ग्राम में 300 से 400 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो है जो विदेशी गाय हैं, जो जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसमें 1 ग्राम गोबर में 75 से 80 हज़ार ही जो है कीटाणु या जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं 1 ग्राम के गोबर में। तो इसीलिए देसी गाय का ही गोबर ज़्यादा प्रयुक्त माना जाता है प्राकृतिक खेती में।
1: डॉक्टर साहब, अभी प्रमुख स्तंभ की बात करें तो प्राकृतिक खेती के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है?
0: अगर हम प्रमुख स्तंभ की बात करें जिस पे हमारा प्राकृतिक खेती जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3-4 मतलब कि कुछ प्रमुख स्तंभ हैं। नंबर एक हमारा जो बीजामृत है, बीजामृत हमारा यह है कि जैसे हम रासायनिक खेती में बीज उपचार करते हैं, उसी तरह से बीजामृत से हम जो है बीजामृत से बीज उपचार करेंगे। दूसरा है जीवामृत। जीवामृत जो है आप खेत के जमीन में, खेत में जो हमारे जीवाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जो केचुए हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि हमें प्राकृतिक खेती में जीवाणु सूक्ष्म कीटाणु या केचुए की खेती कही जाती है, इसलिए हमेशा हम लोग जो है उसके जो संख्या उसकी बढ़ाने की बात करते हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग जीवामृत का प्रयोग करते हैं, और उसके कुछ पोषक तत्व के लिए उससे भी संख्या बढ़ती है, हम घन जीवामृत

0: खरीद के प्रयोग करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो हमारा है मल्चिंग है। मल्चिंग में प्लास्टिक मल्चिंग का नहीं, फसल अवशेष का ही मल्चिंग उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसल अवशेष मल्चिंग हम इसलिए बात करते हैं कि जो है जो हमारे केचुए हैं, केचुए की संख्या बढ़ाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में जो केचुआ प्रयोग किया जाता है वो हमारा विदेशी केचुआ होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो अपने भारतीय मृदा में जो केचुआ पाए जाते हैं, जो देसी केचुए पाए जाते हैं, वो उनका जो संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और उसकी संख्या हमको बढ़ाना है। उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम जो है जीवामृत घनजीवामृत का प्रयोग करेंगे और मल्चिंग का जब प्रयोग करेंगे तो आप देखते होंगे केचुआ समान रूप से दिन में नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता है कि दिन में निकलेगा तो उसको डर रहता है कि कोई चिड़िया पक्षी या कोई कीट मकोड़े जो है उसको खा जाएंगे, इसीलिए वो रात निकलता है। अगर मल्चिंग अगर कर देंगे ऊपर से तो उसको लगेगा कि अभी अंधेरा है, रात है, का दिन को भी हम लोग रात में अगर बदल देंगे तो वो केचुआ जो है दिन रात दूना समय में काम करके आपके खेत में 10 से 15 फीट तक जो है वो आने जाने का काम करेगा। अपने भोजन के तलाश में ऊपर नीचे आया जाएगा, जिससे मिट्टी की आपकी जुताई हो जाएगी और उससे पानी की रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएंगे और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी। साथ साथ जो है वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ हो जाएगा और उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा। और अगला जो हमारा स्तंभ है वापसा। वापसा मतलब कि जल प्रबंधन। कभी भी जो खेत में हमको ढाला पानी नहीं देना है, सतही सिंचाई नहीं करना है, उसमें पानी भर के नहीं रखना है। इसीलिए उसको जो है हमें जब भी वो प्राकृतिक खेती में मेड़ पानी देना है या कम से कम पानी देना है। पानी पौधों को पानी नहीं चाहिए, पौधों को नमी चाहिए। जैसा कि अगर आप जो है आलू की खेती करते हैं या गोभी बैंगन टमाटर खेती करते हैं, उसमें अगर मेड़ नहीं बनाते, अगर सीधा पानी देते हैं तो पौधा आपकी फसल खराब होती है। वही सिद्धांत को किसान भाई मानते हुए सभी फसल में जो पौधे को नमी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने पर वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी होगी और जीवाणु जो कीटाणु है वो मर जाएंगे और उससे जो है उत्पादन भी आपका घट जाएगा। तो ये आपका जो है ये आप कर सकते हैं। तीसरा और जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु उसका स्तंभ है वो है इंटरक्रॉपिंग, सस्य फसलें। प्राकृतिक खेती में हमेशा एक फसल ना उगा करके दो या तीन फसल उगाना चाहिए। अपनी फसल को किसान भाई जोखिम में कभी ना लें, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। साथ में हमको दो या तीन फसल को लगाना चाहिए, क्योंकि दो फसल लगाने से एक फसल किन्हीं कारणों से अगर खराब हो गई तो दूसरी फसल हमारी बच जाएगी। और इसमें यह भी है कि अगर कोई अगर रोग कीट लगता है एक फसल पर तो इस तरह से हमको चयन करना चाहिए कि जो दूसरी फसल उसके साथ चयन करें मुख्य फसल के साथ में, कि उसका रोग कीट उस पर चला जाए और फसल को दूसरी निकल दूसरी फसल भी दोनों फसल से हम अच्छी हमें आमदनी प्राप्त हो जाए। तो ये तरह के बहुत सारे जो है इसके स्तंभ है घटक हैं जिससे हम अपने खेती को उसमें प्रयोग प्राकृतिक खेती में प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। और अगर प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो बीज उपचार इसमें कैसे करें?
0: बीज उपचार जैसा कि पहले बात किए थे कि बीज उपचार के लिए हम लोग बीजामृत का प्रयोग करते हैं। जैसा कि रासायनिक खेती में हम लोग जो है कार्बन डाइजिम हुआ, क्लोरोपायरीफास हुआ, तरह तरह के जो है केमिकल जहर महोस हम लोग उपचार करते थे, तो यहाँ केमिकल प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे आपके बीज को उसका अंकुरण अच्छा हो, कोई शुरुआत में कीड़े मकोड़े ना काटें, इन सबको ध्यान रखते हुए एक समान जनरेशन हो, हमारा पौधा जो भी जमे वो जो है बलशाली हो, इसको देखते हुए हम लोग इसका भी बीज उपचार करते हैं, जिसके लिए बीजामृत प्रयोग करते हैं। और बीजामृत बनाने के लिए हमें जो है कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, तो किसान भाई अगर अपना नोट करना चाहें, कलम रखे हो, कलम कागज कलम रखे हो तो उसको नोट भी कर सकते हैं। उसके लिए प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान है, कोई भी आपको बनाने कोई भी प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जो भी उसमें अवयव हैं उसका उसके प्रयोग के लिए देसी गाय का ही गोबर या गौमूत्र प्रयोग होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा प्राकृतिक खेती में कहा जाता है कि मिट्टी प्रयोग करना है, तो मिट्टी के लिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी ले रहे हैं किसी पेड़ के नीचे की हो, जहाँ पर वनस्पतियाँ सड़ कर करके वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ गई हो और वहाँ कोई केमिकल कभी भी मतलब काफ़ी दिनों से प्रयोग ना हुआ हो, ताकि वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव

0: सूक्ष्मजीवों की संख्या ज़्यादा हो। मिट्टी इसलिए लेते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्मजीव जाएंगे और हम सूक्ष्म उसी मिट्टी में जो है मिट्टी के भरोसे जो है उस मिट्टी के माध्यम से जो है हम चाहे बीजामृत से या घनजीवामृत से या जीवामृत से जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये किसान भाई विशेष ध्यान दें, जो मिट्टी ले उसमें जीवाणु, ये निश्चित माने कि उसमें जीवाणु जो हमारे जिंदा है, और ऐसी जगह से ले जहाँ पर कोई केमिकल ना पड़ा हो लंबे समय से। तो मिट्टी लेने में ये ध्यान रखेंगे किसान भाई हमारे। इसके लिए जो हमारे जो पीपल है, बरगद है, या बांसकोट के जमीन का है, या कहीं कोई रास्ता है जहाँ कोई जो है केमिकल नहीं पड़ा है, रास्ता की मिट्टी ले लें। उसके अलावा जो हमारा मेड़ चौड़ा मेड़ अभी से मिट्टी ले लेंगे, वहाँ वनस्पतियाँ लेकिन सड़ती हों, ये ध्यान रखें। तो मिट्टी लेना है तो इसके लिए बीजा से हमको क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो उसको नोट कर लें। गोबर 5 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, चूना बुझा हुआ चूना 50 ग्राम और पानी जो है 20 लीटर हो, और उसमें जो 50 ग्राम 102 मिट्टी जो है हमें मिट्टी भी होना चाहिए लगभग 150 से 200 ग्राम। इस सबको एक प्लास्टिक के डिब्बा में मिला करके इसको रख दें, और इसको रख करके 12 से 14 घंटा इसको हिला घुला के रख दें। उसके बाद इसको जो है हम जब ये 10-12-24 घंटे बाद हम इसको जो है 100 किलो बीज के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बीज पे मिला करके छाया में, जैसे उसमें सुखाते हैं उसमें छाया में सुखा करके उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हुआ बीजामृत, जिससे हम अपना बीज उपचार कर सकते हैं।
1: उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम।

का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त अनु। और एक बार फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक उपयोगी बातें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस महीने में हम मना रहे हैं पोषण माह, यानी कि सितंबर माह को हम मना रहे हैं पोषण माह में। और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इस पोषण माह में हम आपको उन चीज़ों से, उन सारी बातों से अवगत करवाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको पोषण देंगे। और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए थे मशरूम की बातें, और अब बारी आती है सहजन की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ किसान भाइयों, सहजन जो है कुपोषण दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप इसे अपने दिनचर्या, अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज यही विषय है हमारा, पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपनिदेशक प्रशिक्षण एवं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अभय मानकर सर। सर आपका स्वागत है हमारे साथ।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि सहजन की उपयोगिता के बारे में आज हम जानेंगे, साथ ही उसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा विषय है उसी के बारे में बताएं, यानी कि पोषण सुरक्षा, खासतौर पर पोषण पर हम नज़र डालेंगे और इसी से हम इसे आज कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि इसी से जोड़ेंगे हम पोषण के साथ। तो पोषण सुरक्षा हेतु सहजन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: किसान भाई, सहजन के पोषक तत्व के बारे में हम लोग सभी परिचित हैं। सहजन को आमतौर पर ड्रमस्टिक पेड़ या हॉर्स राडिश पेड़ के रूप में जाना जाता है।
0: जी,
1: इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। सहजन वास्तव में एक चमत्कारिक पौधा है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर मानव स्वास्थ्य के लिए एक दिव्य उपहार है।
0: जी,
1: सहजन कुपोषण से बचाव हेतु एक प्रभावी खाद्य है। सहजन को ऐसी भूमि में उगाया जाता है जहां शायद ही कोई पौधा उग सकता है। वास्तव में विपरीत मौसम और यहाँ के सूखे से बचने की अविश्वसनीय क्षमता के कारण इसका एक प्रचलित नाम है कभी न मरने वाला पौधा।
0: अच्छा।
1: भारत सहजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्यों में सबसे प्रमुख आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है।
0: जी।
1: सहजन में विकासशील देशों के लोगों के पोषण सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा और ग्रामीण विकास की क्षमता है।
0: जी।
1: इसके पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग कुपोषण, भूखमरी, साथ ही साथ दुनिया भर के कई बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
0: जी।
1: साथ ही यह पशु चारा के लिए भी काफी उपयोगी है। वास्तव में सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर की तुलना में 10 गुना अधिक विटामिन ए, दूध की तुलना में 17 गुना अधिक कैल्शियम, दही की तुलना में 9 गुना अधिक प्रोटीन, केले की तुलना में 15 गुना अधिक पोटेशियम और 25 गुना अधिक आयरन पाया जाता है।
0: जी।
1: गर्भावस्था के दौरान लगभग 6 चम्मच सहजन पत्ते के पाउडर एक महिला के दैनिक आयरन और कैल्शियम आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
0: तो कुल मिलाकर कहें तो सहजन कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वोपरि है, एक पूरक आहार है। आप इसे सब्जियों के तौर पर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते। वैसे इसके बहुत सारे जो यूं कहें कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी बनाए जाते हैं।

0: एंटी न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। सहजन की पत्तियां कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और तांबा जैसे खनिजों से समृद्ध है।
1: जी,
0: विटामिन ए के बीटा कैरोटीन, विटामिन बी जैसे फोलिक एसिड, पैराडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी सहजन में मौजूद होते हैं।
1: जी,
0: सहजन पत्तियों में कैलोरी कम मात्रा में होता है जिसके कारण यह मोटापे को कम करने हेतु उपयोगी है। सहजन में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें कैल्शियम मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक माना जाता है।
1: अच्छा,
0: एनीमिया के इलाज में सहजन पाउडर आयरन की गोलियों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यूफालिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ओलेइक एसिड, इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
1: अच्छा,
0: शोध से पता चलता है कि सहजन बीज के तेल में लगभग 76% प्यूफालिनोलिक एसिड होता है जो इसे जैतून का तेल के विकल्प के उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। अधिकांश पौधे संसाधित होने पर अपनी पोषक गुणों को खो देते हैं, जबकि कच्चे, अंकुरित और किण्वित सहजन बीज के आटे में यह पाया गया है कि इसमें फाइटोकेमिकल्स और एमाइनो एसिड सामग्री किण्वन और अंकुरण में भी अधिकतम थी। सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है जो आसानी से पच जाता है।
1: अच्छा।
0: सहजन में 40 से अधिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नुकसान के बिना सहजन को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। निर्जलीकरण द्वारा सहजन के पौष्टिक मूल्य को बरकरार रखते हुए इसे संरक्षित किया जा सकता है। सहजन का अधिक उपयोग शरीर में उच्च आयरन का संचय का कारण बन सकता है। शरीर में अधिक आयरन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेमेक्रोटोमाइसिस रोग के कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन 70 ग्राम सहजन की खुराक का सुझाव दिया जाता है।
1: जी।
0: 300 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग के कारण सहजन को रामबाण के रूप में जाना जाता है। भारतीयों द्वारा सहजन का उपयोग लंबे समय से हर्बल दवा के रूप में किया जाता रहा है। सहजन के बीज का उपयोग बेन नामक तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह तेल ओलाइक एसिड, टोकोफेरॉल और स्टेरॉल से समृद्ध होता है। बेन तेल खाना पकाने के लिए जैतून तेल के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग इत्र, लुब्रिकेंट्स आदि के लिए भी होता है। सहजन बीज एक प्राकृतिक कोगुलेंट होता है जिसमें एक केटायनिक प्रोटीन पाया जाता है जो अशुद्ध पानी को साफ कर सकता है। अन्य कोगुलेंट जैसे एलम, सैक्रिम कार्बन और फेरिक क्लोराइड महंगा और दुर्लभ होता है, जिसके कारण सहजन बीजों का यह गुण इस पर अधिक शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है। सहजन बीज में पानी से भरी धातुओं जैसे लीड, तांबे, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक को खत्म करने की क्षमता होती है। इसके बीज के खल्ली में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो जीवाणु विकास को रोकते हैं और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने में सहायता करते हैं। सहजन बीजों के इन गुणों और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण बीमारियों को ठीक करने में और ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार कर सकने में सहायक हो सकती है।
1: अच्छा।
0: सहजन बीज बायोडीजल के स्रोत भी होते हैं तथा इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों और इसके बीज केक का प्रयोग हरी खाद या उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक गुणों के कारण सहजन के फूलों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसके जड़ की छाल में औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग अनिद्रा, आँखों और दिल की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके पत्तियों में जेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो फसल की पैदावार में 25-30% तक की वृद्धि कर सकती है। पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और कुपोषण से निपटने के लिए सहजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सम्मिलित करना काफ़ी लाभदायक पाया गया है।
2: तो ये आपने जाना कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यहाँ पर जानते हैं हम कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहजन के विभिन्न भागों के बारे में आपने बताया कि किस रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताएं कि सहजन के विभिन्न भाग जो होते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और आपने हर्बल दवा की बात भी की है, तो हम इसके औषधीय उपयोग के बारे में भी जानना चाहेंगे।

0: किसान भाई, हम जानते हैं सहजन के विभिन्न भाग काफी में काफी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, और उसका जो औषधीय गुण है, सबसे हम पहले बात करते हैं पत्ती के बारे में। सहजन की पत्तियों में काफी औषधीय गुण होता है जो हमारे अस्थमा, हाइपरग्लिसीमिया, डिप्सिलीमेडिया, फ्लू, दिल की बीमारी, सिफिलिस, मलेरिया, निमोनिया, दस्त, सिरदर्द, स्कर्वी, त्वचा रोग, ब्रोंकाइटिस, आंख और कान का संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। साथ ही रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को भी यह काफ़ी नियंत्रित करता है। एक और एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बायोटिक और एंटी एथेरोक्लोरिटिक एजेंट के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जहाँ तक पत्ती में पोषक तत्व की बात है, सहजन की पत्तियों में फाइबर, वसा, प्रोटीन और खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, आयरन और सल्फर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी वन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में इसमें की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सहजन के बीज में।
1: अच्छा,
0: तो सहजन के बीज का भी काफ़ी औषधीय महत्व है। सहजन के बीज में हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रॉन्स की बीमारी, एंटी हर्ब्स, सिंप्लेक्स वायरस, गठिया इत्यादि इलाज में मददगार होते हैं। गठिया, क्रैम्प, मिर्गी और यौन संक्रमित बीमारियों में एंटी माइक्रोबियल और सूजन रोधी के रूप में भी यह कार्य कर सकता है। बीज की अगर पोषक तत्व के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें ओलिक एसिड, जिससे बेन ऑयल भी बनता है, इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक जिसे टेरिगोस्पर्मिक कहा जाता है, और एंटी फैटी एसिड, लिनोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, बिहेनिक एसिड, फाइटोकेमिकल्स आदि इसमें पाए जाते हैं। अब जड़ के की चर्चा हम करते हैं। जड़ के छाल में का जो इसका भी काफ़ी औषधीय महत्व है। जड़ की छाल जो होता है उसमें कार्डियक उत्तेजक, एंटी अल्सर और सूजन रोधी या जलन रोधी के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एलेलोइड, मॉर्फिन, मोरिंगिनिन, खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम सहजन के फूल का चर्चा करते हैं। इसके हम सभी जानते हैं कि इसके फूल का भी कई रूप में व्यवहार करते हैं। इसके जो औषधीय गुण है, सहजन के फूल में मुख्य रूप से हाइपो कोलेस्ट्रोलिक के रूप में यह कार्य करता है, और यह गठिया में बहुत ही कारगर काम करता है। मूत्र संबंधी समस्याओं और सर्दी के इलाज में भी यह काफ़ी सहायक होता है।
1: अच्छा,
0: फूल के में जो पोषक तत्व होता है इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, पोटेशियम और एमिनो एसिड पाया जाता है। अब इसके फल का, जिसे हम लोग सब्जी के रूप में ज़्यादा यूज उपयोग में लाते हैं, इसका औषधि के रूप में जो होता है, इसके फली से दस्त, यकृत, स्प्लीन की समस्याओं और जोड़ों के दर्द में ये काफ़ी कारगर होता है। पोषक तत्व जो इसके फली में होता है उसमें फाइबर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड भी इसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
1: आपने पहले भी बताया था कि ये इसकी उपयोगिता के बारे में हम जान रहे थे और महत्व के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि कुपोषण को दूर करने में और साथ ही बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार मदद करता है कुपोषण को दूर करने में और बीमारियों से कैसे लड़ता है ये सहजन?
0: सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे गैर विषाक्त और आसानी से पचाने में ये सहायक होता है। सहजन में इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में समायोजित होने और पचाने में सहायक होने के कारण काफी उपयोगी होता है।
1: अच्छा,
0: ये इसीलिए सहजन को चमत्कारी पेड़ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारे जीवन को बचाने की क्षमता है
1: बहुत ज्यादा।
0: शरीर में पोषक तत्वों की मौजूदगी आंतरिक रूप से बीमारी को

0: निकलने और साथ ही साथ बीमारी से लड़ने में सहायक होती है। शरीर और इसके अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिसाल के तौर पर कई बच्चे रतौंधी और अन्य आँखों की बीमारियों और परेशानियों से पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल पाता है। सहजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है जिससे इसे भोजन में सम्मिलित कर उक्त बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विटामिन ए के की चर्चा अगर हम करें तो सहजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होने के कारण ये कई रोगों के इलाज में सहायक होता है, जैसे अंधापन, इसे रतौंधी और पूर्ण अंधापन के रूप में भी जानते हैं, उसमें काफ़ी कारगर होता है। मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था और स्तनपान, कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण से लड़ने की असमर्थता में ये विटामिन ए के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विटामिन ए की कमी से दुनिया में भर में लगभग 100 मिलियन से अधिक बच्चे अंधे होते हैं। विडम्बना यह है कि कई देशों में जहाँ यह एक समस्या है वहीं सहजन प्रायः स्वतः विकसित हो जाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसे जंगली पेड़ समझकर इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों के भोजन में सहजन को सम्मिलित कर उन्हें अंधेपन की समस्या से बचाया जा सकता है। सहजन में आयरन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों के इलाज में कारगर होता है। मुख्य रूप से जो आयरन की उपयोगिता है जिसे एनीमिया, थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीलापन पड़ना, जीभ में छाले होना, नाखून का झड़ना, भूख में कमी, विशेष रूप से बच्चों में और सिरदर्द की समस्या में इसका काफ़ी उपयोग कारगर
1: जी।
0: सहजन में कैल्शियम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों में सहायक के इलाज में सहायक होता है, खास करके एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी कमजोरी के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों की समस्या, तंत्रिका की समस्या, दिल की असामान्य धड़कन और कार्य करने की इफिशेंसी को भी कैल्शियम बढ़ाता है। अब हम प्रोटीन की चर्चा करें जो अमीनो एसिड के रूप में पाया जाता है सहजन में, यह काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है और इसका खास करके जो ये फ़ायदा पहुंचाता है एडिमा, त्वचा के नीचे तरल पदार्थ का संग्रह होता है जो आमतौर पर पैरों और एड़ियों को प्रभावित करता है लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी यह हो सकता है।
1: अच्छा,
0: एडिमा वजन घटाने में इसका भी काफ़ी उपयोग है, पतले या रूखे बाल या बालों के झड़ने में इसका काफ़ी कारगर उपयोग है, हाथों और पैरों की उंगली के नाखूनों में रीज या गहरी रेखाएं उभर आती हैं, त्वचा की समस्या जिसमें यह सूर्य की गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, शरीर और बालों में कम पिगमेंटेशन होता है इसको सहायक होता है, त्वचा पर चकते या सूखापन होता है, कमजोरी और सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन, बेडसोर या अन्य त्वचा अल्सर, अनिद्रा, सिरदर्द, गंभीर अवसाद, चिंता, पेट दर्द आदि में ये काफ़ी फायदेमंद होता है
1: जी।
0: इसमें खास करके सहजन में विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमें स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून अक्सर बहने की समस्या आती है उसमें काफ़ी कारगर इसका फायदा होता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कमजोरी, नाक और मसूड़ों में सूजन और खून बहना आदि में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है।
1: विस्तार से आपने बताया हमें कि कौन कौन बीमारियों से लड़ने में सहायक है, साथ ही इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से जो भी चीज़ें पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं जिससे कि ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो सर कुल मिलाकर कहें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है हमारे लिए, तो आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
0: सहजन को तो हम लोग अभी चर्चा किए कि इसे रामबाण के रूप में जाना जाता है और इसका जितना औषधीय या पौष्टिकता है इससे हम सभी परिचित हैं, फिर भी इसमें जो कुछ तत्व जो मौजूद होता है खास करके एंटीऑक्सीडेंट, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर, ट्यूमर और बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में ये काफ़ी सहायक होता
1: अच्छा।
0: है। यह एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे डायबिटीज के रूप में भी हम जानते हैं, उच्च सीरम या रक्त कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यकृत और गुर्दे की समस्याओं को दूर करता है। इसमें मौजूद

0: सूजन रोधी गुणों के कारण जो जोड़ों में दर्द, गठिया, एनीमिया और लूपस को दूर करने में सहायक है। यह कोलाइटिस, दस्त, पेट फूलना जैसे गैस की बीमारी में जो होता है, अल्सर और पाचन विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। एंटी बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल के रूप में यह काफ़ी कारगर होता है। यह मूत्र संक्रमण जो इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड, सिफिलिस, दंत क्षय, कबक, सामान्य जुकाम और HIV में भी के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावकारी है। एक जहर रोधी के रूप में यह सांप और बिच्छू काटने के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी पाया गया है। यह सिरदर्द, माइग्रेन और मिर्गी सहित तंत्रिका विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी।
1: आपने अभी कहा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और साथ ही आपने कहा कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं उसे भी दूर करने में सहायक होता है, तो कहने के इसमें एंटी एजिंग कंपाउंड भी पाए जाते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं।
0: सहजन में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग गैलोर के रूप में इनके नाम से जानते हैं। सहजन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। सहजन पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स से समृद्ध है। सहजन पत्तियों में मौजूदा बीटा कैरोटीन भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक संयोजन एंटीऑक्सीडेंट कैस्केड तंत्र के कारण तुलनात्मक रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि सहजन चाय किसी अन्य हर्बल चाय, यहाँ तक कि एक हरी चाय जिसे ग्रीन टी के रूप में हम जानते हैं, कि तुलना में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक प्रभावी स्रोत के रूप में कार्य करती है। सहजन का एक दूसरा भी यह है, ये एक एंटी एजिंग कंपाउंड के रूप में, जिसे हम जेटिन के नाम से जानते हैं, ये एक हार्मोन होता है। यह पौध विकास के हार्मोन परिवार का सदस्य है, जिसे साइटोकाइनिन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: जेटिन की खोज पहली बार अपरिपक्व मकई कर्नेल की जीन से की गई थी। जेटिन मानव त्वचा पर एंटी एजिंग से प्रभावी है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है, जो कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के खिलाफ विभाजित और संरक्षित करने में मदद करते हैं। जेटिन सभी साइटोकाइनिन में सबसे शक्तिशाली है। 2004 के डेनिस अध्ययन के अनुसार जेटिन छोटे सेल आकार को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार पाया गया है, जो अधिक त्वचा, युवा त्वचा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है। यह सेल की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को भी प्रभावित करता है और सेल में माइक्रोमोल्यूलर क्षति को रोकता है। सहजन में न केवल किसी अन्य ज्ञात पौधे की तुलना में हजारों गुना अधिक जेटिन होता है, बल्कि यह कई पोषक गुणों से भरपूर पौधा भी है, जिसमें 90 एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इफ्लेमेटीज सहित 90 पौष्टिक यौगिक पाया जाता है।
1: तो ये तो बातें हुई कि मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे ये लाभप्रद है, और हमने ये भी सुना है कि ये पौधे की वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा।
0: किसान भाई, हम लोग तो अभी उसके औषधीय गुण या हम लोगों के लिए किस
1: मानव
0: हाँ उसमें क्या उपयोग होता है, लेकिन इसका सहजन का काफ़ी जो हमारे पौधा की वृद्धि के रूप में भी, खास करके इसमें एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, जिसे जीटिन के नाम से जानते हैं, ये इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे और फसल में अधिक उपज पैदा करने के लिए जिम्मेवार बताया गया या काफ़ी सहयोगी होता है। सहजन पत्ते का छिड़काव पौधे की वृद्धि के लिए और इससे बनी हरी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जा सकता है। सहजन पत्ती में पौधे के विकास हेतु हार्मोन पाए जाते हैं। फुगनी के अनुसार ताज़ा सहजन पत्तियों के रस का उपयोग पौधों के विकास हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए प्रभावी है। इससे किसी भी फसल का उत्पादन लगभग 25-30% बढ़ सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे प्याज, काली मिर्च, मक्का, ज्वार, मिर्च, खरबूजा इत्यादि। जेटिन एक प्लांट हार्मोन है, जो साइटोकाइनिन समूह के सक्रिय पदार्थों में से एक है। उन्नत कृषि व्यवहार में इसका छिड़काव अन्य उर्वरकों और पानी के साथ किया जाना चाहिए।
1: जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि इसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है।

0: आता है, तो इसके चमत्कार में एक और गुण शामिल है, वो है ये पानी को शुद्ध करता है और साफ करता है। तो ये हमें बताएं कि सहजन का उपयोग पानी को शुद्ध और साफ करने में कैसे किया जाता है।
1: हाँ किसान भाई, ये काफी प्रचलित रहा है, चूंकि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज लोग पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया करते थे।
0: अच्छा।
1: और खास करके ग्रामीण महिलाओं द्वारा अत्यधिक गंदे पानी को साफ करने के लिए सूखी सहजन के बीज का उपयोग फिटकरी के स्थान पर किया करते थे।
0: अच्छा।
1: जो रिपोर्टेड भी है, सहजन की ताज़ा पत्तियों को एक सब्जी, जड़ों को औषधीय प्रयोजनों के लिए और शाखाओं का उपयोग बाड़ लगाने में भी किया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस तरह से हम देखते हैं कि सहजन का काफ़ी आज के दैनिक जीवन में खास करके स्वास्थ्य के लिए इसका काफी उपयोग है और इसका औषधीय महत्व।
0: तो आज आपने जाना सहजन के बारे में, और हम आपके लिए विषय लेकर आए थे पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। हमारे साथ डॉक्टर अभय मानकर थे और उन्होंने आपको विस्तार से बताया क्या इसकी महत्व के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, कुपोषण को कैसे दूर करता है ये, साथ ही इसके क्या क्या गुण हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मालूम हुई। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा, और अगले दिन आप सभी के साथ हम और एक विषय लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध ना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल ऐसा सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है

और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की जरूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के जमाने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है, है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफी ज्यादा मदद करती है, काफी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना।

इसलिए नहाइए, पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है, आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले, उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ बहाना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स है, आ तो रहे हैं ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा। लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं। होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप

0: सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर, और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब हैं, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं, और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन,

आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है तो उनके पोषक तत्वों का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं ये?
6: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ, और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों भाइयों, आप जानते होंगे जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वो फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में, अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व तो बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपना ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है, वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है

0: जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य का प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं, इसकी ये कमी होगी नाइट्रोजन की कमी से ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन, वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और अब बात करेंगे हम फास्फोरस की, फास्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है, मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फास्फोरस है वो अगर फास्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फास्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फास्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फास्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों एंड बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, इसको मुख्य पोषक तत्व ना है ठीक है नहीं है, बहुत बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते हैं, अपना उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपना जीवन चक्र अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन, ये पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में तो ये जो हमारे कुछ इंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्व की कमी के कारण। और यह जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी एंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
1: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
0: जी जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं ठीक है उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है उसका भी। जैसे मैंने बताया जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है, अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों भाइयों आपको ये

0: ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व हैं आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो हम मैं बोल रही हूँ, ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका है, ये पोषक तत्व है पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है, और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है, जो उनके आनुवंशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व है हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फॉस्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें, तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारे कुछ एरिया है, क्षेत्र है वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूंगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएं और जो गुणवत्ता जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों तक हम नहीं उगाना चाहिए, हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो लेक जो होती है ना ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड हाई लैंड मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको कारण बताना चाहूँगी, अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं, जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे

पानी में, हमारे वर्षा के पानी में घुलकर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है, तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं, जो अभी जो हम तकनीक को

0: का बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है, वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा। तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें, कोई भी हमारा मौसम है हमारा सीजन हो, और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, जिसे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या न डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उसमें बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पे जाते हैं तो जितने मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120/60/40 मीन्स NPK डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें, आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, DAP रख लिया और MOP रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटास रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज़्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज़्यादा डालने से चाहे वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगी, मेरी उपज बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हमें कुछ आय में आपको मुनाफा होगा। लेकिन क्या होता है, पौधों को जितना उनको उर्वरक जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना, कभी कभी होता है हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज्यादा खाते तो आपको भी ज्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पे क्या उसका हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे, ज़्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सभी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूं, pH, आप जानते हैं pH हम करते हैं, जैसा आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका pH का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारा कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर pH का लेवल आप देखेंगे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप देखे होंगे pH का लेवल ज़्यादा होने से वहाँ पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों कि इसकी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, बस लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारा मृदा की उर्वरता चली जा रही है, मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होता तो पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी, अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है फसल

के जो हमारे ऊपर जाते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज़ का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सबसे जो आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं उसको, उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं, चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियां जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया, जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना हम, ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं, और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण वो उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहां भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे इसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है, और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ नाइट्रोजन कमी के लिए, ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्रह्मासी है, होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपके नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है, ये जो हमारे हैं जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है इनका नाम है गोल्ड हेम्प, आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है कवर क्रॉप है, ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें, और इसमें क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं, अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आप जैसे यूरिया करते हैं जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं, जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है उसके जो हमारा जड़ होता है ना उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर डाल रहे हो, 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में और उस कमी को वहाँ तक
उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर अपने

120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतनी डालना ज़्यादा उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपनाएं, उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का ही दलहनी पौधे का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें। और यही है इसके लिए, और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के जो भी आपके फसल के कट्टे छिट्टे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक खाद हमारे से जैविक खाद है हमारे जैविक उर्वरक जो है, वो आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में हमारे मट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो उसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट्स है, क्या करता है ये फास्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए, और फास्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने डीएपी का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है, और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही है तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा, बोन मील में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फॉस्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फॉस्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको भी क्या करता है एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए, तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है ये जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं गोबर खाद में, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहां फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद, जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से, इनके ट्यूब से, इनके फली से क्या करना है केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में, ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है, और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी।

0: फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी, तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है। तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है, तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है, और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की और कमी आ रही है, तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक, जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है, उसका फोलियर स्प्रे करते हैं। मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोलकर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत, जैविक प्रबंधन करें। अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं, तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाइए। हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओ, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी,

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब आप क्यों

0: परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
0: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
0: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
0: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूँ माँ।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी माँ, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था। जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
5: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
6: यस सर।

0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: ठीक है जी।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी

0: पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो। उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको। क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट

0: के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप

लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए खास विषय, नए बागों की स्थापना। और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और नए बाग लगाने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, उनके बारे में कृपया बताएं।

धन्यवाद अनु। नए बाग लगाने से पहले किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से हम पौधा लेंगे वो पौधशाला विश्वसनीय होना चाहिए, या नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई सरकारी नर्सरी पौधशाला से ही पौधा लें एवं स्वस्थ पौधा होना चाहिए। अगर अधिक संख्या में पौधा को लगाना है, अधिक

0: जो विश्वसनीय पौधशाला है उसको पहले से अपना ऑर्डर दे देना चाहिए और पौधा को बुक करा लेना चाहिए। इससे है कि समय पर उनको अच्छा पौधा मिल जाएगा। यह भी देखना चाहिए कि पौधों में जड़ें अच्छी है या नहीं है। पौधों की जो मिट्टी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, या अगर वो टूट जाता है तो उसमें उससे क्या होता है कि जड़ डिस्टर्ब हो जाता है, जड़ भी साथ साथ टूट जाता है। तो लगाने अगर उस वैसा पौधा लगाएंगे किसान भाई तो हो सकता है कि वो सूख जाए, तो इन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए। और जिन भूमि में जल निकास की उचित सुविधा नहीं है उस भूमि में नींबू वर्गीय फल, पपीता एवं केला कदापि नहीं लगाना चाहिए। और किसान भाई को गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढा ठीक से भरा जाए, गड्ढे को कम से कम भूमि तल से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरना चाहिए। और जब पौधा को लगा देते हैं तो उसको अच्छी तरह से दबा देना चाहिए पिंडी को। ये सब बातें शुरू में किसान भाई को ध्यान देना चाहिए
1: जी। और अगर नए बाग हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या जलवायु, मिट्टी और स्थान पर ध्यान देना चाहिए?
0: हाँ, जलवायु होता क्या है कि सब फल वृक्ष सभी जलवायु में अच्छा नहीं करता है, तो किसान भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है, अच्छा का मतलब कि जो उपज अच्छा दे और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है उसी जलवायु में उसी फल वृक्ष को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से लगा दिए, कोई भी फल वृक्ष लगा दिए, यहाँ होगा नहीं, तो फिर वैसे में किसान भाई को लॉस हो सकता है। अब स्थान की बात करें कि तो अगर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई, बहुत बड़ा रकबा में कर रहे हैं, तो उनको ये देखना है कि ये जो जगह है वहाँ अप्रोच है कि नहीं, मतलब कि यातायात की सुविधा है कि नहीं, रोड है कि नहीं, क्योंकि उनको तैयार करेंगे, फसल तैयार होगा तो उनको सेल आउट भी करना है। तो अधिक रकबा में लगा रहे हैं तो वहाँ ट्रक पहुँचना चाहिए तभी ठीक रहेगा, या फिर उनका जो यंत्र है, ट्रैक्टर है, दवाई लाने की सुविधा है, तो सब रोड पर होना चाहिए वो जगह। और मिट्टी की बात करें तो दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी में जिसका पीएच मान 5.5 एवं 7.5 के बीच रहता है वो फल वृक्ष के लिए अच्छा माना जाता है। और है कि बाग में पानी के निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। उचित प्रबंध नहीं होने से तो हम पहले भी बताए हैं कि पपीता, नींबू वर्गीय फल ये सब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कुछ है कि जैसे कि लवणीय एवं क्षारीय भूमि को कुछ फल वृक्ष बर्दाश्त कर लेता है, तो वो फल वृक्ष हैं जैसे कि बेर है, अमरूद है, आंवला है, बेल है, फालसा है, ये सब लवणीय मिट्टी को कुछ हद तक सहन कर लेता है। तो किसान भाई सर्वप्रथम अपनी मिट्टी का भी जांच शुरू में करवा लें कि मिट्टी किस तरह का है, उस अनुसार से अपना फल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फल वृक्ष यहाँ हम लगा सकते हैं
1: जी। फल वृक्ष के किस्मों के बारे में थोड़ी जानकारी मैडम दें।
0: हाँ, यहाँ का जो हम लोग के बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का व्यावसायिक जो फल वृक्ष है वो है आम, अमरूद, केला, लीची, पपीता, ये सब हम लोग के यहाँ लगाते हैं किसान भाई। लेकिन पठारी एरिया या फिर जो जो है एरिया जो बर्दाश्त सूखा को बर्दाश्त करता है वहाँ आंवला, बेर ये सब लगा सकते हैं। तो इसके लिए है कि आम में जैसे कि अभी जर्दालू को जीआई टैग मिला हुआ है तो जर्दालू का डिमांड बहुत अधिक है, तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब दशहरी है, ये अर्ली वैरायटी है, गुलाब खास भी अर्ली वैरायटी है, तो अगर शुरू में मार्केट पकड़ना चाहते हैं किसान भाई तो अर्ली वैरायटी को लगाएं, या फिर टेस्ट का की बात करें बहुत अच्छी टेस्ट होनी चाहिए तो लंगड़ा यहाँ बहुत फेमस है भागलपुर में, तो लंगड़ा लोग लगाते हैं, कमर्शियल स्केल में लगाते हैं। और हम लोग का BAU का भी कुछ हाइब्रिड रिलीज किया हुआ है, जैसे सुंदर लंगड़ा है, सबरी है, जवाहर है, अलफजली है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। आम्रपाली, मलिका, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, ये सब अच्छी वैरायटी।

0: इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब केला की बात करें तो G9 केला है, मालभोग है, अल्पान है, रोबस्टा है। G9 का यहाँ हम लोग के BAU सबौर में कमर्शियल उत्पादन होता है और इसका एक फ़ायदा है कि ये टिश्यू कल्चर प्लांट होता है, इसमें बीमारी बहुत कम लगता है या नहीं के बराबर ही लगता है क्योंकि टिश्यू कल्चर प्लांट है। और लीची की बात करें तो शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। तो शाही है, पूर्वी है, चाइना है, देसी है, कस्बा है। देखिए इसमें देसी क्या है, देसी अर्ली वैरायटी है। किसान भाई अगर अर्ली मार्केट को पकड़ना चाहते हैं तो देसी को लगा सकते हैं शुरू का अगर बाज़ार पकड़ना है तो। और कस्बा में क्या क्वालिटी है कि ये एडवर्स सिचुएशन को बर्दाश्त करता है तो कस्बा को भी लगा सकते हैं, इसमें आंधी तूफान से उतना फसल को नुकसान नहीं होता है
1: जी। अब बारी आती है बाग के रेखांकन की, तो इसे कैसे करना चाहिए?
0: देखिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर बाग हम बहुत बहुत फसल लगाना चाहते हैं तो उस अनुसार से जो जितना भूमि को हम लोग तय किए हैं, किसान भाई तय किए हैं कि हमको इतना में बाग लगाना है, तो डिफरेंट ब्लॉक में उसको बांट लें कि यहाँ पर हमको आम लगाना है, यहाँ पर केला लगाना है, यहाँ पर पपीता लगाना है, यहाँ पर अमरूद लगाना है। उसको ब्लॉक में डिवाइड करके उसका लेआउट करना है। देखिए विधि लगाने का रेखांकन जो है डिपेंड करता है कि फल का किस्म भी कौन है और भूमि कैसा है। तो फल का कोई लंबा किस्म होता है, कोई विग्रस ग्रोथ होता है तो उसके लिए अधिक डिस्टेंस रखा जाता है, कोई छोटा नाटक किस्म का फल है तो उसके लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। और इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। फिर अपना स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सब प्रत्येक वृक्ष को अच्छी तरह विकसित होने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल जाए और जो कर्षण क्रियाएं हैं जैसे कि इरिगेशन देना है, सिंचाई करना है, खाद देना है, वहाँ से खरपतवार को निकालना है, ये सब करने में असुविधा नहीं हो। इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि किस विधि से रेखांकन करना है। रेखांकन की विधि बहुत है, जैसे कि वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, पंचक विधि है, कंटूर विधि है। तो इसमें से सबसे अच्छा जो है रेखांकन वर्गाकार विधि को माना गया है। इससे पौधा से सभी जो कर्षण क्रियाएं होती है करने में सुविधा होती है किसान भाई को। तो वर्गाकार विधि जो है सबसे अच्छा है फल वृक्ष के लिए
1: जी। अब बारी आती है गड्ढा बनाने और उसे भरने की, तो इसे किस प्रकार कैसे करना चाहिए?
0: देखिए गड्ढा बनाने का है कि गड्ढा बनाएंगे, ये भी डिपेंड करता है कि मेरा फल वृक्ष कैसा है, जैसे कि बड़ा है, आम है, अमरूद है, लीची है, कटहल है, सपाटू है, आंवला है। तो इसके लिए गड्ढे का आकार 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए गड्ढे का साइज। अब उससे छोटा पौधा हम लें, जैसे बेर है, सहतूत है, लेमन है, नाशपाती है, इस सब के लिए 0.75 मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और उससे भी छोटा पौधा अगर है, आड़ू है, आलू बुखारा है, केला है, पपीता है, शरीफा है, अनार है, फालसा है, ये सब के लिए आधा मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और गड्ढा भरने की जहाँ तक बात है तो गड्ढा इसके लिए पहले रेखांकन, इसे इसका पहला टॉपिक है, हमने रेखांकन बताया है किसान भाई को। तो रेखांकन करके वहाँ पर बीच में खूंटी लगा देना चाहिए, जैसे कि अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर पे हमको पौधा लगाना है तो 10 मीटर 10 मीटर पे खूंटी गड़ा हुआ रहना चाहिए, उसी के सेंटर पे वहीं पे गड्ढा बनेगा। और फिर उसको नीचे के मिट्टी को, गड्ढा जब बनाते हैं तो नीचे के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं और ऊपर के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं। और नीचे के मिट्टी में जो है ऊपर वाला मिट्टी पहले भर देते हैं और नीचे वाला मिट्टी में कंपोस्ट है, कुछ अगर इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपाइरीफॉस, दीमक मरने वाला इंसेक्टिसाइड।

0: को डालकर उसको मिला के अच्छी तरह से फिर नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भर देते हैं और उसको अच्छी तरह दबा देते हैं।
1: जी मैडम, पौधे खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो क्या कुछ सावधानियां किसान भाइयों को लेनी चाहिए इस समय?
0: हाँ देखिए, फलों के पौधे लगाने के लिए किसी विश्वसनीय या कोशिश करना चाहिए कि सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदने चाहिए। उसमें और ध्यान देना चाहिए कि पौधा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, रोगी या कीड़ा लगा हुआ और स्वस्थ पौधा को नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कलम बांधा जाता है फल वृक्षों में, क्या होता है कि कलम बांधा जाता है, नीचे का अलग रहता है ऊपर का अलग रहता है, वो भी देखना चाहिए कि नीचे का मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, नीचे और ऊपर का जो तना का मोटाई होता है दोनों सेम होना चाहिए। पौधों की पैकिंग, जैसे कि दूर ले जाना है हमको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ले जाना है, ट्रक में लाद कर ले जाना है, तो उसका पैकिंग करवा लेना चाहिए अच्छी तरह। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पिंडी का मिट्टी टूटे नहीं, और अगर पौधा देते समय उसमें टैग नहीं लगा हुआ है तो टैग भी किसान भाई को लगवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पौधा मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा वेराइटी है, तो टैगिंग भी करवा लेना चाहिए। पौधशाला की क्यारी से पौधों को निकालते समय मिट्टी की पिंडी पौधों की जड़ों के आसपास टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पौधे अधिक आयु के भी नहीं होनी चाहिए। अगर दूर ले जाना है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच में उसको अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
1: जी पौधा कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए मैडम।
0: देखिए, इससे पहले एक रेखांकन जब हम लोग करते हैं तो वो तो मिट्टी ये क्या कहते हैं पिट का खुदाई हो गया, गड्ढा का खुदाई हो गया, फिर उसको हम लोग भर दिए। अब उस गड्ढे में एक दो पानी, अगर वर्षा नहीं पड़ता है तो एक दो पानी देना चाहिए जिससे कि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए, या वर्षा पड़ता है तो वो अपने आप बैठ जाएगा, उसमें पानी लगेगा तो मिट्टी अच्छी तरह गड्ढे का बैठा हुआ रहना चाहिए। और फिर जैसे पहले हम रेखांकन किए थे उसी तरह से फिर लगाते समय भी लेआउट करना है, खूंटी को गाड़ना है, जहाँ पर सेंटर है गड्ढे का वहाँ पर खूंटी लगाना है, उसी तरह से जैसे रस्सी बांधकर हम लोग लेआउट करते हैं उसी तरह से लगाते समय भी लेआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, एकदम एक लाइन में लगेगा, तो ये ध्यान देना चाहिए किसान भाई को। फिर से क्या करना चाहिए कि लेआउट करना चाहिए, फिर से खूंटी लगाना चाहिए। ये हम सावधानी में मैं ही बता दिया कि पौधे की जड़ को, जड़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और गड्ढा उतना ही हम बनाएंगे गड्ढे में कि जितना से कि वो पिंडी जो है, जो बॉल है उसका पौधा का, वो अच्छी तरह बैठ जाए। जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ निशाना है, वो नीचे मिट्टी के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मिट्टी से करीब करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। ये सब ध्यान देना चाहिए किसान भाई को।
1: और अंत में किसान भाई, अंतर्वर्ती फसल के रूप में कौन कौन से पौधों को लगा सकते हैं इसकी भी जानकारी दे दें मैम।
0: हाँ देखिए, शुरू में जिसे हम लगाए पौधा तो जो फील्ड है, जो भूमि है बहुत खाली रहता है, उसमें अंतर्वर्ती फसल अगर किसान भाई लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि उनको कुछ इकोनॉमिक लाभ हो जाएगा, कुछ सेल आउट करके कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो दलहनी फसल में अगर लेना चाहते हैं तो उनको उड़द लेना चाहिए, मूँग लेना चाहिए, अरहर, राजमा, मसूर, और तिलहनी की बात करें तो मूँगफली है, सरसों है, तिल है, ये सब लेना चाहिए। सब्जी में बैंगन, लौकी, तोरी, सहजन, लोबिया, भिंडी, हल्दी, अदरक, ये सब ले सकते हैं। और औषधीय पौधा में भी है, अश्वगंधा है, गुगल है, शंख पुष्पी है, धतूरा है, तुलसी है, धृत कुमारी है, इत्यादि को किसान भाई लगा सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी बातें मैडम ने बताई हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वार्ता, और जानकारियों से भरा ये हमारा वार्ता था। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाईमेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति

15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 121 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राची सिंह मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में।
6: धन्यवाद उमा। आज हम

फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जिसका कोर्स कोड है APP 121, उसका रेडियो रिवीजन करेंगे क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिवीजन विल गो थ्रू. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. तो इन सबको आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस. ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा. उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो इसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटॉन डी बैरी हैं जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया. प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस एक बार अच्छे से देख लेना है. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, उनको आप कॉजल ऑर्गेनिज्म्स जो मेजर डिजीजेस के हैं एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीज़ों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, ये सब किस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा. एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम हैं अंडर किंगडम फंजाई, उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा. प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का. ओके, फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरी ट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास, मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज. ओके, आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज बीन टॉट इन अ क्लास बाई श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जेनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट. उसके बाद बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो

0: वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को. जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे. जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं. आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है. जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है. बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है. फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स. ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट. उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में. क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स. और जो क्या कहते हैं इनकी एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज़ कॉजिंग है. जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्पर्जिलस, ये सब चीज़ें हैं. तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका. फिर उसके बाद आपका ओमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिज़म्स हैं. लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम में कि आए. फिर आपका बेसिडियोमाइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या हैं, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा, घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है. फिर इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है, और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में, और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसको ध्यान रखना है. ओके, आई होप सो दिस इज एनफ. And you all will prepare well for the exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
1: Thank you, ma'am. दोस्तों, उम्मीद है कि ये रेडियो रिविजन आपके कल के एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी. घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो. टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है.
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं.
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ. बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात. अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी. UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ.
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य.
1: सामुदायिक रेडियो

0: स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: आप जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन। 2 मई 1981, तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर PK सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई TV धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी,

उसमें भी उन्होंने काम किया, कई सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी, रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया, अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बद्दूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसी बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार न माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 121 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राची सिंह।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिविजन में।
1: धन्यवाद उमा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 121, उसका रेडियो रिविजन करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिविजन विल गो थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इन सबको आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो, जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटोन डी बैरी हैं, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है, फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया। प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस एक बार अच्छे से देख लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, उनको आप कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो मेजर डिजीजेस के हैं, एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीज़ों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, ये सब किस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम है अंडर किंगडम फंजाई, उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा, उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा। प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ओके, फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरी ट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास, मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज। ओके, आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज बीन टॉट इन द क्लास बाई श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जेनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट। उसके बाद

0: बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को. जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे. जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं. आपको एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है. जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है. बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है. फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स. ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट. उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में. क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स. और जो क्या कहते हैं इनकी एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज़ कॉजिंग है. जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब चीज़ें हैं. तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका. फिर उसके बाद आपका उमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिज़म्स हैं. लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्ज़ाम में कि आए. फिर आपका बेसिडियोमाइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या हैं, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है. फिर इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है. और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में, और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसको ध्यान रखना है. ओके, आई होप सो दिस इज एनफ. And you all will prepare well for the exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
1: Thank you, ma'am. दोस्तों उम्मीद है कि ये रेडियो रिवीजन आपके कल के एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी. घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक. सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक. उन्नत कृषि. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम. आज हम रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे और इसी क्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर सबोर्णा रॉय चौधरी मैम. मैं आप सभी को बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. और मैडम हमें आज रेशेदार फसलों के पैकेज और प्रैक्टिस के बारे में बताएंगी. मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले तो ये रेशेदार फसल क्या है मैडम, ये हमारे श्रोताओं को बताएं.
2: जी, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है जिस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशेदार फसलें. रेशेदार फसलें एक्चुअली फाइबर क्रॉप्स है. ये कुछ अलग से टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. एक्चुअली कुछ क्रॉप है जिनको हम लोग फसल के रूप में

0: लेके उसके फाइबर को लेते हैं। फाइबर से तरह तरह का चीजें बन सकता है, जैसे आप लोग जानते हैं जैसे फसल के बीच में कॉटन, कॉटन मतलब कपास, जैसे जूट, जूट मतलब पाट, जैसे कपास पाट, इस तरह का फसलों में जैसे बनता है, जैसे बैग बन सकता है, इवन साड़ी बन सकता है उसका, उसका डोर मैट घर में बिछाई चटाई बन सकता है, ऐसे तरह तरह का चीजें, कार्टेन दरवाजे पे लगाने वाला पर्दा बन सकता है, ऐसे तरह तरह का चीजें बन सकता है। तो जितने भी फाइबर क्रॉप्स है, आज के जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया के, जहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक एकदम पॉलीथिलीन के वजह से पूरा बैंड हो रहा है, उसमें बहुत आगे बढ़ के आ रहा है, उभर के आ रहा है ये सब कपास पाट इस तरह का फसलें। तो रेशादार फसलें अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी, अभी आपने पाट के बारे में बताया, जूट के बारे में, तो हमने भी अभी प्रदर्शनी कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो वहाँ पर जूट के जो फोल्डर होते हैं फाइल रखने वाले वो बनाए गए थे, महिलाओं के लिए पर्स बनाए गए, तो इस तरीके से बहुत ही नई नई चीज़ें बनाई गई थी। मैडम, अभी हम बात करते हैं कपास के बारे में, तो उसके बारे में बताइए, हाँ, इसके पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में।
0: जी जी, कपास के बारे में हम पहले बता दें, कपास जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बिहार में उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही आती है, कपास काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। तो बिहार में काली मिट्टी के ज़्यादा मिलते नहीं है, इसीलिए ब्लैक सॉइल जहाँ पे है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात इस तरह का जो स्टेट्स है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है। कपास जनरली दो तरह का होता है, एक है जिनके लॉन्ग फाइबर होते हैं, मतलब लंबे फाइबर, उनको हम लोग बोलेंगे धर्मा, धर्मा या आप लोग बोल सकते हैं अमेरिकन कपास, या जिनके शॉर्ट फाइबर, छोटा जिनके फाइबर होते हैं, रेशे जिनके छोटे होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नरमा, नरमा मतलब देसी कपास। तो दो तरह का कपास होते हैं, एक अमेरिकन कपास, एक होता है देसी कपास। तो जनरली चाइना एक्चुअली, अगर आप कंट्री में बात करें तो चाइना एक्चुअली लीड ले रहा है कपास में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन सेकेंड नंबर पर इंडिया, आपके भारत है सेकेंड नंबर पर। अगर आप स्टेट्स के बात करें तो स्टेट्स में भी बहुत सारा स्टेट्स कपास का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब कपास में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है। सो कपास के बारे में थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा बता दें, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तभी भी कोई कोई जगह पे होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता है। तो कपास के बारे में बता दें, कपास या फिर पाट कोई भी फसल लगाइए, इन तरह इन मतलब ये रेशेदार फसलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी को महीन करना पड़ता है, इसीलिए 6-7 हैरोइंग, प्लाउइंग, मतलब मिट्टी का जुताई करना, उसको पाटा लगाना, बहुत मिही करके ज़मीन तैयार करना पड़ता है। ज़मीन तैयार करने के बाद ज़मीन में, जैसे कपास को मैंने बोला, कपास दो तरह का होता है, देसी कपास और अमेरिकन कपास। अगर आप देसी कपास का बात करें तो देसी कपास 10-18 केजी के बीज दर पर हेक्टर में लगता है। अगर आप अमेरिकन कपास के बात करें तो 15-25 केजी पर हेक्टर के बीज दर से उसकी सीड लगता है। अगर आप स्पेसिंग के बात करें तो अगर देशी कपास है उसको बहुत कम स्पेसिंग में भी हो जाता है, जैसे प्लांट टू प्लांट, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और रो टू रो, एक पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो देशी कपास के बारे में हम पहले बोलते हैं, देशी कपास जो होता है उसकी 60x30, 60 पंक्ति से पंक्ति और 30 एक पौधे से पौधे की दूरी होता है। और अगर हम अमेरिकन कपास की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति 60 रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। तो ये सब है स्पेसिंग। स्पेसिंग के बाद आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिही करके सॉइल, मिट्टी को लगाना चाहिए। सॉइल के हम लोग कब लगाएंगे इसके बारे में अगर बात करें तो मई का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मई मंथ के अगर पहला हफ्ते में, शुरू के हफ्ते में हम लगा सकते हैं कपास को, या फिर मई के पहला 15 दिन या फिर मिडिल ऑफ द मई तक, मतलब बीच में, बीचों बीच मई के बीचों बीच तक हम लोग कपास ले जा सकते हैं। कपास के बहुत सारा फायदे हैं। कपास के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें हम कहना चाहते हैं, कपास और पाट ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पाट में जो रेशे हम लेते हैं, फाइबर जो हम लेते हैं, वो पाट के स्टेम से आते हैं, उनके शरीर से आते हैं, और कपास के जो रेशे लेते हैं वो उनके फूल से आते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फूल से आते हैं। तो कपास के जब फ्लावरिंग टाइम आए या फ्लावरिंग से जब पॉट फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जूट के, मतलब

पार्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो पार्ट के जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब उनकी जब स्टेम बन रहा है, उनकी शरीर जब बन रहा है, तो उनकी शरीर जब बन, क्योंकि शरीर से ही हमें रेशे मिलने वाले हैं जी, तो इसीलिए उस टाइम में जूट के टाइम में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कपास की हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है 80 40 60, 80 केजी पर

0: फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जनरली बहुत कम पानी में ही ये सब कपास पाट ये सब फसल हो जाते हैं। लेकिन पहला 40 से 45 दिन के बाद शोइंग करने के बीज, शोइंग करने के बीज बुआई करने का 40 से 45 दिनों के बाद एक इरिगेशन की ज़रूरत होता है। और मैंने पहले ही बोला था कपास के फूल से हमें रेशा मिलता है, तो फूल आने आने तक सारे ख्याल रखना पड़ेगा। उसके पहले एक इरिगेशन और ज़रूरी होता है। अगर कभी भी इरिगेशन का कमी दिखाई दे तो 2 से 3 हफ्ते के बाद बाद लगातार इरिगेशन देते रहना चाहिए, उसी इंटरवल में इरिगेशन देते रहना चाहिए। और कपास में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होता है। कपास के फ्लावर जो होता है उस फ्लावर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि वो फूल जब फूट जाते तो एक स्क्वायर चार कोना उसकी फूल में कॉटन जैसा दिखने लगते हैं, मतलब कपास के रेशा आने लगते हैं। कपास के रेशा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस फूल को जो कलेक्ट करके रखते हैं एक जगह करके रखते हैं उसको कभी भी पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस फूल को पानी में रखिएगा उसकी जो रेशा की क्वालिटी है, रेशा की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। इसीलिए एकदम सन में एकदम खुली धूप में उनको सुखा लेना चाहिए, ताकि कोई चीटा चीटा मटेरियल जो लगा हुआ रहता है, फूजी मटेरियल जो लगा हुआ जाता है वो सूख जाए। उसके बाद ही उसकी कॉटन की कलेक्शन होती है, उस फूल से उसकी स्क्वायर बार्ड से उस कॉटन की कलेक्शन होते, कॉटन को लिया जाता है, उसकी रेशे को लिया जाता है। अभी सबसे गुरुत्वपूर्ण बात जो है कपास में, कपास जो हमारे टोटल ईल्ड जो देता है कपास के ईल्ड महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कपास होता है। अगर महाराष्ट्र छोड़ दीजिएगा तो लगभग 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर में कपास की रेशा आते हैं। फाइबर जो टोटल फाइबर यील्ड है कपास के 15 से 20 क्विंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपके साड़ी बनता है, बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक्स बनते हैं कपास से, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं उसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
1: जी, तो ये हो गई बात कपास की, और पाट के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में मैडम हमें बताएं।
0: जी, अगर हम लोग पाट के बारे में बोलेंगे तो पाट का जैसे साइंटिफिक नेम है कॉर्चोरस, कॉर्चोरस मतलब ये है जूट। और कपास के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो कपास का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम मतलब कपास मतलब कॉटन। तो हम लोग जूट के बारे में अभी बात करेंगे, पाट के बारे में। पाट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार के लिए, क्योंकि बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, सबसे अच्छा लीडिंग स्टेट है आपके वेस्ट बंगाल, बंगाल जो है, क्योंकि बंगाल के पास नदियां बहुत है, क्योंकि जूट होने के पहले, मैंने पहले ही बोली थी जूट के स्टेम से फाइबर निकलते, उनकी रेशा जो है उनकी शरीर से निकलते, इसीलिए उनकी रेटिंग मतलब उसको गलाना उसको पचाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पानी की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए फ्री फ्लोटिंग वाटर मतलब चलता हुआ क्लीन पानी, साफ सुथरा पानी बहुत ज़रूरत होता है। इसीलिए बंगाल बहुत ज़्यादा लीड ले रहा है, बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार में भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पे जूट में बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। जूट जो है एक्चुअली इंदो बर्मा एक जगह था, उस जगह से जूट के पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पाट देश में आया था। पाट में लीड लेने वाला कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास बहुत पानी है, बहुत नदियां है, इसीलिए बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो जूट में लीड ले रहा है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में 60% प्रोडक्शन इंडिया देता है, भारत आपके जूट का पाट का 60% प्रोडक्शन भारत कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। कपास में बहुत जगह बिहार और वेस्ट बंगाल छोड़ के आसाम में भी, सॉरी जूट आसाम में भी बहुत होता है ये पाट। पाट के लिए भी मैं फिर से बोल रही हूँ, पाट के सीड बहुत मिही होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, इसीलिए पाट बहुत अच्छे से मिट्टी अगर तैयार नहीं रहे तो उस जगह पे पाट होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मिट्टी बहुत 6-7 हैरोइंग प्लाउइंग करके मिट्टी का जुताई करके उसको पाटा लगा के बहुत मिही करके मिट्टी बनाना पड़ता है। जूट भी दो तरह का होता है, एक मीठा पाट एक तीता पाट। हम लोग अगर तीता पाट के बात करें तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉर्चोरस कैप्सुलरिस, अगर हम लोग मीठा पाट के बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉर्चोरस ऑलिटोरियस। एक्चुअली जो तीता पाट होता है उसको हम लोग व्हाइट जूट भी बोलते हैं, व्हाइट मतलब सफ़ेद, क्यों सफ़ेद बोलते हैं, उनसे जो रेशा निकलते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, रंग के होते हैं, इसीलिए हम व्हाइट जूट सफ़ेद जूट भी बोलते हैं तीता पाट को। और मीठा पाट को हम लोग तोशा जूट भी बोलते हैं, तोशा

जूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो स्टेम से, उनके शरीर से जो रेशा निकलते हैं वो थोड़ा क्रीमिश कलर के होते हैं या पीला, हल्का पीला रंग के होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग तोशा पाट बोलते हैं। ये जो तोशा पाट ही सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ऑलिटोरियस जो है तोशा पाट, मतलब आपके मीठा पाट ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये दोनों पाटों के बारे में ही हम बताएंगे, क्योंकि किसी किसी जगह पर मीठा पाट होता है, किसी किसी जगह पर तीता पाट होता है, इसीलिए दोनों जगह पर हम मोटा मोटी बोलेंगे। पाट के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पाट ऐसा एक फसल है जिसमें 150 सेंटीमीटर पर एनम, पर ईयर में अगर 150 सेंटीमीटर भी पानी मिल जाए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छे से पूरा वर्षा भर पानी रहे तो बहुत बढ़िया करता है। पाट जो है जनरली फेब्रुआरी टू अप्रैल लगाया जाता है, फेब्रुआरी माह से अप्रैल माह तक लगाया जाता है। फेब्रुआरी जो तीता पाट होता है उसको प्रेफर करते हैं फेब्रुआरी मंथ या मार्च मंथ तक तीता पाट को लगाया जाता है। मीठा पाट जस्ट उसके एक महीना पीछे पीछे चलता है। जैसे मीठा पाट के लिए मार्च टू अप्रैल तक ही जनरली पाट की शोइंग हो जाते हैं। जो भी पाट का शोइंग होता है, शोइंग के भी जो सीड रेट है, सीड के जो दर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सीड रेट के बारे में हम बताएं, सीड रेट जो है मीठा पाट के लिए थोड़ा कम लगता है, तीता पाट के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। मीठा पाट के लिए जो सीड रेट है, तीता पाट के लिए जो सीड रेट है वो 6 से 8 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। जो मीठा पाट के लिए सीड रेट है वो 4 से 5 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। अगर हम स्पेसिंग के बात करें तो पंक्ति से पंक्ति के दूरी 30 सेंटीमीटर तक और पौधे से पौधे के दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर तक रखेंगे मीठा पाट के लिए। सो मीठा पाट के लिए हम लोग पंक्ति से पंक्ति के दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर हम लोग ये तीता पाट के बारे में बताएं, अगर हम मीठा पाट थोड़ा सा कम लगता है। मीठा पाट में पंक्ति से पंक्ति के दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। हम एक बार और क्लियर कर दें, अगर हम सीड रेट के बात करें तो सीड रेट 6 से 8 केजी पर हेक्टर के दर से तीता पाट, मतलब सफ़ेद जूट के लिए लगेगा, सफ़ेद पाट के लिए लगेगा, और 4 से 5 केजी पर हेक्टर ये तोशा जूट, तोशा पाट या फिर आपके मीठा पाट के लिए लगेगा। ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर बाय 5 से 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, ये मीठा पाट के लिए लगेगा। और 30 सेंटीमीटर पंक्ति की पंक्ति से दूरी और 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, ये तीता पाट के लिए लगेगा। मतलब तीता पाट के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और मीठा पाट के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा कम लगता है। मैं महीने के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, फेब्रुआरी मार्च हम लोग ले लेंगे तीता पाट के लिए और मार्च के बाद से अप्रैल मई हम ले लेंगे मीठा पाट के लिए। हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताएं, जो पोषक तत्वों की जो उपयोग करना है, अगर हम मीठा पाट की बात करें तो 60 केजी पर हेक्टर नाइट्रोजन के दर दे दीजिएगा, 40 केजी पर हेक्टर P2O5 मतलब फास्फोरस दे दीजिएगा और 60 केजी पर हेक्टर पोटाशियम, ये तीता पाट के लिए। अगर हम मीठा पाट के बात करें, मीठा पाट में थोड़ा सा कम लगता है, तीता पाट में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तीता पाट में हम लोग मोटा मोटी लगभग सेम ही देंगे, तीता पाट में 80 केजी पर हेक्टर के दर से नाइट्रोजन और बाकी 40 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटाशियम देंगे पर हेक्टर के हिसाब से। और मीठा पाट में थोड़ा सा कम, 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटाशियम दे देंगे। तो मीठा पाट में सीड रेट भी कम लगता है, स्पेसिंग भी कम लगता है और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट, मतलब फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम लगता है। ये जितने भी पाट के बारे में हम बताएं, पाट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वेजिटेटिव स्टेज का, क्योंकि उनकी जो स्टेम होता है, स्टेम लंबा हो वो ही अच्छा है। जितना पौधे लंबा, मोटा मोटी 9 फिट तक ये पौधे जा सकता है, 150 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं ये लंबे पौधे ही जनरली प्रेफरेबल है, क्योंकि उनकी जो रेशा होता है वो बिना कटे हुए लंबे रेशा निकलता है, जो क्वालिटी एस्पेक्ट से बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जो भी उस मीठा पाट से यील्ड होता है, यील्ड के लगभग मामले में 13 क्विंटल तक हम फाइबर ले सकते हैं पाट से। अगर हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर के दर से भी हम लोगों को फाइबर रेशा मिल सकता है पाट से। पाट के सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आता है उसकी रेटिंग प्रोसेस, मतलब उसको गलाना, सड़ाना, पाट काटने के बाद पाट के जो लंबे लंबे

0: स्टेम्स होते हैं उस स्टेम्स को ऐसे पानी में रखना चाहिए जिस पानी में बहुत ही शांत पानी हो, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लोटिंग हो, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम क्लीन साफ सुथरा पानी है। इसमें हम लोग पार्ट के जो स्टेम्स है उसको काट के, मतलब पार्ट के एकदम नीचे से, ग्राउंड से एकदम नीचे, जमीन के एकदम नीचे से, क्योंकि जितना लंबा पार्ट उतना ही अच्छा क्वालिटी है, उतना ही अच्छा रेशा मिल सकता है। उसको पहले 2-3 दिन के लिए खड़ा करके हम लोग उस पानी में रख देंगे। 2-3 दिन खड़ा करके रखने के बाद धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि उसकी जो रेशा है वो लूज होने लग रहा है, उसकी जो स्टेम्स है, स्टेम्स से उसकी जो काठी, पार्ट काठी, पार्ट काठी से थोड़ा थोड़ा ढीला होने लग रहा है, लूज हो रहा है। तो उस पार्ट को लेयर बाई लेयर सुला देना है, सो के रखना है, मतलब हॉराइजेंटली उसको बिछा देना है, एक के बाद एक, एक लेयर बाई लेयर उसको रखना है। उसको भी लेयर बाई लेयर भी 10 दिन तक रख सकते हैं लेयर बाई लेयर, लेकिन लेयर बाई लेयर रखते वक्त हमें एक चीज की ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब लेयर बाई लेयर रखेंगे तो कोई भी भारी चीज देके उसको ऊपर से दबा देना पड़ेगा ताकि वो पूरा डूबा हुआ रहे, 10 सेंटीमीटर तक वो पानी के नीचे डूबा हुआ रहे। इसीलिए ये लेयर बाय लेयर जैसे उसको सुला दिए, पहले 2-3 दिन खड़ा करके रखे, खड़ा करके रखने 2-3 दिन के बाद उसको सुलाना पड़ेगा। जब वो स्टेम्स को हम लगातार एक के ऊपर एक करके सुला रहे तो एक लेयर बन जाएंगे। लेयर को हम लोग और 10 दिन के लिए, आगे के 10 दिन के लिए सो देंगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। कोई लकड़ी का या फिर बनाना केला का कोई स्टेम्स देके उसको ऊपर में भारी नहीं दे सकते, मतलब किसी भी चीजों से उसको दबाना है, दबा के पानी के अंदर कर देना है। लेकिन ध्यान में रखना है कोई लकड़ी, ऐसा लकड़ी ना हो जिससे से कलर निकल रहा है, जिससे से रंग निकल रहा है, या फिर केला पानी में आता है तो उसमें काला काला रंग छोड़ता है, और उससे उस जूट के पार्ट के स्टेम्स को दबाना नहीं है क्योंकि वो रंग जो है वो रेशा में आ जाएगा तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कोई ईटा का टुकड़ा रख सकते हैं, कोई पत्थर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं रख सकते जिससे हमें रेशा में कोई दाग आ सकता है, उनकी कोई क्वालिटी खराब हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर तक उसको, 10 सेंटीमीटर नीचे उस पानी के 10 सेंटीमीटर नीचे तक उसको डुबा के रखना है और अगले 10 दिन के लिए रखना है। जूट के जो रेशा है उसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे उसकी काठी से अलग करना पड़ता है। जो पाट के जो रेशा है उसको काठी से जब अलग कीजिएगा तो बहुत ध्यान से रखिएगा, उसको धीरे धीरे हिलाना पड़ता है ताकि और थोड़ा लूज हो जाए और थोड़ा ढीला हो जाए, और हाथों से एक एक करके उसको, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है उसका रेशा निकालना। एक एक जो किसान भाई ये काम करते हैं उनको शायद पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल काम होता है उसकी रेशा निकालना। तो धीरे धीरे उसकी रेशा निकलना है। कभी भी कोई लकड़ी का लाठी लेके, काठी लेके उसको धक्का नहीं लगाना है कि धक्का लगाते जल्दी जल्दी करने के चक्कर में धक्का लगा दिए तो तब भी वो रेशा टूटने लगेगा, और रेशा टूटा आपकी क्वालिटी खराब, तो वो बाजार में नहीं बिकेंगे। जितने लंबा, जितना सुंदर, फाइन, चमकीले, चकचक वाला रेशा मिलेंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ों से जब हम लोग जूट के रेशा निकालते हैं, पाट के रेशा निकालते हैं, तो कोई भी स्टिक या फिर कोई भी लकड़ी लेके उसको पाट काठी को धक्का लगा लगा के नहीं निकलना है। अपने हाथों से धीरे धीरे धीरे धीरे खींचते हुए, वो पानी में वैसे भी सड़ गया, गल गया, तो धीरे धीरे खींचिएगा, वो सरक सरक के निकल जाएंगे। निकल के अच्छे से पानी में धो के उसको लेना है, उसके बाद एकदम शेडेड एरिया में सुखाना है ताकि वो पूरा मोशन मुहिम हो जाए और काम में आ जाए। उसके बाद आगे का प्रोसेस, जैसे फैक्ट्री में प्रोसेस होता है उसमें पॉलिशिंग होता है, उसको कॉमर्शियल यूज़ होता है उसको लेके, इस तरह का कॉमर्शियल यूज़ होता है। इस तरीके से हम लोग पार्ट को यूज़ कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने रेशेदार फसलों के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में जाना। मैडम ने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि कैसे रेशा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप सावधानियों के साथ जो है इसका इस्तेमाल करें जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं इस रेशे से। तो अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुगली फेंक

0: चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दे, दें गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है, अच्छा करने का और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमजोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन

इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है। तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे। तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे, तो भी आपको नींद अच्छी आती है, या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप, अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना, लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है, वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है, तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं। तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीज़ों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नज़रअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा ख़त्म होने लगती है, और यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आप, आपका दिमाग ही, आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे, और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग ख़त्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है, और फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे में आप अचानक, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीज़ें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये मानसिक थकान है, आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं, जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है।
ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए।

ये, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा। ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है। पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं। आप एंजाइटी आपको होती है तो अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें, और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमजोर कर देता है। और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। आपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमजोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज जो तरक्की की है, आपने हर रोज जो पढ़ा है उसको आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोलें कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, और एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें प्रभावित होगी।
तो एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें,

और जरूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उसे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं कैसे करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूँ, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर सब, आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: सर। सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है, परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती ना करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं। और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्टी ड्रिल का उपयोग करते हैं।
1: जी सर, इसके फायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
2: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है। और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है।

0: सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी विधि बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुवाई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
1: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
0: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें, और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पर कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं उनका समुचित उपयोग होता है। और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है। पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है। और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
1: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
0: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता, मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो इसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर हम धान की प्रभेद की बात करते हैं तो हम लंबी अवधि की किस्म को भी लेते हैं और साथ ही साथ कम अवधि के किस्म को भी लेते हैं। हम अगर प्रभेदों की बात करें तो राजेंद्र महसूरी, MTU 1001, सबौर अर्जल, सहभागी, सुष्क्रमराज, इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
0: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम इस बार का

0: लें। इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम हैं जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
1: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूँकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं सुगंधित धान ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 kg नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 kg आप फास्फोरस की मात्रा और 60 kg पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की 1/3 मात्रा तथा स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना न हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पाइरेजोसल्फिरॉन, ये पाइरेजोसल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पाइरेजोसल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुर

0: के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसको कि हम 250 ml दवा है, जो कि एक हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोफ है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 240 इथाइल ईस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 240 का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हमारे यहाँ की पायरोजो सल्फ्यूरॉन एवं बिसपायरीबैक सोडियम का हम इस्तेमाल है, जो कि बुआई के 15 से 20 दिन के बाद करें तो हम अधिकतम घासों का है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि सिंचाई एवं जल प्रबंधन। जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से सामान्यतः है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है, तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से एक महीना पहले कर देना चाहिए। सामान्यतः हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए, और हमको ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम सामान्यतः हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं, तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज़ होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहाँ उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में नमी उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है, तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है, तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए।

0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में

ये कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप छोटी छोटी बात पर

कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत है। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेजी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखें धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है, तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें।
आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें। और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी

लाइफस्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं। और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं। तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए। क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। Ladies first.

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
3: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र

0: रहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र के तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है। पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है, जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्त चलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
0: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पीठ पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पीठ पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पीठ पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल की फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों की सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं और ये यंत्र

0: चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से एक समान रूप से वितरित करते हैं
1: जी।
0: भुरकाव यंत्रों को हस्त चालित रोटरी या हस्त चालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्त चालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
1: जी।
0: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
1: जी।
0: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूँकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहाँ पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं जी।
0: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकलकर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
1: जी।
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
2: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित, जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं, उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
2: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
2: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
2: सेट हो सकता है, चिपक सकता है
0: हर एक जगह।

0: फैल सकता है उनकी सहायता से। दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए। ठीक है, और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सबको कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है।
1: जी, डब्बे पे भी लिखा है, एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का, उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
1: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: जी ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत पड़े,
1: फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
1: जी। तो किसान भाई, ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है

0: आप कुछ मुख्य बातों पे ध्यान दें, जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके।
1: जी,
0: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए, कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं, उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें।
1: जी,
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से।
1: जी
0: ठीक है, छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें।
1: जी,
0: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
1: जी,
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें, ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
1: जी,
0: फिर है हस्त दाबिए छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, दो तिहाई भाग तक ही भरना चाहिए
2: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो दो तिहाई से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबिए टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी,
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें।
1: जी,
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें।
1: जी,
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं।
1: जी,
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा।
1: जी
0: ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के दो स्ट्रोक या टू स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा,
1: जी,
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद।
1: जी
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे, अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद
0: कर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें चार स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास टू स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है
1: जी।
0: जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है।

0: इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डी कार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पर धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है? अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है? और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग, जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है। ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें
1: जी।
0: फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए। ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर, एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को, अब पहले आप

0: हाँ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाई डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार, पृष्ठ संख्या 83, अध्याय 7, वर्षा बहार। इस पाठ के दाईं ओर एक बार कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा बहार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, मुकुट धर पांडेय। भाई, इसने तो हंस उड़ा दिए। यहां इस पृष्ठ पर वर्षा से संबंधित एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। चित्र में दो और पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी के ऊपर

एक बालक और बालिका रंग बिरंगी छतरी लिए नृत्य कर रहे हैं। दूसरी ओर की पहाड़ी के ऊपर कुछ घर बने हुए हैं जिनसे एक पानी की धार बहती हुई नीचे आ रही है। पहाड़ी के नीचे हरियाली है और वहां कुछ बालक बालिकाएं एक कुत्ते के साथ वर्षा में भीगते हुए आनंद ले रहे हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर नीचे की ओर एक पुरुष और एक महिला छाता लिए चल रहे हैं। चित्र के अगले भाग की ओर एक बालक छाता लिए चल रहा है, वहीं एक दूसरा बालक केले के पत्ते को लिए स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक बालिका और एक पुरुष कपड़े अथवा पॉलीथीन के माध्यम से स्वयं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए हंसों की कतार जा रही है। भूमि पर एक मेंढक बैठा हुआ है और एक मोर अपने पंखों को फैलाए वर्षा को निहार रहा है। पृष्ठ संख्या 84। कवि से परिचय। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडेय का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडेय के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। यहां मुकुटधर पांडेय का एक रेखाचित्र दिया गया है। रेखाचित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1895 और मृत्यु वर्ष 1989 अंकित है। पृष्ठ संख्या 85। पाठ से आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा, आनंद और प्रसन्नता, भय और चिंता, क्रोध और विरोध। दो, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है, पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, आमोद छा जाने का दृश्य। तीन, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। चार, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें बालक बालिकाएं रंग बिरंगी छतरियां लिए वर्षा का आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 86। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। ख, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर,

गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। यहां एक मोर का चित्र है। मिलकर करें मिलान कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां स्तंभ एक में दी गई हैं, उनके भावार्थ स्तंभ दो में दिए गए हैं। स्तंभ एक की पंक्तियों का स्तंभ दो की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहां एक तालिका है जिसके दो स्तंभ हैं। स्तंभ एक से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, पानी बरस रहा है झरने भी ये बहे हैं। दो, चलती हवा है ठंडी हिलती हैं डालियां सब। तीन, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। चार, फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। पांच, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। छः, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। स्तंभ दो से संबंधित पंक्तियां हैं। एक, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं। दो, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। तीन, वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। चार, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती हैं। पांच, वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। छः, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। ख, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। यहां दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है, अपने विचार लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक तालाब है और वर्षा का जल उसमें गिर रहा है। तालाब में कुछ बत्तखें तैर रही हैं और तालाब के किनारे एक पक्षी और एक मेंढक बैठे हैं। पृष्ठ संख्या 87। ग, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, इसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। घ, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। अणा, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ख, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है। संकेत, आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। ग, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीव। ग, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए, वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें वर्षा में उड़ते हुए हंसों की एक कतार है। आपकी रचनाएं। क, कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। ख, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर

एक कहानी तैयार कीजिए। ग, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए, उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों। रिपीट, पृष्ठ संख्या 88। शब्द से जुड़े शब्द, अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द यहां दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आपकी सुविधा के लिए वर्षा से संबंधित एक शब्द

सबके मन को लुभा रही है। यहां वर्षा बहार को रेखांकित किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, बहार वसंत का दूसरा नाम है। यहां वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है, जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक जंगल का चित्र है, घनघोर वर्षा हो रही है, चारों ओर हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं, जगह जगह फूल खिले हुए हैं, बीचों बीच एक तालाब है जिसमें बत्तख तैर रही हैं और एक बगुला खड़ा हुआ है। तालाब के किनारे एक मेंढक और एक पक्षी पत्थर पर हैं। एक ओर एक हिरन इन्हें देख रहा है और एक मेंढक इनकी ओर मुंह कर बैठा है। पृष्ठ संख्या 89, कविता का सौंदर्य। क, यहां कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। रिक्त स्थान बहार के मन को लुभा रही है। संकेत के लिए कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, बारिश, बरसात, बरखा, वृष्टि। पंक्ति संख्या 2, रिक्त स्थान में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। संकेत शब्द हैं आकाश, गगन, अंबर, व्योम। पंक्ति संख्या 3, बिजली चमक रही है, रिक्त स्थान गरज रहे हैं। शब्द संकेत हैं मेघ, जलधर, घन, जलद। पंक्ति संख्या 4, रिक्त स्थान बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। शब्द संकेत हैं जल, नीर, सलिल, तोए। ख, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जंच रहे हैं और क्यों। विशेषण, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिने अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। क, यहां दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक पंक्ति और उसके समक्ष विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। यहां एक तालिका है जिसके 3 स्तंभ हैं। स्तंभ के पहले भाग में पंक्ति, दूसरे में विशेषण और तीसरे भाग में विशेष्य शब्दों के लिए उपयुक्त स्थान दिया गया है। पंक्ति 1, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आपकी सुविधा के लिए विशेषण शब्द दिया गया है अनूठी और विशेष्य के लिए शब्द दिया गया है छटा। पंक्ति संख्या 2, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। अब आप इसके समक्ष विशेषण और विशेष्य शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। पंक्ति संख्या 3, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब आप समक्ष दिए गए रिक्त स्थानों में विशेषण और विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। पंक्ति संख्या 4, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। अब आप विशेषण और विशेष्य शब्द इस पंक्ति से ढूंढकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर एक झरने का चित्र है जो वर्षा के जल से और अधिक विस्तार में बह रही है। पृष्ठ संख्या 90, ख, यहां दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। यहां प्रत्येक शब्द के आगे 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक विशेष्य के लिए आपको 2 विशेषण सोचकर लिखने हैं। 1,

वर्षा 2, पानी 3, बादल 4, डालियां 5, गुलाब। ऋतु और शब्द। फिरते लखो पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं क्रम से आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। यहां दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। यहां ऋतुओं से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं धूप, लू, बयार, हिमपात, वृष्टि, पाला, ताप, जाड़ा, झड़ी, ठिठुरन, धुंध, कोहरा, आंधी, उमस, हरियाली, बहार, तपन, जेठ, सावन, रिमझिम, शीतलता, ओस, ठंडक, बादल फटना, कड़ाके की ठंड। अब इन शब्दों से आपके मन में कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, ये आप कल्पना कीजिए और इसी के अनुसार आगे दिए गए ऋतुओं के समक्ष इन शब्दों को लिखिए। संकेत संख्या 1, वसंत ऋतु, सामान्यतः मार्च अप्रैल। अब आप वसंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 2, ग्रीष्म ऋतु, सामान्यतः मई जून। अब आप ग्रीष्म ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। संकेत संख्या 3, वर्षा ऋतु, सामान्यतः जुलाई अगस्त। अब आप वर्षा ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 91, संकेत संख्या 4, शरद ऋतु, सामान्यतः सितंबर अक्टूबर। अब आप शरद ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 5, हेमंत ऋतु, सामान्यतः नवंबर दिसंबर। अब आप हेमंत ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। संकेत संख्या 6, शिशिर ऋतु, सामान्यतः जनवरी फरवरी। अब आप शिशिर ऋतु से संबंधित शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। यहां एक चित्र है जिसमें एक पेड़ का चित्र है। पेड़ के अलग अलग भागों को अलग अलग ऋतुओं के माध्यम से, इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें अलग अलग ऋतु में एक पेड़ के अलग अलग स्वरूपों को दिया गया है। पृष्ठ संख्या 91, पाठ से आगे, आपकी बात। क, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ख, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। ग, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं। घ, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। अण, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस से जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर एक मुर्गी का चित्र है जो वर्षा से बचाने के लिए अपने चूजों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी है। पृष्ठ संख्या 92, साक्षात्कार। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है। क, अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। संकेत, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं आदि। ख, अपने समूह

के साथ मिलकर इस साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकते हैं। यहां एक चित्र है जिसमें एक बिल्ली वर्षा के जल के भरने से उसके ऊपर छतरी को उल्टा किए तैर रही है और कुछ गा रही है। वर्षा के दृश्य। वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। ख, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है या बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देते हैं, क्यों पता कीजिए। ग, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा, आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए। घ, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों के कतार में अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए अनुभव किया है? संकेत, चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। वर्षा में ध्वनियां। क, कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं, इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी, अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। ख, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढकों की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं? यहां वर्षा की एक बूंद का तबला बजाते हुए चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 93, सृजन। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद इस प्रकार है, हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। अब यहां दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। आपके अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं जो कि आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्य हैं। इनका उपयोग करते हुए एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। ये संकेत हैं, बारिश के बाद उपवन में सैर। परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना। सर्दियों का पहला हिमपात। कोई उत्सव। मित्रों संग खेलना। किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना। किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना। समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। रिपीट, इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें वर्षा में भीगते हुए कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या

94 आज की पहेली। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है, आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बूझिए। यहां कुछ पहेलियां हैं और उनके साथ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन पहेलियों को बूझने का प्रयास कीजिए। यहां एक चमकते हुए सूर्य का चित्र है और उसी के साथ पंक्तियां हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर बताइए। यहां इस पृष्ठ पर एक फसल का चित्र है और इसी के साथ पंक्तियां हैं। हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। अब आप इन पंक्तियों के द्वारा इस मौसम का नाम सोचिए। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बादल है और उससे बरसती बूंदे हैं। इसके साथ जो पंक्तियां हैं वे इस प्रकार हैं। पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हरसे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस पहेली का उत्तर सोचिए। यहां इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उसके साथ ही पहेली है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, यहां इस पृष्ठ पर कुछ फूलों का चित्र है और उन फूलों के चित्र के साथ ही पहेली इस प्रकार है। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। तो आप बूझिए ये कौन सी ऋतु है। यहीं इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पेड़ से कुछ पत्ते गिर रहे हैं और उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करें खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। तो अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से पहेली का उत्तर सोचें। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें ऊन की बनी हुई टोपी और मफलर का चित्र है, उसी के साथ पहेली कुछ इस प्रकार है। बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। अब आप इन पंक्तियों के माध्यम से इस ऋतु के नाम को सोचिए। झरोखे से आपने जो कविता इस पाठ में पढ़ी है उसे लिखा है मुकुटधर पांडेय ने। आइए अब पढ़ते हैं इन्हीं की लिखी एक अन्य कविता, ग्रीष्म का अंश। ग्रीष्म, बीते दिवस बसंत के लगा ज्येष्ठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों का त्रास, अवनी आतप से लगी जलने सब ही हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल, रवि मयूख के ताप से झुलस गए बन बाग, सूखे सरिता सर तथा नाले कूप तड़ाग, लगी आग पुर ग्राम में चिंता बढ़ी अपार, नर नारी व्याकुल बसे भय सदैव उर्धार। यहां इस पृष्ठ पर एक चमकते हुए सूर्य का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 95, साझी समझ। अब इस कविता पर अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए। खोजबीन के लिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु पर अधिक जानकारी के लिए यहां एक YouTube लिंक दिया गया है। यह लिंक इस प्रकार है https://www.yout.com/watich?v=capital T6 capital V capital A capital V capital O C capital U B capital Y capital U। आंधी पानी। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए

0: एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=v6DQ(B)E(N)2U8। वसंत। वसंत से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=v6DQ(B)E(N)2U8। ऋतुएं। इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए यहाँ एक YouTube लिंक दिया गया है जो इस प्रकार है https://www.youtube.com/wattch?v=i(YY)2H8। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यंकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर चांद मोहम्मद।
2: निर्माण अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी

करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेथु मेलाथियन 50 ईसी दवा या फिर डाईमेथु 8 30 ईसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.5

0: 8 मेगाहर्ट्ज पर आरजे अनु को, और ये है हमारा खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। अभी हम बात करेंगे, जी हाँ, वैसे तो जो खेती है वो सिर्फ हल और जो खेत है वही तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें किसानों की सहायता के लिए बहुत सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं, जहाँ से वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे योजनाओं के बारे में हो, चाहे आपको खेती से जुड़ी कोई भी दिक्कतें आ रही हों, आप उन ऐप का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हमारा विषय है सूचना क्रांति, मोबाइल ऐप का कृषि में उपयोग। इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर चंदन कुमार पांडा, जो कि वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, सूचना और एक उपयोगी सूचना, क्या अंतर है, ये क्या होता है?
1: थैंक यू मैडम। एगेन, तो पहले जितना किसान बंधु हमारा एफएम रेडियो स्टेशन सुन रहे, सबको थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ मैं प्रसार शिक्षा की तरफ से भी आप सबको हार्टफेल ये बताता हूँ। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, जो सूचना और मतलबी सूचना बा जो भी बोले यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जब सूचना आता है, सब सूचना सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्यों? आप देखेंगे तो मोबाइल में जाएंगे तो सोशल मीडिया में जाएंगे तो बहुत तरह का सूचना आता है आपके पास। मान लिया मेडिकल रिलेटेड कुछ सूचना आ गया, इमीडिएटली उस तरह का इन्फॉर्मेशन की आपके पास ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूलेस हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उसी तरह से कोई किसान के पास, मान लिया हमारा सबौर बा भागलपुर एरिया में किसान है, तो उसके हम दूसरी तरह का कुछ क्रॉप के बारे में, यहाँ का किसान क्या गेहूँ हुआ, मकई हुआ, डिफरेंट टेबल जो वेजिटेबल्स हुआ, उसके बारे में पता करना चाहते हैं, उसके हम ग्रेप्स के बारे में बताएंगे तो उनको क्या इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी तरह का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहिए जो उनका ज़रूरत है, और उसी आधार पर आप भी मैं डिस्कस भी करूँगा मोबाइल ऐप्स में, जिसे डिफरेंट टाइप का मोबाइल ऐप है, बहुत मोबाइल ऐप्स है। आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का गूगल प्ले स्टोर में जाके एक बार टाइप करेंगे तो मोबाइल ऐप्स इन एग्रीकल्चर अब बहुत तरह का मिल जाएगा। नॉन नेसेसरीली किसान के लिए हर तरह का मोबाइल ऐप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों? सब मोबाइल ऐप सब एक ही तरह से उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर जरूरत को उसको जो जरूरत है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो डिस्कशन में किसान के पास रहता है, जो मोस्टली किस तरह का इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है किसान को, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। क्यों? मोबाइल ऐप्स जब डेवलप किया जा रहा है तो डेवलप इसीलिए किया जा रहा है ना, किसान के जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो किसान को किस तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है, मैंने एक स्टडी भी किया था यही बाजू वाला 3-4 गाँव लेके, जो इन्फॉर्मेशन किस तरह का इन्फॉर्मेशन किसान को जरूरत था, मैं उसका रैंकिंग भी किया था। तो रैंकिंग करने के बाद मैंने देखा जो किसान को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो जरूरत होता है, बीज, जो सीड हम लोग बोलते हैं, बीज का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग। सबसे बोलते हैं सर बीज अच्छा क्वालिटी बीज मिल जाएगा, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही होता है जो अच्छा क्वालिटी का बीज, इसके बारे में किसान को इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जरूरत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो तो पौधा तो क्या बोलते जर्मिनेट हो गया, सीड भी जर्मिनेट कर गया, पौधा भी आ गया, उसके बाद कीड़ा मकोड़े के मतलब इंसेक्ट और डिजीज का अटैक आ जाता है, इसके बारे में किसान को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जरूरत है। क्यों? टाइमली समय के आधार पर जितना कीड़ा मकोड़ा आता है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो फसल का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब हुआ उनका जो एक्सपेक्ट जो ईल्ड होता है वो एक्सपेक्ट ईल्ड के आधार पर नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरा उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसान लोग, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जे शुरुआत से लेके, जैसे मतलब किस समय हम बुआई करें और किस समय हम जुताई करें, कब पटाए मतलब इरिगेशन कब डाले, हम खाद किस समय दें, कितना अमाउंट ऑफ खाद देंगे, इस तरह का तरह तरह के इन्फॉर्मेशन का किसान के पास ज़रूरत पड़ता है। और आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत भी है ना, किसान को हम लोग कैटेगरी करते हैं मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, मतलब उसका लैंड कितना अमाउंट ऑफ लैंड है उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कैटेगरी है, रेगुलेशन है उसके, वो किसान का इन्फॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट ना हम ये स्टडी करके देखे हैं जो वो भी चेंज हो जाता है उसका लैंड होल्डिंग के आधार पर। और खरपतवार मतलब वीड मैनेजमेंट के बारे में किसान को भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है
0: जी। और पहले किस प्रकार की सूचना पहुंचाई जाती थी किसानों तक?
1: ओके ओके हाँ, पहला देखिए इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करने का जो तरीका था मोस्टली

0: क्या होता था अभी भी है, मतलब फार्मर टू फार्मर, एक कोई गांव में अच्छा किसान है, बहुत दिन से खेती के वगैरह कर रहा है, उनके इस क्रॉप के कल्टीवेशन व खेती के बारे में ज़्यादा कुछ पता है, वो तो क्या करते थे, वो एक्सपीरियंस जो हो जाता है और उनके साथ थोड़ा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व साइंटिस्ट बोलिए, उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत रिश्ता बना रहते थे, रेगुलर आना जाना लगा रहते थे, वो आने जाने के अंदर उनका भी नॉलेज ग्रेन हो जाता था, एक्सपीरियंस भी बढ़ता था। वो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, वो हो गया गाँव का प्रोग्रेसिव फार्मर। तो गाँव का जितना भी प्रोग्रेसिव फार्मर होता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पहले भी प्ले करता था, अभी भी वो लोग वो इम्पोर्टेंट रोल आपका किस खेती में प्ले कर रहा है। ये छोड़ के भी हम लोगों का सिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होता है, किसान सलाहकार होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, ये सबसे भी किसान को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी किए है, तो उसमें भी देखा है एग्री इनपुट डीलर्स, इसका मतलब जहाँ से किसान लोग खाद दबा वगैरह जो भी लेते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। क्यों होता है, देखिए उनके पास वो लोग जब दुकान मनाते हैं या दुकान चलाते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड बोलिए जो भी है वो सब रहता है, और किसान को भी वो लोग एडवाइस देते हैं, वो लोग भी ट्रेंड होता है। हमारा यूनिवर्सिटी में भी 15 दिन का एक ट्रेनिंग भी चलता है उन लोगों के लिए, फर्टिलाइजर डीलर के लिए है, तो उसे फर्टिलाइजर तो नहीं है, उसके साथ वो लोग कुछ दवा वगैरह भी रखते हैं, तो उस आधार पर उन लोगों के पास भी थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हो जाता है, और वो लोग कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और कंपनी वाले भी उन लोगों को रेगुलरली टाइम टू टाइम उन लोगों को अपडेट भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये सब अपना जो कन्वेंशनल जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, मतलब जहाँ से किसान को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो है, वहाँ से वो मिल जाता है। वो छोड़ के हमारा पुराना जो है, अब हम लोग रेडियो FM बोल रहे हैं, लेकिन रेडियो तो बहुत पुराना समय से है, जब से हमारा क्या बताओ सोवियत क्रांति जब हुआ था, हाई यील्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, तब से ही वो क्या बोलते हैं, जब शाम के समय में किसान के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, रेडियो गवर्नमेंट का क्या सोच है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है, मान लिया गेहूं का खेती हो रहा है, उस समय के आधार पर किस तरह का कीड़ा मकोड़ा आ सकते हैं उसके बारे में वो लोग भी डिस्कस भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये टोटल एक सिस्टम है जो पहले था अभी भी है, लेकिन समय के आधार पर आप देखिए सोशल मीडिया बोलिए, आपको ये भी पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये भी है किसान हेल्पलाइन है, वहाँ से भी किसान लोग, वहाँ पे भी किसान लोग फ़ोन लगाते हैं व फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अभी के समय में जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन जो किसान लोगों को पहले मिलता था मान लेते थे, अभी भी ले रहा है, लेकिन नया नया कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये लोग मांग रहे हैं, जैसे आप मान लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ कुछ किसान बोलते हैं सर आप बताइए ना सर कहाँ से ड्रोन खरीदेंगे, कितना प्राइस होगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा, और फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में वो पूछते हैं। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट अभी एरिया हो रहा है, देखिए लेबर जो मार्केट है ना थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर में ज़्यादा लेबर शिफ्ट हो रहा है, तो लेबर एक इशू हो गया, जो जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय ज़्यादा दिक्कत है, हार्वेस्टर जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ लेबर का भी क्राइसिस होता है, इस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और किस तरह के इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट इन्फॉर्मेशन तो है, मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब जैसे मान लिया कोई एक फसल का भागलपुर यहाँ पर एक प्राइस होता है, पटना में भी एक प्राइस होता है, तो थोड़ा गैप हो जाता है, कोई कभी कभी क्या हो जाता है जैसे भागलपुर में 5 रुपया कम, पटना में 10 रुपया मान लिया ज़्यादा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसान के पास पहुँच जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा भाव मिल जाता है और उनको भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है, और ये भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है।
1: जी अगला सवाल ये है सर कि इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों को, क्या कुछ प्रोसेस है इसके बारे में बताइए।
0: हाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो ही गया है उसके आधार पर आप मोबाइल ऐप्स आ गया है, मोबाइल ऐप्स आपका पहुंच गया है, मोबाइल ऐप्स मतलब एक एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है स्मार्टफोन बोलते हैं, दो तरह का, एक iOS सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, दूसरा होता है एंड्रॉयड, मोस्टली आप देखेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में चलता है, और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर वही मोबाइल अभी देखिए जो स्मार्टफोन हम लोग बोलते हैं, इस स्मार्टफोन के कारण इन्फॉर्मेशन ठीक से आप देंगे तो हम लोग एक टेक्निकल टर्म फिंगर टिप बोलते हैं, तो आपका सामने ऑलवेज 24/7 मोड में कंटिन्यूअसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मोबाइल एप्स के थ्रू से। नहीं, अभी जो बात होता है मोबाइल एप्स है क्या,

0: और ये कैसे किसान को हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे ना। मोबाइल ऐप्स एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू से कोई भी किसान क्रॉप का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसका क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब उसका जो बीमारी वगैरह होता है, जो कीड़ा मकोड़े आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और भी कुछ इशू जैसे मार्केटिंग रिलेटेड जो इशू है वो भी यहाँ से ये लोग ले सकते हैं
1: जी। अब इसके बाद एक सवाल और कि खेती में कौन कौन से मोबाइल ऐप्स जो अभी हैं उपलब्ध हैं जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगे।
0: अच्छा देखिए, अब देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मोबाइल से लिखेंगे तो बहुत मोबाइल से आपको मिल जाएगा। कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह वो लोग भी बना रहे हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल भी बना रहे हैं, तो कुछ मोबाइल ऐप्स आपको फ्री में मिल जाता है, कोई मोबाइल सब पेड होता है। लेकिन इस मोबाइल ऐप को हम कैटेगरी करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कुछ होता है क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा होता है मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा होता है क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, और भी होता है प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और फाइनली वो हम लोग बोल सके सीड रिलेटेड। इसका मतलब यही हो गया, आप जितना भी मोबाइल ऐप है उसको कैटेगरी कर दो ब्रॉडली, हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक हो गया क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा हो गया क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, चौथा हो गया प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और पांचवा हो गया सीड रिलेटेड, मतलब कहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी सीड मिल जाएगा ये आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हम छोटा छोटा करके इसके बारे में बताए। क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड इसमें क्या किस तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे मान लिया आपको सोइंग कब करना चाहिए, सीड रेट आपको कितना देना चाहिए, और कब आपको क्रॉप के मैच्योरिटी के बारे में बताएगा, इरिगेशन कब देना मतलब आपको देना चाहिए, इस रिलेटेड छोटा छोटा जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसमें ज़्यादा रहता है। और क्रॉप प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो मोबाइल ऐप्स होता है उसमें देखिए क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहता है, प्लांट प्रोटेक्शन मतलब आप कीड़ा मकोड़ा जो लगेगा, जो जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा, मान लिया मकई का बा गेहूं का फसल में किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया, मतलब कीड़ा का अटैक हो गया, उस समय किसान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों? वो टाइम नहीं देता है, मतलब जब कीड़ा का अटैक हो जाता है या कोई बीमारी आ जाता है तो किसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसा होता है, मान लिया आपको जैसे बताया था मेज के लिए फॉल आर्मी वार्म, ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इंसेक्ट के आधार पर काम करता है। तो ये फॉल आर्मी वार्म को आप 2-3 दिन उसका क्या बोलते हैं मोस्टली जो सीडलिंग स्टेज में रहता है, छोटा जब रहता है पौधा, उस समय टाइमली उसको मैनेज आप नहीं किए हो तो आपका क्रॉप को वो टोटली डैमेज कर देगा। तो किसान को उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम वो सिम्टम क्या है, किस तरह से दबा दे, मतलब पेस्टिसाइड कैसे अप्लाई करे, किस समय अप्लाई करे, शाम में करे ना सुबह करे, और करने के समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्यों ये भी सब इशू को ये प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो ऐप्स होता है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का ई नीरोग आप लोगों को पता होगा, वो इस रिलेटेड डिस्कशन करता है। और मार्केटिंग रिलेटेड जो क्या होता है आपको पता होगा, गवर्नमेंट का ई नेम एक प्रोग्राम भी है, उसके आधार पर वो जो जितना भी मार्केट को कनेक्ट करके रखते हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट है ऑल ओवर इंडिया का, मेजर जो क्रॉप होता है वेजिटेबल होता है उसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है व कैसा प्राइस रहता है पता चलता है। आप बोलेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा किसान को जरूर होगा, वो बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम जितने भी बोले अभी भी हमारा सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम में मिडिल मैन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मेजर रोल प्ले करता है। तो किसान को जब पता चल जाएगा, जैसे ठीक है दिल्ली का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, पटना का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, कलकत्ता में ऐसा चल रहा है, तो किसान क्या मिडिलमैन के साथ बार्गेन करके वो थोड़ा प्राइस भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग रिलेटेड ऐप्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। और मैंने ये भी बताया था जो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ऐसा भी ऐप्स है जिस ऐप्स के थ्रू से किसान भी चाहे तो अपना सामान वगैरह थोड़ा लार्ज क्वान्टिटी होना चाहे वो भी बेच भी सकते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ कंपनी भी आगे बढ़ गए हैं वो क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके किसान को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेचुरली आप लोगों के मन में आएगा, वो क्वेश्चन यही है जैसे सर मोबाइल ऐप्स तो है, मोबाइल ऐप्स कैसे हम सर्च करें और कैसे मोबाइल ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करें, ये क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत को पता है लेकिन फिर भी मैं ये भी मालूम करना हम लोग को होना चाहिए जी। कुछ कुछ किसान मान लिया

इस रेडियो टॉक सुनने के बाद उसका मन में भी आ सकता है, नहीं सर इन लोग जब बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जब बोल रहे हैं, यार ये माने मोबाइल ऐप्स हमारा काम में आ सकता है, तो वो कैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ बता देता हूँ। पहले आपको स्पेसिफिकली मैं बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखाएगा, तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मान लिया हमारा यूनिवर्सिटी का जो मोबाइल ऐप है ई नीरो, बा आप इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा एक ऐप चलता है प्लांटिक्स, मान लिया आप टर्म को आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के बाद क्या होता है, वो सर्च जो एक क्या बोलते हैं एक ग्लास की तरह सर्च को सिम्बल कुछ देता है, उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने उस रिलेटेड मोस्टली मान लिया हमारा ई नीरोग होगा तो ई नीरोग का एप्स का आइकॉन आपके पास आ जाएगा, और उसमें फाइल कितना एमबी का होगा नहीं होगा वो भी उसमें लिखा रहता है, आप देख लीजिए उतना ज़्यादा मान लिया किसी का 10 MB हो सकता है, किसी का 15 MB हो सकता है, 20 MB हो सकता है, आप आपका मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल में जाइए। तो इंस्टॉल जब कर देंगे थोड़ा टाइम लेगा सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के पहले अभी जो सिस्टम होता है सिक्योरिटी चेक में जाता है, तो सिक्योरिटी चेक करके आपको भी दिखा देगा इस ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधा आपको वार्न कर देगा, ये ऐप्स का सिक्योरिटी रिलेटेड सम इशू है। आप देखने के बाद कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हैं ये कर लीजिए, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा सीधा ही ओपन करके आएगा OPEN, तो ओपन आप क्लिक करेंगे तो जैसे प्लांटिक्स जो है अभी देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, सर हम इंग्लिश में तो हमको डील नहीं कर पाएंगे, बात सही है, उसके लिए भी अभी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, लोकल वर्नाकुलर भी आ सकता है, मान लिया आपको हिंदी की ज़रूरत है ठीक है लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इंग्लिश की जगह आप हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश बंगाली बहुत तरह का लैंग्वेज उसमें ऑप्शन रहता है, आप हिंदी चूज करना चाहते हैं सीधा हिंदी को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद वहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, मतलब आपके ऐप्स के क्या बेनिफिट है, आप ऐप्स को कैसे ऑपरेट करोगे इस तरह का दिया जाता है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे बहुत तरह का वो आपका ये मांगता है एक्सेप्टेंस मांगता है, जैसे वो आपका लोकेशन भी ट्रैक करना के लिए परमिशन मांगते हैं, आप देंगे तो होगा, वो आपका मोबाइल का कैमरा का भी परमिशन मांग सकता है, जैसे आपका मोबाइल कैमरा का यूज कर सकते परमिशन देंगे कि नहीं देंगे वो भी मांगता है, तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट टाइप कोई कोई मोबाइल में ऐप्स में ऐसा भी हो सकता है आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, और मतलब आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा उसके बाद एक OTP आएगा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इस तरह से आपको कॉम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके आधार पर आपका जो मोबाइल ऐप्स आपका इंस्टॉल हो जाएगा, होने के बाद आपको वो मोबाइल ऐप्स को यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर किस तरह का मोबाइल ऐप्स है, पहले मैंने बता दिया आपके पास पेन और पेपर है तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, ई नीरोग एक मोबाइल ऐप्स है, पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी का ये मोबाइल ऐप्स है, ये प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्ट कैटाग हो डिजीज का प्रॉब्लम हो इसके बारे में। दूसरा एक ऐप्स है लिख लीजिए एग्री ऐप्स है, AGRI एग्री APP ऐप। इसके बाद एक है इपको फर्टिलाइजर के बारे में आप सुने हैं, इपको एक बड़ा कंपनी है, इपको किसान IFFCOKISAN इपको किसान। इसके बाद आपको मिल जाएगा पूसा कृषि PUSA पूसा KRISHI पूसा कृषि। इसके बाद आपको ऐप्स मिल जाएगा खेती KHETI खेती। इसके बाद आपको मिल जाएगा कृषि जागरण KRISHI JAGRAN कृषि जागरण। इसके बाद आपको एक ऐप्स मिलेगा BIJAK ऐप्स बीजक, ये मोस्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस। इसके बाद आपको मिल जाएगा खेती बाड़ी KHETI BADI, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ KHETI BADI खेती बाड़ी, ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना उन लोगों के लिए ये इस ऐप्स के थ्रू से आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं इसके थ्रू से। ये छोड़ के एग्री मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 से एक ऐप्स अभी भी काम कर रहा है, इसमें वेदर डाटा क्रॉप रिलेटेड डाटा वो पिक्चर बेस है, देख सकते किसान सुविधा बोलते हैं KISAN SUVIDHA सुविधा है। ये छोड़ के आपको और भी मोबाइल्स है जैसे है फार्म बी FARM फार्म BEE, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स है।
आप थोड़ा ऐप्स के बारे में पढ़ भी लीजिए और

0: यूट्यूब वगैरह में जाइए, वहाँ भी जाके भी आप ऐप्स के बारे में थोड़े देख भी सकते हैं वो कौन सा ऐप इस कितनी आपका काम में आएगा। क्यों, बहुत तरह का ऐप्स है, देखिए हर तरह का ऐप्स आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वही ऐप्स को यूज़ कीजिए। पहली बार बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी के लिए, आप इंस्टॉल करने के समय सिक्योरिटी एक बार चेक देखिए क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ये मोबाइल ऐप्स को आपका मोबाइल में कंटिन्यू, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत तरह का फ्रॉडुलेंस रिलेटेड इशू आता है, कुछ लिंक वगैरह भेज देते, उसके बारे में भी केयरफुल आप लोग रहिए, ये भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो फाइनली यही बताएंगे, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उसका अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी है, आप कैसे इसको यूज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्यों स्मार्टफोन भी अवेलेबल है और इंटरनेट का नेटवर्क भी अभी अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द गांव में तो पहुंच ही गया इंटरनेट का कनेक्शन। सो इट इज़ नाउ अप टू यू किसान बंधु, फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नया साल आप लोगों के लिए अच्छा भी हो, ये भी हम ऊपर वाला से क्या प्रार्थना भी करते हैं, और आप लोग यूज कीजिए, और हमारा यूनिवर्सिटी का जो 90.8 FM ग्रीन जो इसको भी सुनिए और आप लोग भी बेनिफिट भी रहिए। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, तो आप इन ऐप का ज़रूर लाभ उठाइए, आपके लिए ही ये ऐप डेवलप किए जाते हैं, इससे आपको बहुत बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं TB रोग के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं TB मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि TB है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
5: धन्यवाद।

0: आरजे जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, टीबी से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से ख़त्म कर दिया जा सके।
1: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
0: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है, या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए जरूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीवी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
0: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को दो हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई दे सकता है, और ये गंभीर संकेत होते हैं अगर आपको बलगम के साथ खून दिखाई दे। इसके अलावा अगर बार बार बुखार आता रहे, खासकर शाम या रात के समय, और रात में अधिक पसीना आए, तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है, और कुछ लोग सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं। इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
1: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
0: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। जिसे कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा। है जिन लोगों का शरीर

कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो टीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन्हें डायबिटीज है और एचआईवी से प्रभावित है उन व्यक्तियों में भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है आरजे बाबू। और एक महत्वपूर्ण बात जो

0: शराब से बिल्कुल बचा कर रखें खुद को, और जो भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
1: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
1: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: देखिए आरजे जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है? बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जांच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयां बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है आरजे बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए, दूसरा कदम कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए, और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा, और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष ओपीडी में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुँच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा, और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है, ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
0: नहीं आरजे जी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में बलगम की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, यानी कि उनके जांच में टीबी निकलता है, तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
1: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं?
0: बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए, और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा, और अगर लक्षण दिखने के बाद, जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
1: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है। इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है, और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयां कम असर करने लगेगी, और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
1: टीकन देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है, ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है। सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है और अब जांच कई जगहों

0: की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
1: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
1: टीकन देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
0: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
1: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें, और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर बिल्कुल ना करें।
1: दोस्तों, याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक सवाल जो अक्सर श्रोता पूछते हैं, इलाज तो ठीक है लेकिन टीबी मरीज कमजोर हो जाता है, ऐसे में सरकार या समाज उनकी क्या मदद कर सकता है?
0: बहुत जरूरी सवाल है ये। टीबी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल भी चल रही है, जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो, तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। टीकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी

0: छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है?
1: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
0: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तीकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
1: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान हैं और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है, ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
0: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
1: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
0: दोस्तों, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता और आपका सहयोग ही बनाएगा टीबी मुक्त भारत। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। और अब समय है विदा लेने का, पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
3: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात।

0: आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम

दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं ईश्वर चंद्र और आपके समक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार जो कि SMS हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसका विषय है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त कृषि का एक विकल्प। हम विकल्प इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने अपनी खेती को इतनी ज़्यादा रासायनिक युक्त कर दिया है कि अब हम उस रासायनिक मुक्त की तरफ हम बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार किसान भाइयों, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जो हमारे समृद्ध पारंपरिक ज्ञान द्वारा समर्थित है और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित है, जो इसे टिकाऊ और व्यवहार्य पद्धति बनाती है। इसे आज की भाषा में परिभाषित करें तो प्राकृतिक खेती एक विविध कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है तथा जिससे कार्यात्मक जैव विविधता का इष्टतम उपयोग होता है। अगर दूसरी सरल भाषा में से बात किया जाए तो प्राकृतिक खेती एक ऐसे अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणाली का संरक्षण और पोषण करते हुए उत्पादन को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के रासायनिक तत्वों के उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि प्राकृतिक खेती क्यों करें, प्राकृतिक खेती करने के लिए कई कारण हैं, जैसे कि खाद्य असुरक्षा, भोजन और पानी में जो कीटनाशकों और उर्वरकों का अवशेषों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसे

0: विभिन्न समस्याओं से समाधान प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती से रोजगार पैदा करने की भी क्षमता है, जिससे ग्रामीण युवाओं का पलायन रुकेगा। प्राकृतिक खेती उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखती है, जिससे ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।
1: जी, तो इस तरीके से प्राकृतिक खेती ये आपके लिए आज के समय बेहद ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अपने पीछे चलें तो इस रासायनिक खेती की शुरुआत बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, बल्कि जो जिस जनरेशन के साथ हम लोग हैं उसे पिछली पीढ़ी जो है, पिछली जनरेशन ने इसे शुरू किया था और संभवतः इस वजह से किया था ताकि अधिक से अधिक उत्पादकता ली जाए। लेकिन इस वर्ष या पिछले वर्ष भारत सरकार का जो एक लक्ष्य रहा कि प्राकृतिक खेती की तरफ अब हमें बढ़ना है, अब हमें थोड़ा गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीनी है। जब हमें चुनौतियां थीं कि हमें पेट भरना है, अधिक से अधिक खाद्यान्न संकट को पूर्ति करनी है, गरीबी को मिटाना है, भुखमरी को मिटाना है, तब तक तो ये रासायनिक खेती ने हमें बहुत सहायता भी किया है, हम एक बारगी इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारी मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर इसका दुष्प्रभाव सामने आया है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगली पीढ़ी को हम क्या हस्तांतरित करेंगे, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती हमें अपनाने की ज़रूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच क्या समानताएं हैं, क्योंकि हम जैविक खेती के बारे में हम बहुत सारे जैविक उत्पाद देखते हैं और मार्केट में थोड़ी सी महंगी कीमत पे या कई बार ज़्यादा कीमत पे जैविक उत्पाद हमें आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर के ग्रॉसरी मार्केट तक में आपको हर तरह के जैविक उत्पाद की भरमार रहती है। तो अब ये प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या फर्क है, जरा हमारे जो श्रोता भाई हैं, श्रोता बहने हैं, उनके लिए जरिए बताएं।
0: सबसे पहले आपको समझना होगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त खेती का एक प्रकार का तरीका है। दोनों प्रणाली में किसानों को खेती के साथ साथ सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रसायन उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग करने से प्रबंधित करती है। इसमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों तरीके में किसानों को देसी नस्ल का बीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सब्जी, अनाज और दालों का बीज का। और लास्ट यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के जो तरीके होते हैं वो जैव रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण तरीका को बढ़ावा देते हैं। अब जब जैविक खेती था तो प्राकृतिक खेती लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि किसान भाइयों आप लोग जानते हैं कि जैविक खेती में जो इनपुट लगते थे, जैसे वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, यह सब ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। अब उसी चीज़ को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती का विषय लाया गया है, जिसमें कम मात्रा में गोबर, गोमूत्र, इस सब का उपयोग करके हम उसको प्राकृतिक खेती में अपना सकते हैं।
1: तो इस तरीके से हमने जाना कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या समानताएं हैं। अब हम जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बीच में क्या क्या अंतर हैं, यानी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जैविक खेती में हैं और प्राकृतिक खेती में नहीं है, जो प्राकृतिक खेती के जो उद्देश्य हैं वो जैविक खेती से थोड़े अलग हैं, तो इसके अंतर जो हैं डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: जैसा कि प्राकृतिक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं मिलाया जाता है और न ही पौधों को दिया जाता है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और इसमें बाहरी स्रोतों से खेत में मिलाया जाता है। दूसरी बात, प्राकृतिक खेतों में सूक्ष्म जीवों और केचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाता है।

0: जबकि जैविक खेती के लिए अभी भी बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद मिश्रण, निराई गुड़ाई आदि की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, प्राकृतिक खेती में न तो जुताई की जा सकती है और न मिट्टी को चुकाया जा सकता है और न ही उर्वरक दिया जाता है और न ही इसमें निराई गुड़ाई का कोई तरीका अपनाया जाता है। जैसा कि जानते हैं कि जैविक खेती में खाद की अधिक मात्रा में उसका आवश्यकता होता है, जिससे उसकी लागत और महंगी हो जाती है और इसका आसपास के वातावरण पर भी पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है। जबकि प्राकृतिक खेती एक बेहद कम लागत वाली कृषि पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के अनुरूप होता है।
1: तो इस प्रकार आपने जाना कि जो प्राकृतिक खेती है वो जैव विविधताओं को अपने में समेटता है और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को भी बरकरार रखता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी ऐसी पद्धति है जो अपनाई जाती है जिससे कि हमारे जो प्रकृति है, प्रकृति के जो जितने भी अवयव हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं और साथ साथ जो उसके उत्पाद होते हैं वो भी हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव और पशु जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है।
0: जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य विविधता को बनाए रखना, पशु कल्याण को सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थानीय संसाधन को कुशल उपयोग पे जोर देना और पारिस्थितिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती जैव विविधता के साथ काम करती है या मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और खाद उत्पादन प्रणाली के साथ साथ पौधे और जीवित जीवों दोनों के जीवन की जटिलता का प्रबंधन करती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए इन बातों पे विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला, जुताई न करना। इसके अंदर होता है कि वार्षिक जुताई में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के उपयोग से केचुआ की आबादी में लगातार बदलाव आता है। जब खेत की जुताई नहीं करते हैं तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे केचुओ के प्रसार में वृद्धि होती है। केचुओ मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाने और अपनी कास्टिंग से मिट्टी को समृद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे जो पत्ती है, मल्चिंग है वो मिट्टी की सतह पर लगाई जाने वाली एक परत है। मल्चिंग निश्चित रूप से मिट्टी की नमी को संरक्षित करती है, उसे ठंडा करती है और उसके सूक्ष्म जीवों की रक्षा करती है। पुलाव से मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी की मात्रा विकसित होती है जो सूक्ष्म जीवों और केचों के विकास के लिए अनुकूल होती है। यह बिना जुताई के बीजों के अनुकरण में सुधार करता है। दाल वाली फसलों को मल्चिंग से उगाने पर मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ जाता है और खरपतवार की वृद्धि में कमी आती है। उसके बाद बीजामृत जो है, जो कि बीजों को उपचार के लिए मुक्त यूज किया जाता है प्राकृतिक खेती में बीजामृत का जो प्रयोग किया जाता है वो बीजों को उपचार के लिए किया जाता है। यह गाय के गोबर, गोमूत्र, चूने और मुट्ठी भर मिट्टी से तैयार किया जाता है। गाय के गोबर में प्राकृतिक रूप से लाभकारी सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को बीजा अमृत से के रूप में संवर्धित किया जाता है और बीजों को इनोकुलम के रूप में क्रियाशील किया जाता है। बताया गया है कि बीजा अमृत से बीज का उपचार करने से फसल में हानिकारक मिट्टी जनित रोग जनकों से बचाया जाता है। 20 लीटर बीजा अमृत 100 किलो बीज के उपचार के लिए पर्याप्त होते हैं। अब सवाल है कि बीजामृत बनाए कैसे। इसके बनाने के लिए पहले 5 किलो गोबर को एक सूती के कपड़े में बांधकर उसे 20 लीटर पानी में डुबाया जाता है, जिसे हम 12 घंटे तक छोड़ देते हैं। दूसरा एक लीटर पानी हम लेते हैं और जिसमें हम 50 ग्राम चूना मिलाकर

0: उसे हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन जो कपड़े में बांधे जो 5 किलो गोबर होते हैं उसे निकाल कर हम 2 से 3 बार उसे पानी में निचोड़ देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। फिर उस 20 लीटर पानी में खेत की मुट्ठी भर मिट्टी को अच्छे से मिला देते हैं। मिलाने के साथ साथ जो हम 50 ग्राम चूना जो 1 लीटर पानी में मिलाए हुए रहते हैं उसे भी हम उस बाल्टी में मिला देते हैं। इसके बाद उसमें हम 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं और उसे अच्छी तरह मिलाकर हम उसको तैयार करते हैं। जब बीजा अमृत जब बन जाते हैं तो उसके अगले दिन से हम उसे बीज उपचार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और बीज उपचार के लिए 100 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 20 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त है। बीजों पे घोल लगाकर अच्छी तरह मिला ले या बीजों को छाया में उसको सुखा देना चाहिए। बीजा अमृत से पौधों को जड़ों को भी उपचारित किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पत्ती है जीवा अमृत जो है जो मिट्टी के सूक्ष्म जीवों मिट्टी की उर्वरकता में सक्रिय कार्य करते हैं क्योंकि वे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के चक्र में शामिल होते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वे मिट्टी में प्रवेश करने वाले कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और विघटन के लिए तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में पोषक तत्वों के पूर्ण चक्रण के लिए लाभदायक है। यह पौधे के अपघटन खनिजीकरण और पोषक तत्व प्रदान करने में भाग लेते हैं। अब यह बीजा अमृत अगर बनाना है तो उसको हम बनाने की क्या क्या विधि होते हैं। एक जैसा आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 200 लीटर बीजा अमृत पर्याप्त होते हैं जिसे हम सिंचाई के द्वारा या उसको छिड़काव कर सकते हैं। अब उसके बनाने की विधि क्या क्या है। 200 लीटर बीजा अमृत बनाने के लिए पहले हम एक ड्रम लेते हैं जो 250 से 300 लीटर का ड्रम होते हैं। उसमें हम 180 लीटर पानी लेते हैं। पानी लेने के साथ 10 किलोग्राम ताज़ा गाय का गोबर मिलाते हैं। फिर उसमें 10 लीटर गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ मिलाते हैं और 2 किलोग्राम बेसन मिलाते हैं। उसके बाद 100 से 150 ग्राम पीपल के नीचे का मिट्टी जड़ का मिट्टी लेकर उसमें हम मिला देते हैं। सभी सामग्रियों को ड्रम में मिलाकर उसे हम पूरी रात भर के लिए हम छोड़ देते हैं। पूरे सामान मिलने के बाद हम दिन में उसे 2 बार एक लकड़ी से उसे हम घुमाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक सुई के दिशा में और एक सुई के दिशा के उल्टा 2 बार उसे हम मिलाते हैं जिसे वो अच्छी तरह मिल जाए। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि ड्रम को बोरी से ढककर छाया में रखते हैं या अगर छाया में रखने के लिए सूती कपड़ों या प्लास्टिक का मच्छरदानी का उपयोग करते हैं उस ड्रम को ढकने के लिए। अब हर जीवा अमृत जब हम 9वें दिन जब हो ऐसा ये सेम प्रक्रिया हम 9-8 दिन तक करते हैं। 9वें दिन हम इसे उपयोग करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। अब इसे जीवा अमृत को उपयोग करने के लिए आप 12 से 15 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक इसको उपयोग कर सकते हैं।
1: और इस तरीके से आपने जाना किसान भाइयों कि बहुत सारे अवयव जो हैं इसमें कुछ जीवामृत या बीजामृत बनाकर अपने फसल पद्धतियों में बदलाव लाकर और साथ ही मल्चिंग करके आप प्राकृतिक खेती के जो फायदे हैं उसे आप लेना शुरू कर देते हैं। तो प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं आप तो एक तो आप ये बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक खेती की शुरुआत करते हैं, इससे आपके आसपास के किसान भाई भी प्रोत्साहित होते हैं और आप ख्याल रखें कि यह पृथ्वी और एक जो भूमि है और मिट्टी सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, जिस तरीके से आपको अपने पूर्वजों द्वारा आपको हस्तांतरित की गई यह आपकी जिम्मेदारी है कि इसे भी आप आने वाली पीढ़ियों को ठीक उसी तरीके से उपजाऊ भूमि की तरह आप हस्तांतरित करें। लेकिन जिस तरीके से इसका

0: चल रहा है रासायनिक खेतियों द्वारा, ऐसा लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक स्वच्छ मिट्टी दे पाएंगे जिसमें कि हम जिस तरीके की उर्वरा शक्ति होनी चाहिए उपज के लिए वो हो पाएगी। तो हम इसी प्रक्रिया को हम जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को हम कैसे अपनाएंगे, उसके जो बिल्कुल एक प्रायोगिक जो एक वार्तालाप यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब हम इसके जो प्रयोग विधि हैं जो अभी आपको बताया गया, बीजामृत, जीवामृत, इन सभी का, तो उसमें से जीवामृत है उसका क्या प्रयोग विधि है आप जानिए।
1: जब जीवामृत तैयार हो जाता है 9 दिन के बाद, तो उसे महीना में 2 बार या 1 बार खेत में डालना चाहिए। अब 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ खेत के लिए, जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के पानी के सिंचाई के साथ उपयोग किया जा सकता है। जो फसल है, गन्ना, केला, गेहूं, ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, बैगन, टमाटर, आलू, लहसुन एवं सुगंधित पौधों आदि पर जीवामृत का छिड़काव करने से काफ़ी लाभ होता है। अब यह जो प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, यह अपनाने से कुछ इसके फायदे जो होते हैं और कुछ फायदे आप जानते हैं, जैसे कि यह जो प्राकृतिक खेती है वह अन्य कृषि प्रणाली की तुलना में शारीरिक कार्य और श्रम को अत्यधिक कम किया जा सकता है। दूसरा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से रासायनिक खेती के समान पैदावार संभव है, जो कि आप जब प्राकृतिक खेती अपनाते हैं उसके 3 साल के बाद आप रासायनिक खेती के बराबर पैदावार आप ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होता है जब आप प्राकृतिक खेती अपनाते हैं, तो उससे सूक्ष्म जीवों का जो संख्या होता है उसमें बढ़ते हैं। केचुआ को जो संख्या होते हैं वो खेतों में बढ़ते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं केचुआ जो किसान का मित्र होते हैं, जिस खेतों में केचुआ का मात्रा, सूक्ष्म जीवों का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उस खेतों का जो उर्वरकता शक्ति है वो उतना ही ज़्यादा होगा। चौथी बात कि इसमें जो पानी की आवश्यकता है वो न्यूनतम हो जाती है। पांचवी, यह प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगते हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, उसमें 100 kg लगते हैं। प्राकृतिक खेती में जो इनपुट लगता है उसका जो मात्रा होता है वो बहुत कम लगता है। जैसा कि आप 5 से लेकर 20 किलो गोबर जो पर्याप्त होते हैं 1 एकड़ प्राकृतिक खेती में उपयोग करने के लिए, जैसा कि आपने सुना इससे पहले बीजामृत में 5 किलो गोबर उपयोग किए जाते हैं 20 लीटर बीजामृत बनाने के लिए, और वह 20 लीटर 100 केजी बीजों को उपचार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी, आपने सुना कि जो जीवामृत है, जीवामृत में 20 किलो जीवामृत में जो 10 किलो जो गोबर होते हैं वो पर्याप्त होते हैं 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए, जो कि इसका जो इनपुट जो लागत है इससे कम हो जाता है, और जो प्राकृतिक खेती है उसका जो मुनाफा के साथ साथ जो उपज है वह ज़्यादा किसानों को मिलता है।
0: तो किसान भाइयों, आपने प्राकृतिक खेती के बारे में सभी पहलुओं से परिचित हो गए होंगे, किस प्रकार की खेती है, क्या इसमें इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत होती है, यानी कि बहुत ही कम लागत होती है, क्योंकि रासायनिक खेती में जब खेती अपने बिल्कुल चरम पे होता है तो आप पूरी भागदौड़ करते हैं कि किस तरीके से उसमें खाद डालें, कीड़ा लग गया है तो उसको कीटनाशी डालें, अगर उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार आ गया है तो फिर उसमें आप खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती में इस सभी के रोकथाम के लिए डाले जाते हैं, लेकिन रसायनों से बचा जाता है, यानी आपको बहुत सारे तरीके का खर्च करने से बच जाते हैं, बाजार पर निर्भरता आपकी कम हो जाती है, और सीधे तौर पर आप अपने जो घरेलू स्तर पर जो आपके जो गाय हैं उनके गोबर हैं और अन्य तरह की जो बातें बताई गई बीजामृत और जीवामृत के द्वारा ही आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो इस प्रकार आपके इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है, उसकी उत्पादकता बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, और आप भविष्य के लिए एक बेहतरीन मिट्टी, एक स्वच्छ जलवायु आप आगे की ओर हस्तांतरित करके जाते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती अपनाएं, यही हमसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन।

0: है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे हमारा FM रेडियो 90.8 सुनते रहें और हमें इजाजत दें। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से, मैं आज

0: व्यक्तियों को जागरूक भी करते हैं। तो ओम, आप हमें यह बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा मिलती है।
0: जी, और पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: हम पोषण को संतुलित कर उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कमजोरी, थकान, स्वास्थ्य में नहीं होती है तकलीफ, समस्याएं।
0: अगर व्यक्ति दवाई ना खाए और पोषण अपने तरीके से ही लेना चाहे, अपने घरेलू उपाय के हिसाब से ही पोषण को लेना चाहे, तो क्या करेगा?
1: उसे अच्छी साग सब्जियां खानी चाहिए, स्वस्थ और ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उसका संतुलित आहार बना रहे।
0: पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए?
1: आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड प्राप्त करने के लिए आप अंडे, मांस मछलियाँ, डेयरी, फल सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड आपको अंडे और मांस मछलियों, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही से इत्यादि से मिल जाएगी।
0: और आपका अगर आदमी या व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती
1: है? अगर कोई व्यक्ति सही से पोषण ना ले तो उसे बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, खत्म करने की क्षमता कम हो जाएगी उस रोगों से लड़ने की, हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे।
0: आपका महिलाओं को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या क्या समस्या हो सकती है?
1: महिलाओं को सही से पोषण नहीं मिलने से एनीमिया, जैसे यानी खून की कमी, कमजोरी, थकान, बार बार संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन जैसी कई अस्वस्थ समस्याएं हो सकती है। मैं यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित कर।
0: चलिए ठीक है, बच्चों को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या परेशानियां हो सकती है?
1: बच्चों को सही से पोषण ना मिले यानी उनके पसंद की नहीं बल्कि पोषण से रिलेटेड नहीं मिले तो उन्हें बहुत सी समस्या हो सकती है, जैसे शारीरिक विकास में बाधा हो सकती है, कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, मानसिक बौद्धिक विकास में कमी, सीखने और अध्ययन केंद्रता कम हो सकती है और स्वास्थ्य समस्या और कुपोषण संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
0: जी ठीक है, लीन प्रोटीन क्या होता है?
1: लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा यानी फैट, खासकर संतृप्त वसा और कैलोरी का स्तर कम होता है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है। इसके कुछ अच्छे स्रोत में शामिल है अंडे, मछली, स्नेल्स, फलियां, कम वसा वाला अंडे।

0: कार्यक्रम चलाती है अपनी क्यारी अपनी थाली। तो अपनी क्यारी अपनी थाली क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते?
1: अपनी क्यारी अपनी थाली भारत में खासकर बिहार राज्य में शुरू किया गया एक सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और पोषण युक्त आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिका या छोटी क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों या घरों के पास लगाई जाती है। इन क्यारियों में मौसमी पोषण से भरपूर सब्जियां और फल

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन BAU सबौर से। आज मैं सरधो ग्राम के एक दीपक कुमार से मिल रहा हूं, जो कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां व्यक्तियों वगैरह में साझा करती है। तो दीपक जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं।
4: पोषण एक आहार जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसमें भोजन की प्रक्रिया को किया जा भोजन की प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन प्राप्त हो, प्रोटीन मिले, ऊर्जा मिले, इसे हम पोषण कर सकते हैं।
3: जी, ये तो हो गई किताबी नॉलेज की तरह, आप अपनी भाषाओं में भी सभी सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं।
4: पोषण को हम अपने जीवन में उपयोग खाद्य पदार्थ के द्वारा ला सकते हैं, जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, साग सब्जी, मांस मछली, दूध दही, दाल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं।
3: जी जरूर, बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों को लेते हैं पोषण के रूप में। अगर कोई व्यक्ति दवाई ना लेकर पोषण के लिए घरेलू चीजों का उपयोग करे तो वो किन किन प्रकार से ले सकते हैं।
4: इसके अंदर हम मांस मछली, दाल, मशरूम, ये सब चीजों को ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, साबुत अनाज भी यूज कर सकते हैं, मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, उससे भी शरीर को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, पोषण मिलता है।
3: जी जरूर, पोषण में आपका चौथा क्वेश्चन है, पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड वगैरह को हम कैसे प्राप्त करें।
4: इसमें हम यूज कर सकते हैं, मशरूम को यूज कर सकते हैं, दाल को यूज कर सकते हैं, अंडे को यूज कर सकते हैं, मांस मछली इत्यादि, कद्दू का बीज, मशरूम, ये सब हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत,
3: जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉलिक एसिड वगैरह पाया जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, अगर व्यक्ति सही से पोषण या पोषाहार नहीं लेता है तो उन्हें क्या क्या समस्या का सामना किया करना पड़ सकता है।
4: सही से खाना पीना नहीं खाने के चलते आदमी बीमार पड़ सकता है, मोटापन हो सकता है, हार्ट अटैक का आ सकता है समस्या।

0: थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकता है सही पोषण नहीं मिलने के बाद।
1: जी, महिलाओं को सही से पोषाहार ना मिले तो क्या समस्या हो सकती है?
0: खून की कमी आ सकती है, बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है, कमजोरी आ सकता है, थकान आ सकता है, हार्मोन का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आ सकती है।
1: सातवां क्वेश्चन है, बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर क्या समस्या हो सकती है?
0: बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर उसके सोचने की क्षमता बिगड़ सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, कुपोषण का शिकार हो सकता है, बच्चे के शरीर में वृद्धि नहीं आएगी, बहुत सारी समस्याएं से उसको जूझना पड़ सकता है।
1: जी, हमारे श्रोताओं से कुछ एक क्वेश्चन ये है कि लीन प्रोटीन क्या होती है?
0: लीन प्रोटीन आदमी को मोटा कर सकता है, जिसमें आदमी को बहुत संभल कर खाना पीना यूज करना पड़ता है, जैसे उसको प्रोटीन के लिए अंडे यूज करने पड़ेंगे, मछली यूज करने पड़ेंगे, दाल, कच्ची सब्जी, जिससे प्रोटीन उसको सही मात्रा में मिल जाए।
1: नौवा है कि अपनी चारी अपनी थाली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और या फिर आप क्या जानते हैं?
0: अपनी क्यारी अपनी थाली वो है जिसमें हम अपने बागीचे में या फिर अपने बाड़ी में जो भी साग सब्जी उपजाएं, मशरूम, हरी सब्जी, साग, ये इसका उपयोग आंगनबाड़ी में भी किया जाता है बच्चों को देने में, जो हम अपने घर में उपजा सकते हैं बिना खाद बिना रसायन के, उसको हम अपनी थाली अपनी क्यारी कह सकते हैं।
1: तो क्या अपनी क्यारी अपनी थाली का प्रयोग सभी ग्रामीणों को या फिर सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए?
0: करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, इससे समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इससे आदमी लंबा टाइम तक स्वस्थ रह सकता है, आदमी को ये यूज करना चाहिए, बिना रसायन का खाद्य पदार्थ यूज करना चाहिए।
1: जी दीपक जी आपको धन्यवाद 90.8 FM ग्रीन की ओर से, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा के

संभावनाओं को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी

फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व

0: के बारे में, और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से, और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी, तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों, भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है, तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है, तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है, वो गैस का जो एक्सचेंज है, उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीढ़ और रंध्र और बृहत रंध्र जो है, वो इक्वल अमाउंट में

अवेलेबल रहता है और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो वृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक वृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमीनो एसिड रिलीज होता है। अमीनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमीनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमीनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमीनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है।
तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु, जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो टोबैक्टर हो गया, ये जो स्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन।

यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो उस वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम आवश्यक प्रथम बृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी बृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ? आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिसको इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मेच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में

0: संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है, सूक्ष्म जीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। माने रोग और कीड़ा मकोड़ा, जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं बीटी, बैसुलस थुरिंगजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है, फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसान के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक, जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण होने में, प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का सहभागिता होनी चाहिए, उसमें भी अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार, जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पेड़ पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका

जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहनी क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो PSB बायो फर्टिलाइजर है और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 KG तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन उतना स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे उस मात्रा में, उसका क्वांटिटी घटाएंगे जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जैसे चावल यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20 से 25 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है, जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेर को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल को बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर
जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर।

उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गए कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम एक केजी सॉरी 25 से 30 ग्राम एक केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचड़ा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचड़ा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सॉल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचड़ा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये विधि है जिसको हम बिचड़ा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचड़ा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, दो 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फाइटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे, तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल के वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ

0: उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है। क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वियबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर। आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छत्र छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छत्र छाया को कमजोर कर दी। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन TV यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला

सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है, यानी कि आप अगर घर पर नहीं है तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है, और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी के स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है, और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपने बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है, और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन में हम कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं और मैं हूं ईश्वर चंद्र। साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री शशिकांत शशि जी, जो कि सहायक निदेशक प्रशासन है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे एफएम ग्रीन के स्टूडियो में पहली बार आप पधारे हैं। तो किसान भाइयों और सभी युवा जनों और किसान बहनों, हम काफ़ी लंबे अरसे समय से आप तक हम कृषक मंच कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं, जिसमें कि खेती की बातें और जो आपके हर रोज के जो मौसम के हिसाब से खेती और उसके मौसम की जानकारी के साथ हाजिर होते रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज का ये जो विषय है वो बिल्कुल खास है और इसमें कृषि की बात नहीं होगी लेकिन कृषकों की बात होगी, और वो बात है वो जो हमारे मुख्य भूमिका में होंगे वो किसान होंगे, और चर्चा का जो विषय होगा वो है किसान और पुरुषार्थ। तो शशि जी, आज का जो विषय है किसान और पुरुषार्थ, इसमें जो पुरुषार्थ है एक बहुत ही इसकी विहंगम, एक जैसे ही पुरुषार्थ की बात आती है तो इसका अर्थ हम किसान के साथ जोड़ के कर रहे हैं, इसका आप विश्लेषण थोड़ा करेंगे।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल किसान, जो हमारे देश के किसानों के बारे में आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान ही देश है, आप जानते हैं। यहाँ के लगभग 64% लोगों की जो रोजी रोटी है वह किसानी या खेती से ही होती है।
1: जी,
2: किसान अपने लिए, उसका एक कर्तव्य है कि वह अन्न उपजाएगा।
1: जी,
2: अन्न उपजाने के बाद वह लोगों के बीच वह कुछ अर्थ के लिए वितरित करेगा या बेचेगा। उस अन्न का जो उपयोग होता है वह इंसानों के बीच होता है। इंसान अगर भूखा है तो वह पशु के समान है।
1: बिल्कुल,
2: आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में अन्न की उपलब्धता हर जगह नहीं है।
1: जी,
2: और कई बार ऐसे भी विषम परिस्थितियां आई हैं जब अन्न की उपलब्धता नहीं होने पे इंसान इंसान नहीं रह गया है।
1: जी,
2: तो उस समय किसानों की जो सार्थकता है वह समझ में आती है। किसान जो अन्न उपजाता है विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, किस प्रकार से वह

0: धरती माँ को आग्रह करके अपना सब कुछ न्योछावर करता है, एक उद्यमी के रूप में अपना सब कुछ दे देता है, तो किसानों की जो बात जब होती है तो किसानों की मेहनत की बात बहुत कम होती है, तकनीक की बात होती है, विज्ञान की बात होती है, मौसम आधारित खेती की कभी बात करते हैं तो कभी इस तकनीक को इस प्रकार से उपयोग करने की बात होती है, खाद आधारित जो है सो कई सारी फसलों की बात होती है, लेकिन उसको करने वाले जो किसान हैं उनकी मेहनत की बात, उनके पुरुषार्थ की बात होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं ज़्यादातर कृषक समाज के लोग और कृषक समुदाय के लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कृषि से संबंध रखते हैं लेकिन सिर्फ कृषि को उपभोग के तौर पर लेते हैं, आप कभी सोच कर देखिए कि एक किलो चावल आपके घर में एक दिन में खपत होती है, लेकिन उसे उगाने के लिए किसान कितना मेहनत करता है। आप कभी एक किलो धान उगा करके आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसे उगाने में कितना मेहनत लगता है, एक किसान अपना खून पसीना कैसे एक करता है उसे उगाने के लिए। तो हम अब बात कर रहे हैं शशि जी की उसके पुरुषार्थ में किसानों की मेहनत के बारे में। तो मेहनत जो है वो किसानों का सुबह से लेकर के जब से वो हल कंधे पे रखने की परंपरा थी, आजकल ट्रैक्टर की परंपरा हो गई है, और रात में जब वो थका हुआ घर पे आता है उस समय तक वो राउंड क्लॉक वो अपना काम में संलग्न रहता है और एक बार भी उफ नहीं करता है। तो अब जो उसकी भूमिका है उसकी अगर हम चर्चा करें हमारी जो अर्थव्यवस्था में, उस पर भी एक बार प्रकाश डाल दें।
0: किसान जो है, जैसे भारत में कहते हैं कि किसानी एक प्रकार से आप कहें कि सेवा भी कह सकते हैं, आप उनको व्यवसाय भी कह सकते हैं, परंतु मैं मानता हूँ कि किसान का जो कार्य है जी, वह आध्यात्म से जुड़ा है जी। वह इंसानों को एक ऐसी व्यवस्था देता है कि इंसान जीवित भी रहे, व्यवस्थित भी रहे। तो किसान का जो कार्य है वह किसी अच्छे उद्यमी से 100 गुना है, एक साधु के जैसा है, एक संत के जैसा है। मैं मानता हूँ आध्यात्मिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसान को आप देखेंगे तो बेचारे बड़े सीधे तरीके से एक ही काम में अपना तल्लीनता रखेंगे, अपने गायों को, अपने पशुओं को नित्य क्रम नित्य प्रति जो है उसके प्रति वो सेवा भाव रखते हैं, अपने खेत के प्रति, अपने अपने जो आसपास की जो चीज़ें हैं प्रकृति ने जो उनको प्रदत्त की है उसके प्रति वो निष्ठा भाव से लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और अनवरत, ऐसा नहीं कि यह मौसम प्रतिकूल है तो हम आज खेती करने नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि का वर्षा जब किसी
1: वाले,
0: तो उनके लिए ना कोई रेस्ट नहीं है, दे विल डू कंटिन्यूसली देयर हार्ड वर्क। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे आज ये खाना नहीं खाना है, आज ये खाना जो है ना बासे, अब थोड़ा सा पेट भर गया, अब छोड़ो इसको फेंको। उस थोड़े से अन्न को उपजाने की जो मेहनत है, कभी अगर हम लोग सोचें और करने की हिम्मत करें तो शायद नहीं हो पाएगी। किसान उद्यमी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पार्ट जो है धरती माँ को अर्पित कर देता है कि माँ अगर आप लौटाएं तो ठीक है, नहीं तो आपकी इच्छा है। और धरती माँ भी उनको कभी नाराज नहीं करती है, शायद ही वो उनको नाराज करती हूँ। वो अगर 10 दाना बोता है किसान तो उन्हें वह 100 दाने में परिवर्तित करती है। तो ये किसानों का साधुपन ही है, एक उद्यमी के रूप में इतना साधुपन किसी में नहीं आएगा, लेकिन इस व्यवसाय में, किसानी व्यवसाय में ये साधुपन आपको दिखेगा। अब पुरुषार्थ की बात करते हैं, ईश्वर ने पुरुषार्थ करने की ताकत केवल मनुष्य में दी है, सभी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, एक इंसान ही है जो पुरुषार्थ कर सकता है। और पुरुषार्थ का जो एक जो भाव है मन में आना, सभी के लिए संभव नहीं है। किसान पुरुषार्थ से क्यों अटैच्ड है, मैं बताऊं, पुरुषार्थ के 4 भेद
1: जी,
0: धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सब मानते हैं, पर मेरा मानना है कि अनुशासन और हृदय की पवित्रता ही सबसे बड़ा धर्म है
1: जी।
0: अनुशासन किस प्रकार से किसानों से अटैच्ड है, वो नित्य प्रति अपना निरंतर भाव से एक समान रूप से ड्यूटी अपना निभाते हैं, खेती करने जरूर जाना है, गाय की सेवा जरूर करनी है, अपने आसपास के जो प्रकृति की चीजें प्रदत्त हैं उनको जरूर सेवा उसकी करनी है, बदले में ईश्वर जो उन्हें दे।
1: बिल्कुल,
0: अन्न उपजाएंगे लोगों की भूख मिटेगी, भूख मिटेगी तो इंसानियत का भाव बढ़ेगा, संतुष्टि आएगी। ये जो पवित्रता है, ये जो अनुशासन है, ये धर्म है, सच्चा धर्म इसे ही कहते हैं। तो किसानों से बढ़िया धर्म कौन निभा रहा है,
1: बिल्कुल
0: मुझे नहीं लगता।
1: अगर आज खाने की जहाँ किल्लत हो जाए
0: जी,
1: वहाँ पर सभी धर्म अपने घुटने टेक दे,
0: सभी टेक देंगे,
1: तो यानी कि जो धर्म का उद्गम कहें तो ये किसानी से ही,
0: किसानी से
1: होती है।
0: भूख जो है ना, भूख कोई मजहब नहीं देखता है, जहाँ रोटी की आवश्यकता होगी वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख नहीं देखते,
1: नहीं।
0: उन्हें भूख में रोटी चाहिए,
1: रोटी,
0: और रोटी कौन उपजा के देगा, तो किसान देगा, वो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी

0: धर्म का हो सकता है, किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, पर मूलतः वह किसान ही रहेगा। अब हम बात करते हैं अर्थ की,
1: तभी उत्तम खेती मध्यम,
0: उत्तम खेती मध्यम का। और इनका जो ये जो कार्य है ये एक व्यवसाय नहीं है, ये कृषि जो है ना व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय के रूप में नहीं लेते हैं। इनको लगता है ये मेरा कर्तव्य है, अगर हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो माँ भगवती रूठ जाएगी, अगर हम धरती की सेवा नहीं करेंगे तो माँ धरती रूठ जाएगी, भगवान सूर्य की सेवा, सूर्य को प्रणाम से भगवान रूठ जाएंगे। तो ये जो परंपरा है, ये जो भक्ति है, आप देखिए कई सारे त्यौहार में भी है। आप छठ माँ की पूजा करते हैं, प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, वही गेहूं का बना हुआ, वही गन्ना,
1: बिल्कुल
0: वही हम सूर्य को भगवान को जो है जल अर्पण करते हैं। तो ये सब किसानों के द्वारा है, ये सब जो है जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं ये किसान के द्वारा उन्हीं के तौर तरीके से बना है। ये वो सीधे भगवान को वो जो अर्पण करते हैं वो सीधा लगता है जैसे कि एक मन को एक तरीके से जोड़ा हुआ है उन्होंने, उनके साथ समर्पण है उनका, वो भाव दिखता है। अब आप कहते हैं कि जो हमारा जो काम है, देखिए काम को ना हम लोग भौतिक रूप से ले लेते हैं कि भोगने की इच्छा है हमारी काम है, दरअसल किसान जो काम करते हैं, किसान के लिए जो काम है, काम का जो लक्ष्य है उनका है कि यदि हम कुछ भी उपज लाते हैं या दूध ही अपने जो भी गाय माता है उनसे दूध दुह के जब लाते हैं, जब कोई बच्चा पीता है ना उनकी संतुष्टि ही उनको ना एक आत्मसंतुष्टि ही उनको ना एक एक तरीके का सुख देती है, यही काम है उनके लिए, यही काम है। और मोक्ष, हम तो कहते हैं साहब कि इस देश में अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप अगर कोई रास्ता चुनते हैं तो खेती को चुनिए, प्रकृति से जुड़िए। यदि आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, छोटा सा किचन गार्डन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही अपने बच्चों को दिखाएंगे कि कुछ फसल उगाइए खेती से, खेती के लिए नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने के लिए, तो वह बच्चे संस्कारी बनेंगे। आपके बच्चे यदि संस्कारी बनेंगे तो समाज में एक अच्छा निर्माण होगा, देश में एक अच्छी संस्कृति का निर्माण होगा। तो ये जुड़ाव कैसे हो रहा है किसानों को देख के, यही एक तरीके से मोक्ष है। हम कह रहे हैं कि संस्कार तो तभी बनेंगे ना जब आप इसके पहल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बच्चों में यह बात बताएंगे। मैं बार बार यह कहता हूँ कि किसान इस देश की रीढ़ है। सेवा क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, निर्माण क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी उन्नति कर ली हो, हम चांद पे पहुंच गए हो, लेकिन साहब चांद पे जाने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को भी भूख लगती है
1: और वो खाना यहीं से जाएगा,
0: खाना किसान के द्वारा जाएगा। किसान नहीं उगाएगा तो जापान से आपके लिए अन्न आना बहुत मुश्किल काम है। तुरंत कहते हैं ना कि तुरंत एनर्जी के लिए या शरीर को जो है भूख मिटाने के लिए आपको अन्न चाहिए, वहाँ पैसे या सामानों की उपलब्धता या अंतरिक्ष में पहुँचने से नहीं, आपको पेट तो वह रोटी से ही
1: भरे,
0: ठीक है। तो हम यह मानते हैं कि किसान जो है भगवान के साक्षात बनाए हुए ऐसे रूप हैं जो इंसानों को एक तरीके से वह व्यवस्थित रूप देता है, एक तरीके से वह ऊर्जा का एक कहते हैं कि भंडार देता है कि आप जीवित रह सकते हैं। हम जीवित रहेंगे तब ना इंसानियत,
1: बिल्कुल। तो साथियों, आप में से जो भी लोग अर्बन एरिया में यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने डाइनिंग टेबल पर जो रखी हुई रोटियां और जो सब्जियां हैं उसको उगाने वाले के लिए आपने कभी धन्यवाद नहीं कहा होगा, बनाने वाले के लिए आपने जरूर उसके शुक्रिया कहा होगा, परोसने वाले के लिए कहा होगा, लेकिन जो उगाने में जो मेहनत लगती है उसके पीछे जो मेन हीरो जो हमारा किसान है उसके बारे में आपके दिमाग में कभी एक पल ख्याल नहीं आता है। तो ये जो कार्यक्रम है वो हम इसी वजह से, एक हमने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, एक हमने एक कदम उठाया कि किसानों के बारे में आपको अवगत कराया जाए कि आखिर वो किसान कैसे युगों युगों से आपकी सेवा कर रहे हैं और बिना किसी लालच, बिना किसी भय, बिना किसी दुख और इस सभी चीज़ों से परे होकर के एक ऋषि की तरह एक कृषि कार्य किए चले जा रहे हैं। और ऐसा एक सर्वे भी आया था जिसमें कहा गया था कि आने वाले दिनों में खाएगा वही जो उगाएगा। तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए कि आपको जब आने वाले दिनों में इतनी सारी जो तंत्र विकसित हो जाएंगे तो आप थर्मोकोल खा करके जीवित नहीं रहेंगे, आखिरकार आपको रोटी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान जो युगों युगों से आपकी सेवा में रत हैं वो अगर आप उनके बारे में नहीं जाने, उनके बारे में सम्मान और उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो एक दिन आपको भूखे रहने की बारी आएगी और आप खुद उगा पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनको ऐसा लगता है कि हम किसान हैं लेकिन अपने बच्चों को किसान नहीं बनने देंगे?
0: मेरा तो आम लोगों के लिए भी सुझाव है। आजकल देखते हैं कि एक आजकल नया रोग चला है, डिप्रेशन वर्ड कई बच्चों में आजकल सुनने को आया।

0: कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बड़े लोग भी आजकल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये डिप्रेशन जो है ना, ये शौकिया रोग है। आप किसानों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, किसानों के बच्चों में डिप्रेशन नहीं सुनेंगे, उनके पास तो मुसीबतों का अंबार लगा रहता है। लेकिन तो अगर अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अगर वो डिप्रेस्ड होने लगे तो खेती कौन करे। मैं तो यह कहता हूँ कि जो भी अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वह अगर अपने बच्चों को हो सके तो साल में 2-4 दिन किसानों के समक्ष लेके जाएं, उनकी रोजमर्रा की रूटीन को दिखाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अवसाद तो उन्हें आएगा ही नहीं। किसानों के जो तौर तरीके जीवन, उनकी जो जीवन शैली है, उनसे यदि वो उनको रूबरू करा दें, उनके दैनिक जो कार्यक्रम है या उनके जो दैनिक काम करने की जो क्षमता है, जो जिस प्रकार से वो काम निष्पादित करते हैं, उन्हें अगर बच्चे देख लें, समझ लें, तो मुझे लगता है कि उनको अवसाद तो कभी पूरे जीवन में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे रोग भी उनको नजर आएंगे। अब किसान अगर उनको डायबिटीज होने लगे, किसान को अगर मोटापा होने लगे, यह मैंने कभी सुना ही नहीं है। अवसाद तो खैर बहुत दूर की बात है। तो आजकल मैं यही कहूँगा कि बच्चों को जो है कम से कम कृषि से जुड़ाव के लिए उनके समक्ष जरूर कभी कभी ले जाया जाए। और हम लोग किसानों को क्या है कि उनकी वेशभूषा से आंकते हैं, उनके हृदय की गहराइयों को हम नहीं देखते हैं। आप अगर किसान, चाहे वो कितने ही गरीब हों, आप यदि उनके दरवाजे पे चले गए ना, तो आपको वो 2 रोटी और 1 गिलास दूध जरूर दे देंगे। ये उनकी क्षमता में हो या ना हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये सेवा भाव कहाँ है? ये सेवा भाव नहीं मिलता है। मैंने देखा है, मैंने गाँव में भी देखा है, मैंने आसपास में भी देखा है। और मुझे जब भी कुछ परेशानी होती है ना, तो मैं अपने आप को ना किसानों से थोड़ा सा जुड़ के महसूस करता हूँ कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, इस सिचुएशन में वो कैसे करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर वो लड़ कैसे लेते हैं, उनको वो क्षमता कहाँ से आ जाती है। तो शायद ईश्वरीय उनको जो है, एक तरीके से कहिए कि उनको प्रसाद मिला हुआ है, ईश्वर ने उनको कुछ ऐसी दी है क्षमता कि वो विपरीत परिस्थिति में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसी बैल से उनको जो है दोस्ती है, उसी हल से उनको प्रेम है, उसी क्या कहते हैं पृथ्वी माँ से जो है उनको लगाव है, प्रकृति के समक्ष वो एकदम जुड़े रहते हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बरसात, क्या धूप, हर एक मौसम में उनको जो है सो आप देखेंगे कि लगे हुए हैं। तो यह जो निरंतरता है, यह उनके अंदर की जो क्षमता है, वो पुरुषार्थ का सार्थक, एकदम सार्थक वो है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आम आदमी में आप नहीं देख सकते। और भारतीय किसान के बारे में कह रहा हूँ मैं, भारतीय किसान, चूंकि हम लोग आसपास में जब भी देखते हैं तो यह मानते हैं किसान, बाहर के विदेश में जो है सो हो सकता है कि सेवा भाव जो है जैसा भी रहा हो, पर किसान किसान है, किसान किसान है। हो सकता है कि उनके पास ट्रैक्टर बहुत अच्छे आ गए हो, साधन बहुत अच्छे आ गए, हाँ, लेकिन फिर भी अंततः हुआ अन्न उपजा के दूसरे का पेट भरते हैं। और पेट अगर किसी ने भर दिया तो या तो वो माँ भरेगी या किसान भरेगा। तो मेरा किसानों को नमन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह इसी प्रकार अनवरत मेहनत करें और नई नई तकनीकों का उपयोग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं भी, और किसानी वाला जो गुण है उसको कभी वो
1: बरकरार रखें,
0: वो बरकरार रखें
1: जी। तो किसान भाइयों, आपके अंदर जो हीरे छुपे हुए हैं उसको लेकर आप कई बार कुंठित भी महसूस करते होंगे, लेकिन आज हमने आपका महिमा मंडन नहीं किया है, हमने याद दिलाया है कि आपके भीतर क्या क्या वो हीरे और वो खजाने हैं जिसने इस देश को, एक भारतवर्ष को आज तक अक्षुण रखा है। तो हम इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम कुछ बेहतर कार्यक्रम आपको अगले भाग में फिर से सुनाएंगे शशिकांत जी के साथ, तो आज के लिए हम यहीं पे इजाज़त चाहेंगे और

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन

करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफ

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त अनु। और एक बार फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक उपयोगी बातें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस महीने में हम मना रहे हैं पोषण माह, यानी कि सितंबर माह को हम मना रहे हैं पोषण माह, और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इस पोषण माह में हम आपको उन चीज़ों से, उन सारी बातों से अवगत करवाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको पोषण देंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए थे मशरूम की बातें, और अब बारी आती है सहजन की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ किसान भाइयों, सहजन जो है कुपोषण दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप इसे अपने दिनचर्या, अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज यही विषय है हमारा, पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपनिदेशक प्रशिक्षण एवं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अभय मानकर सर। सर आपका स्वागत है हमारे साथ।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि सहजन की उपयोगिता के बारे में आज हम जानेंगे, साथ ही उसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा विषय है उसी के बारे में बताएं, यानी कि पोषण सुरक्षा, खासतौर पर पोषण पर हम नज़र डालेंगे और इसी से हम इसे आज कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि इसी से जोड़ेंगे हम पोषण के साथ। तो पोषण सुरक्षा हेतु सहजन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: किसान भाई, सहजन के पोषक तत्व के बारे में हम लोग सभी परिचित हैं। सहजन को आमतौर पर ड्रमस्टिक पेड़ या हॉर्स रेडिश पेड़ के रूप में जाना जाता है।
0: जी,
1: इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। सहजन वास्तव में एक चमत्कारिक पौधा है। यह पौष्टिक तत्वों से भर

0: पूर्व मानव स्वास्थ्य के लिए एक दिव्य उपहार है
1: जी।
0: सहजन कुपोषण से बचाव हेतु एक प्रभावी खाद्य है। सहजन को ऐसी भूमि में उगाया जाता है जहां शायद ही कोई पौधा उग सकता है। वास्तव में विपरीत मौसम और यहां के सूखे से बचने की अविश्वसनीय क्षमता के कारण इसका एक प्रचलित नाम है कभी न मरने वाला पौधा।
1: अच्छा,
0: भारत सहजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्यों में सबसे प्रमुख आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है
1: जी।
0: सहजन में विकासशील देशों के लोगों के पोषण सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा और ग्रामीण विकास की क्षमता है
1: जी।
0: इसके पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग कुपोषण, भूखमरी, साथ ही साथ दुनिया भर के कई बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए किया जा सकता है
1: जी।
0: साथ ही यह पशु चारा के लिए भी काफी उपयोगी है। वास्तव में सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर की तुलना में 10 गुना अधिक विटामिन ए, दूध की तुलना में 17 गुना अधिक कैल्शियम, दही की तुलना में 9 गुना अधिक प्रोटीन, केले की तुलना में 15 गुना अधिक पोटेशियम और 25 गुना अधिक आयरन पाया जाता है
1: जी।
0: गर्भावस्था के दौरान लगभग 6 चम्मच सहजन पत्ते के पाउडर एक महिला के दैनिक आयरन और कैल्शियम आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
1: तो कुल मिलाकर कहें तो सहजन कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वोपरि है, एक पूरक आहार है। आप इसे सब्जियों के तौर पर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे जो यूं कहें कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी बनाए जाते हैं, इसके अचार भी बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सर यहाँ पर महत्व पर आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम सभी को पता है कि सहजन का अगर हम पौधा लगाते हैं, ये पेड़ बनता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है।
0: किसान भाई, सहजन पौधे का प्रत्येक भाग का महत्वपूर्ण पोषक तत्वों एवं एंटी न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। सहजन की पत्तियां कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और तांबा जैसे खनिजों से समृद्ध है
1: जी।
0: विटामिन ए के बीटा कैरोटीन, विटामिन बी जैसे फोलिक एसिड, पैराडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी सहजन में मौजूद होते हैं
1: जी।
0: सहजन पत्तियों में कैलोरी कम मात्रा में होता है, जिसके कारण यह मोटापे को कम करने हेतु उपयोगी है। सहजन में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें कैल्शियम मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक माना जाता है।
1: अच्छा,
0: एनीमिया के इलाज में सहजन पाउडर आयरन की गोलियों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यूफा लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ओलाइक एसिड, इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
1: अच्छा,
0: शोध से पता चलता है कि सहजन बीज के तेल में लगभग 76% प्यूफा लिनोलिक एसिड होता है, जो इसे जैतून का तेल के विकल्प के उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। अधिकांश पौधे संसाधित होने पर अपनी पोषक गुणों को खो देते हैं, जबकि कच्चे, अंकुरित और किण्वित सहजन बीज के आटे में यह पाया गया है कि इसमें फाइटोकेमिकल्स और एमाइनो एसिड सामग्री किण्वन और अंकुरण में भी अधिकतम थी। सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो आसानी से पच जाता है।
1: अच्छा।
0: सहजन में 40 से अधिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नुकसान के बिना सहजन को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। निर्जलीकरण द्वारा सहजन के पौष्टिक मूल्य को बरकरार रखते हुए इसे संरक्षित किया जा सकता है। सहजन का अधिक उपयोग शरीर में उच्च आयरन का संचय का कारण बन सकता है। शरीर में अधिक आयरन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेमाक्रोटोमाइसिस रोग के कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन 70 ग्राम सहजन की खुराक का सुझाव दिया जाता है
1: जी।
0: 300 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग के कारण सहजन को रामबाण के रूप में जाना जाता है। भारतीयों द्वारा सहजन का उपयोग लंबे समय से हर्बल दवा के रूप में किया जाता रहा है। सहजन के बीज का उपयोग बेन नामक तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह तेल ओलाइक एसिड, टोकोफेरॉल और स्टेरॉल से समृद्ध होता है। बेन तेल खाना पकाने के लिए जैतून तेल के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग इत्र, लुब्रिकेंट्स, आदि के

0: लिए भी होता है। सहजन बीज एक प्राकृतिक कोगुलेंट होता है जिसमें एक कीटायनिक प्रोटीन पाया जाता है जो अशुद्ध पानी को साफ कर सकता है। अन्य कोगुलेंट जैसे एलम, सैक्रम कार्बन और फेरिक क्लोराइड महंगा और दुर्लभ होता है, जिसके कारण सहजन बीजों का यह गुण इस पर अधिक शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है। सहजन बीज में पानी से भरी धातुओं जैसे लीड, तांबे, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक को खत्म करने की क्षमता होती है। इसके बीज के खल्ली में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो जीवाणु विकास को रोकते हैं और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने में सहायता करते हैं। सहजन बीजों के इन गुणों और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण बीमारियों को ठीक करने में और ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार कर सकने में सहायक हो सकती है।
1: अच्छा,
0: सहजन बीज बायोडीजल के स्रोत भी होते हैं तथा इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों और इसके बीज केक का प्रयोग हरी खाद या उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक गुणों के कारण सहजन के फूलों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसके जड़ की छाल में औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग अनिद्रा, आँखों और दिल की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके पत्तियों में जेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो फसल की पैदावार में 25-30% तक की वृद्धि कर सकती है। पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और कुपोषण से निपटने के लिए सहजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सम्मिलित करना काफी लाभदायक पाया गया है।
1: तो ये आपने जाना कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यहाँ पर जानते हैं हम कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहजन के विभिन्न भागों के बारे में आपने बताया कि किस रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताएं कि सहजन के विभिन्न भाग जो होते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और आपने हर्बल दवा की बात भी की है, तो हम इसके औषधीय उपयोग के बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: किसान भाई, हम जानते हैं सहजन के विभिन्न भाग काफ़ी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और उसका जो औषधीय गुण है, सबसे हम पहले बात करते हैं पत्ती के बारे में। सहजन की पत्तियों में काफ़ी औषधीय गुण होता है जो हमारे अस्थमा, हाइपरग्लिसेमिया, डिप्सिलीमेडिया, फ्लू, दिल की बीमारी, सिफिलिस, मलेरिया, निमोनिया, दस्त, सिरदर्द, स्कर्वी, त्वचा रोग, ब्रोंकाइटिस, आंख और कान का संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। साथ ही रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को भी यह काफ़ी नियंत्रित करता है। एक और एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बायोटिक और एंटी एथेरोक्लोरिटिक एजेंट के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जहाँ तक पत्ती में पोषक तत्व की बात है, सहजन की पत्तियों में फाइबर, वसा, प्रोटीन और खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, आयरन और सल्फर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी वन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में इसमें की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सहजन के बीज में।
1: अच्छा,
0: तो सहजन के बीज का भी काफ़ी औषधीय महत्व है। सहजन के बीज में हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रॉन्स की बीमारी, एंटी हर्ब्स, सिंप्लेक्स वायरस, गठिया इत्यादि इलाज में मददगार होते हैं। गठिया, क्रैम्प, मिर्गी और यौन संक्रमित बीमारियों में एंटी माइक्रोबियल और सूजन रोधी के रूप में भी यह कार्य कर सकता है। बीज की अगर पोषक तत्व के बारे में हम चर्चा करें तो इसमें ओलिक एसिड, जिससे बेन ऑयल भी बनता है, इसमें काफ़ी एंटीबायोटिक जिसे टेरिगोस्पर्मिक कहा जाता है और एंटी फैटी एसिड, लिनोनिक एसिड, लिनोलिक एसिड, बिहेनिक एसिड, फाइटोकेमिकल्स आदि इसमें पाए जाते हैं। अब जड़ के की चर्चा हम करते हैं। जड़ की छाल में इसका भी काफ़ी औषधीय महत्व है। जड़ की छाल जो होता है उसमें कार्डियक उत्तेजक, एंटी अल्सर और सूजन रोधी या जलन रोधी के रूप में बहुत ही अच्छे

0: अच्छा कार्य करता है। पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एलेलोइड मॉर्फिन, मोरिंगिनिन, खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम सहजन के फूल का चर्चा करते हैं। इसके हम सभी जानते हैं कि इसके फूल का भी कई रूप में व्यवहार करते हैं। अच्छा। इसके जो औषधीय गुण है, सहजन के फूल में मुख्य रूप से हाइपोकोलेस्टेरोलिक के रूप में यह कार्य करता है और यह गठिया में बहुत ही कारगर काम करता है। मूत्र संबंधी समस्याओं और सर्दी के इलाज में भी यह काफ़ी सहायक होता है।
1: अच्छा।
0: फूल के में जो पोषक तत्व होता है इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, पोटेशियम और एमिनो एसिड पाया जाता है। अब इसके फल का, जिसे हम लोग सब्जी के रूप में ज़्यादा यूज उपयोग में लाते हैं, इसका औषधि के रूप में जो होता है, इसके फली से दस्त, यकृत, स्प्लीन की समस्याओं और जोड़ों के दर्द में काफ़ी कारगर होता है। पोषक तत्व जो इसके फली में होता है उसमें फाइबर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड भी इसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
1: आपने पहले भी बताया था कि ये इसकी उपयोगिता के बारे में हम जान रहे थे और महत्व के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि कुपोषण को दूर करने में और साथ ही बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है, तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार मदद करता है कुपोषण को दूर करने में और बीमारियों से कैसे लड़ता है ये सहजन?
0: सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे गैर विषाक्त और आसानी से पचाने में ये सहायक होता है। सहजन में इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में समायोजित होने और पचाने में सहायक होने के कारण काफी उपयोगी होता है।
1: अच्छा।
0: ये इसीलिए सहजन को चमत्कारी पेड़ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारे जीवन को बचाने की क्षमता है
1: बहुत ज्यादा।
0: शरीर में पोषक तत्वों की मौजूदगी आंतरिक रूप से बीमारी को रोकने और साथ ही साथ बीमारी से लड़ने में सहायक होती है। शरीर और इसके अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिसाल के तौर पर कई बच्चे रतौंधी और अन्य आँखों की बीमारियों और परेशानियों से पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल पाता है। सहजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है जिससे इसे भोजन में सम्मिलित कर उक्त बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विटामिन ए के की चर्चा अगर हम करें तो सहजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होने के कारण ये कई रोगों के इलाज में सहायक होता है, जैसे अंधापन, इसे रतौंधी और पूर्ण अंधापन के रूप में भी जानते हैं, उसमें काफ़ी कारगर होता है। मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था और स्तनपान, कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण से लड़ने की असमर्थता में ये विटामिन ए के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विटामिन ए की कमी से दुनिया में भर में लगभग 100 मिलियन से अधिक बच्चे अंधे होते हैं। विडम्बना यह है कि कई देशों में जहाँ यह एक समस्या है वहीं सहजन प्रायः स्वतः विकसित हो जाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसे जंगली पेड़ समझकर इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों के भोजन में सहजन को सम्मिलित कर उन्हें अंधेपन की समस्या से बचाया जा सकता है। सहजन में आयरन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों के इलाज में कारगर होता है। मुख्य रूप से जो आयरन की उपयोगिता है, जिसे एनीमिया, थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीलापन पड़ना, जीभ में छाले होना, नाखून का झड़ना, भूख में कमी, विशेष रूप से बच्चों में और सिरदर्द की समस्या में इसका काफ़ी उपयोग कार्य कर रही
1: है।
0: सहजन में कैल्शियम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों में सहायक के इलाज में सहायक होता है, खास करके एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी कमजोरी के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों की समस्या, तंत्रिका की समस्या, दिल की असामान्य धड़कन और कार्य करने की इफिशेंसी को भी कैल्शियम बढ़ाता है।
1: हाँ।
0: अब हम प्रोटीन की चर्चा करें जो एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। सहजन में यह काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है और इसका खास करके जो ये फायदा पहुंचाता है एडिमा, त्वचा के नीचे तरल पदार्थ का संग्रह होता है जो आमतौर पर पैरों और एड़ियों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी यह हो सकता है।
1: अच्छा।
0: एडिमा

0: वजन घटाने में इसका भी काफ़ी उपयोग है। पतले या रूखे बाल या बालों के झड़ने में इसका काफ़ी कारगर उपयोग है। हाथों और पैरों की उंगली के नाखूनों में रीज या गहरी रेखाएं उभर आती हैं। त्वचा की समस्या जिसमें यह सूर्य की गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। शरीर और बालों में कम पिगमेंटेशन होता है, इसको सहायक होता है। त्वचा पर चकते या सूखापन होता है, कमजोरी और सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन, बेडसोर या अन्य त्वचा अल्सर, अनिद्रा, सिरदर्द, गंभीर अवसाद, चिंता, पेट दर्द आदि में ये काफ़ी फायदेमंद होता है
1: जी।
0: इसमें खास करके सहजन में विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून अक्सर बहने की समस्या आती है, उसमें काफ़ी कारगर इसका फायदा होता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कमजोरी, नाक और मसूड़ों में सूजन और खून बहना आदि में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भी विस्तार से आपने बताया हमें कि कौन कौन बीमारियों से लड़ने में सहायक है, साथ ही इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से जो भी चीज़ें पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं जिससे कि ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो सर कुल मिलाकर कहें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है हमारे लिए, तो आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
0: सहजन को तो हम लोग अभी चर्चा किए कि इसे रामबाण के रूप में जाना जाता है और इसका जितना औषधीय या पौष्टिकता है इससे हम सभी परिचित हैं। फिर भी इसमें जो कुछ तत्व जो मौजूद होता है, खास करके एंटीऑक्सीडेंट, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर, ट्यूमर और बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में ये काफ़ी सहायक होता है। यह एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ के रूप में भी हम जानते हैं, उच्च सीरम या रक्त कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, यकृत और गुर्दे की समस्याओं को दूर करता है। इसमें मौजूद सूजन रोधी गुणों के कारण जो जोड़ों में दर्द, गठिया, एनीमिया और लूपस को दूर करने में सहायक है। यह कोलाइटिस, दस्त, पेट फूलना जैसे गैस की बीमारी में जो होता है, अल्सर और पाचन विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। एंटी बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल के रूप में यह काफ़ी कारगर होता है। यह मूत्र संक्रमण जो इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड, सिफिलिस, दंत क्षय, कबक, सामान्य जुकाम और HIV में भी के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावकारी है। एक जहर रोधी के रूप में यह सांप और बिच्छू काटने के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी पाया गया है। यह सिरदर्द, माइग्रेन और मिर्गी सहित तंत्रिका विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी।
1: आपने अभी कहा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और साथ ही आपने कहा कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं उसे भी दूर करने में यह सहायक होता है, तो कहने के इसमें एंटी एजिंग कंपाउंड भी पाए जाते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं।
0: सहजन में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग गैलोर के रूप में इनके नाम से जानते हैं। सहजन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। सहजन पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स से समृद्ध हैं। सहजन पत्तियों में मौजूदा बीटा कैरोटीन भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक संयोजन एंटीऑक्सीडेंट कैस्केड तंत्र के कारण तुलनात्मक रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि सहजन चाय, किसी अन्य हर्बल चाय, यहाँ तक कि एक हरी चाय जिसे ग्रीन टी के रूप में हम जानते हैं, कि तुलना में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक प्रभावी स्रोत के रूप में कार्य करती है। सहजन का एक दूसरा भी ये है, ये एक एंटी एजिंग कंपाउंड के रूप में, जिसे हम जेटिन के नाम से जानते हैं, ये एक हार्मोन होता है। यह पौध विकास के हार्मोन परिवार का सदस्य है जिसे साइटोकाइनिन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: जेटिन की खोज पहली बार अपरिपक्व मकई कर्नेल की जीन से की गई थी। जेटिन मानव त्वचा पर एंटी एजिंग से प्रभावी है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के खिलाफ विभाजित और संरक्षित करने में मदद करते हैं। जेटिन सभी साइटोकाइनिन में सबसे शक्तिशाली है। 2004 के डेनिस अध्ययन के

0: अनुसार चेटिन छोटे सेल आकार को बढ़ावा देने में काफी मददगार पाया गया है, जो अधिक त्वचा युवा त्वचा के लिए काफी महत्वपूर्ण घटक है। यह सेल की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को भी प्रभावित करता है और सेल में माइक्रोमोल्यूलर क्षति को रोकता है। सहजन में न केवल किसी अन्य ज्ञात पौधे की तुलना में हजारों गुना अधिक जेटिन होता है, बल्कि यह कई पोषक गुणों से भरपूर पौधा भी है, जिसमें 90 एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरीज सहित 90 पौष्टिक यौगिक पाया जाता है।
1: तो ये तो बातें हुई कि मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे ये लाभप्रद है, और हमने ये भी सुना है कि ये पौधे की वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा।
0: किसान भाई, हम लोग तो अभी उसके औषधीय गुण या हम लोगों के लिए किस मानव के लिए, हाँ, उसमें क्या उपयोग होता है, लेकिन इसका सहजन का काफ़ी जो हमारे पौधा की वृद्धि के रूप में भी, खास करके इसमें एक हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, जिसे जीटिन के नाम से जानते हैं, ये उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे और फसल में अधिक उपज पैदा करने के लिए जिम्मेवार बताया गया या काफ़ी सहयोगी होता है। सहजन पत्ते का छिड़काव पौधे की वृद्धि के लिए और इससे बनी हरी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जा सकता है। सहजन पत्ती में पौधे के विकास से तो हार्मोन पाए जाते हैं। फुगनी के अनुसार ताज़ा सहजन पत्तियों के रस का उपयोग पौधों के विकास हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए प्रभावी है। इससे किसी भी फसल का उत्पादन लगभग 25-30% बढ़ सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे प्याज, काली मिर्च, मक्का, ज्वार, मिर्च, खरबूजा इत्यादि। जेटिन एक प्लांट हार्मोन है जो साइटोकाइनिन समूह के सक्रिय पदार्थों में से एक है। उन्नत कृषि व्यवहार में इसका छिड़काव अन्य उर्वरकों और पानी के साथ किया जाना चाहिए।
1: जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि इसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है, तो इसके चमत्कार में एक और गुण शामिल है, वो है ये पानी को शुद्ध करता है और साफ करता है। तो ये हमें बताएं कि सहजन का उपयोग पानी को शुद्ध और साफ करने में कैसे किया जाता है।
0: हाँ किसान भाई, ये काफ़ी प्रचलित रहा है, चूँकि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज लोग पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया करते थे।
1: अच्छा।
0: और खास करके ग्रामीण महिलाओं द्वारा अत्यधिक गंदे पानी को साफ करने के लिए सूखी सहजन के बीज का उपयोग फिटकरी के स्थान पर किया करते थे।
1: अच्छा।
0: जो रिपोर्टेड भी है। सहजन की ताज़ा पत्तियों को एक सब्जी, जड़ों को औषधीय प्रयोजनों के लिए और शाखाओं का उपयोग बाड़ लगाने में भी किया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस तरह से हम देखते हैं कि सहजन का काफ़ी आज के दैनिक जीवन में, खास करके स्वास्थ्य के लिए, इसका काफी उपयोग है और इसका औषधीय महत्व।
1: तो आज आपने जाना सहजन के बारे में, और हम आपके लिए विषय लेकर आए थे पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। हमारे साथ डॉक्टर अभय मानकर थे और उन्होंने आपको विस्तार से बताया क्या इसकी महत्व के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, कुपोषण को कैसे दूर करता है ये, साथ ही इसके क्या क्या गुण हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मालूम हुई। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा, और अगले दिन आप सभी के साथ हम और एक विषय लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें, खास तौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध ना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है, बिगड़ी हुई सोच, यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च

बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है। ऐसा नहीं है, ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है। इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है, आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को।
आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट

रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, ये बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहे हैं ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एक आध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी है।
जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है। और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी।

0: है तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं जो परेशानी होती है उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाइजीन मेंटेन रखिए तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल और इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए

ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहाँ बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल

रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
5: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मुझे यानी आरजे अनु को, और ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसे आप सुनते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो जी हाँ, आज भी उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बहुत ज़रूरी बातें लेकर आए हैं और मिट्टी की बात करते हैं हम हमेशा, और हमें अपनी मिट्टी को सेव करना है, उन्हें बचाना है तो उनके पोषक तत्व का ख्याल भी रखना होगा। तो अगर मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के आते हैं इसके जानकारी के लिए कि कैसे इस कमी को पूरा करें, कैसे पता चलेगा कि ये कमी हो गई है। तो इन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपना विषय रखा है मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को पूरा कैसे करें। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद मैडम।
5: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक, ये जो आपने बताया कि पोषक तत्व, तो ये किस प्रकार के पोषक तत्व तो हैं ये?
6: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ।

और जैसा कि मैडम का प्रश्न है कि ये जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस जिंक है किस प्रकार का पोषक तत्व है, तो इसकी कमी को पूरा करने से पहले हम जानना चाहेंगे ये पोषक तत्व हैं तो किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो मेरे किसान बहनों एवं भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी जो नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है ये मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक तत्व में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीया। नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी कमी के बिना जो हमारे पौधे हैं वो अपने जीवन चक्र को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे किसान बहनों और भाइयों, आप जानते होंगे जैसे आप खेती बाड़ी करते होंगे, अपने खेत पर जाते होंगे तो आप बीज को लगाते हैं, बीज फिर अंकुरित होता है, फिर वो छोटे पौधे का रूप लेता है, फिर वो बीज वाले स्तर में आता है, फिर वो फल फूल देता है। तो अगर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मृदा में अगर मिट्टी में कमी आती है तो ये अपना जीवन चक्र जो होता है, जहाँ मीन्स अंकुरित होकर होने से लेकर अपना फल फूल देने तक ये जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए पोषक तत्व तो बहुत पौधे के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है इसका ये मुख्य प्राइमरी मीन्स प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व है। इसका अगर इसकी कमी होती है तो पौधे जो हैं अपना ऊर्जा जो अपने लिए फूड बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, लाइक भोजन बनाते हैं जो सूर्य का प्रकाश है वो बनाने में असक्षम हो जाते हैं। पौधे का जो जो सीडलिंग होता है, लाइक जो अपना बीज का अंकुरण होके अपने पौधे का एक रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है जहाँ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन कहाँ बनाते हैं आप लोगों को भी ये पता होगा, पत्तियों में बनाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा प्रकाश लेते हैं तो उसमें अपना भोजन बनाते हैं, और उसी का ये इसमें ये जो है पोषक तत्व वहाँ प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, और वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर, सूर्य का प्रकाश को लेकर भोजन बनाता है, जिसकी कमी से अपना जो पौधे हमारे हैं भोजन नहीं बना पाते हैं। इसकी ये कमी हो गई नाइट्रोजन की कमी से, ये पौधे में इसके असर पड़ेंगे। बहुत सारे और कारण हैं, जैसे पौधे का जो है जो हमारा उसका रंग होता है हरे रंग का होता है, हरे रंग ना होके पीलापन पे जाने लगता है, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। नाइट्रोजन कमी होगी तो पौधे जो होते हैं जो सीधे खड़े ना होकर नीचे गिरने लगते हैं, मतलब वो जो उनका स्टैंडिंग होता है ना पोजिशन वो प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके कारण कमी होने लगती है। इसके साथ साथ बहुत सारे और पोषक तत्व कमी और ये उत्पन्न कर देते हैं। और बात करेंगे हम फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस भी मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व में भी ये प्राथमिक पोषक तत्व है। मीन्स इसकी कमी के बिना भी पोषक जो हमारे पौधे हैं वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। पौधे बेसिकली आपको जो फॉस्फोरस है वो अगर फॉस्फोरस अगर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहेगा पौधे में, तो पौधे का जो वृद्धि और विकास है बहुत अच्छा से होता है। और इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस हमें बीज का जो विमोचन होता है उसमें हमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, पौधे को ऊर्जा संश्लेषण में हेल्प करता है, महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाता है, एवं इसके अलावा जो फल और फूल बनते हैं हमारे उसमें भी ये फॉस्फोरस जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारे जो जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी जेनेटिक फैक्टर होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं हमारे जीन, हमारे डीएनए, तो पौधे भी तो सजीव है ना, उसमें भी होते हैं अनुवांशिक गुण होते हैं। ये अनुवांशिक गुण जो हमारे जेनेटिक फैक्टर होता है उसको फॉस्फोरस गवर्न करता है, उसको उसके लिए ये महत्वपूर्ण है जी। और तीसरी हमारी यहाँ पर पोषक तत्व जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जिसको किसान भाइयों और बहनों हमारे आप लोग इसको हम बहुत अपने स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की मिट्टी में हम इसको बहुत नेगलेक्ट करते हैं। इसको मुख्य पोषक तत्व ना है ठीक है, नहीं है, बहुत सारे पौधों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ ये भी हमारे अनुवांशिक स्तर अनुवांशिक गुण है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका नाम है ये पोषक तत्व का जिंक। जिंक मुख्य पोषक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व का कहने का मतलब हुआ हमारे किसानों, किसान बहनों भाइयों, इसकी ठीक है, इसकी मात्रा पौधों को बहुत कम में जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा में नहीं चाहिए, बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं चाहिए, थोड़े में ही पौधे जो इसको लेकर अपने जीवन चक्र को अच्छे से अपना निभा लेते, अपने उनका जीवन चक्र अच्छे से चल जाता है, और अपने लाइक इनिशियल स्टेज से लेके वेजिटेटिव स्टेज से होते ही होते अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज तक अच्छे से ये अपना जीवन चक्र अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाते हैं। ये जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये भी क्लोरोफिल के निर्माण में जहाँ पौधे जो अपने होते हैं भोजन बनाते हैं उसके निर्माण में ये मदद करता है, अनुवांशिक गुण को भी ये कंट्रोल करता है, और बहुत सारे हमारे पौधे में एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिव स्टेज में समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाते हैं कुछ पोषक तत्व की कमी में, तो ये जो जिंक है ये बहुत सारे इंजाइम्स जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। कुछ इंजाइम्स की मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ऑक्जिन,

0: पौधे के वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर जिंक की कमी होती है हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में, तो ये जो हमारे कुछ एंजाइम्स जो पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो उस लेवल पर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं इस पोषक तत्वों की कमी के कारण। और यदि जिंक प्रचुर मात्रा में पौधों को अवेलेबल हो पाता है तो जो भी एंजाइम्स हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं और पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं।
1: और ये तो बातें हो गई कि ये किस प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब हम बात करते हैं पौधों के दृष्टिकोण से क्या कुछ महत्व है इनका।
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया ये पोषक तत्व के क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपकी आपकी जो दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल का भी मैंने इसका उत्तर आपके पहले प्रश्न में ही मैंने दिया है। मैंने जैसे बताया, आपने पूछा किस तरह का पोषक तत्व है, तो मैंने बताया दो जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मुख्य पोषक तत्व है और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में अंतर हम जानना चाहेंगे तो क्या है, मुख्य पोषक तत्व के बिना जो हमारे पौधे हैं अपन जीवन चक्रों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे और उनको वो पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में चाहिए होता है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता, बट उनको चाहिए होता है, उसका भी रोल है, उसका भी। जैसे मैंने बताया, जैसे जिंक ही है, जिंक भी अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे क्लोरोफिल के सिंथेसिस में हेल्प करता है और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो हमारे पौधे में प्रेजेंट रहते हैं उसको एक्टिवेट करता है। लाइकवाइज इसी प्रकार मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी बताया, इसके पौधे की दृष्टि से क्या इनका योगदान है। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो पौधे अपना जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएंगे। किसान बहनों एवं भाइयों, आपको ये पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी क्योंकि आप सभी अपने खेत में, इतना मुझे तो भी जानकारी है, आप अपने खेत में कुछ नहीं डालते होंगे, तीन जो पोषक तत्व जरूर डालते हैं हर फसल, मतलब बात करें तो बहुत सारे फसलों के लिए आप ये पोषक तत्व का उपयोग जरूर करते हैं। ये पोषक तत्व है आपके, यूरिया आप जरूर डालते होंगे, उर्वरक की बात करें तो आप DAP जरूर डालते होंगे, आप MOP जरूर डालते होंगे, तो आपको ये पता है यूरिया किसका सोर्स है, यूरिया किसका स्रोत है। ये नाइट्रोजन जो मैं बोल रही हूँ, ये नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। जो DAP है इसका पूरा नाम हो गया डाइअमोनियम फॉस्फेट, ये आपको नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी हमको प्रदान करता है और फॉस्फोरस भी प्रदान करता है, ये दोनों भी मुख्य पोषक तत्व हैं। और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको ये भी किसका ये पोषक तत्व है, पोटास का, पोटासियम जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं और इनका जो पौधे का जीवन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके इसके बिना पौधे अपना अपने वृद्धि को, उनकी वृद्धि जो होती है उतनी सक्रियता से नहीं हो पाती है, पौधे का जो हमारा रंग होता है हरे रंग का वो नहीं हो पाता है और हमारे जो बीज है, जो बीज अंकुरण है, फॉस्फोरस की कमी हो तो बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, ऊर्जा का संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता है। जो उनके अनुवांशिक गुण को कंट्रोल करता है लाइक DNA RNA ATP जो ऊर्जा में प्रोवाइड करता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है।
1: और अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन पोषक तत्वों की कमी की, तो क्यों कमी हो रही है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
0: धन्यवाद मैडम ये प्रश्न के लिए। ये प्रश्न किसी की कमी को पूरा करने, जैसे ये पोषक तत्व है हमारा, जैसे हमारा टॉपिक था आज का नाइट्रोजन फास्फोरस जिंक की कमी को, पोषक तत्व कमी को कैसे पूरा करें, तो किसी कमी पूरा करने से पहले हमें तो ये जानना पड़े ये कमी हो क्यों रही है। और ये किसान बहनों एवं भाइयों, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे बहुत सारे जगह हैं, हर जगह की अपनी अपनी बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी चीज़ कमी के लिए, हम किसी एक फैक्टर की बात नहीं कर सकते यही फैक्टर है जिसके कारण ये कमी हो रही है, नहीं, बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हमें बताते हैं कि इसके कारण कमी होती है। अगर हम बिहार की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो पोषक तत्वों की कमी क्यों आ रही है, इसके लिए बहुत सारे हमारे प्रकार हो सकते, बहुत सारे हमारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हो सकते हैं कुछ तत्कालिक स्थिति के कारण भी ये कमियाँ आ सकती हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जो हमारा कुछ एरिया है, क्षेत्र है, वहीं पर ये कमी आ रही है, और किसी दूसरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो वो कमी नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो मैं आपको कहना चाहूंगी प्राकृतिक गुणवत्ता, मीन्स प्राकृतिक विशेषताएं और जो गुणवत्ता, जो मिट्टी वहाँ की है, जो विशेष पर्टिकुलर जगह की जो है, पर्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी है वहाँ पर की प्राकृतिक गुणवत्ता क्या है मिट्टी की, उसके कारण भी ये कमी आ सकती है। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण भी ये पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपको फसल का प्रबंधन कैसे आपने करा है। अगर कभी फसल का प्रबंधन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी फसल को एक ही क्षेत्र पे बार बार आप उसी फसल को उगाएंगे तो जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। ये फसल का प्रबंधन इसलिए हम कहते हैं ना, एक ही क्षेत्र पर एक ही फसल को कई सालों

तक हम नहीं उगाना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं हम क्रॉप चक्र, क्रॉप रोटेशन जिसको बोलते हैं ना, फसल चक्र की हम बात करते हैं। हम क्यों सारे वैज्ञानिक हो गए हैं, कोई भी जो एग्रीकल्चर हमारे अधिकारी लोग हैं आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप फसल चक्र को अपनाएं, फसल चक्र को अपनाएं जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तीसरा कारण हो सकता है वहाँ का टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का बोलने का तात्पर्य यह है वहाँ का स्थलाकृतियाँ कैसी हैं। मीन्स कुछ आप देखते होंगे कहीं भी हमारी मिट्टियाँ कहीं उच्च स्तर पर रहती हैं, कहीं निम्न स्तर पर हैं, कहीं मिट्टियाँ हमारे दलदल स्थिति में होती हैं, ये हमारी टोपोग्राफी इसको बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं की मिट्टियाँ बहुत समतल स्तर पर हैं, कहीं की मिट्टियाँ ऊँची परत हैं उनकी जो है लेक जो होती है ना ऊपर वाले परत पे होती हैं, कोई निचले वाले परत पे होती हैं। तो ये जो हमारे हैं ना मिट्टियों का प्रकार हैं जिसको बोलते हैं लो लैंड, हाई लैंड, मिड लैंड में प्रेजेंट हैं, उसके भी प्रकार इस टोपोग्राफी, इस स्थलाकृतियाँ के कारण भी हमारे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जो हमारे भूमि के ऊपर वाले परत हैं आप वहाँ पर देखेंगे उसकी कंपेरिजन आप लोअर जो हमारे निचली परत वाली है मृदि मिट्टी उससे आप कंपैरिजन करते हैं तो देखेंगे जो ऊपरी वाली भूमि हमारी वहाँ पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है कंपैरिजन टू आपके जो निचले स्तर वाले मिट्टी हैं। और चौथा पांचवा कारण आपका हो सकता है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर बारिश कैसी हो रही है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पोषक तत्व के बताने के लिए कि वहाँ पोषक तत्व की किस लेवल में प्रेजेंट है, किस रेंज में प्रेजेंट है। जैसे अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर चांसेस हमारे क्या हो सकते हैं जो हमारे घुलनशील पोषक तत्व हैं वो हमारे पानी में हमारे वर्षा के पानी में घुल कर वो बह जाते हैं, लीच आउट हो जाते हैं। अगर बारिश जितनी हमारे मात्रा में होनी चाहिए उतनी हो रही है तो हमारे जो हमारे पोषक तत्व हैं बहुत अच्छे मात्रा में हमारे मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं और पौधे वहाँ से उसको ग्रहण करते हैं। और पांचवा कारण आपका हो सकता है हमारे किसी तकनीक, आप कौन सी कृषि प्रथाएं को जो हमारे पहले जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी जो हम तकनीक को उसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार का किसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे डिपेंड्स करते हैं कि वो जो हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को मिट्टी में उपलब्धता को डिसाइड करता है। जैसे कि ये कृषि तकनीक अगर बात करें तो आप फसल का जीवन शैली कैसा है, फसल कौन सा चक्र अपना रहे हैं, वहाँ पर कौन सा मुख्य पौधा मुख्य फसल कौन सा आपका है, और मुख्य फसल के अलावा आपका सब जिसको बोलते हैं सब क्रॉपिंग कौन सा आपने उसका चयन किया है वो भी बहुत डिसाइड करता है कि हमारा पोषक तत्व के वो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता को वो बरकरार रखता है कि नहीं रखेगा। और छठा कारण हो सकता है आधुनिक कृषि तकनीक, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आधुनिक कृषि तकनीक, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है हमारे, क्योंकि हम आधुनिक कृषि तकनीक में क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी से लास्ट हो चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेतियों की तरफ जा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी बोले तो ज़्यादा हमें उपज, हमें किसी फसल का उपज ज़्यादा पाने के लिए कम समय में ज़्यादा उपज पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी हमारे एक ना एक टाइम पे एक जाकर ये हमारे मृदा में हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी लाएगा, तो उसको भी हमें अपने दिमाग में ध्यान में रखना है जब भी हम खेती बाड़ी करें। कोई भी हमारा मौसम है, हमारा सीजन हो और अगर फसल की आप चयन कर रहे हैं, इस सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है जिससे हम अपनी मिट्टी में हमारे जो नेटिव हमारे पोषक तत्व हैं अगर हम डालें या ना डालें, हमारे मृदा में हमारी जो धरती माँ है उससे बहुत प्रकार के हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए ज़रूरत है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, बस उसको हम बर्बाद हम कर रहे हैं हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके। टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं जरूरी है, जरूरी है, बट उसको किस लेवल पर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे हर फसल के लिए आपको कृषि वैज्ञानिक की तरफ से या कृषि अधिकारी की तरफ से आपको एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर बताया जाता है, मतलब किस फसल के लिए कितना उर्वरक रासायनिक उर्वरक जाएंगे या जैविक उर्वरक जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों आप क्या करते हैं, अपने जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम जब प्रैक्टिकल खेती बाड़ी की बात करें, जब हम अपने किसान भाई खेत बाड़ी पर जाते हैं तो जितनी मात्रा में आपको डालना था, सपोज आप धान की खेती कर रहे हैं, धान की खेती के लिए आपको बता दिया गया कि 120 60 40 मीन्स एनपीके डालें, मीन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम डालें,
आपने इसका स्रोत रखा, इस उर्वरक का स्रोत रखा, यूरिया रख लिया, डीएपी रख लिया और एमओपी रख लिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश रख लिया, लेकिन इतना ना डालकर आप ज्यादा डाल देते हैं कि आपको लगता है कि इस साथ ज्यादा डालने से चाहे वहां पर आपको कमी महसूस हो रही है, पौधों का विकास अच्छा से नहीं हो रहा, पौधों की वृद्धि अच्छी से नहीं हो रही है, तो आप इसका ज्यादा मात्रा में डाल दे रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में डालने से आपको लगता है अगर मैं ज्यादा मात्रा में डाल दे रहा हूँ तो मेरी फसल बहुत अच्छी आएंगे, मेरी उपज बहुत ज्यादा होगी, जिससे हमें कुछ आय में आपको मुनाफा होगा।

0: क्या होता है, पौधों को जितना उनको जितना उनको पोषक तत्वों की जरूरत है उतना ही लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, हमें जितना भूख लगता है, हमारे पेट में जितनी जगह होती है, हम उतना ही खाते हैं ना। कभी कभी होता है हम ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर हम ज्यादा खाते तो आपको भी ज्यादा खाने का भी देखे होंगे दुरुपयोग क्या होता है, हमारे सर स्वास्थ्य पे क्या उसका मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। वैसे ही हमारे पौधे भी हैं, उनको जितना खाना है उतना ही खाएंगे। ज्यादा डालने से क्या होता है, वो जो हमारे पोषक तत्व हैं पानी में मिलकर घुलनशील होकर वो लीच आउट हो जाते हैं, और हमारे पोषक तत्व वो उनको पौधे को नहीं मिल पाते हैं। इसलिए ये सब भी चीज़ें हमें अपने अपने दिमाग में ये बातों को रखने हैं। और पांचवा कारण जैसे हो सकता है, छठा कारण मैं बोलूं, पीएच। आप जानते हैं पीएच हम करते हैं, जैसा आप मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, सॉइल टेस्टिंग कराते हैं ना, जिससे हमें मृदा में मिट्टी में पोषक तत्व क्या है, उसका पीएच का लेवल क्या है वो हम जान पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमें कौन सा पोषक तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है, नहीं है, किसकी कमी है, कौन हमें प्रचुर मात्रा में है, किसकी उसके लिए हमें प्रबंधन करने की जरूरत नहीं है, अगर कमी है तो उसके प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर पीएच का लेवल आप देखेंगे अगर ज्यादा हो जाता है, तो आप देखे होंगे पीएच का लेवल ज्यादा होने से वहां पर जिंक की कमी हमें दिखने लगती है, जिंक की कमी हो जाती है उसमें मिट्टी में। और रासायनिक उर्वरक का भी मैं बता रही हूँ, जैसे रासायनिक उर्वरक आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये रासायनिक उर्वरक ज्यादा प्रयोग करने से भी हमें हमारे जो हमारे नेटिव पोषक तत्व हैं, जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसकी कमी आने लगती है।
1: तो जी हाँ, ये कुछ लक्षण थे जिससे कि आपको पता लगता है और कि कैसे इसकी कमी हो रही है मिट्टी में, और अब इसकी कमी को हम पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में भी बता दीजिए।
0: हाँ, अब ये इसी कमी, अभी तो हम लोगों ने जाना है किसान बहनों एवं भाइयों किसी कमी क्यों हो रही है, और ये जितनी कमी मैं बताई आपको बिहार की दृष्टिकोण से बताई हूँ, और बिहार की ही दृष्टिकोण से अपनी मिट्टियों की इसमें जो हमारे पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उस पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा कर सकें। किसान भाइयों, हमारे जो आपके हैं, आपके जो लोकल रिसोर्सेस हैं, मतलब लोकल हमारे जो स्रोत हैं, आपके पास प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और आप उससे अवेयर भी हैं। बस वही होता है कि जैसे हम कुछ कामों को टालते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, जिसके कारण हमारे जो मृदा है, हमारे मृदा की उर्वरता चली जा रही है। मृदा की अगर उर्वरता जाएगी तो वो पौधों को प्राप्त नहीं होगा, पौधों को प्राप्त नहीं होगा तो हमारे पौधे की फसल अच्छे नहीं होंगी, उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अगर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होगी तो हमारे फसल जो है, फसल के जो हमारे उपज आते हैं वो हमें उसमें वृद्धि नहीं हमारी होगी। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक की, इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। पहले किसी उपाय को मैं इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपके खेत पर ही अवेलेबल है, आपके घर में ही अवेलेबल है, उसी चीज का पहले उसका करें। जैसे किसान भाइयों बहनों, आप करते होंगे अपनी खेती बाड़ी करते होंगे, सपोज आपने कोई सब्जी ही उगाया, सब्जी उगाने का गोभी जैसे सपोज आपने उगाया, गोभी का फल तोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, उसको उसका जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप इधर उधर फेंक देते हैं, चारे को भी उपयोग कर लेते हैं। चारा करते सही है, जिसके पास मवेशी है उसको चारा के रूप में प्रयोग करें वो भी सही है, क्योंकि चारा हमारे जो मवेशी है चारा खाएंगे तभी तो गोबर करेंगे, गोबर भी हमारा बहुत अच्छा एक जैविक उर्वरक है, जैविक खाद है हमारा। अगर आप नहीं करते हैं, जिनके पास मवेशी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अगर सब्जियां जो भी आप फसल उगा रहे हैं उसका जो अपना आपका मेन पार्ट है आपने उसको तोड़ लिया, जो उसका रेस्ट पार्ट बचा हो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में आप इसको काट लें, और उसको काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला दें, मिट्टी में लाइक प्लाविंग करते हैं ना, हम ट्रैक्टर से प्लाविंग करते हैं या कुदाल लेके फावड़ा ले लिया उसके वो मिट्टी में मिला देते हैं। और ये क्या हमारे सारे चीज़ क्या है, ये हमारे इसके बहुत जल्दी डिकम्पोज मीन्स वो विघटित हो जाता है मिट्टी में, हमारे जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम बोले ना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन आप देखे होंगे उसमें केचुआ बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रजातियां उसमें रहती हैं, जो क्या करती है ये जो चाहते हैं ना उनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड मीन्स भोजन का स्रोत होता है और उसको खाते हैं, और जिसके कारण ये जो कि हमारे सब्जियां के जो सब्जियों या कुछ और फसल है ना उसके कारण उसको विघटित कर देते हैं, और ये जिसमें जो पोषक तत्व रहते हैं ये पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो उपाय इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा कहीं गोबर गैस का प्लांट हो, नहीं भी हो, जहां भी है तो गोबर गैस बनने से गैस हम जब बना लेते हैं तो बहुत सारे उसके जो बाय प्रोडक्ट पार्ट होते हैं वो बच जाते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ जैविक खाद के रूप में, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसको भी हम अपने मृदा में मिट्टी में मिला सकते हैं और इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा चौथा कारण आपका हो सकता है, अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो आप कवर, जो कवर हम करते हैं ना, कवर क्रॉपिंग का बोलने का तात्पर्य है, कवर मीन्स जो हमारा ऊपरी परत है, ऊपरी स्तर हमारे मिट्टी का, उसको अच्छे से कवर कर सके, जिससे हमारा जो पानी का भी होता है, जहाँ पानी कमी है तो क्या होता है जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है और पानी कमी होने लगती है, बहुत सारे हमारे जो फसल नहीं है

जिसको हम वीड बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, वो उगने लगते हैं, तो उसको ये कंट्रोल करता है। और जैसे और बहुत सारे ये जो हमारे कवर क्रॉपिंग है, नाइट्रोजन के जो उपलब्धता को प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन कमी को पूरा करते हैं, ये हमारे कवर क्रॉपिंग के लिए स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रोजन कमी के लिए ये कौन से कवर क्रॉपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रह्मासी है, आप ईयर होल द ईयर मीन्स आप साल भर इसको उगा सकते हैं इस फसल को, और आपकी नाइट्रोजन की कमी को आपकी मिट्टी में नहीं होने देता है। ये जो हमारे हैं, जो हमारे सालों भर उगते हैं फसल है, इनका नाम है गोल्ड हेम्प। आप गोल्ड हेम्प ले सकते हैं, बरसीम ले सकते हैं, ढांचा लेते हैं, ये सब हमारे क्या है, कवर क्रॉप है। ये कवर क्रॉप को आप एक बार लगा दिए, ये ब्रह्मरसी है, इसको थोड़ा आप प्रबंधन करते रहें। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मीन्स जो नाइट्रोजन का इनका जो रूट पार्ट है ना, वातावरण में जो हमारे नाइट्रोजन है उसका ये प्रबंधन उससे हुए फिक्स करते हैं अपने जड़ में, इनमें नोडल्स बनते हैं और का फिक्सेशन करते हैं हमारे मिट्टी में, और जिसके नाइट्रोजन की जो कमी होती है उस कमी को ये पूरा करते हैं। इसके अलावा और भी है, अगर इससे भी आपकी कमी नहीं पूरा हो पा रही है, जहाँ आपकी नाइट्रोजन की अगर कमी बहुत लो लेवल पर है, प्रेजेंट है आपकी मिट्टी में, तो वहाँ पर और भी आप चाह सकते हैं, इंटीग्रेटेड में जा सकते हैं। अगर जैविक खाद के प्रयोग से आपकी नाइट्रोजन कमी पूरा नहीं हो पा रही है, तो आप जा सकते हैं रासायनिक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो फसल के लिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही प्रयोग करें, उससे ज़्यादा ना करें आप, मेरा यही आप मानना है, उससे ज़्यादा प्रयोग हम ना करें। जैसे आप नाइट्रोजन कमी है तो कोई भी नाइट्रोजन युक्त जो हमारे उर्वरक है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप जैसे यूरिया करते हैं, जो भी फसल के लिए जितना रिकमेंडेड होता है उतना ही प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जैसे जो फसल चक्र आप अपनाते हैं, एक ही फसल को आप बार बार ना उगा कर फसल चक्र का अपनाएं। जैसे आपने धान उगा लिया, गेहूं उगा लिया, उसके बाद कोई दलहनी पौधों का आप उगाएं, या कोई हमारे तिलहन पौधे का उगाएं, दलहन पौधे का उगाने से क्या होता है, उसके जो हमारा जड़ होता है ना, उसमें जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जो हम रासायनिक खाद से डाल के जितना करेंगे ना, जो मान लो सपोज आप कहीं 120 केजी यूरिया डाल रहे हो पर हेक्टेयर, डाल रहे हो 120 केजी यूरिया पर हेक्टेयर आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, और वहाँ दलहनी पौधा आपने लगा दिया, तो नाइट्रोजन हमारा जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है अपने जड़ में, और उस कमी को वहाँ तक उसको मिनिमाइज कर देता है जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। अगर आपने 120 केजी हेक्टेयर पर हेक्टेयर डाला है, अगर दलहन पौधे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आप फसल चक्र का जरूर अपनाएं, और उस फसल चक्र में आप दलहनी पौधों का जरूर साल में एक बार या दो बार जरूर प्रयोग करें, और यही है इसके लिए। और जैविक खाद कंपोस्ट का प्रयोग करें, जो हमारे गोबर खाद उसका प्रयोग करें, हमारे केचुआ खाद का प्रयोग करें, जो भी आपके पास सब्जियों के, जो भी आपकी फसल के कट्टे छिट्टे पार्ट होते हैं उसका आप उससे कंपोस्ट बनाएं, और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें। ये सब इसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के तरीके हो गए हैं। दूसरा हो सकता है फॉस्फोरस की कमी आती है, तो फॉस्फोरस कमी की भी पूरा करने के लिए आप जैविक खाद डाल सकते हैं, जैसे गोबर खाद, उसमें भी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सब डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो हमारा केचुआ खाद है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस की कमी अगर ज़्यादा आ रही है ना, तो हमारे पास बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जैविक उर्वरक जो हैं वो, आपने नाम सुना होगा माइक्रो जो होता है हमारा, माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स होते हैं। ये माइक्रोराइजल इनोकुलेंट्स क्या करता है, जो हमारे मृदा में, हमारे मिट्टी में जो हमारे नेटिव फॉस्फोरस होते हैं उसको क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है। वो जो मतलब जो हमारे मिट्टी में जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको लेने में पौधा जो है असक्षम हो रहा है, तो ये क्या करता है, उसको जो मतलब जहाँ वो उसको क्या करता है, जिस जहाँ वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और पौधा उसको ले नहीं पाता है, तो उसको ये जो है हमारा माइक्रोराइजा ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करता है, मीन्स नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म से एक्सचेंजेबल फॉर्म में लाता है, पौधों को उपलब्ध कराता है। ये मीन्स मोबिलाइजेशन का तरीका, मीन्स बोलने का मतलब यही है, मोबिलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने कहीं एक जगह मैं बैठी हूँ और मैं बहुत स्थिर हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक डॉर्मेंट स्टेज में चली गई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो कोई मुझे आया, मुझे कुछ ऐसा बात बोला, मोटिवेशनल बात कहा चाहे कुछ भी कहा, और मुझे एक्टिव स्टेज में ला दिया, तो जस्ट लाइक इसी जैसा है हमारा जो माइक्रोराइजा इनोकुलेंट है, क्या करता है ये फॉस्फोरस जहां हमारे नेटिव पूल में प्रेजेंट है और वो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, जहां से हम पौधे उसको उपलब्ध नहीं ले पा रहे, पौधे वहां से ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करता है, उसको मोबिलाइज करके एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेते आता है और पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। और तरीके हैं पौधे के लिए, और फॉस्फोरस की कमी के पूरा करने के लिए आप कर सकते हैं, आप इसके लिए बहुत सारे रासायनिक खाद भी यहाँ प्रयोग करते ही हैं, जैसे मैंने DAP का नाम बताया, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट भी कर सकते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के भी प्रयोग से क्या होगा, आपको नाइट्रोजन का भी उपलब्धता मिलता है, फॉस्फोरस का भी मिलता है, और इसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है, इसकी भी हम प्रयोग करते हैं अपने फॉस्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। और मिट्टी में अगर फॉस्फोरस की कमी ज़्यादा आ रही

0: ये तो बोन मील, आपने इस नाम सुना होगा। बोन मील में भी जानने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में फास्फोरस कमी को ये पूरा करता है। और अब जिंक की बात करें, जैसे जैविक सामग्री जो भी हमारे होते हैं, जैविक खाद होते हैं, जैसे मैंने बोला गोबर खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो, बहुत प्रकार के हम जो खाद बनाते हैं हमारे, उसको डालने से क्या हो जाता है, जो फास्फोरस हमारे अनलॉक स्टेज, अनलॉक बोले तो जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होते हैं, उसको वो क्या करता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में लेता आता है और पौधों को ग्रहण करने में मदद करता है, ये जैविक जो हमारे खाद होते हैं। और जिंक की भी कमी है, जिंक की कमी के भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका भी आप समझे तो प्रकार ऐसा ही है, बट कुछ सोर्स अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ आपको बताया गोबर खाद डालो, कंपोस्ट डालो, केचुआ खाद डालो नाइट्रोजन की फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए। तो गोबर खाद या केचुआ खाद या कोई और भी कोई खाद हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैविक खाद में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस पोटासियम ही प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आ रही है, ये खाद डाल रहे हैं, तो इस खाद ये खाद भी उस कमी को पूरा करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गोबर खाद में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी, जिंक की कमी आ रही है, आप ना पोल्ट्री से बनी जो खाद होती है, जो हमारे मतलब जो भी पोल्ट्री जहां फार्म होती है उसके जो स्क्रेटा होते हैं, जो उसके गोबर खाद, जो उसके गोबर होते हैं, जो उसके मल मूत्र होते हैं, उससे आप खाद बनाएं, उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें जिंक की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और जिंक की कमी को वो पूरा करता है। इसके अलावा नीम केक, नीम तो आपने नाम सुना ही होगा, नीम जो होता है, जो हमारे नीम के पेड़ होते हैं, इस नीम से इनके लिप से, इनके ट्यूब से, इनके फली से क्या करना है, केक टाइप का बनाया जाता है और इसका डाला जाता है मृदा में। ये नीम केक भी जिंक की कमी को पूरा करता है। जैविक उर्वरक जैसे मैं बताई हूँ, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी प्रचुर मात्रा में आपकी जिंक को कमी को पूरा करता है। इसके अलावा अजैविक अगर प्रबंधन की मैं बात करूँ, मिस कौन सा हम रासायनिक उर्वरक का डालें जहाँ अगर ज़्यादा कमी आ गई, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जैविक प्रबंधन कर रहे हैं फिर भी आप जिंक की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है, किसान बहनों भाइयों, आपको अजैविक खेती की तरफ भी, अजैविक प्रबंधन की तरफ भी जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने फसल हमने जो लगाया उसकी उपज अच्छी से लेनी है। और हमारे जितनी हमारी लाइक हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है भारत की, बिहार की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको भी हमें, उनको भी हमें भोजन प्रदान कराना है, तो उस लेवल पे हमें अपनी खेती बाड़ी तो करनी ही पड़ेगी, फसल की उपज लेनी ही पड़ेगी। तो उस केस में हमें क्या होता है, जैविक, अगर जैविक की बात करेंगे, जैविक प्रबंधन की बात करें तो नहीं हो पाता है, तो उसमें हमें क्या, इंटीग्रेटेड सिस्टम में जाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट बोले तो आपको अजैविक प्रबंधन भी करने पड़ते हैं, जैविक प्रबंधन भी करने होते हैं। तो जिंक की जो कमी आ रही है, तो उसके लिए अजैविक प्रबंधन के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये जिंक का बहुत अच्छा अजैविक स्रोत है, जो मिट्टी में जिंक की कमी आती है तो उसको ये पूरा करता है। और भी बहुत सारे जिंक खाद है हमारे, जैसे जिंक चिलेट्स के आते हैं, ये जिंक चिलेट्स भी एक अजैविक खाद है जो जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है और पौधे को ये सीधा जिंक प्रदान करता है और पौधे को सीधा जिंक ग्रहण करने में या प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी आ रही है तो पौधे पे आप डायरेक्ट जो जिंक, जैविक जिंक का जो अच्छा अजैविक स्रोत है उसका फोलियर स्प्रे करते हैं, मीन्स उसका आप जिंक को आप पानी में घोलकर डायरेक्ट आप अपने पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तियों पे या पौधे के ऊपर डाल सकते हैं, जो जिंक की कमी को पूरा करता है। और यही सब जो हमारे हैं फसल चक्र, तो आपको सभी में अपनाने हैं इस कमी को पूरा करने के लिए। जहाँ जरूरत पड़े आप जैविक खेत, जैविक प्रबंधन करें, अगर इससे ज़्यादा इसकी कमी पूरा आप जैविक प्रबंधन से नहीं कर पाते हैं तो आप अजैविक प्रबंधन भी करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर सोनल से जाना कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जिंक की कमी को आप कैसे पूरा करेंगे। तो अगले दिन आप सभी से फिर मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है

0: आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी सिलिंग्स की जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशाह इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट ना हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में

0: नमक किन किन स्रोतों से आता है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes, sir. We have seen.
4: I have seen, sir.
5: I like bicycle, sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please! I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride. Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track.
3: To keep my bicycle moving,
2: All I need is some air. I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find?

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे

0: तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथ हुसैन, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथ हुसैन, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूँ माँ।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।

और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब,
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
5: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर,
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया, हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे

0: सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
4: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान

रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दें, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी।

0: खांसी दो खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज हम उन्नत कृषि कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए खास विषय, नए बागों की स्थापना। और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और नए बाग लगाने से पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए ये हमारे किसान भाइयों को, उनके बारे में कृपया बताएं।
5: धन्यवाद अनु। नए बाग लगाने से पहले किसान भाई को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से हम पौधा लेंगे वो पौधशाला विश्वसनीय होना चाहिए, या नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई सरकारी नर्सरी पौधशाला से ही पौधा लें, एवं स्वस्थ पौधा होना चाहिए। अगर अधिक संख्या में पौधा को लगाना है, अधिक एरिया में लगाना है, तो जो विश्वसनीय पौधशाला है उसको पहले से अपना ऑर्डर दे देना चाहिए और पौधा को बुक करा लेना चाहिए। इससे है कि समय पर उनको अच्छा पौधा मिल जाएगा। यह भी देखना चाहिए कि पौधों में जड़ें अच्छी है या नहीं है। पौधों की जो मिट्टी होती है वो टूटनी नहीं चाहिए, या अगर वो टूट जाता है तो उसमें उससे क्या होता है कि जड़ डिस्टर्ब हो जाता है, जड़ भी साथ साथ टूट जाता है। तो लगाने अगर उस वैसा पौधा लगाएंगे किसान भाई तो हो सकता है कि वो सूख जाए, तो इन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए। और जिन भूमि में जल निकास की उचित सुविधा नहीं है उस भूमि में नींबू वर्गीय फल, पपीता एवं केला कदापि नहीं लगाना चाहिए। और किसान भाई को गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढा ठीक से भरा जाए, गड्ढे को कम से कम भूमि तल से 10 सेंटीमीटर ऊंचा भरना चाहिए। और जब पौधा को लगा देते हैं तो उसको अच्छी तरह से दबा देना चाहिए पिंडी को। ये सब बातें शुरू में किसान भाई को ध्यान देना चाहिए
4: जी। और अगर नए बाग हम लगा रहे हैं तो इसमें क्या जलवायु, मिट्टी और स्थान पर ध्यान देना चाहिए?
5: हाँ, जलवायु होता क्या है कि सब फल वृक्ष सभी जलवायु में अच्छा नहीं करता है, तो किसान भाई को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है, अच्छा का मतलब कि जो उपज अच्छा दे और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो जिस जलवायु में जो फल वृक्ष अच्छा करता है उसी जलवायु में उसी फल वृक्ष को लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड से लगा दिए, कोई भी फल वृक्ष लगा दिए, यहाँ होगा नहीं, तो फिर वैसे में किसान भाई को लॉस हो सकता है। अब स्थान की बात करें कि तो अगर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई, बहुत बड़ा रकबा में कर रहे हैं, तो उनको ये देखना है कि ये जो जगह है वहाँ अप्रोच है कि नहीं, मतलब कि यातायात की सुविधा है कि नहीं, रोड है कि नहीं, क्योंकि उनको पौधे तैयार करेंगे, फसल तैयार होगा तो उनको सेल आउट भी करना है। तो अधिक रकबा में लगा रहे हैं तो वहाँ ट्रक पहुँचना चाहिए तभी ठीक रहेगा, या फिर उनका जो यंत्र है, ट्रैक्टर है, दवाई लाने की सुविधा है, तो सब रोड पर होना चाहिए वो जगह। और मिट्टी की बात करें तो दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी में जिसका पीएच मान

0: 5.5 एवं 7.5 के बीच रहता है वो फल वृक्ष के लिए अच्छा माना जाता है। और है कि बाग में पानी के निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। उचित प्रबंध नहीं होने से तो हम पहले भी बताए हैं कि पपीता नींबू बरगद फल ये सब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ है कि जैसे कि लवणीय एवं क्षारीय भूमि को कुछ फल वृक्ष बर्दाश्त कर लेता है, तो वो फल वृक्ष हैं जैसे कि बेर है, अमरूद है, आंवला है, बेल है, फालसा है, ये सब लवणीय मिट्टी को कुछ हद तक सहन कर लेता है। तो किसान भाई सब सर्वप्रथम अपनी मिट्टी का भी जांच शुरू में करवा लें कि मिट्टी किस तरह का है, उस अनुसार से अपना फल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फल वृक्ष यहाँ हम लगा सकते हैं।
1: जी, फल वृक्ष के किस्मों के बारे में थोड़ी जानकारी मैडम दें।
0: हाँ, यहाँ का जो हम लोग के बिहार के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का व्यावसायिक जो फल वृक्ष है वो है आम, अमरूद, केला, लीची, पपीता, ये सब हम लोग के यहाँ लगाते हैं किसान भाई। लेकिन पठारी एरिया या फिर जो जो है एरिया जो बर्दाश्त सूखा को बर्दाश्त करता है वहाँ आंवला, बेर ये सब लगा सकते हैं। तो इसके लिए है कि आम में जैसे कि अभी जर्दालू को GI टैग मिला हुआ है तो जर्दालू का डिमांड बहुत अधिक है, तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब दशहरी है, ये अर्ली वैरायटी है, गुलाब खास भी अर्ली वैरायटी है, तो अगर शुरू में मार्केट पकड़ना चाहते हैं किसान भाई तो अर्ली वैरायटी को लगाएं, या फिर टेस्ट का की बात करें बहुत अच्छी टेस्ट होनी चाहिए तो लंगड़ा यहाँ बहुत फेमस है भागलपुर में, तो लंगड़ा लोग लगाते हैं, कमर्शियल स्केल में लगाते हैं। और हम लोग का BAU का भी कुछ हाइब्रिड रिलीज किया हुआ है, जैसे सुंदर लंगड़ा है, सबरी है, जवाहर है, अलफजली है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। आम्रपाली, मलिका, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, ये सब अच्छी वैरायटी है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। अब केला की बात करें तो G9 केला है, मालभोग है, अल्पान है, रोबस्टा है। G9 का यहाँ हम लोग के BAU सबौर में कमर्शियल उत्पादन होता है, और इसका एक फ़ायदा है कि ये टिश्यू कल्चर प्लांट होता है, इसमें बीमारी बहुत कम लगता है या नहीं के बराबर ही लगता है क्योंकि टिश्यू कल्चर प्लांट है। और लीची की बात करें तो शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है, तो शाही है, पूर्वी है, चाइना है, देसी है, कस्बा है। देखिए इसमें देसी क्या है, देसी अर्ली वैरायटी है, तो किसान भाई अगर अर्ली मार्केट को पकड़ना चाहते हैं तो देसी को लगा सकते हैं शुरू का अगर बाजार पकड़ना है तो। और कस्बा में क्या क्वालिटी है कि ये एडवर्स सिचुएशन को बर्दाश्त करता है, तो कस्बा को भी लगा सकते हैं, इसमें आंधी तूफान से उतना फसल को नुकसान नहीं होता है।
1: जी है। अब बारी आती है बाग के रेखांकन की, तो इसे कैसे करना चाहिए?
0: देखिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बाग हम बहुत बहुत फसल लगाना चाहते हैं तो उस अनुसार से जो जितना भूमि को हम लोग तय किए हैं, किसान भाई तय किए हैं कि हमको इतना में बाग लगाना है, तो डिफरेंट ब्लॉक में उसको बांट लें कि यहाँ पर हमको आम लगाना है, यहाँ पर केला लगाना है, यहाँ पर पपीता लगाना है, यहाँ पर अमरूद लगाना है, उसको ब्लॉक में डिवाइड करके उसका लेआउट करना है। देखिए विधि लगाने का रेखांकन जो है डिपेंड करता है कि फल का किस्म भी कौन है और भूमि कैसा है। तो फल का कोई लंबा किस्म होता है, कोई विग्रस ग्रोथ होता है तो उसके लिए अधिक डिस्टेंस रखा जाता है, कोई छोटा नाटक किस्म का फल है तो उसके लिए कम जगह की ज़रूरत होती है। और इसको लगाने के लिए सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए, फिर अपना स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सब प्रत्येक वृक्ष को अच्छी तरह विकसित होने के लिए पर्याप्त क्षेत्र मिल जाए, और जो कर्षण क्रियाएं हैं जैसे कि इरिगेशन देना है, सिंचाई करना है, खाद देना है, वहाँ से खरपतवार को निकालना है, ये सब करने में असुविधा नहीं हो, इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए कि किस विधि से रेखांकन करना है। रेखांकन की विधि बहुत है, जैसे कि वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, पंचक विधि

0: दी है, कंटूर भी दी है, तो इसमें से सबसे अच्छा जो है रेखांकन वर्गाकार विधि को माना गया है। इससे पौधा से सभी जो कर्षण क्रियाएं होती है करने में सुविधा होती है किसान भाई को, तो वर्गाकार विधि जो है सबसे अच्छा है फल वृक्ष के लिए
1: जी। अब बारी आती है गड्ढा बनाने और उसे भरने की, तो इसे किस प्रकार कैसे करना चाहिए?
0: हाँ देखिए, गड्ढा बनाने का है कि गड्ढा बनाएंगे, ये भी डिपेंड करता है कि मेरा फल वृक्ष कैसा है, जैसे कि बड़ा है, आम है, अमरूद है, लीची है, कटहल है, सपाटू है, आंवला है, तो इसके लिए गड्ढे का आकार 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए गड्ढे का साइज। अब उससे छोटा पौधा हम लें, जैसे बेर है, सहतूत है, लेमन है, नाशपाती है, इस सब के लिए 0.75 मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और उससे भी छोटा पौधा अगर है, आड़ू है, आलू बुखारा है, केला है, पपीता है, शरीफा है, अनार है, फालसा है, ये सब के लिए आधा मीटर का गड्ढा बनाना चाहिए। और गड्ढा भरने की जहाँ तक बात है, तो गड्ढा इसके लिए पहले रेखांकन, इसे इसका पहला टॉपिक है, हमने रेखांकन बताया है किसान भाई को, तो रेखांकन करके वहाँ पे बीच में खूंटी लगा देना चाहिए। जैसे कि अगर 10 मीटर बाय 10 मीटर पे हमको पौधा लगाना है, तो 10 मीटर 10 मीटर पे खूंटी गड़ा हुआ रहना चाहिए, उसी के सेंटर पे, उसी वहीं पे गड्ढा बनेगा। और फिर उसको नीचे के मिट्टी को, गड्ढा जब बनाते हैं तो नीचे के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं और ऊपर के आधा मिट्टी को अलग रखते हैं, और नीचे के मिट्टी में जो है ऊपर वाला मिट्टी पहले भर देते हैं, और नीचे वाला मिट्टी में कंपोस्ट है, कुछ अगर इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपाइरीफॉस, दीमक मरने वाला इंसेक्टिसाइड को डालकर उसको मिला के अच्छी तरह से फिर नीचे वाली मिट्टी को ऊपर भर देते हैं और उसको अच्छी तरह दबा देते हैं
1: जी। मैडम, पौधे खरीदते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, तो क्या कुछ सावधानियां किसान भाइयों को लेनी चाहिए इस समय?
0: हाँ देखिए, फलों के पौधे लगाने के लिए किसी विश्वसनीय या कोशिश करना चाहिए कि सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदने चाहिए। उसमें और ध्यान देना चाहिए कि पौधा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं, रोगी या कीड़ा लगा हुआ अस्वस्थ पौधा को नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, कलम बांधा जाता है फल वृक्षों में, क्या होता है कि कलम बांधा जाता है, नीचे का अलग रहता है, ऊपर का अलग रहता है, वो भी देखना चाहिए कि नीचे का मोटाई अधिक नहीं होनी चाहिए, नीचे और ऊपर का जो तना का मोटाई होता है दोनों सेम होना चाहिए। पौधों की पैकिंग, जैसे कि दूर ले जाना है हमको, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ले जाना है, ट्रक में लाद कर ले जाना है, तो उसका पैकिंग करवा लेना चाहिए अच्छी तरह। और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पिंडी का मिट्टी टूटे नहीं, और अगर पौधा देते समय उसमें टैग नहीं लगा हुआ है तो टैग भी किसान भाई को लगवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पौधा मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन सा वेराइटी है, तो टैगिंग भी करवा लेना चाहिए। पौधशाला की क्यारी से पौधों को निकालते समय मिट्टी की पिंडी पौधों की जड़ों के आसपास टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पौधे अधिक आयु के भी नहीं होनी चाहिए। अगर दूर ले जाना है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच में उसको अगर पानी की जरूरत है तो पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए
1: जी। पौधा कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए मैडम।
0: देखिए, इससे पहले एक रेखांकन जब हम लोग करते हैं तो वो तो मिट्टी, ये क्या कहते हैं, पिट का खुदाई हो गया, गड्ढा का खुदाई हो गया, फिर उसको हम लोग भर दिए। अब उस गड्ढे में 1-2 पानी, अगर वर्षा नहीं पड़ता है तो 1-2 पानी देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए, या वर्षा पड़ता है तो वो अपने आप बैठ जाएगा, उसमें पानी लगेगा तो मिट्टी अच्छी तरह गड्ढे का बैठा हुआ रहना चाहिए। और फिर जैसे पहले हम रेखांकन किए थे उसी तरह से फिर लगाते समय भी लेआउट करना है, खूंटी को गाड़ना है, जहाँ पर सेंटर है गड्ढे का वहाँ पर खूंटी लगाना है, उसी तरह से जैसे रस्सी बांध कर हम लोग लेआउट करते हैं उसी तरह से लगाते समय भी लेआउट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि पौधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा, एकदम एक लाइन में लगेगा, तो ये ध्यान देना चाहिए किसान भाई को फिर से क्या

0: करना चाहिए कि लेआउट करना चाहिए, फिर से खूंटी लगाना चाहिए। ये हम सावधानी में ही बता दिए कि पौधे की जड़ को, जड़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और गड्ढा उतना ही हम बनाएंगे गड्ढे में कि जितना से कि वो पिंडी जो है, जो बॉल है उसका पौधा का, वो अच्छी तरह बैठ जाए। जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ पर ग्राफ्टिंग किया हुआ निशाना है, वो नीचे मिट्टी के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मिट्टी से करीब करीब 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए जी। ये सब ध्यान देना चाहिए किसान भाई को।
1: और अंत में किसान भाई, अंतर्वर्ती फसल के रूप में कौन कौन से पौधों को लगा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दे दें मैम।
0: हाँ देखिए, शुरू में जिसे हम लगाए पौधा, तो जो फील्ड है, जो भूमि है, बहुत खाली रहता है। उसमें अंतर्वर्ती फसल अगर किसान भाई लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि उनको कुछ इकोनॉमिक लाभ हो जाएगा, कुछ सेल आउट करके कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो दलहनी फसल में अगर लेना चाहते हैं तो उनको उड़द लेना चाहिए, मूँग लेना चाहिए, अरहर, राजमा, मसूर। और तिलहनी की बात करें तो मूँगफली है, सरसों है, तिल है, ये सब लेना चाहिए। सब्जी में बैंगन, लौकी, तोरी, सहजन, लोबिया, भिंडी, हल्दी, अदरक, ये सब ले सकते हैं। और औषधीय पौधों में भी है, अश्वगंधा है, गुगल है, शंखपुष्पी है, धतूरा है, तुलसी है, धृत कुमारी है, इत्यादि को किसान भाई लगा सकते हैं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, नए बागों की स्थापना में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है, यहाँ पर सारी बातें मैडम ने बताई हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये वार्ता, और जानकारियों से भरा ये हमारा वार्ता था। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड

और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधें कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की

0: डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 121 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राची सिंह मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिविजन में।
5: धन्यवाद उमा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 121, उसका रेडियो रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिवीजन विल गो थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इन सबको आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो, इसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटोन डी बैरी हैं, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, माइकली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है, फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया। प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में,

उनको आप कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो मेजर डिजीजेस के हैं एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीजों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरिथीशियम, ये सब किस तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम हैं अंडर किंगडम फंजाई उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा, प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ओके, फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरी ट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, ओके। आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज़ बीन टॉट इन अ क्लास बाय श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जेनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट। उसके बाद बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को। जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है, जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है। फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स। ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट। उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो, उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में। क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स, और जो क्या कहते हैं इनके एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका। फिर उसके बाद आपका ओमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में कि आए।
फिर आपका बेसिडियो माइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या हैं, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से

0: मेमोराइज करना है, फिर इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है, और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं उसको ध्यान रखना है. ओके, आई होप सो दिस इज एनफ. And you all will prepare well for the exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
1: Thank you, ma'am. दोस्तों उम्मीद है कि ये रेडियो रिवीजन आपके कल के एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी. घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक.
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो. क्यों इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है.
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं.
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ. बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात. अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी. यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ.
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य.
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर.
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर.
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक.
1: जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े. कहानी है सुधा चंद्रन की. मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था. जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी. उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया. 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी. शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया. उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया. सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी. उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया. उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग. लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं. सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे. किस्मत में कुछ और भी लिखा था. 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई. उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981. तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया. इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई. इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया. डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना. एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी. ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों. लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने

साथियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैड लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बदूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और अभी आपके लिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल आपके कोर्स APP 121 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा है और अभी आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए तो कितना अच्छा। तो आइए हम आपको आपके कोर्स का रिवीजन कराते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्राची सिंह मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में।
1: धन्यवाद उमा। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है APP 121, उसका रेडियो रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी, बट फॉर क्विक रिवीजन विल गो थ्रू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के अंडर में आप टर्मिनोलॉजीज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, जैसे पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिटी क्या है, अल्टरनेट होस्ट, कोलैटरल होस्ट और जो भी बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज डिफरेंट बेसिस पे आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेस्ड ऑन द इनोकुलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनोकुलम एज वेल एज बेस्ड ऑन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इन सबको आप अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज ऑन द डिफरेंट बेसिस। ओके, डिजीज ट्रायंगल, डिजीज पिरामिड, ये सब टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक है जो, जिसमें हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में आप लोगों को जैसा क्लास में पढ़ाया गया है कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन प्लांट पैथोलॉजी, स्पेशली द मेजर साइंटिस्ट सच एज एंटोन डी बैरी हैं, जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी, फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, और जो भी मेजर साइंटिस्ट हैं जैसे फ्लेमिंग हुए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और आपका वायरोलॉजी की जो हिस्ट्री है, फादर ऑफ वायरोलॉजी, और उसके अलावा भी जो भी आपको साइंटिस्ट और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है, ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हो गया। प्लस जो इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, जैसे फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बटलर और बाकी मुंडकर और अदर जो भी साइंटिस्ट हैं, केसी मेहता, ये लोग सबका आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर है आपका फंजाई, इंट्रोडक्शन टू फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई का से रिलेटेड आप लोग जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स की कौन कौन से फंजाइज हैं और वो मेजर फंजाइज जो कौन कौन से बीमारियां करते हैं, जो डिजीजेस करते हैं प्लांट्स में, उनको आप कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो मेजर डिजीजेस के हैं, एक बार आप उनको भी रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीज़ों को, कॉजल ऑर्गेनिजम्स को, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, प्लाज्मोगैमी के मेथड्स हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, जैसे कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंजाई, एपोथीशियम, क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, ये सब किस तरह के

फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं किस फंजाइज में, ये पढ़ लीजिएगा। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में जो फंजाइज के हैं उनको, जैसे कि आपका उसमें है आपका सिनेमेटा, स्पोरोडोकियम, ये सब भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट जो आपके फाइलम हैं अंडर किंगडम फंजाई उसको पढ़ना है अच्छे से, और जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो भी सर ने आप लोगों को क्लास में बताया होगा उससे रिलेटेड फंजाइज का पढ़ लीजिएगा। प्लस बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया में जो टिपिकल स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, ओके, फिर फ्लैजिलेशन पैटर्न, जैसे कि किस किस तरह से फ्लैजिलेशन पैटर्न है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न है, पेरी ट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इन सारे किस किस तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न है, प्लस वो फ्लैजिलास मतलब ये तरह का फ्लैजिलेशन पैटर्न किस बैक्टीरियाज में पाया जाता है, एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, मेमोराइज इट विथ एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिलेशन पैटर्न विच आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, ओके। आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स विच हैज़ बीन टॉट इन अ क्लास बाय श्रद्धा मैडम अबाउट कैलकुलेशन ऑफ जेनरेशन टाइम और सम एल्स, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दैट। उसके बाद बैक्टीरियाज का आप लोगों को जो भी रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ाए हो गए होंगे वो सब उसको भी आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा बैक्टीरियाज को। जो क्वेश्चंस हैं जैसा कि फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया है कि फिलअप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, कुछ शॉर्ट आंसर्स रहेंगे एज वेल एज कुछ आपके डिफरेंशिएशन होंगे, जैसे कि डिफरेंशिएट करने के लिए दो दिया रहेगा आपको और उनके बीच आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि राइट टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जितना नेसेसिटी है, जैसे मार्क्स आपको असाइन किया गया, जैसे अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंगली उतने ही पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आंसर्स में आपको नहीं लिखनी है। फिलअप में ध्यान रखना है कि ओवर राइटिंग एंड कटिंग्स, यू शुड अवॉइड ओवर राइटिंग्स एंड कटिंग्स। ट्रू फॉल्स है तो उसमें केवल आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे करेक्ट करने का स्टेटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, तो उतना ही आप लोग स्टिक टू द पॉइंट। उसके बाद आप लोग ओवरऑल जो भी है, जैसे कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं या जो डिफरेंशिएशन है, अगर 3 मार्क्स का है तो आप मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखिए डिफरेंशिएशन में विथ एग्जाम्पल्स, या 5 पॉइंट्स जितना भी लिखो, उससे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें आपको लोडिंग नहीं करनी है आंसर्स में। क्लासिफिकेशन जो है फंजाई का, बच्चे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे होंगे मुझे जो लगता है, तो क्लासिफिकेशन में आप जो मेजर ग्रुप्स हैं एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा, फोकस ऑन दोज ग्रुप्स, और जो क्या कहते हैं इनके एग्जांपल्स हैं मेनली जो बिलोंग करते हैं, जैसे एस्कोमाइकोटा में कौन कौन सी फैमिलीज हैं, ऑर्डर्स हैं, और जो मेन उनका एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा मेन जो डिजीज कॉजिंग है, जैसे एस्कोमाइकोटा में आपका पाउडरी मिल्डिव है, फिर पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप ध्यान रखिए कि क्या कहें कि किससे होता है, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है आपका इनका। फिर उसके बाद आपका उमाइकोटा में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, डाउनी मिल्डिव, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो ये सब आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि क्या क्या कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं। लोअर फंजाइज में आपका पीथियम भी है, तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में कि आए। फिर आपका बेसिडियोमाइकोटा में जैसे मशरूम्स आते हैं जो भी बिलोंग करते हैं इस फाइलम के, तो उनको भी आप एक बार कौन कौन से मशरूम्स हैं, क्या क्या हैं, ये जो भी क्लास में सर ने पढ़ाया होगा घटक सर ने, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। फिर इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन मेनली आप टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, प्लांट डिजीजेस पे फोकस रखना है, और जो भी साइंटिस्ट हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है क्लास में आप लोगों को कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, मेजर जो लैंडमार्क डिस्कवरीज हुई हैं प्लांट पैथोलॉजी में, और उनका मतलब क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, उसको ध्यान रखना है। ओके, आई होप सो दिस इज एनफ,
एंड यू ऑल विल प्रिपेयर वेल फॉर द

0: exam and perform your best in the exam. Okay, all the best for the exams.
1: थैंक यू मैम. दोस्तों उम्मीद है कि ये रेडियो रिवीजन आपके कल के एग्जाम में काफी मददगार साबित होगी. घबराना नहीं है, बस कल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए. बेस्ट ऑफ लक. आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक. कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज. मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम. आज हम रेशेदार फसलों के बारे में बात करेंगे और इसी क्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर सबोर्णा रॉय चौधरी मैम. मैं आप सभी को बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. और मैडम हमें आज रेशेदार फसलों के पैकेज और प्रैक्टिस के बारे में बताएंगी. मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले तो ये रेशेदार फसल क्या है मैडम, ये हमारे श्रोताओं को बताएं.
2: जी, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है जिस विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रेशेदार फसलें. रेशेदार फसलें एक्चुअली फाइबर क्रॉप्स है. ये कुछ अलग से टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ध्यान से जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. एक्चुअली कुछ क्रॉप है जिनको हम लोग फसल के रूप में नहीं लेके उसकी फाइबर को लेते हैं. फाइबर से तरह तरह का चीज़ें बन सकता है. जैसे आप लोग जानते हैं जैसे फसल के बीच में कॉटन, कॉटन मतलब कपास, जैसे जूट, जूट मतलब पाट, जैसे कपास पाट इस तरह का फसलों में जैसे बनता है, जैसे बैग बन सकता है, इवन साड़ी बन सकता है, उसका उसका डोरमैट घर में बिछाई चटाई बन सकता है, ऐसे तरह तरह का चीज़ें, कार्टेन दरवाजे पे लगाने वाला पर्दा बन सकता है, ऐसे तरह तरह का चीज़ें बन सकता है. तो जितने भी फाइबर क्रॉप्स है आज के जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया के, जहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक एकदम पॉलीथिलीन के वजह से पूरा बैंड हो रहा है, उसमें बहुत आगे बढ़ के आ रहा है, उभर के आ रहा है ये सब कपास पाट इस तरह का फसलें. तो रेशेदार फसलें अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है.
1: जी, अभी आपने पाट के बारे में बताया, जूट के बारे में, तो हमने भी अभी प्रदर्शनी कुछ दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो वहाँ पर जूट के जो फोल्डर होते हैं फाइल रखने वाले वो बनाए गए थे, महिलाओं के लिए पर्स बनाए गए, तो इस तरीके से बहुत ही नई नई चीज़ें बनाई गई थी. मैडम अभी हम बात करते हैं कपास के बारे में, तो उसके बारे में बताइए. हाँ, इसके पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे.
2: जी जी, कपास के बारे में हम पहले बता दें, कपास जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बिहार में उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कतें यही आती है, कपास काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है. अच्छा. तो बिहार में काली मिट्टी के ज़्यादा मिलते नहीं है, इसीलिए ब्लैक सॉइल जहाँ पे है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है. जैसे महाराष्ट्र गुजरात इस तरह का जो स्टेट्स है वहाँ पे कपास बहुत अच्छा होता है. कपास जनरली दो तरह का होता है, एक है जिनके लॉन्ग फाइबर होते हैं मतलब लंबे फाइबर, उनको हम लोग बोलेंगे धर्मा धर्मा, या आप लोग बोल सकते हैं अमेरिकन कपास, या जिनके शॉर्ट फाइबर छोटा जिनके फाइबर होते हैं, रेशे जिनके छोटे होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे नरमा, नरमा मतलब देसी कपास. तो दो तरह का कपास होते हैं, एक अमेरिकन कपास एक होता है देसी कपास. तो जनरली चाइना एक्चुअली अगर आप कंट्री में बात करें तो चाइना एक्चुअली लीड ले रहा है कपास में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन सेकेंड नंबर पर इंडिया आपके भारत है सेकेंड नंबर पर. अगर आप स्टेट्स के बात करें तो स्टेट्स में भी बहुत सारा स्टेट्स कपास का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना ये सब स्टेट, आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु ये सब कपास में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है. सो कपास के बारे में थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा बता दें, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तभी भी कोई कोई जगह पे होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होता है. तो कपास के बारे में बता दें, कपास या फिर पाट कोई भी फसल लगाइए, इन तरह इन मतलब ये रेशेदार फसलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी को महीन करना पड़ता है, इसीलिए 6-7 हैरोइंग प्लाउइंग मतलब मिट्टी का जुताई करना, उसको पाटा लगाना, बहुत मिही करके ज़मीन तैयार करना पड़ता है. ज़मीन तैयार करने के बाद ज़मीन में जैसे कपास को मैंने बोला, कपास दो तरह का होता है, देसी कपास और अमेरिकन कपास. अगर आप देसी कपास का बात करें तो देसी कपास 10-18 केजी के बीज दर पर हेक्टर में लगता है. अगर आप अमेरिकन कपास के बात करें तो 15-25 केजी पर हेक्टर के बीज दर से उसकी सीड लगता है. अगर आप लोग स्पेसिंग के बात करें तो अगर देशी कपास है उसको बहुत कम स्पेसिंग में भी हो जाता है।

0: जैसे प्लांट टू प्लांट मतलब पौधे से पौधे की दूरी और रो टू रो एक पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो देशी कपास के बारे में हम पहले बोलते हैं, देशी कपास जो होता है उसकी 60 by 30, 60 पंक्ति से पंक्ति और 30 एक पौधा से पौधे की दूरी होता है। और अगर हम अमेरिकन कपास की बात करें तो पंक्ति से पंक्ति 60 रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर तक ही होना चाहिए। तो ये सब है स्पेसिंग। स्पेसिंग के बाद आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मिही करके सॉइल मिट्टी को लगाना चाहिए। सॉइल के हम लोग कब लगाएंगे इसके बारे में अगर बात करें तो मई का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मई मंथ के अगर पहला हफ्ते में, शुरू के हफ्ते में हम लगा सकते हैं कपास को, या फिर मई के पहला 15 दिन या फिर मिडिल ऑफ द मई तक, मतलब बीच में बीचों बीच मई के बीचों बीच तक हम लोग कपास ले जा सकते हैं। कपास के बहुत सारा फायदे हैं। कपास के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें हम कहना चाहते हैं कि कपास और पाट ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पाट में जो रेशे हम लेते हैं, फाइबर जो हम लेते हैं, वो पाट के स्टेम से आते हैं, उनकी शरीर से आते हैं, और कपास के जो रेशे लेते हैं वो उनके फूल से आते हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फूल से आते हैं। तो कपास के जब फ्लावरिंग टाइम आए या फ्लावरिंग से जब पॉट फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जूट के मतलब पाट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो पाट के जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है, मतलब उनकी जब स्टेम बन रहा है, उनकी शरीर जब बन रहा है, तो उनकी शरीर जब बन, क्योंकि शरीर से ही हमें रेशे मिलने वाले हैं जी, तो इसीलिए उस टाइम में जूट के टाइम में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कपास के हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है 80 केजी पर हेक्टर के दर से नाइट्रोजन, 40 केजी पर हेक्टर के दर से P2O5 और 60 केजी पर हेक्टर के दर से पोटाशियम। ऐसे देखे हम लोग उसकी मैन्योरिंग मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जनरली बहुत कम पानी में ही ये सब कपास पाट ये सब फसल हो जाते हैं। लेकिन पहला 40 से 45 दिन के बाद शोइंग करने के बीज बुआई करने का 40 से 45 दिनों के बाद एक इरिगेशन की ज़रूरत होता है। और मैंने पहले ही बोला था कपास के फूल से हमें रेशा मिलता है, तो फूल आने तक सारे ख्याल रखना पड़ेगा। उसके पहले एक इरिगेशन और ज़रूरी होता है। अगर कभी भी इरिगेशन का कमी दिखाई दे तो 2 से 3 हफ्ते के बाद लगातार इरिगेशन देते रहना चाहिए, उसी इंटरवल में इरिगेशन देते रहना चाहिए। और कपास में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होता है। कपास के फ्लावर जो होता है उस फ्लावर को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि वो फूल जब फूट जाते तो एक स्क्वायर 4 कोना उसकी फूल में कॉटन जैसा दिखने लगते हैं, मतलब कपास के रेशा आने लगते हैं। कपास के रेशा जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के समय में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस फूल को जो कलेक्ट करके रखते हैं, एक जगह करके रखते हैं, उसको कभी भी पानी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस फूल को पानी में रखिएगा उसकी जो रेशा की क्वालिटी है, रेशा की जो गुणवत्ता है, वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए एकदम सन में, एकदम खुली धूप में उनको सुखा लेना चाहिए, ताकि कोई चीटा मटेरियल जो लगा हुआ रहता है, फूजी मटेरियल जो लगा हुआ रहता है, वो सूख जाए। उसके बाद ही उसकी कॉटन की कलेक्शन होती है, उस फूल से, उसकी स्क्वायर बार्ड से उस कॉटन की कलेक्शन होती है, कॉटन को लिया जाता है, उसकी रेशे को लिया जाता है। अभी सबसे गुरुत्वपूर्ण बात जो है कपास में, कपास जो हमारे टोटल ईल्ड जो देता है कपास के ईल्ड, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कपास होता है। अगर महाराष्ट्र छोड़ दीजिएगा तो लगभग 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टर में कपास की रेशा आते हैं। फाइबर जो टोटल फाइबर यील्ड है कपास के 15 से 20 क्विंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कपास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपके साड़ी बनता है, बहुत सारी चीज़ें, कॉस्मेटिक्स बनते हैं कपास से, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल रहता है
1: जी। तो ये हो गई बात कपास की, और पाट के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में मैडम हमें बताएं
0: जी। अगर हम लोग पाट के बारे में बोलेंगे तो पाट का जैसे साइंटिफिक नेम है कॉर्चोरस, कॉर्चोरस मतलब ये है जूट। और कपास के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो कपास का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम मतलब कपास, मतलब कॉटन। तो हम लोग जूट के बारे में अभी बात करेंगे, पाट के बारे में। पाट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहार के लिए,

क्योंकि बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, सबसे अच्छा लीडिंग स्टेट है आपके वेस्ट बंगाल, बंगाल जो है, क्योंकि बंगाल के पास नदियां बहुत है, क्योंकि जूट होने के पहले, मैंने पहले ही बोली थी, जूट के स्टेम से फाइबर निकालते हैं, उनकी रेशा जो है उनकी शरीर से निकालते हैं, इसीलिए उनकी रेटिंग मतलब उसको गलाना, उसको पचाना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए पानी की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए फ्री फ्लोटिंग वाटर मतलब चलता हुआ क्लीन पानी, साफ सुथरा पानी बहुत ज़रूरत होता है, इसीलिए बंगाल बहुत ज़्यादा लीड ले रहा है। बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार में भी बहुत सारा एरिया है जहाँ पे जूट में बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। जूट जो है एक्चुअली इंदो बर्मा एक जगह था, उस जगह से जूट के पहला इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब पाट देश में आया था। पाट में लीड लेने वाला कंट्री है बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास बहुत पानी है, बहुत नदियां है, इसीलिए बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो जूट में लीड ले रहा है। लेकिन पूरा वर्ल्ड में 60% प्रोडक्शन इंडिया देता है, भारत आपके जूट का पाट का 60% प्रोडक्शन भारत कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। कपास में बहुत जगह बिहार और वेस्ट बंगाल छोड़ के आसाम में भी, सॉरी जूट आसाम में भी बहुत होता है ये पाट। पाट के लिए भी मैं फिर से बोल रही हूँ, पाट के सीड बहुत मिही होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, इसीलिए पाट बहुत अच्छे से मिट्टी अगर तैयार नहीं रहे तो उस जगह पे पाट होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मिट्टी बहुत 6-7 हैरोइंग प्लाउइंग करके, मिट्टी का जुताई करके, उसको पाटा लगा के बहुत मिही करके मिट्टी बनाना पड़ता है। जूट भी दो तरह का होता है, एक मीठा पाट एक तीता पाट। हम लोग अगर तीता पाट के बात करें तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉर्चोरस कैप्सुलरिस, अगर हम लोग मीठा पाट के बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉर्चोरस ऑलिटोरियस। एक्चुअली जो तीता पाट होता है उसको हम लोग व्हाइट जूट भी बोलते हैं, व्हाइट मतलब सफ़ेद, क्यों सफ़ेद बोलते हैं, उनसे जो रेशा निकलते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, रंग के होते हैं, इसीलिए हम व्हाइट जूट सफ़ेद जूट भी बोलते हैं तीता पाट को, और मीठा पाट को हम लोग तोशा जूट भी बोलते हैं। तोशा जूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके जो स्टेम से, उनके शरीर से जो रेशा निकलते हैं वो थोड़ा क्रीमिश कलर के होते हैं या पीला, हल्का पीला रंग के होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग तोशा पाट बोलते हैं। ये जो तोशा पाट ही सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ऑलिटोरियस जो है तोशा पाट मतलब आपकी मीठा पाट ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये दोनों पाटों के बारे में ही हम बताएंगे, क्योंकि किसी किसी जगह पर मीठा पाट होता है, किसी किसी जगह पे तीता पाट होता है, इसीलिए दोनों जगह पे हम मोटा मोटी बोलेंगे। पाट के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पाट ऐसा एक फसल है जिसमें 150 सेंटीमीटर पार एनम पर ईयर में अगर 150 सेंटीमीटर भी पानी मिल जाए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छे से पूरा वर्षा भर पानी रहे तो बहुत बढ़िया करता है। पाट जो है जनरली फेब्रुआरी टू अप्रैल लगाया जाता है, फेब्रुआरी माह से अप्रैल माह तक लगाया जाता है। फेब्रुआरी जो तीता पाट होता है उसको प्रेफर करते हैं फेब्रुआरी मंथ या मार्च मंथ तक तीता पाट को लगाया जाता है। मीठा पाट जस्ट उसके एक महीना पीछे पीछे चलता है, जैसे मीठा पाट के लिए मार्च टू अप्रैल तक ही जनरली पाट की शोइंग हो जाते हैं। जो भी पाट का शोइंग होता है, शोइंग के भी जो सीड रेट है, सीड के जो दर है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सीड रेट के बारे में हम बताएं, सीड रेट जो है मीठा पाट के लिए थोड़ा कम लगता है, तीता पाट के लिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। मीठा पाट के लिए जो सीड रेट है, तीता पाट के लिए जो सीड रेट है वो 6-8 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। जो मीठा पाट के लिए सीड रेट है वो 4-5 केजी पर हेक्टर के दर से लगता है। अगर हम स्पेसिंग के बात करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तक और पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर तक रखेंगे मीठा पाट के लिए। सो मीठा पाट के लिए हम लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर रखेंगे। अगर हम लोग ये तीता पाट के बारे में बताएं, अगर हम मीठा पाट थोड़ा सा कम लगता है, मीठा पाट में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5-7 सेंटीमीटर। हम एक बार और क्लियर कर दें, अगर हम सीड रेट के बात करें तो सीड रेट 6-8 केजी पर हेक्टर के दर से तीता पाट मतलब सफ़ेद जूट के लिए लगेगा, सफ़ेद पाट के लिए लगेगा, और 4-5 केजी पर हेक्टर ये तोशा जूट, तोशा पाट या फिर आपके मीठा पाट के लिए लगेगा। ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर बाय 5-7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति के दूरी, 5-7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के दूरी, ये मीठा पाट के लिए लगेगा। और 30 सेंटीमीटर पंक्ति की पंक्ति से दूरी और

सात से सात सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी ये तीता पाठ के लिए लगेगा। मतलब तीता पाठ के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और मीठा पाठ के लिए स्पेसिंग थोड़ा सा कम लगता है। मैं महीने के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, फेब्रुआरी मार्च हम लोग ले लेंगे तीता पाठ के लिए और मार्च के बाद से अप्रैल मई हम ले लेंगे मीठा पाठ के लिए। हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताएं, जो पोषक तत्वों की जो उपयोग करना है, अगर हम मीठा पाठ के बात करें तो 60 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन के दर दे दीजिएगा, 40 kg पर हेक्टर P2O5 मतलब फॉस्फोरस दे दीजिएगा और 60 kg पर हेक्टर पोटाशियम, ये तीता पाठ के लिए। अगर हम मीठा पाठ के बात करें, मीठा पाठ में थोड़ा सा कम लगता है, तीता पाठ में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तीता पाठ में हम लोग मोटा मोटी लगभग सेम ही देंगे, तीता पाठ में 80 kg पर हेक्टर के दर से नाइट्रोजन और बाकी 40 kg फॉस्फोरस, 60 kg पोटाशियम देंगे पर हेक्टर के हिसाब से। और मीठा पाठ में थोड़ा सा कम, 60 kg नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस और 60 kg पोटाशियम दे देंगे। तो मीठा पाठ में सीड रेट भी कम लगता है, स्पेसिंग भी कम लगता है और फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट मतलब फर्टिलाइज़र के रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा कम लगता है। ये जितने भी पाठ के बारे में हम बताएं, पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वेजिटेटिव स्टेज का, क्योंकि उनकी जो स्टेम होता है, स्टेम लंबा हो वो ही अच्छा है। जितना पौधे लंबा, मोटा मोटी 9 feet तक ये पौधे जा सकता है, 150 cm तक लंबे होते हैं ये लंबे पौधे ही जनरली प्रेफरेबल है, क्योंकि उनकी जो रेशा होता है वो बिना कटे हुए लंबे रेशा निकलता है, जो क्वालिटी एस्पेक्ट से बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। जो भी उस मीठा पार्ट से यील्ड होता है, यील्ड के लगभग मामले में 13 क्विंटल तक हम फाइबर ले सकते हैं पार्ट के पार्ट से। अगर हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए तो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर के दर से भी हम लोगों को फाइबर रेशा मिल सकता है पार्ट से। पार्ट के सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आता है उसकी रेटिंग प्रोसेस, मतलब उसको गलाना, सड़ाना, पार्ट काटने के बाद पार्ट के जो लंबे लंबे स्टेम्स होते हैं उस स्टेम्स को ऐसे पानी में रखना चाहिए जिस पानी में बहुत ही शांत पानी हो, धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लोटिंग हो, धीरे धीरे चल रहा है, एकदम क्लीन साफ सुथरा पानी है। इसमें हम लोग पार्ट के जो स्टेम्स है उसको काट के, मतलब पार्ट के एकदम नीचे से, ग्राउंड से एकदम नीचे, जमीन के एकदम नीचे से, क्योंकि जितना लंबा पार्ट उतना ही अच्छा क्वालिटी है, उतना ही अच्छा रेशा मिल सकता है, उसको पहले 2-3 दिन के लिए खड़ा करके हम लोग उस पानी में रख देंगे। 2-3 दिन खड़ा करके रखने के बाद धीरे धीरे ऐसे लगेगा कि उसकी जो रेशा है वो लूज होने लग रहा है, उसकी जो स्टेम्स है, स्टेम से उसकी जो काठी, पार्ट काठी से थोड़ा थोड़ा ढीला होने लग रहा है, लूज हो रहा है। तो उस पार्ट को लेयर बाई लेयर सुला देना है, सो के रखना है, मतलब हॉराइजेंटली उसको बिछा देना है, एक के बाद एक, एक लेयर बाई लेयर उसको रखना है। उसको भी लेयर बाई लेयर भी 10 दिन तक रख सकते हैं लेयर बाई लेयर, लेकिन लेयर बाई लेयर रखते वक्त हमें एक चीज़ की ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब लेयर बाई लेयर रखेंगे तो कोई भी भारी चीज़ देके उसको ऊपर से दबा देना पड़ेगा ताकि वो पूरा डूबा हुआ रहे, 10 cm तक वो पानी के नीचे डूबा हुआ रहे। इसीलिए ये लेयर बाय लेयर जैसे उसको सुला दिए, पहले 2-3 दिन खड़ा करके रखे, खड़ा करके रखने 2-3 दिन के बाद उसको सुलाना पड़ेगा। जब वो स्टेम्स को हम लगातार एक के ऊपर एक करके सुला रहे तो एक लेयर बन जाएंगे। लेयर को हम लोग और 10 दिन के लिए, आगे के 10 दिन के लिए सो देंगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा, कोई लकड़ी का या फिर बनाना केला का कोई स्टेम्स देके उसको ऊपर में भारी नहीं दे सकते, मतलब किसी भी चीज़ों से उसको दबाना है, दबा के पानी के अंदर कर देना है। लेकिन ध्यान में रखना है कोई लकड़ी, ऐसा लकड़ी ना हो जिससे से कलर निकल रहा है, जिससे से रंग निकल रहा है, या फिर केला पानी में आता है तो उसमें काला काला रंग छोड़ता है, और उससे उस जूट के पार्ट के स्टेम्स को दबाना नहीं है, क्योंकि वो रंग जो है वो रेशा में आ जाएगा तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ईटा का टुकड़ा रख सकते हैं, कोई पत्थर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चीज नहीं रख सकते जिससे हमें रेशा में कोई दाग आ सकता है, उनकी कोई क्वालिटी खराब हो सकता है। तो 10 cm तक उसको, 10 cm नीचे, उस पानी के 10 cm नीचे तक उसको डुबा के रखना है और अगले 10 दिन के लिए रखना है। जूट के जो रेशा है उसको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे उसकी काठी से अलग करना पड़ता है। पाट के जो रेशा है उसको काठी से जब अलग कीजिएगा तो बहुत ध्यान से रखिएगा, उसको धीरे धीरे हिलाना पड़ता है ताकि और थोड़ा लूज हो जाए और थोड़ा ढीला हो जाए, और हाथों से एक एक करके उसको, यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है।

0: उसका रेशा निकलना, एक एक जो किसान भाई ये काम करते हैं उनको शायद पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल काम होता है उसकी रेशा निकलना। तो धीरे धीरे उसकी रेशा निकलना है। कभी भी कोई लकड़ी का लाठी लेके, काठी लेके उसको धक्का नहीं लगाना है कि धक्का लगाते जल्दी जल्दी करने के चक्कर में धक्का लगा दिए तो तब भी वो रेशा टूटने लगेगा, और रेशा टूटा आपकी क्वालिटी खराब, तो वो बाजार में नहीं बिकेंगे। जितने लंबा, जितना सुंदर, फाइन, चमकीले, चकचक वाला रेशा मिलेंगे उतना ही अच्छा क्वालिटी होगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ों से जब हम लोग जूट के रेशा निकालते हैं, पाट के रेशा निकालते हैं, तो कोई भी स्टिक या फिर कोई भी लकड़ी लेके उसको पाट काठी को धक्का लगा लगा के नहीं निकलना है। अपने हाथों से धीरे धीरे धीरे धीरे खींचते हुए, वो पानी में वैसे भी सर गया, गल गया, तो धीरे धीरे खींचिएगा, वो सरक सरक के निकल जाएंगे। निकल के अच्छे से पानी में धो के उसको लेना है, उसके बाद एकदम शेडेड एरिया में सुखाना है ताकि वो पूरा मोशरीन मिहिम हो जाए और काम में आ जाए। उसके बाद आगे का प्रोसेस, जैसे फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, उसमें पॉलिशिंग होता है, उसको कॉमर्शियल यूज़ होता है, उसको लेके इस तरह का कॉमर्शियल यूज़ होता है। इस तरीके से हम लोग पाट को यूज़ कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने रेशेदार फसलों के पैकेज एंड प्रैक्टिस के बारे में जाना, मैडम ने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि कैसे रेशा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप सावधानियों के साथ जो है इसका इस्तेमाल करें जो भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं इस रेशे से। तो अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
3: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की

से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 ईसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप दिखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम करियर वॉच और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो लगभग हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि एग्जाम स्ट्रेस यानी परीक्षा का तनाव। परीक्षाएं हमारे जीवन

में आगे बढ़ने का एक जरिया मानी जाती है और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है कि अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज का रास्ता मिलेगा, अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा करियर। लेकिन इसी सोच के साथ एक दबाव भी हर बच्चे के ऊपर आ जाता है अच्छा करने का और सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का और असफलता से बचने का। थोड़ा बहुत तनाव तो सामान्य सा होता है, हर किसी की जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव होता है और ये हमें सतर्क भी रखता है कि मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन जब यही तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारी सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति पे बहुत बुरा असर डालता है। तो आज हम बात करने वाले एग्जाम स्ट्रेस के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस होता क्या है। एग्जाम स्ट्रेस वो स्थिति है जब परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के परिणाम को लेकर चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो आपकी नींद, आपकी भूख, ध्यान, व्यवहार तक को प्रभावित करती है। इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, बार बार घबराहट होना, पढ़ाई में मन न लगना, और अगर ये सारे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये एक संकेत हो सकता है कि तनाव सामान्य स्तर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और अगर एग्ज़ाम स्ट्रेस ना संभाला जाए तो क्या हो सकता है? कई बार होता है कि बच्चों को परेशानी होती है और वो किसी से बात करके या फिर किसी और तरीके से अपने टेंशन को कम कर लेते हैं, अपने एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रेस को संभाल पाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें नींद की समस्या हो सकती है। ज़्यादा तनाव से शरीर में कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि हमारा दिमाग शांत नहीं हो पाता और नींद आने में दिक्कत होती है और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रात भर करवटें बदलते रहते हैं और इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पे ये पड़ता है कि नींद की कमी की वजह से उनकी याददाश्त और किसी चीज़ पर ध्यान देने की शक्ति दोनों ही कमज़ोर हो जाती है। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान यही है कि रोज़ एक ही समय पर सोने जाएं और रोज़ एक ही समय पर उठें। कोशिश करें कि देर रात तक पढ़ाई करने से आप बचें और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल या फिर किसी भी तरह का स्क्रीन इस्तेमाल करने से बचें, यानी कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी स्क्रीन के इस्तेमाल से बचें। और कहते हैं कि जो संगीत होता है वो सबका और हर परिस्थिति में दोस्त होता है। तो बस अगर आपको नींद नहीं आ रही हो तो आप हल्का संगीत सुने, यानी कि ये नहीं कि डांस करने वाला संगीत हो, जो दिमाग को शांति दे तो वैसे संगीत सुने, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल आप सुन सकते हैं। गहरी सांस लेने की तकनीक भी अपना सकते हैं। अगर आप कुछ देर तक गहरी गहरी सांस लेंगे, अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो भी आपको नींद अच्छी आती है या फिर आपको नींद आने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसके अलावा आप अभी हमने नींद के बारे में बात की, एक और परेशानी होती है मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में तो हम बात कर रहे हैं ना। लगातार तनाव से क्या होता है, लगातार जब आप तनाव लेते हैं तो चिंता यानी कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है और वैसा छात्र जो कि एंग्जाइटी से जूझ रहा होता है वो सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको थोड़ा तनाव होता है तो आप कल की परीक्षा के बारे में परेशान होते हैं, यानी कि आप इस तरीके से कहते हैं कि मुझे कल के परीक्षा की बहुत चिंता है। लेकिन वही तनाव आगे बढ़कर चिंता या एंग्जाइटी में बदल जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा तो पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो ये होता है चिंता और एंग्जाइटी के, स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बीच में अंतर। और अगर आप एंग्जाइटी तक पहुँच गए हैं तो फिर आप बहुत गहरे परेशानी में जा सकते हैं, यानी कि आप, हो सकता है कि आगे आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएं अगर आप अपनी एंग्जाइटी का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं ढूंढते हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम बर्नआउट का मतलब समझे तो बर्नआउट की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप बहुत लंबे समय तक तनाव में रहते हैं या और तनाव में मेहनत करते हैं, तो ऐसा होते होते आपकी मानसिक और शारीरिक, इसके साथ ही भावनात्मक रूप से भी आप पूरी तरीके से थक जाते हैं। और फिर ये सिर्फ थकान नहीं होता है, ये ऐसा थकान होता है कि अगर आप आराम भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। और अगर हम बात करें कि बर्नआउट कैसा होता है, तो अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी गलती के लिए खुद को दोष देते हैं, और इसके अलावा आप नींद और खान पान को भी नजरअंदाज करते हैं, तो ये आप लंबे समय तक करते हैं और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं और अपनी पढ़ाई से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो वो बहुत ज्यादा खुद को कोसते हैं। नींद, खान पान, इन सारी चीजों को तो एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे बच्चे नजरअंदाज ही कर देते हैं, और ये लंबे समय तक चलता है तो धीरे धीरे शरीर और दिमाग की ऊर्जा खत्म होने लगती है और यही

से शुरू होता है बर्नआउट। और बर्नआउट के मुख्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके इमोशंस में चेंजेस दिखते हैं वो ये होता है कि हर समय आप थका थका महसूस करेंगे, आप काम नहीं कर रहे होंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आप आपका दिमाग ही आपका मन ही लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन लगेगा, रोने का मन करेगा, खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीज़ें भूलने लगेंगे और इसके साथ ही मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती जैसी सोच भी आपके अंदर आएगी और मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर शारीरिक लक्षण के बारे में बात करें तो सिर दर्द होता है, नींद की समस्या होती है, कमजोरी होती है, पेट की भी समस्या शुरू हो जाती है। तो और अगर हम बात करें कि बर्नआउट पढ़ाई में कैसे दिखता है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप जैसे ही किताब खोलते हैं आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो लगभग ख़त्म हो चुका है। और पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ नहीं आता है और फिर भी आप ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग तो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है, आप पढ़ेंगे पे तो भूल जाएंगे, तो ऐसे में आप अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, आप रोने लग जाएंगे और खुद को बार बार यूजलेस जैसी चीज़ें बोलेंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझें कि आप आलसी नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन ये मानसिक थकान है, आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा सोचा है, बहुत ज़्यादा आपने चिंता की है, इसी का नतीजा बर्नआउट होता है। और बर्नआउट बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये डिप्रेशन में बदल सकता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, पढ़ाई आपकी या तो कम हो जाती है या तो फिर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई रुक भी सकती है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, आपको लगता है कि मुझसे पढ़ाई होगी ही नहीं जबकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आप बर्नआउट से कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आराम करें, ब्रेक लें। आपको अगर ये भी लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे भी कहा जाता है कि हर 40 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक तो लेना ही चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उसी वक्त पे हमारा दिमाग रिसेट होता है और खुद के प्रति थोड़े से नर्म बने। अगर कोई गलती हो गई या फिर किसी टेस्ट में कम नंबर आ गया तो भी सोचे कि कोई बात नहीं, आगे मैं कोशिश करूंगा या आगे मैं कोशिश करूंगी। इसके साथ ही किसी परिवार या दोस्त या फिर काउंसलर से भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दें कि चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होगी, आप मेहनत करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आएगा, ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ भी पूरा 100% एकदम सटीक बहुत बेहतर नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटेगा ही, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। अब हम आगे बढ़ते हुए शारीरिक समस्याओं के बारे में बात करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो तनाव का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता है, वो शरीर पर भी पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बर्नआउट की समस्या में भी कई बार जो पेट के भी बीमारियां हैं वो होने लगती है, पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, पसीना आता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है अगर आप बहुत टाइम तक तनाव से गुजरते हैं, आप एंग्जाइटी आपको होती है तो। अगर आपको लगातार तनाव होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? सबसे पहला समाधान तो यही है कि आप तनाव को कम करें, और दूसरा कि संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं, रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ज़रूरी है। अब तक हमने बहुत सी बातें की, नींद की समस्या के बारे में बात की, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात की, और इसके साथ ही पढ़ाई में भी आप गिरावट महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, विडंबना ये है कि जिस परीक्षा के लिए छात्र तनाव लेते हैं वही तनाव उनकी तैयारी को कमज़ोर कर देता है, और जाहिर सी बात है ना, आप टेंशन में किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपने पढ़ाई के लिए टेंशन ली और इसका असर आपकी पढ़ाई पर ही पड़ता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रात को सोने तो गए हैं लेकिन उनके दिमाग में पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें चल रही है कि मेरा रिजल्ट ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, ये या फिर और भी बहुत सारी संभावनाएं उनके दिमाग में चल रही होती है। इसका नतीजा ये होता है कि वो सोते देर से हैं, जागते देर से हैं, या जाग पहले भी जाते हैं तो वो फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो अंत में आपका जो तनाव है वो आपकी पढ़ाई को ही कमज़ोर बनाता है, और इसके साथ ही आपकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। तो इसका समाधान यही है कि आप अपनी प्रगति को ट्रैक करें और बड़े लक्ष्य ना बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं कि आज मुझे
इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आपने हर रोज़ जो तरक्की की है, आपने हर रोज़ जो पढ़ा है उस

आप थोड़ा कंसिडर करें, उसके लिए आप खुद को थोड़ा थैंक यू बोले कि हाँ मैंने आज ये किया, आप उसके लिए खुद को थोड़ा बधाई दे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं सामाजिक दूरी के बारे में। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दौरान दोस्तों से, परिवार से दूरी बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि बातचीत करना समय की बर्बादी है। जी नहीं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं, तो उससे बात करना कभी भी समय की बर्बादी हो ही नहीं सकती है। परिवार से खुल के बात करें और दोस्तों के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, बाहर घूम फिर रहे हैं, उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बिताना ही चाहिए। और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप अपने दोस्तों से या अपने परिवार से शेयर करें, या फिर आपके कोई ऐसे टीचर जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उनके साथ भी आप बातें अपनी साझा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है और तनाव लगातार बढ़ जाता है, तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब तनाव असहनीय हो जाता है तो छात्र गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों का सहारा लेना या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के भी उनके मन में विचार आते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत मदद लें, अपने परिवार से, अपने दोस्त से, या फिर आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी परीक्षा आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, और एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, थोड़ा बहुत होता है, चलता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन उसी को पकड़ कर आप बैठे रहेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपकी ज़िंदगी, सारी चीज़ें प्रभावित होगी। तो एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है तो इससे निपटने के लिए आप क्या करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं, 7-8 घंटे की पूरी नींद लें, पौष्टिक और जो दिमाग के लिए अच्छे खाने हैं वो खाएं। जैसे कि दिमाग के लिए अच्छे खाने की बात करें तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो आप हरे साग सब्जी खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इसके साथ ही आप नियमित व्यायाम करें, गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, और ज़रूरत हो तो आप काउंसलर की भी, विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। ध्यान रखें कि परीक्षा जो होता है वो जीवन का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। बहुत सारी आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जो एग्जाम में फेल कर गए थे लेकिन वो बहुत आगे निकले, किसी और फील्ड में उन्होंने अच्छा किया। तो कुछ भी हो सकता है, बस अपने ऊपर से कभी भी विश्वास कम नहीं करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉलेज के लिए या फिर किसी खास डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आपका भविष्य तय नहीं करती है। और इसके साथ ही आपकी जो मानसिक और शारीरिक सेहत है वो आपके नंबर से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं और ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो परीक्षा के तनाव से जूझ रहा है, तो उसे बात करें, उसका साथ दे, और ज़रूरत पड़े तो किसी पेशेवर की मदद लेने में बिल्कुल हिचकिचाए नहीं। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लेकिन अपने मन और शरीर के सुनना बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आराम ज़रूरी है, अच्छा खान पान ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है। और इसी कुछ अच्छी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। जाने से पहले कुछ खास बात कि स्वस्थ रहें, शांत रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें। और ध्यान रखें कि जहाँ भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। आज के लिए करियर वॉच में इतना ही। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके फायदे के बारे में जानना चाहते हैं, तरीका जानना चाहते हैं

0: से करना चाहिए, साथ ही प्रभेदों का चयन कौन कौन सा करना चाहिए, तो इन सारी बातों को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं आप सभी को बता दूं, सर वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: सर, सबसे पहले तो धान की सीधी बुआई क्या है, आप ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, एक्चुअल धान की सीधी बुआई का मतलब है जो हमारी परंपरागत कृषि है, परंपरागत कृषि में हम जो अपनी व्यवस्था रखते हैं कि कदवा करते हैं खेती, हम उस तरह की खेती न करके धान को यहाँ इसमें खेत तैयार करके हम सीधे धान को लाइन में बुआई करते हैं, और इसके लिए हम या तो मल्टी क्रॉप प्लांटर का या जीरो टिल का या सीड कम्फर्ट ड्रिल का उपयोग करते हैं।
0: जी सर, इसके फायदे क्या क्या हैं, धान की सीधी बुआई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा किसान भाइयों को?
1: हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो इसमें अनेकों फायदे हैं। अब हम बात करें कि सबसे पहले तो हम धान की सीधी बुआई में जल की आवश्यकता है जो कि कम पड़ती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि धान के उत्पादन के लिए हम 1400 से 1800 मिलीलीटर वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें 30% का इस्तेमाल हम कदवा में करते हैं। जल की इस मात्रा को हम है जो कि धान की सीधी बुआई करने पे हम है इसको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें श्रम की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है, क्योंकि जब हम पारंपरिक कृषि की तुलना में बात करते हैं तो पारंपरिक में हमें रोपाई करने के लिए एक एकड़ में कम से कम 12 से 15 श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन हम धान की सीधी रोपाई में हम है जो कि सामान्यतः मशीन से इसकी बुआई कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊर्जा एवं ईंधन की काफ़ी बचत होती है, साथ ही साथ जल मजदूरी एवं ईंधन की बचत होने के कारण सीधी बुआई में हमारी लागत कम आती है, और लागत जब कम होता है तो उत्पादन सामान्यतः बराबर ही होती है, तो इस तरह से हमारी शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होती है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है जो कि मिट्टी की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि मिट्टी के कदवा करने से ये भौतिक गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है, जो कि हम सीधी बुआई में अपने खेतों की भौतिक गुणवत्ता को अक्षुण बनाए रखते हैं। इसमें सबसे एक बहुत बड़ी फायदा होती है कि धान के बाद जब हम गेहूं लेते हैं तो जनरली गेहूं को हमको 7 से 10 दिन ज़्यादा समय मिलता है, क्योंकि रोपाई विधि की अपेक्षा में सीधी बुवाई विधि से हम जब धान की खेती करते हैं तो फसल हमारा 7 से 10 दिन पहले पक जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और आती है कि अगर हम धान की सीधी बुआई की बात करें तो ये पर्यावरण मैत्रिक है, मतलब वातावरण को कम दूषित करता।
0: जी सर, धान की सीधी बुआई की उत्पादन तकनीक के बारे में कृपया बताएं।
1: हम जहाँ तक उत्पादन तकनीक की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भूमि की तैयारी करने के लिए हम उसको समतलीकरण करें, और समतलीकरण करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने खेतों का 3 साल 4 साल के अंतराल पर एक बार लेजर लैंड लेबलिंग कर लें। लेजर लैंड लेबलिंग करने से सामान्यतः ये होता है कि हम सभी क्रियाओं को समय पे कर लेते हैं, साथ ही साथ जितने भी कृषि के लागत हैं, कृषि के जितने भी उपादान हैं उनका समुचित उपयोग होता है, और लेजर लेबलिंग करने से सामान्यतः फायदा क्या होता है कि हमें 25 से 30% शुद्ध जल की बचत होती है, पौधों को हम जितनी संख्या में अपने खेतों में लेना चाहते हैं उतनी संख्या में हम बीज गिरा सकते हैं, पौधों की बढ़वार एक समान होती है, और साथ ही साथ हम जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव की क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ तक हम खरपतवारों की बात करते हैं तो खरपतवार के लिए जो हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमारा ज़मीन जब लेजर लैंड लेबल रहता है तो हमें पानी भी एक समान मात्रा में हम खेतों में दे सकते हैं, और साथ ही साथ खरपतवार भी हम समुचित जगह पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
0: जी सर, इसके लिए प्रभेदों का चयन किस प्रकार करना चाहिए?
1: धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः ऐसी प्रभेद अच्छी होती है जिसकी शुरुआती बढ़वार तेज हो, साथ ही साथ पर खरपतवार से प्रतिस्पर्धा उसका काफ़ी अच्छा होता, मतलब कि इसका मतलब है कि अगर बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से अगर हमारे पौधों की होगी तो खरपतवार

वार की बढ़वार को वो रोकेगा। साथ ही साथ हमें ऐसे प्रभेद का चयन करना चाहिए जिसका जड़ है जो कि गहरे नीचे उसकी गहराई ज़्यादा तक हो, एवं ऐसे प्रभेद का हम चयन करें जो जहाँ जिसकी जल की आवश्यकता कम हो। सीधी बुआई करते समय हमको प्रभेदों का चयन जल की उपलब्धता के अनुसार करना चाहिए। हम सामान्यतः बिहार में अगर

0: मसूरी एमटीयू 1001 सबौर अर्जल सहभागी सुसक्रमराज। इसके साथ ही साथ हम कुछ संकर किस्म के बीजों का भी हम इस्तेमाल सीधी बुआई में अच्छी तरह से कर सकते हैं।
1: जी सर, बुआई का समय और खरपतवार नियंत्रण कैसे करना चाहिए?
0: बुआई के लिए सामान्यतः हम जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बुआई मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून जब आ जाता है उसके बाद हमें अपने खेतों की जुताई करना मुश्किल हो जाता है और उसमें मशीन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सामान्यतः हम बात करते हैं कि बिहार में अगर हम धान की सीधी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक कर लें तो ये सबसे उचित समय होता है। और सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचित अवस्था में वर्षा आरंभ होने से एक सप्ताह पूर्व बुआई सबसे उपयुक्त समय होता है। जहाँ पे हम कहते हैं कि वर्षाश्रित खेती हो रही है, मतलब जहाँ पे हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उस स्थिति में भी वर्षा की शुरुआत ये मतलब मानसून आने से पहले हमको खेतों में बुआई कर लेनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे हम कहते हैं कि बुआई, और थोड़े पहले कहें हम मई के लास्ट वीक में भी हम बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः बुआई के लिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम इस बार का ही लें, इस बार की बात है कि शुरू में लगातार सूखा रहा और उसके बाद ऐसा सूखा था कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई जल की सुविधा न के बराबर रहने के चलते सीधी बुआई करना करीब करीब मुश्किल था, और उसके बाद अचानक मानसून आ गया और 7 से 10 दिन, तो ऐसी स्थिति में हम है जो कि अनपडल्ड कंडीशन में या पडलिंग करके भी हम ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। जहाँ पे सामान्यतः हम करते हैं कि ड्रम सीडर का जब हम उपयोग करते हैं तो हम बीज को फूलने देने के बाद उसको हल्का अंकुरने देते हैं और उसके बाद हम ड्रम सीडर में डाल के आराम से जो हमारी 20 सेंटीमीटर रो टू रो स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन करके बुआई कर लेते हैं।
1: सर, इसके अलावा उर्वरक प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
0: हाँ, इससे पहले उर्वरक प्रबंधन की बात है तो सामान्यतः उर्वरक प्रबंधन के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि हमको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और जहाँ तक हम धान की सीधी बुआई की बात करते हैं तो हम धान की सीधी बुआई में चूंकि मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमको अपने खेतों में दानेदार खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए हम या तो DAP का इस्तेमाल करें या NPK जो दानेदार हैं उनका हम इस्तेमाल करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मिट्टी परीक्षण अगर हम नहीं कराए हुए हैं उस परिस्थिति में सामान्यतः ये कहा जाता है कि आप सुगंध जब बौनी किस्म के सुगंधित धान आप जब ले रहे हैं तो आपको 60 से 70 किलो नेत्रजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास, साथ ही साथ आप जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के जब या हम मोटा धान लेते हैं या अधिक उन्नतशील किस्मों को हम लेते हैं तो उन्नतशील किस्मों में हम सामान्यतः कहते हैं कि 120 से 25 केजी नेत्रजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर, 50 से 60 केजी आप फास्फोरस की मात्रा और 60 केजी पोटास की मात्रा दें। इसके साथ ही साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जिंक सल्फेट का हम इस्तेमाल जरूर करें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये अनुशंसा की जाती है कि नेत्रजन की 1/3 मात्रा तथा स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा है जो कि बीज बुआई के समय करें। बुआई के समय में सीड ड्रिल में पिन लगे नियंत्रक की सहायता से उर्वरक की मात्रा को हम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि सीड ड्रिल में दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग ज़्यादा उचित है, अतः बुआई के समय इन NPK जो कि आप 12-32-36 के माध्यम से भी पोषक तत्व तो हम कह सकते हैं कि वो देना उपयुक्त है। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया था कि खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार अगर हम बात करें कि धान की सीधी बुआई के दुश्मनों की बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खरपतवार है। धान की सीधी बुआई के बारे में कहा जाता है कि जब आपने पौधे का स्थापन सही से कर लिया और उसके बाद आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप

धान की सीधी बुआई और धान की रोपा वाली बुआई में कोई अंतर नहीं होता। तो जहाँ तक हम खरपतवार नाशी की बात करते हैं, तो खरपतवार नाशी में सामान्यतः जो हम कहते हैं कि अंकुरण के पूर्व में प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशी, तो हमारे पास कुछ दवा है कि हम पहला तो कि हम पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेंडीमिथिलीन का इस्तेमाल करने के समय में एक बात ध्यान करने की है कि जब हम पेंडीमिथिलीन का छिड़काव हम ऐसे समय में करें जब वर्षा होने की कोई संभावना ना हो। तो इसके लिए हम सामान्यतः करते हैं कि 1000 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से सीधी बुआई वाले धान में बुआई के 3 दिनों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद एक दवा आती है ऑक्साडाइजिन, इसके छिड़काव की अनुशंसित मात्रा है 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर और इसका छिड़काव भी हम बुआई के 3 दिन के अंदर करते हैं। एक बहुत ही प्रचलित दवा आजकल आ रही है जो हर्बिसाइड है पाइरेजोसल्फिरॉन। ये पाइरेजोसल्फिरॉन का इस्तेमाल हम अंकुरण के पूर्व और अंकुरण के बाद भी करते हैं। यह खरपतवार नाशी दवा घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करती है। इसके लिए भी हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर मतलब कि करीब 200 ग्राम हम प्रति हेक्टेयर पाइरेजोसल्फिरॉन का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक अंकुरण के बाद प्रयोग होने वाली दवाओं की बात होती है, तो सबसे अच्छी दवा कहते हैं कि बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसको कि हम 250 ml दवा है जो कि 1 हेक्टेयर के लिए हम बुआई के 15 से 20 दिन के बाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दवा है, फिनोक्सा प्रोप है, इथॉक्सी सल्फ्यूरॉन है, 2,4-D इथाइल इस्टर है। अगर हमको हमारे खेतों में चौड़ी पत्ती ही केवल घास के रूप में है तो हम 2,4-D का इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ जो खरपतवार के लिए है, तो खरपतवार के लिए सबसे अच्छी अनुशंसा हमारे यहाँ की पाइरेजोसल्फिरॉन एवं बिसपायरीबैक सोडियम का हम इस्तेमाल है, जो कि बुआई के 15 से 20 दिन के बाद करें तो हम अधिकतम घासों का है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं आराम से। इसके बाद एक और चीज़ बचती है कि सिंचाई एवं जल प्रबंधन। जहाँ तक धान की सीधी बुआई का बात है, हम सिंचाई के बाद सामान्यतः क्या होता है कि उचित नमी रहती है तो हम धान को बिना सिंचाई के भी हम खेतों में लगा लेते हैं। सीधी बुआई की फसल जमाव की अवस्था में जल भराव से समानता है जो कि उसकी अंकुरण में प्रॉब्लम हो सकता है, तो अतः हमको बुआई है जो कि वर्षापात से, जैसा कि हम पहले कह चुके कि वर्षा शुरू होने से 1 महीना पहले कर देना चाहिए। समानता हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार न बन पाए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम सामान्यतः हम बिहार में धान की खेती है जो कि वर्षा आधारित ही करते हैं, तो इसलिए हम कोई विपरीत परिस्थितियों में जब जरूरत हो जरूरत के अनुसार हमको अपने खेतों में पानी देनी चाहिए। इसके अलावा जब सब चीज होने के बाद धान हमारी कटाई की अवस्था में आती है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि धान की कटाई का सही समय तब समझना चाहिए जब धान की बालियां पक जाए एवं दाना सख्त हो जाए एवं पौधे का कुछ भाग पीला पड़ जाए। सामान्यतः अब हम क्या है कि धान की कटाई पहले मजदूरों के द्वारा की जाती थी, लेकिन अब कंबाइन मशीन जहाँ उपलब्ध है तो हम इसके लिए कंबाइन मशीन से सीधे हम धान की कटाई कर लेते हैं। लेकिन भंडारण के समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छी उत्पादन एवं अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए हमको भंडारण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सामान्यतः धान के दानों में जब कहा जाता है कि 14% नमी हो तभी है जो कि हमको इसको अपने बोरों में या बैग में भर के हमको इसको भंडारण के लिए ले जाना चाहिए। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हम श्रम के अभाव में या सिंचाई जल के अभाव में अधिक उत्पादन के लिए ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सामान्यतः फसल की स्थापना सीधी बुआई की तकनीक
पर निर्धारित करती है, इसलिए हमें

0: बीज बोने की गहराई एवं मिट्टी में नमी उपस्थित नमी का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। सामान्यतः कम अवधि की संकर एवं बासमती किस्में सीधी बुआई में अपेक्षित रूप से ज़्यादा सफल होती है। अंकुरण से पूर्व एवं अंकुरण के बाद खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हम धान की सीधी बुआई अच्छी तरह से कर सकते हैं और इससे न केवल हमको हमारी लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन बराबर रहने के बावजूद है जो कि हमारे आर्थिक जो लाभ है उसमें बढ़त प्रदान करती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर विस्तार से डॉक्टर साहब ने आपको पूरी जानकारी दी है धान की सीधी बुआई में आपको क्या कुछ करना है। तो आशा करते हैं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको आज की इस वार्ता से। अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर यह दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर

नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती हैं और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन
फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय जरूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है। तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप
काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को

0: को शांत रखे और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: लेडीज फर्स्ट।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। औरंगाबाद, गया, नवादा, कैमूर और रोहतास जिलों में ओलावृष्टि होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह, आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान दें, खड़ी फसलों में सिंचाई अभी ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, गर्मा मूंग और उड़द की फसल में रस चूसा कीट यानी कि माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करना बहुत जरूरी है। इन कीटों के बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 इसी दवा या फिर डाई मेथो 8 30 इसी दवा को 1 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल दें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अगर माइट कीट का प्रकोप

रखे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, निनवा, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें, एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी जरूर रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखें। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। ट्रैप को इस तरीके से बांधे कि बाग में वो साफ साफ दिखाई दे कि कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दे। ध्यान दें, गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दे, वहीं भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। साथ ही हर पशु को हरा चारा 20 से 25 किलो दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सामुदायिक रेडियो आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी

0: अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए। और यह कैसे हो सकता है, इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
1: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी चार तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है। तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम दो आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों, पेड़ों, बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
0: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्त चलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं। तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और

0: किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
1: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं, उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की असल शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है, और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं, और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
0: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो हैं, उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
1: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
0: जी,
1: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिलकर जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
0: जी,
1: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
0: जी,
1: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुड़काव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुड़काव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया, तो वहां पे भी अलग से हम
0: डाल सकते हैं। जी,
1: लास्ट है भुड़काव यंत्रों में शक्ति चालित भुड़काव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुड़काव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे, इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं। और इंजन से चलने वाले हल्के भुड़काव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुड़काव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है उसी से चूर्ण निकल

0: धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है, और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ है वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
1: जी।
0: इस तरीके से हमारे भुरकायंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकायंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज़ और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
0: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
1: जी।
0: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए, ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
1: जी। डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुले में नहीं रखना चाहिए। अगर खुले में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: उसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है, आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह।